कि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिर से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें, योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में, सुबह, रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारे पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे हैं और इसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह 1 केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में, छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल

शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है। इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारे मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्नेक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचें। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा, इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि ही मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योगपाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास, हमें इस महीने में यानी कि वसंत ऋतु में फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सौंच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारी पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वस्थ
किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है। इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद कुप मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है।

लेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या हैं। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे, यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी। बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के आंगन्स होते हैं, वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की। तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है, जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं। जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया, आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के खाएंगे।

वणक्कम, नमस्कारम, सुप्रभात। दोस्तों, जब पहली किरण धरती को छूती है तो सिर्फ रोशनी नहीं, एक नई उम्मीद भी लाती है। ये उजाला हमें याद दिलाता कि चाहे रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। आज की पहली किरण का विषय है वही प्रकाश, रोशनी और उजाला। चलिए आज जानें कैसे हर सभ्यता, हर धर्म और हर युग ने इस रोशनी को ईश्वर की सबसे पवित्र निशानी माना।

प्रकाश सिर्फ दिए की लौ नहीं, वो ज्ञान की वो चमक है जो अंधकार मिटा दे। ईश्वर ने हमें आंखें दी देखने के लिए, पर प्रकाश दिया समझने के लिए। ऋग्वेद में कहा गया, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से उजाले की ओर ले चल। यह सिर्फ भौतिक रोशनी की नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मबोध के प्रकाश की बात है। हमारे ऋषि मुनि दीपक को दीप प्रज्वलन से जोड़ते थे, जो ये दर्शाता है कि हर मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को ज्ञान से मिटाए।

प्रकाश ज्ञान, सत्य, दिव्यता और आत्म जागरूकता का प्रतीक है। ये अज्ञानता और अंधकार को दूर करने वाली शक्ति है और अक्सर ईश्वर या चेतना के रूप में देखी जाती है, जो आंतरिक दृष्टि और दिव्य समझ से पहचानी जाती है। प्रकाश में जीना, इसका अर्थ है आनंद, जागरूकता और एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना। दोस्तों, आध्यात्मिक प्रकाश के विभिन्न पहलू हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

प्रकाश को विभिन्न पहलुओं में जाना जाता है, जैसे ज्ञान और सत्य। यानी प्रकाश को सत्य के रूप में देखा जाता है, जो अज्ञानता और झूठ को नष्ट करता है। ये हमें जीवन के सत्य के प्रति जागृत करता है। दूसरा है दिव्यता और ईश्वरीय उपस्थिति। ये ईश्वरीय शक्ति या चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, जो कभी कभी दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई देता है। ये ईश्वर और आत्मा, इन दोनों के बीच एक संबंध स्थापित करता है। इसके बाद बात करेंगे आत्म जागरूकता और मुक्ति की। यहाँ पे प्रकाश के संपर्क में आने से व्यक्ति में आत्मज्ञान और जागृति आती है। ये आत्मा के पुनरुत्थान और आत्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। किसे? हमें, हम सभी को, हम सभी जीवों को। फिर बात करेंगे मार्गदर्शन की। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है मार्गदर्शन। कई बार होता है हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब पता होता है, फिर भी यदि हमें किसी गुरु का सानिध्य ना मिले, उचित मार्गदर्शन ना मिले, तो हम अपने पथ से भटक जाया करते हैं। तो प्रकाश जीवन के पथ को रोशन करने वाली एक आंतरिक शक्ति है, जो हमें गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के द्वारा मिलती है। ये हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं।

अब हम बात करेंगे प्रकाश के उन पहलुओं पर जो कि हैं भौतिक और आध्यात्मिक संबंध और इसके अलावा एक अनुभव के रूप में प्रकाश। जिस प्रकार प्रकाश भौतिक दुनिया को देखने के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश हमें सूक्ष्म और अदृश्य दुनिया को देखने की क्षमता देता है। ध्यान जैसी आत्मिक क्रियाओं से ये प्रकाश जागृत होता है। जब कोई व्यक्ति प्रकाश में आता है तो उसका अर्थ है कि वो दिव्य ज्ञान और सत्य के प्रति जागरूक हो गया है, जिससे उसके चरित्र में स्थायी परिवर्तन आता है। एक ही प्रकाश के विभिन्न व्यक्ति के जीवन में अलग अलग रूप हो सकते हैं। ये प्रकाश ही है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अनुभव प्रदान कराता है, जैसे उपचार, मार्गदर्शन या प्रेम। इन सभी में कुछ भी हो सकता है। तो हम चलते हैं उस प्रेम की ओर जो हमारे अंदर का प्रकाश हमें दिखाता है।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर अपना भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, जिसमें मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा। और आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश की। चलिए आपको ले चलते हैं, कुछ धर्मों से रूबरू कराते हैं जिनमें प्रकाश का माने क्या है, यह हम आपको बताते हैं। बाइबल में लिखा है, लेट देयर बी लाइट, और प्रकाश हो गया। ईश्वर का पहला सृजन था लाइट यानी प्रकाश। ईसाई परंपरा में लाइट यानी लाइट ऑफ क्राइस्ट वो दिव्य शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। क्रिसमस पर जलती हुई मोमबत्तियां इस बात का संकेत है कि अंधकार में भी ईश्वर का प्रकाश सदैव साथ रहता है। कुरान शरीफ में नूर ये शब्द बार बार आता है। अल्लाहु नुरुस्मावाती वल अर्ज यानी अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। यहाँ नूर मतलब सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि सच्चाई, ईमानदारी और रहमत का प्रकाश है। इस्लाम सिखाता है कि जो दिल का साफ है उसके चेहरे पर खुदा का नूर झलकता है।

गौतम बुद्ध ने कहा था, अप दीपु भव, यानी स्वयं दीपक बनो। बौद्ध धर्म में प्रकाश का अर्थ है अज्ञान के अंधकार से मुक्ति। जब मनुष्य अपने भीतर का दीपक जलाता है तो करुणा, शांति और ज्ञान की रोशनी फैलती है। यहूदी धर्म में हनुक्का पर्व प्रकाश का उत्सव है। 8 दिनों तक दीप जलाने की परंपरा इस बात की याद दिलाता है कि विश्वास का प्रकाश हमेशा भय पर जीत पाता है। जब तेल सिर्फ 1 दिन का था पर वह 8 दिन तक जलता रहा, यही तो चमत्कार है प्रकाश का। यानी जब दीपक में सिर्फ 1 दिन मात्र का तेल बचा था, फिर भी वो विश्वास, प्रेम और आस्था के बल पे पूरे 8 दिन तक जलता रहा। और तभी से ये पर्व जिसका नाम है हनुक्का यहूदी धर्म में बहुत प्रचलित है।

श्रोताओं, अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है एक दीपक की यात्रा। बहुत समय पहले एक छोटा दीपक मंदिर में रखा था। हर रात वो मंदिर को जगमग करता, पर दिन में बुझा दिया जाता। उसे लगता कि शायद उसका कोई महत्व नहीं। दिन के उजाले में उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। एक दिन आंधी आई, सब दीपक बुझ गए, पर उसी ने अपने छोटे से शिखा से पूरे मंदिर को फिर रोशन कर दिया। तब उसे एहसास हुआ, प्रकाश का काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस सच्चे इरादे से जलना जरूरी है। और जो सच्चे इरादे से जलता है वो अपने आसपास प्रकाश कर देता है, खुद जलकर, खुद को जलाकर, और जलने के बाद वो खुद भी कहीं ना कहीं मजबूत होता है।

दोस्तों, आज विज्ञान ने हमें बिजली, लेजर, सोलर एनर्जी दी। ये सब आधुनिक प्रकाश हैं, पर असली रोशनी तो तब होगी जब मानवता, सहानुभूति और प्रेम का उजाला हमारे दिलों में फैलेगा। स्मार्टफोन की स्क्रीन चमक सकती है, पर दिल की रोशनी वही जलाएगा जो दूसरे के दुख में भी मुस्कुराए। हर धर्म, हर युग, हर इंसान का मकसद एक ही रहा, अंधकार मिटाना, चाहे वो बाहर का हो या भीतर का। पहली किरण हमें यही सिखाती है कि हर सुबह एक नई रोशनी है और हम सब उस ईश्वर के अंश हैं जो प्रकाश के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है।

श्रोताओं अब बात करेंगे प्राचीन काल की। प्राचीन काल में प्रकाश को क्या माना जाता था? प्राचीन काल में प्रकाश ईश्वर का स्वरूप और ज्ञान का प्रतीक था। प्राचीन भारतीय सभ्यता में प्रकाश को परम सत्य का प्रतीक भी माना गया। वेदों में कहा गया, तमसुमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। यहाँ अंधकार का अर्थ अज्ञान, भ्रम और मोह से है, जबकि प्रकाश का अर्थ ज्ञान, आत्मबोध और सत्य की अनुभूति से है। दीपक जलाना केवल कर्म नहीं था, उस वक्त आत्मा के जागरण का प्रतीक था। सूर्य को साक्षी और ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप माना गया। उपनिषदों में कहा गया, ना ही सूर्य तप्ति तेन तस्य तेजः, अर्थात आत्मा की ज्योति सूर्य से भी महान है। इस प्रकार प्राचीन काल में प्रकाश ब्रह्म यानी सत्य की अभिव्यक्ति करता था।

बात करेंगे मध्यकाल की। मध्यकाल में प्रकाश भक्ति और प्रेम की रोशनी था। मध्यकाल भक्ति आंदोलन का युग था। आप चाहे हिंदी में चले जाएं, इतिहास उठा के देख लें या फिर अंग्रेजी लिटरेचर की बात कर लें, सभी में भक्ति आंदोलन अपने चरम पे था। कबीर, तुलसी, नानक, मीरा, रूमी आदि संतों ने कहा कि सच्चा प्रकाश हृदय में है, मंदिरों या दियों में नहीं। कबीर कहते हैं, मन के भीतर जो दीप जले वही असली ज्योति है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सूरज एको रुति अनेक, यानी प्रकाश एक ही है पर रूप अनेक हैं। सूफी मत में नूरे इलाही, यानी ईश्वर का प्रकाश, वे आत्मा में बसते हैं जो सच्चे प्रेम और इबादत से छलकता है। यानी मध्यकाल में प्रकाश का अर्थ है भक्ति, प्रेम और आत्मा की एकता का प्रतीक, जो कहीं ना कहीं आज भी हम अपने मन में टटोलते हुए पाए जाते हैं।

अब बात करेंगे आधुनिक काल में प्रकाश की, जो हमारा आज का युग है। आज के युग में प्रकाश चेतना, मानवता और आत्म जागरूकता की ऊर्जा की बात करता है। आज का युग यानी तकनीक और ज्ञान का युग, पर सच्चा उजाला वही है जो मन और समाज को प्रकाशित करे। आधुनिक आध्यात्म कहता है, आउटर लाइट ब्रिंग्स कंफर्ट बट इनर लाइट ब्रिंग्स क्लैरिटी। यहाँ प्रकाश का अर्थ है सकारात्मक सोच, मानवता का उजाला और आत्म चेतना। महात्मा गांधी ने कहा था, यदि हम अपने भीतर की रोशनी को जलाएं, तो बाहरी अंधकार हमें कभी छू भी नहीं सकती। यानी आधुनिक काल में प्रकाश मानवता, आत्म जागरूकता और करुणा का प्रतीक है।

तो श्रोताओं, प्राचीन काल में प्रकाश ज्ञान था, मध्य काल में प्रेम बना और आधुनिक काल में वो मानवता बन गया। युग बदलते गए पर ईश्वर का उजाला कभी नहीं बदला और ये प्रकाश यूं ही निरंतर चलता रहेगा, जलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और हम भी आगे बढ़ेंगे। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ में, पहली किरण के साथ में। अपने मन की पहली किरण को और ऊर्जावान करें, उसमें और आँच भरें और अपने मन को प्रकाशमान करें। मुझे दें इजाजत, खुदा हाफिज, जय जिनेंद्र, रब रखा, राधे राधे।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अन इंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग गोंडा। तो कैसे हैं भाई आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में, आपके मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। मैं हूं आपकी आरजी नती, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और आज के दिन की शुरुआत होने वाली है काफ़ी तरोताज़ा भैया, बहुत दिलचस्प बातों के साथ। आज की हम मॉर्निंग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। एक नया दिन, एक नया सफ़र, एक नया सवाल और उन सवालों के नए नए जवाब ढूंढने के लिए हो जाइए तैयार। और मॉर्निंग की शुरुआत एक कप चाय और वॉल्यूम को थोड़ा सा हाई कीजिए ताकि आप तक मेरी आवाज़ पहुँच जाए। फिलहाल यूँ तो मॉर्निंग की शुरुआत हम हर बार थॉट ऑफ द डे के साथ करते हैं, लेकिन आज क्योंकि मेरा नज़ारा कुछ इस तरह से था कि अब मन नहीं कर रहा है थॉट ऑफ द डे बोलने का। मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मॉर्निंग मैनिफेस्टेशन हो जाए, यानी कि मॉर्निंग को थोड़ा सा पावरफुल बनाया जाए, मॉर्निंग को थोड़ा मैनिफेस्ट कर लिया जाए। तो आइए भैया मेरे साथ आज आप मिलकर बोलिए कि आपकी मॉर्निंग की शुरुआत कैसे होने वाली है और आपका दिन कैसे आप डिसाइड करने जा रहे हैं। चलिए चलिए हाथ उठाकर बोलते हैं कि आज का दिन मेरा है, मैं हर मुश्किल को हैंडल कर सकता हूँ और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को आज का दिन अपना ख़राब नहीं करने दूंगा। बस इतनी सी पॉजिटिव एनर्जी, इतनी सी पॉजिटिव बातें, इतनी सी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करने के बाद आज इसी पॉजिटिव वाइब के साथ आपके मॉर्निंग शो की शुरुआत कर रहे हैं। ये तो मेरा नज़ारा अभी अभी देख कर आई हूँ। एग्ज़ाम सेंटर के बाहर लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं भैया, किसी की हाथों में बुक्स है, किसी के एडमिट कार्ड है, किसी के होठों पर दुआ है कि अरे भैया ये वाला तो पास हो जाए। और मुझे यकीन है कि जो भी लोग एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े हैं, जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की है, वो कर दिखाने वाले हैं, वो कर गुजर जाएंगे, वो अपने इस मार्क्स को, अपने उस पेपर को और अपने उस डर को, तीनों को पार करते हुए छक्का लगाएंगे बॉस। लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, आपको आप पे भरोसा है कि नहीं चैट बॉक्स में बताएगा, लेकिन अभी नहीं, एग्ज़ाम होने के बाद। तो भैया जिनके घर में भी एग्ज़ाम चल रहा है या जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम सेंटर पहुंच चुके हैं, आप सभी को आरजी नती की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार मिलते हैं। तब तक के लिए आप लगाइए अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में और बता दीजिए कि आप मौजूद हैं मेरे साथ चाय की चुस्की लेते हुए। मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके मॉर्निंग स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग ओरा में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM आपका अपना रेडियो ज्ञान असली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। और भाई, मॉर्निंग की शुरुआत तो हमने बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कर ली, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ कर ली। ऑल द बेस्ट उन सभी को एक बार वापस से जो एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर इनकी दिल की धड़कनें धक धक हो रही हैं, जो सोच रहे हैं भैया पास होंगे नहीं होंगे। भैया आप ज़रूर पास होंगे, अगर आपने मेहनत अच्छे से की है तो बस जाइए और अपने एग्ज़ाम को देकर आइए। और जो लोग घर पर हैं, जिनकी टेंशन घर पर बनी हुई है कि मेरा लड़का तो गया हुआ है क्या होगा, भैया अच्छा होगा। तब तक के लिए आपके उस टेंशन को खत्म करने का जिम्मा मैंने अपने इन छोटे छोटे कंधों पे उठा रखा है और हम चलेंगे हमारे पहले सेगमेंट की तरफ। और आपको बता दें भाई, क्योंकि आज दिमाग से ही मेरी शुरुआत हो चुकी है, तो कि मैंने सोचा क्यों ना आज आपको दिमाग के बारे में ही कुछ ऐसे फैक्ट बता दिए जाएं, कुछ ऐसी बातें बता दी जाएं जो आपको नहीं पता है, जो आपके दिमाग की बत्ती जलाएंगे। और मुझे पता है दिमाग की बत्ती ऐसी जलेगी जैसे मेरी चुटकी बज रही है। फिलहाल आइए बताते हैं वो कौन सी बातें हैं जो आपको आपके ही ब्रेन के बारे में नहीं पता, जो बहुत शॉकिंग है। मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, मेरे लिए भी बड़ी शॉकिंग थी।

हाँ जी, तो भैया देखो, आपके दिमाग के बारे में जितना ही रिसर्च होता जाता है उतनी ही शॉकिंग बातें नजर आती हैं। अब आपको लगता होगा कि आपका दिमाग 45 मिनट से ज्यादा किसी भी पन्ने को, किसी भी चीज को, किसी भी इंफॉर्मेशन को हैंडल नहीं कर सकता है, लेकिन साइंटिस्ट इसका उल्टा बताते हैं। वो कहते हैं भाई कि आपके दिमाग में इतनी सारी जीवी है, पेटाबाइट्स हैं आपके दिमाग में, और ऑफ कोर्स अगर आप लगातार इसमें इंफॉर्मेशन डालते जाते हैं, और ये कोई मशीन होता तो कम से कम 300 सालों तक ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता, वो भी ये कहे बिना कि भाई आपके दिमाग को थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस की जरूरत है और इसको थोड़ा सा खाली कर दीजिए। ये बात आपसे कभी नहीं करता, कभी भी नहीं। आपके दिमाग को 300 साल लगातार इंफॉर्मेशन की जरूरत तो होती अगर ये मशीन की तरह काम करता, अगर आपके ये फोन में मेमोरी कार्ड की तरह काम करता। अब सोचिए, आपका फोन जो 128 जीबी का होता है उसके अंदर आप कितना कुछ डाल लेते हैं, कितना कुछ भर लेते हैं, और उसके बाद कहीं जाकर वो 5-10 सालों में बोलता है कि भैया हमको थोड़ा सा खाली कर दो, और आप 2-3 फोटो निकाल कर फिर से उसको भरना शुरू कर देते हो। वहीं आपका दिमाग जो इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है, जिसके पास इतना सारा जगह है, उसमें आप कितना सारा ज्ञान अंदर कर सकते हैं। लेकिन हम करते क्या है, हम इंफॉर्मेशंस नहीं करते, हम अच्छी चीज़ें नहीं करते, हम निगेटिव थॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, इसी वजह से हमारी एनर्जी लो हो जाती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि भाई आपके दिमाग को रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क नहीं पता है। जी हाँ माँ, ये सुनने में थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि ये क्या बात होती है, दिमाग को इतना भी नहीं पता कि हम सोच रहे हैं या हम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपके दिमाग को ये बात नहीं पता है कि आप कब क्या सोच रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं। कभी कभी जब आप बैठ के सिर्फ इमेजिन कर रहे होते हैं कि हाय मेरी ज़िंदगी आगे जाके इतनी खूबसूरत होगी, आपका दिमाग उसे रियलिटी मान लेता है, उसको सच मान लेता है, और जब वैसा आपके साथ नहीं होता है तो आपको बड़ा दुख होता है, क्योंकि आपके दिमाग को वो सच लगता था अभी तक, अचानक से उसका वो सच टूट के चकनाचूर हो गया है। और इसको हम आम भाषा में कहते हैं कि भैया हमने एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे थे, यानी कि हम बहुत आकांक्षाएं लगाकर बैठे थे किसी से और हमारी आकांक्षाएं टूट गई हैं, बस इतनी सी बात हमको याद आती है। बट ऐसा नहीं होता, आपका दिमाग फिल्टर नहीं कर पाता है कि क्या इमेजिनेशन है और क्या सच है। तो भाई ये बात आपको पता थी क्या? नहीं पता होगी, चलिए दूसरा फैक्ट भी बता ही देते हैं। जो सेकेंड फैक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि आपके ब्रेन को, आपका जो ब्रेन है वो 75% पानी का बना है। ये तो हम हमेशा सुनते रहते हैं, हमारा शरीर 70% पानी का है, आपका ब्रेन 75% वाटर का बना हुआ है। इसीलिए जैसे ही उसमें एक ड्रॉप भी कम होता है, आपके दिमाग में अलग अलग चीज़ें आने लग जाती हैं, जस्ट लाइक चक्कर, जस्ट लाइक आपकी क्लियर नहीं विजन होते हैं, आपका दिमाग खराब हो चुका होता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इसीलिए गर्मियों में अक्सर लोग चिड़चिड़े और अनफोकस्ड दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि गर्मियों में पानी का लेवल उस तरह से हम नहीं चेक करते हैं और हमारे ब्रेन तक वाटर लेवल नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से हमारा फोकस हिलता है और क्लियरिटी भी हिल जाती है। ये था आपके ब्रेन के बारे में सेकंड फैक्ट जो मुझे आपको बताना था। और मैंने आते ही आपसे कहा था कि भैया आज आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, आपको लगा था सच में जलेगी? नहीं जलेगी ना। हमेशा हमने देखा है फोटोज में, जहां पर दिमाग होता है वहां आइडिया होता है, जहां आइडिया होता है वहां एक बल्ब लगा होता है, जहां बल्ब होता है वो बल्ब जल रहा होता है, हमने ये बात अक्सर देखी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके ब्रेन के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करता है कि 20 वाट का बल्ब वो सच में जला सकता है। यानी कि वो जो फोटोज आप देखते हैं ना जिसमें बल्ब जल रही है, ऊपर टिंग टिंग टिंग टिंग तरंगे निकल रही हैं, वो सच में हो सकता है। आपके ब्रेन के अंदर ये पावर है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से सिग्नल्स में बात करते हैं, और वो सिग्नल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद आपका ब्रेन 20 वाट का बल्ब जला सकता है। तो अगली बार कोई कहना दिमाग की बत्ती जला सकते हैं हम, वो सच बोल रहा है, आपके दिमाग की बत्ती जल सकती है, मतलब आपका दिमाग बत्ती जला सकता है, एक्चुअली पॉइंट ये है। फिलहाल ये तो थी आपके दिमाग की वो बातें जो शायद आपको ना बताऊं, और इसी के साथ आइए एक और बात आपको हम बता ही देते हैं कि कोई चीज जिसे आप देखते हैं या जिसे आप सोचते हैं, आपका दिमाग उसी को फिल्टर करना शुरू कर देता है। आपने कभी सोचा कि आपको कोई नई कार लेनी है, आपने किसी बाइक के बारे में सोचा हो, आपने कुछ और अपॉर्चुनिटी को सोचा हो, कुछ ऐसा कि हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, या फिर मुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटी चाहिए, कभी ऐसा थॉट भी अगर आपके दिमाग में आया होगा तो आपका दिमाग बाकी सारी चीज़ों को हटाकर सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करता है और उसको फिल्टर करना शुरू कर देता है। जैसे आप चाय को फिल्टर करते हैं कि चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे आ जाती है, ऐसे ही आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है। और अगर आपने अपने दिमाग में सोच लिया है कि आपको कुछ करना है, कुछ लेना है, कुछ देना है,
आपका दिमाग बस ढूंढ ढूंढ के वही चीज आपके सामने ला कर रखेगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो करके देख लीजिए, सोच लीजिए कुछ नई बात, कोई नई चीज, और उसके बाद आप समझ जाएंगे कि आपका दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। वो आपको जरूर वही चीजें दिखाना शुरू कर देगा जो आपने सोची होंगी। अगर आपने कार के बारे में सोची है तो आपको मार्केट में रोड पे चलते चलते न जाने कितनी ही कारें दिखेंगी जो नई नवेली दुल्हन की तरह अभी अभी रोड पर उतरी हैं। वहीं अगर आपने सोचा है कि यार कुछ तो अलग करना है तो आपको वो अलग चीजें भी नजर आएंगी। अगर आपने सोचा है कि आज तो हम सैड है तो इंस्टाग्राम वाले भैया के साथ साथ आपको दुनिया भर की चीजें सैड ही नजर आने वाली है। पतझड़ का मौसम सैड लगेगा, गर्मी का मौसम सैड लगेगा, सब कुछ सैड लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग उस चीज को फिल्टर कर रहा है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो वही ढूंढ ढूंढ के आपको देने वाला है, और ये काम कोई और नहीं, ये काम आपका दिमाग कर रहा है। तो अगली बार जब आपको वही चीजें नजर आए जो आपने सोची हो तो ये मत कहिएगा अरे वाह क्या इत्तफाक है, ना कोई इत्तफाक नहीं है, ये आपका दिमाग का खेल है बाबूजान, बस आपका दिमाग आपके साथ खेल रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इसी के बीच में हम आपको बता दें कि जो आपकी नाक होती है ना बीच में, जी हाँ, ये छोटी सी प्यारी सी जिसके अंदर आप नोज पिन पहन कर रखते हैं, नोज रिंग पहनते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, जिसको कई लोग कहते हैं कि हर जगह पे तो अपनी नाक मत घुसाया करो, इस नाक को भी कहीं ना कहीं आपका ब्रेन फिल्टर कर देता है, दिखता ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी नाक आपको क्यों नहीं दिखती है, क्यों आपको अपनी आंखें दोनों बीच में करनी पड़ती हैं तब जाकर आप अपनी नाक को देख सकते हैं, कभी सोचा है? क्योंकि आपके दिमाग को लगता है ये बकवास इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन का मैं करूंगा क्या, और उसको लगता है अगर इस इन्फॉर्मेशन का मैं करूंगा क्या, इसीलिए वो उसको फिल्टर करके हटा देता है कि मेरे काम की चीज़ नहीं है तो मैं देखूंगा भी नहीं। और हमको लगता है यार नाक दिखती नहीं, दिखती है भाई, बीचों बीच में होती है, दोनों आंखों के बीच में होती है, ऐसे कैसे नहीं दिखती। वो हमारा ब्रेन हमारे साथ गेम खेलता है और कहता है नहीं देखना मुझे, मुझे देखना ही नहीं है जो इन्फॉर्मेशन बेकार है। और इसी के साथ वो आपकी नाक को इनविजिबल कर देता है, यानी कि आपको नजर ही नहीं आती। पर ना सोचिए, अगर हमारा दिमाग ऐसा नहीं कर रहा होता, इस नोज को हमारे आंखों के सामने से नहीं हटाता, तो हमारे नज़ारे कैसे होते। कैन यू इमेजिन, मैं तो इमेजिन कर रही हूँ फिलहाल बैठ के कि मैं सामने वॉल देख रही हूँ और वॉल के बीच में मेरी छोटी सी नाक भी नज़र आ रही है, मैं कोई नज़ारा देख रही हूँ, मैं घोड़े पे सवार हूँ, घोड़े के साथ बैठकर सोच रही हूँ घुड़सवारी करूँगी, करते करते करते करते सामने गड्ढा आ रहा है और गड्ढे के बीच में मेरी नाक आ रही है, मैं सोच रही हूँ इधर जाऊँ उधर जाऊँ, है कि नहीं? आप भी ऐसा करते अगर आपका ब्रेन आपके साथ नहीं देता और इसको फिल्टर नहीं कर रहा होता। तो जो आपका छोटा सा ब्रेन है ये बहुत बड़े बड़े काम करता है, आपकी पूरी बॉडी को हैंडल करने के अलावा ये पूरी दुनिया को भी हैंडल कर रहा है। तो भाई आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, जरा सोच समझ के सोचिएगा, क्योंकि आपका दिमाग वो हर एक चीज सच करने की हिम्मत भी रखता है। इसको हम कहते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि आपके दिमाग का जो पिछला हिस्सा है वो एक्चुअल में बातें सच कर देता है। इसीलिए जब भी आपको लगता है कि यार ये काम बिगड़ जाएगा, जी हाँ वो काम बिगड़ ही जाता है, और ये काम कोई और नहीं आपका दिमाग करता है, क्योंकि वो उसको पीछे ही पीछे मैनिफेस्ट करता रहता है और वो कहता है हाँ बिगाड़ के तो दम लूंगा ही मैं। आप सोचेंगे मैं गिर ना जाऊं, उस दिन आप जरूर गिरेंगे। ये काम आपके दिमाग का है। तो भैया आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, निगेटिव पॉजिटिव उटपटांग उल्टा सीधा सही सही जो भी आप सोच रहे हो, कृपया करके थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचिएगा कि आपका दिमाग किस तरह से लगने वाला है और किस तरह से ये बातें आपके लिए सच होने वाली हैं। फिलहाल ये तो वो फैक्ट्स थे, वो बातें थी जो रिसर्च में सामने आई है, जिन्होंने साबित किया है कि आपकी ब्रेन के अंदर क्या कुछ चलता रहता है। छोटू सा ब्रेन 20 वाट का बल्ब भी जला रहा है और आपके फोकस को भी डिसाइड कर रहा है, प्लस जितने भी बेकार इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैं उन सबको वो हटा भी रहा है। तो इतने सारे काम जब एक साथ एक महाराज कर रहे हैं तो इनकी डिमांड में आती है सिर्फ नींद, यानी कि एक परफेक्ट नींद, परफेक्ट शुरुआत, प्लस पानी। आपके दिमाग के लिए पानी जरूरी है, चाय कॉफी कैफीन सोडा ये सब जरूरी नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने दिन में 2 से 3 लीटर पानी कीजिए, और हाँ 1-2 ग्लास आप अपना सोडा वगैरह जो अभी आपको पसंद है आप वो पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं पीना है बॉस, क्योंकि ये आपके ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। चलिए इसके बाद मिलते हैं और आपको बताते हैं वो मोहब्बत वाला हार्मोन, यानी कि जिसको आप कहते हैं ना वो केमिकल लोचा है कौन सा। लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए इस प्यारे से गाने को जो हमने बीच में ही आपके लिए रोक दिया था, क्योंकि इतना प्यार करते हैं तुमको स्टेरियंट।

0: मैं छाया पटवा रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम यानी आपके मॉर्निंग का स्पेशल वाले शो गुड मॉर्निंग गोरिया में। मैं हूं आपकी आज उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और अभी तक हमने जाना भाई साहब कि आपका दिमाग आपके साथ कैसे कैसे खेल खेलता है। दिमाग आपके साथ बड़े खेल खेलता है, वो अलग बात है कि दिमाग को आपके साथ खेल नहीं खेलना है, आपको दिमाग के साथ खेलना है। और ये बात हम बहुत देर में समझते हैं, और जब हम समझते हैं तब तक बहुत वक्त गुजर चुका होता है। फिलहाल आइए कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो वाली पर्सनालिटीज़ नहीं कि आप तो लुक में बहुत अच्छे हैं, आप तो जिम में बहुत अच्छे हैं, ये वाली पर्सनालिटीज़ नहीं। हम उन पर्सनालिटीज़ की बात करेंगे जो हमें एक्चुअल में अक्सर देखने को मिलती हैं, और हम समझ नहीं पाते हैं कि कोई इतना कैसे हंस सकता है, कोई इतना कैसे बोल सकता है, कोई इतना जल्दी जल्दी कैसे बोल सकता है। और हमें लगता है यार ये तो बहुत इरिटेटिंग अननोइंग सा इंसान है, और इतना कौन हंसता है, हर बात पर हंसी मैच्योरिटी का है। मैच्योरिटी, आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि जो इंसान बहुत हंसता है उससे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि भैया तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी नहीं है, हो तुम 25 के गए हो तुम 30 के गए हो, लेकिन तुम ऐसे हंसते हो जैसे बच्चे। इतना नहीं हंसना होता है, और उनकी हंसी पर टोक लगा दी जाती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत फास्ट बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं, और हमें लगता है ये नॉर्मल भी तो बोला जा सकता है। बट साइकोलॉजी इसको एक अलग नज़रिए से देखती है। एक ऐसे नज़रिए से देखती है जो आज मैं आपके साथ बताने जा रही हूँ, ताकि अगली बार जब आपके आस पास कोई बहुत ज़्यादा हंसे, बहुत ज़्यादा बातें करें, तो आप उसे ये ना कहें कि यू आर सच एन अननोइंग पर्सन, तब आप उसे ये कहें कि भले आप उसे कुछ भी ना कहें, लेकिन आप ज़रूर समझें कि उनके दिमाग में जो चीज़ चल रही है या फिर जो उनकी पर्सनालिटी टाइप है वो कहाँ से लिंक होकर आई है। तो भाई आइए जानते हैं, बताते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

अब भाई साइकोलॉजिस्ट यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं साइकोलॉजी के, वो कहते हैं कि जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं यानी कि जो फास्ट टॉकर्स होते हैं, जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है, कुछ लोग जिनके क्षेत्र में ही बहुत जल्दी बोला जाता है उनकी बात को साइड कर दीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अनयूजुअल तरीके से फास्ट बोलते हैं, उनकी बातें लगती हैं जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड है, वो भी वो यहाँ वाली नहीं जापान वाली, कि आई और निकल गई, पता भी नहीं चला कब क्या कैसे किधर, हवा हवा रह जाती है पीछे। हाँ, तो अगर आप किसी ऐसे इंसान से कभी आपकी मुलाकात हो, कभी टकराव हो जाए, तो ये मत कहिएगा भैया तुम बहुत तेज बोलते हो, ये जरूर देखिएगा कि वो बोल क्या रहे हैं और उनकी बातों के अंदर क्या कुछ हिडन है, क्योंकि एक्सपर्ट्स कहते हैं फास्ट टॉकर यानी कि जो बहुत जल्दी बोलते हैं, बहुत फास्ट बोलते हैं, ये लोग अक्सर कुछ बहुत डीप अपनी बातों में छुपा रहे होते हैं। ये डायरेक्टली आकर आपके मुंह पर कुछ नहीं कहने वाले हैं, लेकिन अपनी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं या फिर कुछ डीप मीनिंग वाली चीज़ें हैं जो अपने अंदर छुपा रहे हैं। जिन लोगों के साथ कभी कोई हादसा हुआ होगा, उन लोगों की स्पीड बहुत तेज होती है, क्योंकि वो अपनी बातों में इस बात को रिवील नहीं करना चाहते हैं कि उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है। इसलिए कोई अगली बार ना आपसे अबड़ बकर की बात कर जाए तो ये मत सोचिएगा कि ये तेज बोल रहा है, ये सोचिएगा कि इनके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो डीप इनसाइड इनको छुपा रहा है। जी हाँ, अब हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन जो बहुत अनयूजुअल तरीके से बहुत फास्ट बोले उन पर गौर जरूर फरमाइएगा। फिलहाल ये तो थी उनकी बात जो बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, यानी कि जो अपनी बातों को अपने अंदर दबा कर रखते हैं, जो किसी को बताना नहीं चाहते उनके दिमाग के अंदर, उनके दिलो दिमाग उनके जहन में चल क्या रहा है, तो आप उन पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अब बात कर लेते हैं उस इंसान की जिसको हम आम भाषा में कहते हैं अरे कुंभकर्ण हो गए हो क्या, अब आपको याद आया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं। और हमें लगता है सोने वाला इंसान महा आलसी इंसान होता है, भाई कुछ हो भी सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कहते हैं यानी कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर सोता हुआ इंसान आलसी नहीं होता, कुछ लोग इसलिए सोते हैं क्योंकि उनके पास तकलीफ बहुत ज़्यादा है और उस दर्द से वो भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो दिमाग है वो इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच का जो एक छोटा सा फर्क होता है उसको वो नहीं समझ पाता। तो भाई जिन लोगों की लाइफ में कुछ तो उल्टा चल रहा है, जिनका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, जिनके अभी अभी कुछ ख्वाब कुछ सपने कुछ एक्सपेक्टेशंस टूटी हैं, या कुछ भी इनकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन है, वो लोग अक्सर आपको सोते हुए मिल जाएंगे। अब भाई डिप्रेशन के इंसान या तो बहुत ज़्यादा सोते हैं या तो फिर सोते ही नहीं हैं, ये दो कैटेगरी आपको अक्सर दिखती है, लेकिन ये कॉमन चीज़ है कि किसी की लाइफ में अगर कोई बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं, तो उस इंसान को एक आम इंसान से ज़्यादा नींद आएगी। तो अगली बार जब आपको कोई बहुत ज़्यादा सोता नज़र आए तो ये मत सोचिएगा भाई कि ये आलसी हो रखा है, उसको कुंभकर्ण जैसा नाम देने से बेहतर है उसकी साइकोलॉजी को समझिए और ये ज़रूर पता कीजिए कि उसे किसी बात से कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर आपको पूरा कन्फर्म हो जाए कि कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से उसको ये पेन फील हो रहा है, जिसको जिसे भागने के लिए वो दिन भर सो रहा है, तो आप उन्हें प्लीज़ एक बार बात कर लीजिएगा कि इतना सोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो किसी ऐसी लाइफ के स्टेट से गुजर रहे हैं जहां उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो वो उस तकलीफ से भागने के लिए नींद का सहारा ले रहे हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, जस्ट लाइक मी, जिनके दांत कभी अंदर नहीं जाते, और हम लोग कहते भी रहते हैं कि भैया तुम्हारे दांत अंदर नहीं जाते कैसे होगा, मैच्योरिटी कहाँ है, प्रोफेशनलिज्म कहाँ है, कहाँ है वो चीज़ें जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारी उम्र 20 हो गई है, तुम्हारी उम्र 30 हो गई है और तुम्हारे अंदर अभी भी वो बच्चों वाली हरकतें हैं, जब देखो हंस देते हो, जब देखो कुछ भी कर देते हो। तो भाई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो कमरे में सबसे तेज़ हंसता है वो अपने अंदर बहुत सारी डीपनेस डीपेस्ट सैडनेस को छुपा कर रखता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं, बहुत ज़्यादा खिलखिलाते हैं और बहुत खुलकर हंसते हैं, एक्चुअल में उन्होंने पेन का यानी कि तकलीफ का सबसे ब्रूटल चेहरा देखा होता है और वो उस तकलीफ की वजह से ही इतना ज़्यादा मुस्कुराते हैं। उनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होता है जिसकी वजह से वो इतना पेन फील कर चुके होते हैं कि अब उन्हें हर एक छोटी बात पर हंसी आती है और वो हंसकर अपने दर्द को भी छुपाते हैं, प्लस दूसरों को हंसाने का हुनर भी उनके पास सबसे कमाल का होता है।
तो ये इंसान जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी की कोई चीज टूटी हो, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, उनके ख्वाब टूटे हो, उनके सपने टूटे हो, कुछ भी अगर उन्होंने ऐसा फेस किया है जिसकी वजह से उन्हें कभी तकलीफ मिली हो बहुत ज्यादा, तो उनके पास सबसे ज्यादा हंसाने का हुनर रहेगा। और एग्जाम्पल में आप देख भी सकते हैं आपके फेमस कॉमेडियन भारती सिंह एंड कपिल शर्मा, अगर आप इनकी लाइफ को चेक करेंगे तो भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अपने स्ट्रगल को वो अब लोगों को हंसाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हंसते भी बहुत तेज़ हैं, बहुत खिलखिलाकर हैं, बहुत खुलकर हंसते हैं, प्लस उनके पास जो ह्यूमर होता है वो नॉर्मल लोगों के पास नहीं होता है। तो भाई पेन हमेशा तकलीफ से या फिर चेहरे पर उदासी लेकर नहीं आता, कभी कभार हंसता हुआ चेहरा भी बड़ा दर्द में होता है। फिलहाल आइए चलते हमारे अगले पॉइंट की तरफ, अगले फैक्ट की तरफ। हम आपको बता दें जो इंसान हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, वो कभी खुश है या नहीं खुश है इसका आपको पता नहीं चलता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो हर वक्त मुस्कुराता है, 24 घंटे मुस्कुराता ही रहता है, तो वो हर वक्त खुश नहीं होता, वो बहुत काइंड होता है, यानी कि बहुत दयालु होता है, और इसीलिए वो आपका बुरा नहीं कर पाता, आप पर गुस्सा नहीं कर पाता। और ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक भी होते हैं, क्योंकि जब ये अपनी काइंडनेस छोड़ते हैं, ये अपनी अच्छाई छोड़ते हैं, तो ये ख़तरनाक इंसान बन जाते हैं। तो इनसे पंगे थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, पता नहीं कब किसका दिमाग सड़क जाए और वो अपनी कहे कि भैया देखो आज अच्छा बहुत बननी है, इतना बहुत दयालु तो दिखा ली है, अब बात यहाँ तक आ चुकी है कि अब इस बाउंड्री को हम क्रॉस कर ही देंगे। तो उस लिमिट को कभी क्रॉस ना करें, उस बाउंड्री को कभी क्रॉस ना करें, क्योंकि बाउंड्री आपको सेफ जोन में रखती है। और ये लोग जो हमेशा मुस्कुराते हैं, ये दयालु होते हैं, बहुत काइंड होते हैं, यानी कि मुस्कुराना उनकी ताकत होती है, कमजोरी नहीं। तो उसको कमजोरी समझिएगा भी नहीं। इसी के साथ हम आपको बता दें जो लोग बहुत आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, यानी कि बहुत चिक चिक करते हैं, बहुत झगड़े करते हैं, एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, प्लस बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं। अगर आपकी मम्मी, आपके पापा या फिर आपकी बहन, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा झगड़े करती है, हमेशा लड़ती रहती है आपसे, तो ये मत सोचिएगा भैया इसको मेरे से शिद्दत वाली नफरत है, वो आपसे बहुत शिद्दत वाली मोहब्बत करती है, बेपनाह मोहब्बत करती है, प्लस आपके बारे में बहुत कुछ सोचती हैं और इसी वजह से वो आप पर गुस्सा करती हैं। अगर आप उनको आपको कॉल करती हैं और आपके दो कॉल बिजी आ जाते हैं कि द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी, उन्होंने ख्याल कहीं सुन लिया, उनके दिमाग में आ जाता है तुरंत ही क्या क्या रहा है, इसको मेरा कॉल उठाया क्यों नहीं जा रहा, वो इस बात पर भी भड़क जाते, गुस्सा करते, क्योंकि वो बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, उनके दिमाग में हजारों थॉट्स एक साथ घूम जाते हैं और इसीलिए वो आकर सबका सब आप पर फोड़ देते हैं। और आपको लगता है यार कितना लड़ती है, उनको समझिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों से खुद को दूर रखते हैं, तो इसके पीछे की वजह ये है कि वो इतनी बार चोट खा चुके होते हैं इस दुनिया से कि अब वो किसी पे भरोसा करने को तैयार नहीं। अगर आप दोस्ती का हाथ भी बढ़ाएंगे तो पीछे हटा लेंगे कि हमको नहीं करनी दोस्ती, हम नहीं करते दोस्ती, हमारे लिए है ही नहीं। अगर आप उसे कहेंगे जस्ट ट्रस्ट मी, मैं ऐसा नहीं करूँगा, उन्हें हंसी आ जाती है, वो कहते तुम ही ऐसा करोगे, क्योंकि मुझे आज तक जिसने भी कहा है ट्रस्ट मी, वही मेरा ट्रस्ट तोड़ के चला गया है। तो भाई ये बात लग तो सकती है आपको फनी और बहुत इरिटेटिंग सी, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में इतनी चोटें खाई होती है, इतने धोखे देख लिए हैं कि अब वो दुनियादारी से, या फिर कहें तो जिसको हम आम भाषा में कहते हैं मोह माया से, दूरी बनाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं हमको नहीं बतियाना आपसे, हम नहीं बतियाते हैं, राम राम। और अगर आपको ऐसा कोई बोलता सुनाई पड़ रहा है तो उनकी लाइफ के पीछे जो चल रहा है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पर्दे के सामने जो होता है वो हर इंसान देखता है, वो हर कोई देखता है, लेकिन पर्दे के पीछे वही देखता है जो उनकी ज़िंदगी में शामिल होता है। और अगर आप किसी की ज़िंदगी में हैं, एक दोस्त बनकर हैं, एक भाई बनकर हैं, भाई कैसे किसी भी कैरेक्टर में क्यों ना हो, उनके लाइफ की जो पर्दा है उसके पीछे ज़रूर देखिएगा जा करके कि अभी जो आपको नज़ारा नज़र आ रहा है एक्चुअल में वो कहाँ से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आप बताइए कि आपके पास इसमें से कौन से लोग हैं, किन की पर्सनैलिटी हमारे से मिलती जुलती है, यानी कि हमारे इन फैक्ट से मिलती जुलती है जो एक्सपर्ट्स ने बताई है, मैंने आपको सुनाई है आपके अपने शो गुड मॉर्निंग होना में। आई रहते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, क्योंकि वक्त है एक ब्रेक का, हम मिलते हैं इस गाने के उस पर, तो तक के लिए आप अपने फीडबैक्स, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियन जरूर से बताइएगा चैट बॉक्स में। बने रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग होना अपनी आज ज्योति के साथ 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन रेडियो 11 स्लीपर पर।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM। यह गोंडा शहर की धड़कन। और अभी तक हम आपसे बात कर रहे थे आपके दिमाग और आपकी पर्सनालिटी के बारे में, लेकिन अब मेरे पास है एक ऐसी चीज़ या फिर कहें तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। मॉर्निंग शो में अक्सर मैं आपको ऐसे लोगों से ज़रूर मिलाती हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है जो हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है, बहुत मोटिवेटेड होता है, बहुत इंस्पायर करते हैं वो हमें और अक्सर हमारी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। हमारे समाज में हर एक चीज़ का एक पहलू बनाकर रखा हुआ है, हर एक जॉब के लिए, हर एक काम के लिए कैटेगरी सेट कर रखी, कौन सा लड़का करेगा, कौन सी लड़कियां करेंगी। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस कैटेगरी से बाहर निकल जाते हैं और वो कहते हैं कि काम में जेंडर नहीं होता, काम काम होता है और अगर काम हाथ में है तो उसे करना फ़र्ज़ होता है, उसको छोड़ना ये कह करके कि भैया हम तो दूसरे जेंडर के हैं और काम दूसरे जेंडर का है, ये कहना सबसे बड़ी नाकामी होती है। तो आइए बताते हैं उनके बारे में जिन्होंने काम को सीरियसली लिया, लोगों के तानों को नहीं। आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा में

हां जी, तो हम बात कर रहे हैं उड़ीसा में रहने वाली एक ऐसी महिला की जिनके हस्बैंड जब इंजर्ड हो गए थे, यानी कि उनको चोट लग गई थी और वो काम करने के हालातों में नहीं थे। उस दौरान घर में खाना खाने के लिए अनाज नहीं हो पा रहा था क्योंकि घर का राशन पानी खत्म हो रहा था। अब अपने और अपने हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए जरूरत थी पैसों की, चाहे इलाज हो, चाहे खाना हो, चाहे हमारा नॉर्मल दिनचर्या क्यों ना हो, हर एक चीज के लिए पैसे बहुत जरूरी होते हैं और इन पैसों की जरूरत उनको काफी ज्यादा हो रही थी। अब क्योंकि भैया लग चुकी थी हस्बैंड को चोट, तो काम वो कर नहीं पा रहे थे और हस्बैंड जो काम करते थे वो काम करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी ताकत और लोगों की सोच से लड़ने का हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत वो बटोर कर लेकर आई एक ऐसी महिला जिनके हस्बैंड जब घायल हो गए और घायल होकर जब वो घर पर बैठ गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें ही करना पड़ेगा। उन्होंने कोशिश की और उनकी कोशिश इतनी कामयाब है कि आज वो अपने से ज़्यादा भारी वज़न के टायर्स, ट्रक के टायर्स चेंज करती हैं अकेले। यूं तो कह दिया जाता है कि भारी भरकम काम करने का जो जिम्मा होता है वो लड़कों के कंधों पर होता है। अब चाहे कार की सर्विसिंग हो, चाहे बाइक की सर्विसिंग हो, चाहे ट्रक जैसे टायर्स को चेंज करना या उसकी सर्विसिंग हो, और कहीं ना कहीं ये सिर्फ लड़कों को दिया जाता है। आज भी न जाने क्यों इतनी सारी बातें होती हैं, इतनी सारी, हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है, इसके बाद भी हमारे समाज में बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ओपिनियंस हैं और लोगों का मानना है कि लड़कियां कार में क्या ही करेंगी, कार सर्विसिंग लड़की से। अगर जैसे कोई सुन लेता है कि एक मैकेनिक है और मैकेनिक कोई महिला है तो वो उसको ऐसे देखता है जैसे कि भैया मैकेनिक नहीं आया हो, कोई और ही चला आया हो, मैकेनिक बुलाया था कार का, उठकर प्लम्बर आया हो, इस तरह के वो नज़रिए से देख लेते हैं कि यार लड़की होकर क्या ये काम कर पाएंगी। और समाज ने भी उनको इसी नज़र से देखा जब उन्होंने कहा कि मैं अब अपने हस्बैंड की जगह पर, वो ट्रक के टायर्स चेंज करते थे, उनकी सर्विसिंग करते थे, अब मैं वो काम करने वाली हूँ, तो लोगों ने तुरंत अपनी डिस्गस्ट भरी नज़र उठाकर ऊपर से नीचे जज कर लिया ये कहकर कि तुम तो लड़की हो यार, तुमसे नहीं होगा। और उन्होंने इस चीज़ से कहा कि भाई लड़की हूँ तो क्या हुआ, काम काम होता है, काम जेंडर नहीं देखता, काम ये नहीं देखता कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ, काम मेरी हिम्मत देखता है, मेरा जज्बा देखता है और इस काम को करना मेरा फर्ज है क्योंकि भाई मुझे मेरा घर चलाना है, जब मेरा पति मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता तो मैं खड़ी हूँ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए। अब तक वो हमारा भरण पोषण कर रहा था और जबकि अब वो बीमार है तो उसका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी ऑफकोर्स मेरी है, अपना घर चलाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो जहाँ उन्हें कोई काम देने को तैयार नहीं था, उन्होंने अपने जज्बे से, अपनी हिम्मत से साबित करके दिखाया कि वो काम कर सकती हैं और 40 से 60 किलो भारी ट्रक के टायर्स को उठा करके हैवी मशीन्स के साथ वो ये साबित कर चुकी हैं कि भैया काम लड़का लड़की नहीं देखता, काम सिर्फ काम देखता है और काम करने वाले का हुनर देखता है, जज्बा देखता है। वो 60 किलो का टायर और भारी भारी मशीनों को उठा करके अकेले चेंज कर लेती हैं, अकेले लगा देती हैं, फिट कर देती हैं और ट्रक को बराबर नया कर देती हैं। और ये कोई और नहीं, इनका नाम है सुनी, जी हाँ सुनी हेम्ब्रम ये इनका नाम है और ये रहती है उड़ीसा में। तो भैया आप बताइएगा ये जज्बे की कहानी आपको कैसी लगी। यूँ तो हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में न जाने कितने ही ख्याल हैं, तो इन पुराने ख्यालों को छोड़ते हैं और काम को काम की तरह रखते हैं, इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करते हैं कि खाना बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का है और बाकी भारी भारी भरकम भरकम काम करने का जिम्मा सिर्फ लड़कों के पास है, ऐसा हटा कर अब ये देखते हैं कि काम काम होता है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, काम दोनों कर सकते हैं। आजकल के पेरेंट्स अपने छोटे छोटे लड़कों को भी ट्रेंड कर रहे हैं कि किचन में किस तरह से हाथ बटाया जाता है, खाना कैसे पकाया जाता है, और न जाने कितने ही फूड क्रिएटर्स हैं जो आ करके रेसिपीज बताते हैं। और हम आपको बता दें भाई, बड़े से बड़े समारोह को संभालने का काम लड़कों के हाथ में ही होता है, तो कभी भी काम को जेंडर स्पेसिफिक नहीं करना चाहिए। ये बात हमारी सोसाइटी में कुछ लोग बशर्ते साबित करते जाते हैं, वो अलग बात है कि हम ही इस बात को नहीं समझते और हम ही अपने घर में ताना मार देते हैं कि अरे वो लड़का होकर काम करेगा, तुम लड़की होकर करोगी, ये
अब इसको हटाते, सोच बदलते, नजर बदलते, नजरिया बदलते। चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका फीडबैक। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, एक म्यूजिकल वाले ब्रेक का वक्त हो चला है। मिलते हैं इस ब्रेक के उस बात, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सुनते रहिए आपका अपना गुड मॉर्निंग होना रेडियो ज्ञानवाणी 89.6 FM पर।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ। कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: तेंदुलकर बिना इंडिया अधूरा, जय को वीरू करता है पूरा, रॉको बुलाए और हंटर ना आए,
3: ऐसे डायलॉग पे रजनीकांत भी ताली बजाए।

0: हाँ जी, तो भाई मेक तो सब नॉइस फॉर देसी वॉइस की बात, आपका स्वागत करते हैं हम आपकी गुड मॉर्निंग वाले गोंडा प्रोग्राम में, गुड मॉर्निंग वाले गोंडा प्रोग्राम में, यानी कि गुड मॉर्निंग गोंडा वाले प्रोग्राम में। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 9.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति, आप सभी के साथ मौजूद हूँ आपके स्टूडियो में। और वक्त है अब आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का, क्योंकि कुछ पैगाम आ चुके हैं, कुछ मैसेजेस आ चुके हैं हमारे चैट बॉक्स में हमारे लिसनर्स के, जो हमें सुन रहे हैं एप्लीकेशन से। तो सबसे पहले मैसेज जो आया है वो जॉन का आया है, लिख रहे गुड मॉर्निंग सर। ओके, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। एंड इसके बाद अनूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, जब हम किसी से कोई वादा करते हैं तब हम आशा को जन्म देते हैं, और जब हम उस वादे को निभाते हैं तब हम विश्वास को जन्म देते हैं। शुभप्रभात, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। और बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है आपने, बहुत प्यारा लिखा। सुरेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोना में। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें सुनते हैं आवाज विकास से, और उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग गोना, मेरे शहर की पहचान। उन्नति जी नमस्ते, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? आपको भी मेरा नमस्ते। एंड मेरा ब्रेन मेरे पूरे शरीर का संचालक है, सोचने समझने की शक्ति देता है, और हम जैसा सोचते हैं वैसा ही विकास से आगे बढ़ता है। जहां हमारी सोच हल्की हो जाती है बैक हो जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने, आपका दिमाग आपकी हर एक चीज को कंट्रोल करता है। इसीलिए कहते हैं जो भी सोचिए अच्छा सोचिए, अच्छे के सिवा कुछ मत सोचिए, ये लाइन हम ही ने बनाई है हालांकि, बट सोचिएगा जरूर, जब भी सोचिएगा बेहतर सोचिएगा, और अपने लिए तो जरूर बेहतर सोचिएगा। इसीलिए ब्रूस ली भी कहा करते थे कि मजाक में भी कभी भी अपने लिए घटिया शब्द या बेकार वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, कभी भी खुद को लूजर, फेलियर ये सब कह के ना संबोधित करें, क्योंकि आपका शरीर और आपका दिमाग नहीं जानता है कि आप मजाक कर रहे हैं, वो आपकी भावनाओं को समझते हैं और आपकी बोली गई बात को आपका दिमाग सुनकर उसी प्रोसेस में लग जाता है। तो अगर आप खुद को लूजर समझते हैं तो आपका दिमाग आपको लूजर बना ही देगा, ये बात आपके दिमाग को समझ नहीं आती, क्योंकि वो नहीं समझता मजाक कर रहे हो कि सच बोल रहे हो। वो तो समझता है आपके मुँह से जो एक शब्द निकला है वो सच है और उसको करके दिखाना है। तो अगली बार ना अपने लिए ना दूसरों के लिए कभी भी किसी के लिए भी उल्टा मत बोलेगा, मजाक में भी नहीं, जब भी बोलिए बेहतर बोलिए। और इसी के साथ लिखा है कि ये गाना चाय वाली फीलिंग दे रहा है, मैं भी चाय पी रहा हूँ। क्या बात है भाई, और आपके चाय की बात सुन करके मुझे को भी चाय पीने का मन करने लग गया, वो भी अदरक वाली कड़क चाय। फिलहाल धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं कि उस लेडी को मेरे तरफ से जय हिंद, जिसने अपने पति के दुख को सुख में बदल दिया। ऐसे लोग ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, इसीलिए कहते हैं भाग कर्मों से बदलते हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और इसीलिए तो शायद हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो हर सुख और दुख में खड़े होते हैं। लेकिन आजकल तो हर एक चीज़ का कॉम्पिटिशन बना रखा गया है भाई, हर एक चीज़ कॉम्पिटिशन की तरह देखी जा रही है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो लोगों के ओपिनियंस हों, थाट्स हो। तो भाई सोचिए, हम ह्यूमंस क्यों हैं? हम ह्यूमंस इसलिए हैं ताकि हम एक साथ रहकर एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ना कि एक दूसरे की प्रॉब्लम बन सकें और लोगों को परेशान कर सकें। ये चीज़ हमारा पड़ोसी देश ज़रूर समझता है। पड़ोसी देश की बात करें तो जापान पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जो ये समझता है कि हमें किसी के लिए परेशानी नहीं बननी है। क्योंकि भाई किसी राजा ने कहा था उनके देश में आकर के कि अगर आप एक इंसान क्राइम करेगा तो बाकी के चार घर जो होंगे उसके पास उनको भी भुगतना पड़ेगा, और अगर किसी एक घर में आग लगी तो बाकी के चार और जलेंगे, अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तो बाकी के चारों को भी इनाम मिलेगा। तो भाई ये सोच कर वहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि किसी के साथ भी बदसलूकी नहीं करनी है, नहीं तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे और इसका हर्जाना कोई और भुगतेगा। और ये देश तो समझ चुका है, अब आपकी बारी है, आपकी, आपके अपनों की और हमारे समाज को समझने की देर है कि भाई हमें किसी के लिए प्रॉब्लम नहीं बनना है, हमें किसी के लिए कॉम्पिटिशन नहीं बनना है, हम अपना खुद का कॉम्पिटिशन खुद से करेंगे लेकिन दूसरों के लिए परेशानी नहीं खड़ी करेंगे। और इसीलिए जब फुटबॉल का मैच हुआ था जापान में, तो जर्मनी के खिलाफ जब ये मैच लड़ा गया था तो भैया जापानियों ने स्टेडियम को खुद साफ किया था, क्योंकि वहाँ पर बचपन से सिखाया जाता है जहाँ गंदगी आप करते हैं सफाई भी आप ही करते हैं, वहीं पर लॉकर रूम में पूरे प्लेयर्स ने थैंक यू नोट छोड़े थे, कुछ पेपर के बढ़िया चीज़ें कट करके फ्लावर्स वगैरह छोड़ कर गए थे थैंक यू नोट के साथ, और अपनी सफाई करके गए थे। क्या लगता है, हमारे साथ भी होना चाहिए? हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए या नहीं कि भाई जहाँ आप रहते हो उस सफाई की जिम्मेदारी आपकी ही होती है? और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज की जनरेशन ले रही है समझ रही है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने देश को क्लीन करने के लिए। बताते हैं उनके बारे में भी, लेकिन उससे पहले हम लेंगे थोड़ा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, और उस ब्रेक पे जाने से पहले कमल नैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लिख रहे हैं अनुति मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंजॉय कीजिए इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक को। इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बताते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने पर्यावरण को अपने हाथों में ले रखा है और अब सोच लिया है भाई कोई और नहीं, किसी का इंतजार नहीं, अब हमने गंदगी की है तो सफाई भी हम ही करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के उस पर स्टे ट्यून्ड।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये, ये, ये, ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई ना

हां जी, और आप भी अपना दिल दिमाग बाल सब छोड़ने वाले हैं, है बाल भी बताते हैं क्यों, क्योंकि भाई किसी का सपना है आपके बालों से नदियों को साफ करने का। अब ये मत कहिएगा ये ऊट पटांग सपना लेकर कौन आया है, क्योंकि ये सच हो रहा है। और ये सपना नदियों में हो रही गंदगी को 40% कम कर चुका है। तो ये जनाब है कौन, आइए इनके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत करते हैं, वापस इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी आरजी उरती और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और उस धड़कन पर हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जो आपके बालों से मैट बना रहा है और उस मैट का इस्तेमाल नदियों की सफाई में कर रहे हैं, क्योंकि आपके बाल बहुत कुछ सोख लेते हैं। क्या सोखते हैं बताते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो के अंदर।

भाई भारत में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती जा रही है, और एक रिचुअल भी है हमारे यहाँ पर कि लोग अपने बालों को दान करते हैं। जी हाँ, कुछ मंदिरों में लोग मन्नतें मांगने के बाद अपने बालों को दान करने की प्रथा मनाते हैं। कुछ मुंडन, कुछ अपने बालों को कटवा देते हैं, और ये सब जो टन्स ऑफ हेयर्स निकलते हैं, यानी कि जो बाल निकलते हैं, इन्हें कूड़े में फेंक दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा। एक ऐसे भी इंसान हैं जो सोचते हैं कि आपके बाल बहुत बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं। वो आपके बालों से भारत की नदियों को साफ करते हैं। उनका कहना है कि इंसानों के बाल अपने वजन से 7 से 9 गुना ज्यादा तेल और ग्रीस सोख सकते हैं, और यही सोच लेकर उन्होंने बालों को इस्तेमाल करके मैट बनाना शुरू कर दिया, और ये मैट अब वो यमुना की नदियों में डाल देते हैं, जिसके बाद नदियों में आने वाला ग्रीस, ऑयल, केमिकल्स आपके ये प्यारे प्यारे काले काले घने जो बाल हैं उसको सोख लेते हैं और नदी

0: कंपनियां जो अभी तक बहुत ज्यादा गंदी हो रही थी उनमें अब 40% कम गंदगी देखने में नजर आ रही है। लेकिन वो कहते हैं कि भैया किसी भी शुरुआत को करने के लिए ना कुछ भी आसान नहीं होता, हर एक शुरुआत बहुत टफ होती है, स्ट्रगल से भरी होती है। तो इन भाई साहब को भी बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, इनको भी लोगों को समझाना पड़ा। जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई मुझे आपके बाल चाहिए, लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, बालों से तो काला जादू होता है, बाल वाल हम नहीं देने वाले हैं आपको। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो लोगों के पास जाते गए, मिलते गए। इसके बाद भी हजारों लोगों ने उन्हें मना किया, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा दृढ़ संकल्प लेकर वो इस आइडिया को, इस इनोवेशन को लेकर जमीन पर उतरे थे। स्ट्रगल्स के बाद, लाखों लोगों के मना करने के बाद फाइनली उन्हें कुछ लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे कि हाँ मैं अपने बाल को दान करने के लिए तैयार हूँ अगर ये मेरी पृथ्वी को बचा सकता है, मेरे देश को बचा सकता है। और उन्होंने अपने बालों को दान में दिया और दान करने के बाद राहुल गुप्ता ने उनका इस्तेमाल करके मैट्स बनाना शुरू कर दिया। उन मैट्स को तैयार करके एक्सपेरिमेंट किया गया और पता चला कि ये बाल सच में नदियों में आने वाला 7 से 9 गुना ज्यादा तेल और ग्रीस सोख रहे हैं। तो उन्होंने इन बड़े बड़े मैट्स को यमुना की नदियों में बिछा दिया, जिसकी वजह से 40% कम गंदगी नदियों तक पहुंचने लगी और नदियां धीरे धीरे साफ होने लगी। और ये जो तैयारी है, या फिर कहें ये जो आइडिया है, ये केश कामली फाउंडेशन का है जो बालों से मैट्स बनाते हैं जिसके जरिए नालों और यमुना की नदी में जाने वाली गंदगी, तेल, केमिकल्स को रोकने का अनोखा तरीका है। अब आप बताइए ये तरीका आपको कैसे लगा। मंदिरों में बाल दान करने जाते हैं अगर आप, तो एक बार कोशिश कीजिए। इस बार आप अपने बालों को जब कटवाएं तो काला जादू का डर समझ के उसको जलाने या उसको फेंकने से अच्छा है राहुल गुप्ता तक पहुंचा दें और राहुल गुप्ता उनका इस्तेमाल करके आपके नदी नालों को साफ करने का जिम्मा उठा लेंगे और उनको भी साफ कर देंगे। प्लस जब ये भर जाते हैं पूरी तरह से तो इन्हें किसानों को दे दिया जाता है एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि वेस्ट के नाम पर कुछ नहीं। आपके ये बाल जो शायद कहीं कूड़े में पड़े होंगे, कचरे में पड़े होंगे, जो गंदगी फैला रहे होंगे, वहां पर यही इस्तेमाल करके गंदगी को साफ किया जा सकता है। राहुल गुप्ता की ये सोच और केश कामली फाउंडेशन का ये आइडिया आपको कैसा लगा चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। और हम आपको बताते हैं आपका जो पालतू कुत्ता है वो क्या कुछ सोचता है, यानी कि आपको अलविदा कहने से पहले आपका डॉग क्या सोचता है और साइंस ने क्या रिवील किया है आपके कुत्ते के बारे में, उसके आखिरी लम्हों के बारे में। बने रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग ओना अपनी आरजे के साथ, स्टे ट्यून्ड।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: अब कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग ड्यूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक, मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी आरजू नदी और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। और भैया, हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम आएंगे और आपको आपके डॉग के बारे में बताएंगे। यूं तो आपको कई बार ख्याल आता होगा कि आपका कुत्ता आपके बारे में क्या कुछ सोचता है, और ख्याल ये भी आता है कि जब कुत्ता हमें, यानी कि हमारा जो प्यारा चहीता दोस्त जब हमें छोड़ कर जाता है, तब उसके दिमाग में क्या चलता है। सेम सवाल साइंटिस्ट के दिमाग में भी था और उन्होंने रिसर्च करके पता किया, जब आपका डॉग आपको अलविदा कहता है तो वह एक्चुअल में कभी अलविदा कहता ही नहीं है, क्योंकि उसकी रिथम, उसकी चीज़ें, उसकी स्मेल, उसकी वो जो वार्मनेस थी ना, वो आपके आसपास रह जाती है। बट इसके अलावा आपका कुत्ता आपको देखता है, आपसे दूरी बनाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं आपके अपने शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

0: भाई कई लोग सोचते हैं कि जो कुत्ता होता है उसके अंदर वो फीलिंग्स नहीं होती जो एक इंसान समझ सकता है। भाई अब ये बात तो सच है, देखो कुत्ता जो होता है उसका दिमाग होता है सिर्फ और सिर्फ 5 साल के बच्चे की तरह, यानी कि जो एक 5 साल का बच्चा आपसे लगाव रखता है सेम लगाव आपके डॉग को होता है आपके साथ। और उसी दौरान आपका कुत्ता जब आपको अलविदा कहने का उसका वक्त आ चुका होता है, यानी कि जब उसकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी होती है, तो सबसे पहले वो खुद को आपसे दूर कर लेता है। और इसके पीछे का रीज़न ये है, उसे महसूस होता है कि अब वो आपके साथ नहीं रहने वाला है। उसका मकसद होता है आपको सुरक्षित रखना, आपको बहुत सारा प्यार करना। अब इंसानों की तो एक चाहत होती है कि एक लंबी जिंदगी जीना, लेकिन जानवरों की चाहत ये नहीं होती, जिसमें से डॉग की जो विश होती है वो ये होती है कि पूरी जिंदगी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना, बहुत ज़्यादा लव देना, और आपको हमेशा देखना। आपके घर आने पर वो जैसे उछलता है, जो हार्मोन्स उसके अंदर रिलीज होते हैं वही हार्मोन तब रिलीज होते हैं जब वो अपनी आखिरी सांस लेता है और आपको आंख भर के देखता है। सबसे पहले वो आपको घूरेगा और आपको लगेगा यार ये घूर क्यों रहा है, इतना क्यों देख रहा है, दूर दूर बैठता है, ऊपर से मुझे देखता रहता है, क्योंकि वो आपकी हर एक मेमोरी को, हर एक डिटेल को अपने दिमाग में बस याद कर लेना चाहता है। वो एक हर एक चीज़, आपकी आंखें कैसी हैं, आपकी नाक कैसी है, आपके बाल कैसे हैं, आप कैसे बोलते हो, कैसे हंसते हो, हर एक डिटेल को वो याद करने की कोशिश करता है। उसे महसूस होता है कि अब वो आपके साथ नहीं रहने वाला है, तो वो इस चीज़ को भी सुनिश्चित करता है कि आप उसके बिना सुरक्षित रहोगे, उसके बगैर आप बीमार नहीं पड़ोगे, उसके बगैर आप कहीं इनसिक्योर तो नहीं रहोगे, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत देना था, बेपनाह मोहब्बत देना था, और उसका काम वही था। आप उसे मारे, पीटें, डांटें, चिल्लाएं, गुस्सा करें, कुछ भी करें, लेकिन वो हमेशा आपके पास आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई उसको और कुछ नहीं समझ में आता, वो बिल्कुल उसी 5 साल के बच्चे की तरह है जिसको गुस्सा करके भी आप भगा देंगे तो अगली बार वो फिर आप ही के पास आ जाएगा। और आपके डॉग भी ऐसा ही करता है। जैसे ही आप घर आते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन होता है जिसे हम प्यार का हार्मोन कहते हैं, यानी कि जिस केमिकल लोचे की आप बात करते हैं वो एक्चुअल में यही लोचा होता है। और ये हार्मोन उसके उस वक्त भी रिलीज होता है जब वो अपनी आंखों को बंद कर रहा होता है, जब सांस उसका साथ छोड़ रही होती है, जब अपनी बॉडी को वो रिलैक्स कर रहा होता है, पूरी तरह से जब आपकी गोद में वो जाने को तैयार होता है, आपकी हर एक मेमोरी, हर एक डिटेल को अपने दिमाग में बसा कर, आपकी हर एक बात को याद करके आपसे अलविदा कहता है। और साइंस ये भी कहते हैं कि डॉग्स कभी पूरी तरह से अलविदा नहीं कहते, वो बस ये कहते हैं कि ख्याल रखना, मेरे बगैर भी अपना ख्याल रखना, हम फिर मिलेंगे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमने मुझे चुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बेहतरीन वक्त गुजारा। सोच सकते हैं, एक बेजुबान जानवर जो शायद कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं बोलता, और उसके बाद भी उसके दिमाग में कितना कुछ रहता है, वो आपसे कितना कुछ कहना चाहता है, बट उसको समझने में हमें बड़ा वक्त लगता है। हम समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में डॉग हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, हमें लगता है बस यूं ही है, वो हमें यूं ही देखता है। जी नहीं, वो आपको देखता है, आपको एडमायर करता है, आपकी हर एक चीज़ को अपने दिमाग में नोट करता है, डिटेल्स करता है, ऐड करता है, याद करता है, आपकी कोई भी चीज़ वो भूलना नहीं चाहता। और कभी अलविदा ना कहकर वो आपको हमेशा शुक्रिया कहता है उसको चुनने के लिए, उसको प्यार करने के लिए, उसको उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए, ज़िंदगी भर उसके साथ रहने के लिए, और आप ही हैं उसकी पूरी दुनिया। किसी और से उम्मीद रखें या ना रखें, हम आपको बता दें भाई, आपका डॉग आपको अपनी पूरी दुनिया ज़रूर मानता है। तो भैया आपका कुत्ता अगर आपके आसपास है तो ज़रा उसके सर पर हाथ फिराइए, उसे भी शुक्रिया अदा कीजिए। और अभी तक क्या कर रहे हैं आप, उठिए वॉक पर जाइए उसके साथ। आप लोग भी ना, मतलब एक्सरसाइज नहीं करनी होती है क्या, आपको भी करनी चाहिए, आपके डॉग को भी करनी चाहिए। और आपके क्वालिटी टाइम को ये कहते हैं भाई कि जाइए पार्क में, निकलिए बाहर, निकलिए थोड़ा सा, दौड़िए, खेलिए, उछलिए, कूदिए उसके साथ, क्योंकि डॉग्स के साथ रहने वाले लोगों को कभी डिप्रेशन नहीं होता है। ये बात साइंस अगेन कहती है कि जो कुत्तों के साथ रहते हैं, यानी कि जिनके पास पेट होते हैं, वो कभी भी डिप्रेस्ड नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो घर जाते हैं तो उछल के स्वागत करने को उनके पेट्स तैयार होते हैं, उन्हें हग करने को तैयार होते हैं, उनके रोने पर उनके पास आके बैठते हैं, उन्हें कंफर्ट देते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई साथी है तो आप बहुत लकी हैं। उसको ज़रूर उतना ही मोहब्बत कीजिएगा, उतना ही प्यार दीजिएगा जितना वो डिज़र्व करता है, जितना वो आपसे करता है। हम इंसान की आदत होती है कि हर एक चीज़ पर गुस्सा कर देते हैं, डांट देते हैं, लेकिन उनकी आदत नहीं है। तो फिलहाल ये तो थी आपके डॉग्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत इमोशनल वाली बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। और आई नो आप भी थोड़े थोड़े से इमोशनल हो रहे होंगे, क्योंकि भाई जब भी कोई डॉग लवर या फिर कोई पेट लवर ये सोचता है कि आने वाले वक्त में उसका पेट उसके साथ नहीं रहेगा, उसका वो ख़ास दोस्त जिसको वो एक जानवर समझ कर लेकर आया था, जो उसकी पूरी ज़िंदगी बन जाता है, जिसके साथ हर एक लम्हा होता है, अगर उसको कोई कह दे रहा है एक होते दूर रहना, तो चढ़ जाते हैं कि अरे उसका नाम है, उसका नाम टॉमी है, उसका नाम शेरू है, उसका नाम ये है वो है। भाई उनके लिए काफ़ी इमोशनल पॉइंट रहा होगा ये वाला, आप बताइएगा ज़रूर। फिलहाल घड़ी ने भी इशारा कर दिया है कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का, और जाने से पहले हमारे साथ चैट बॉक्स में मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा में। एंड उन्नति मैम नमस्कार, नमस्कार, कैसे हैं आप बताइएगा ज़रूर। और आज का शो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, आप रखें अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानी सा ऐप के साथ AI पावर।

0: आयु आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
9: समता, श्वेता, जिम्मी, कहाँ हो सब लोग? अरे भाई, हरिओम आया कि नहीं? चलो सब लोग, एक हफ्ते का सामान रख लो और सुनो, शादी वाले कपड़े जरूर रखना।
10: वहाँ किसी वेडिंग में ले चल रही है किरण दीदी।
11: लगता है डेस्टिनेशन वेडिंग है, जयपुर, केरल या गोवा, कहाँ चलना है भाई?
12: इतने खुश ना हो आप लोग किरण दी, कि बुआ सुल्तानपुर के गाँव हलियापुर में रहती है, उनके बेटे की शादी है।
9: हाँ सही कहा जिम्मी, बिना तामझाम के, लाखों रुपए खर्च किए बिना, ढेर सारी रस्मों के साथ चलो शादी दिखाते हैं। तुम सब देखना, इस शादी की बातें करते नहीं थकोगी।
10: अरे किरण दीदी, इतने दिन के लिए हम नहीं चल पाएंगे, छुट्टी भी नहीं मिलेगी और इस समय घर पे मम्मी भी नहीं है।
11: नहीं श्वेता, हम सब चलेंगे। गांव की गूंज की टीम का लक्ष्य है सबको गांव की मिट्टी से जोड़ना है, और इससे अच्छा मौका कहां मिलेगा। शादी चाहे गांव में हो या शहर में, खुशी तो उतनी ही होती है।
12: सही कहा। एक बात बताएं, आजकल की वेडिंग मजा तो आता है पर थक जाते हैं। दो ही दिन में तिलक, एंगेजमेंट, संगीत, शादी, रिसेप्शन सब हो जाता है। वैसे गांव में कैसी शादी होती है?
9: अरे हमारी जिम्मी रानी इतनी समझदार बातें कर रही है तो सुनो, पहले पंडित जी आते हैं, दो चार लड़कियों की फोटो लेकर, उसमें एक फूफा को सरिता पसंद आ जाती है, फिर कुंडली मिलाई जाती है, और अगर कुंडली मिल गई तभी आगे की बात शुरू की जाती है।
2: अब यह तो कतई मत कहना तुम लोग कि कुंडली मिलाना भी कितनी दकियानुसी बातें हैं। हम लोग चाहे जितने भी मॉडर्न हो गए हैं, यह सब बातें मानते जरूर हैं। सच सच बताओ, न्यू ईयर की शुरुआत होने वाली है और तुम लोगों ने क्या यूट्यूब पर नहीं देखा कि 2024 में किस राशि के लिए क्या शुभ है? और तो और न्यूज चैनल पर भी आने लगता है कि दीपावली का कब शुभ मुहूर्त है, साफ सफाई कैसे करनी है, पूजा कैसे करना है।
11: सही कहा, चाहे हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, सोच हमारी अभी भी गांव की मिट्टी की है, पर इस बात को हम मानना ही नहीं चाहते।
10: चलिए सॉरी बिना सोचे समझे बोलने के लिए। और समता दीदी, हम आपके भी कपड़े ले आए हैं, रास्ते में बाकी बातें करेंगे।
4: क्या लड़की को देखने बहुत सारे लोग गए थे? और मैंने तो ये भी सुना कि लड़की से पूछ रहे थे कि गाना गा लेती हो, क्या क्या बना लेती हो, जैसा पिक्चर में होता है।
9: बिल्कुल भी नहीं, लड़के के बारे में सब पता करके ही उसके घर जाते हैं। और हाँ, यह जरूर है कि लड़की से पूछते हैं कि क्या क्या बना लेती हो, वो इसलिए कि लड़की का जो डर है ना वो खुल जाए और वो अपने ससुराल के लोगों से हिल मिल जाए। पर इसको गलत तरीके से पेश किया जाता है।
2: यही घर है ना आपकी बुआ जी का, लोकेशन भेजने से कितना आराम हो जाता है। बिना भटके पहुंच गए, वो देखो किरण दी का सब दरवाजे पे वेट कर रहे हैं।
13: शादी के शुभ काम शुरू हुए वाला है बहनी, ढोल पूजा कराओ, तनी देवी गीत गाए दो जरा।

0: सरिता का भैया पीली चिट्ठी लाए वाले हैं, यकरे बात तो सब शुभ काम शुरू हो जाए।
1: ये पीली चिट्ठी क्या होती है?
2: हमें पता है, हम बताते हैं। यह एक तरह का इनविटेशन है जो लड़की के घर पर लिखा जाता है, जिसमें लड़की के घर के लोगों के नाम होते हैं। उन्हें लड़की के घर में कौन कौन लोग बुला रहे हैं उनका नाम भी होता है। शादी की डेट आदि उसे पंडित भी लिखते हैं। इसके बाद ही लड़की के घर में शुभ कार्य शुरू होते हैं।
3: आज ये लड़के वालों के घर आ गया है तो कल इसे खोला जाएगा, फिर गांव वालों को इनविटेशन कार्ड बांटा जाएगा। पीली चिट्ठी करीब 21 दिन पहले आती है, पर आजकल शादी जल्दी जल्दी की जाती है, इतने दिन नहीं लगाए जाते हैं।
4: किरण दी, शगुन के गीत गाकर शादी की शुरुआत कीजिए। कल इस लिफाफे को खोल कर देखेंगे।

0: उठो भाई उठो सब लोग, देखो येलो लिफाफे में क्या है। इसे देखने की मुझे इतनी जल्दी थी कि पूरी रात नींद ही नहीं आई। जल्दी देखिए भाई, जल्दी खोलिए।
1: दीदी चिट्ठी पूजा घर में है, देखो इसमें सुपारी है, धूप घास है, पीला चावल है, पैसा है और मौली से बांधा भी है।
2: बुआ जी बता रही थी कि यहाँ गांव में लड़की की शादी का इनविटेशन देना होता है तो हल्दी दी जाती है और लड़के का हो तो सुपारी, दोनों ही बहुत शुभ होते हैं।
3: एक चीज देखा तुम लोगों ने, लड़की के भाइयों का भी बुआ ने टीका किया और मिठाई और फल भी भिजवाए।
4: सही कहा, उन लोगों का आदर किया गया या उनको बहुत अच्छा लगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ गाँव में सुपारी बांटने, लोगों को निमंत्रण देने। आप लोग तिलक की तैयारी कीजिए, आज शाम को ही तिलक है। जिमी तुम चलोगी निमंत्रण बांटने के लिए?
0: मेरा मन तो गांव घूमने का बहुत है, पर चले गए तो तिलक की तैयारी कैसे देखेंगे। आप जाइए हरिओम भैया, हम रुकेंगे।
1: जिमी तिलक पर डीजे नहीं लगेगा, ढोलक वाला तिलक है। किरण दी बताइए तिलक कैसे होगा?
2: शाम को हम सब सीधे पहले ही साड़ी पहनेंगे, हम सब के लिए नथ भी लाए हैं।
3: ये तो बहुत अच्छी बात है श्वेता समता, गांव में तिलक बहुत इम्पोर्टेंट सेरेमनी होती है। पूरी गांव का खाना आज ही होगा, रिसेप्शन नहीं होता यहाँ।
0: देखो देखो जो दो चौकी सजी है उसमें तिलक का जो सामान आएगा उसे सजाया जाएगा और पूरा गांव देखेगा।
4: अरे तुम सब अभी बातों में ही बिजी हो, देखो मैं धोती कुर्ता पहनकर तैयार भी हो गया।
3: बस 10 मिनट में हम सब मिलते हैं, आज तो खूब गाने गाते हैं।

0: कितने लोगों ने खाना खाया। कम पैसों में भी कोई फंक्शन इतना अच्छा हो सकता है, यह तो हम सोच ही नहीं सकते हैं।
1: शादी और हल्दी कल है, तो फिर आज क्या है? आज क्या करेंगे हम लोग?
2: आज मामा भात है, आज बुआ जी के मायके से सब लोग आएंगे, और यह हम लोग में भी होता है। पर हाँ, इसमें शो ऑफ बहुत होता है कि हमारे भाई ने तो ये सब कुछ दिया है।
3: हाँ, यह नहीं देखा जाता कि भाई पर कितना प्रेशर डाल रहे हैं हम लोग। ढोल की आवाज आने लगी, लगता है सब लोग आ गए हैं।
0: कितनी प्यारी बुआ लग रही है। अरे यह कितनी सुंदर चुनरी बुआ जी को भाभी ने उड़ाई है।
2: ये दोनों मामी ने अपने हाथों से बनाई है, इसे बुआ जी जिंदगी भर संभाल कर रखेंगी।
3: अब बुआ जी के घर के हर किसी का टीका करके किसी को कपड़े किसी को पैसे देंगे और हर किसी का सम्मान करेंगे। बुआ बहुत इमोशनल हो रही हैं।
4: हाँ, उनको लग रहा होगा कि हमारा परिवार हमारे साथ है। चलिए हम तो जा रहे दोस्तों के साथ गप्पे मारने, और कल तो वैसे ही शादी में धूम रहेगी।
0: जिमी रुक जाओ, आज ही इतना नाचोगी तो कल बारात में नहीं नाच पाओगी।
2: मैं तो चली मेहंदी लगवाने, यहाँ पेड़ से मेहंदी तोड़कर पीसी जाती है, फिर भी कितनी शानदार मेहंदी लग रही है सबको यहाँ।
3: उठो कुंभकर्णों, हल्दी की रस्म शुरू हो गई है।

0: किराने हम उठ चुके हैं। कितनी सुबह से यह गांव की लेडीज आ गई हैं, हाथों से हल्दी पीसी। शहर में सब तो हर्बल मेहंदी लगा लेते हैं, पर यहाँ सब ने गाना गाया, हल्दी पीसी, और कितना अपनापन देखने को मिल रहा है।
1: सच कहा समता दी आपने, उन दादी लोगों को देखा कितनी बूढ़ी हैं, पर सुबह से लेकर रात तक बैठी रहती हैं और एक एक करके सारी रस्में बताती रहती हैं।
2: यही तो खुशबू है गांव की, शादी एक घर में है और काम सारे मिलकर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है पूरे गांव में शादी है।
0: शहरों में तो कोई अपने घर से भी नहीं करता शादी, पता ही नहीं चलता कि इस कॉलोनी में शादी है।
3: सब लोग तैयार हो जाओ, 4 बजने को है यार, बारात निकल जाएगी और जनवासे पहुंचने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। बारात चलने से पहले बहुत सारी रस्में होंगी और वो तो आप सब देखेंगे ही।

0: जीजा जी ने दूल्हे को साफा बांधा, भाभी ने काजल लगाया, बहनों ने घोड़ी को चने गुड़ और माँ ने नजर भी उतारी।
1: एक चीज नोटिस की आप सभी लोगों ने, सबको नेक दिया गया बराबर से, चाहे वो सगी बहन है या गांव की है। ये है अपनापन जो हम सभी शहर में कहीं ना कहीं खो रहे हैं।
2: बुआ जी बारात में नहीं चल रही हैं और उनके साथ कुछ और लेडीज भी रुक रही हैं।
3: हाँ, माँ चाची मासी यह सब रुकती हैं घर पर, और रात भर रथ जगा होगा, सब लोग गाने गाएंगे और फिर बहू के आने का इंतजार करेंगे और तैयारी करेंगे।
4: हम जनवासे पहुँच गए हैं, यहाँ शरबत पियो, मिठाई खाओ, और ये सब तो घर के बने होते हैं। बस आधे घंटे में बारात चल देगी, और ध्यान रखना रास्ते भर में बारात के आगे पटाखे जरूर जलाए जाएं।
0: बारात में घंटों नहीं नाचा जाता है, बस थोड़ी देर और बारात टाइम से पहुंच जाती।
1: एजुकेशन कम है और सब कुछ नियम से, ना कोई लड़ाई, ना कोई किसी को परेशान कर रहा है, और ना ही कोई किसी की शिकायत कर रहा है, और ना ही एक दूसरे में यहाँ कमी निकाली जा रही है।
3: यही खूबसूरती है गांव की, हर किसी को पता है कि क्या काम करना है। शहर में तो हर सुविधा का ध्यान रखा जाता है, पर फिर भी कितनी सारी कमियां निकाल ही दी जाती हैं।
2: कितनी बातें करते हैं आप लोग, दौर चार खत्म हो गया। और आप लोग ने देखा, जब बारात आ रही थी तब लड़की छिप के दूल्हे को देख रही थी, कितनी रस्में जानी हम लोगों ने।
4: जयमाल होने जा रहा है, पहले वो देख लेते हैं, फिर एक बात बताइएगा कि कुछ दूल्हे के हाथ में बांधा गया था, फिर दूल्हे को उसके बाद घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया गया, ऐसा क्यों?

0: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
12: गोंडा शहर की धड़कन।
13: हेलो लिसनर्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आर शिवरति, और आप सुन रहे हैं वेंसडे का स्पेशल स्वास्थ्य संगनी, सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आया हूं इस खूबसूरत से प्रोग्राम को, स्मार्ट एनजीओ और रेडियो कैनसली की एक बहुत ही खूबसूरत सी पहल, खूबसूरत सी श्रृंखला, जिसके अंदर बात होती है आपकी अपनी सेहत की। आप सभी का स्वागत करते हैं 89.6 FM रेडियो कैनसली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन पर। मैं हूं आपकी आर शिवनति। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी 70% बीमारियों का जड़ आपका पेट हो सकता है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर आपका पेट ठीक ना हो, तो क्या आपकी नींद, आपका मूड, यहाँ तक कि आपकी सोच भी बिगड़ सकती है? क्या आप इस बात को मानने वाले हैं? अगर नहीं, तो भाई आज का टॉपिक थोड़ा अलग लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चीज की जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं, हमारा पेट, यानी कि हमारी गट हेल्थ। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं उसका सीधा असर हमारे शरीर पर नहीं, बल्कि हमारे मूड, एनर्जी, इवन हमारी सोच पर भी पड़ता है। गट हेल्थ का मतलब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितना ज्यादा हेल्थी है। आजकल पेट की समस्या, गैस, अपच, कब्ज और बार बार एसिडिटी का होना बहुत ज्यादा आम होता जा रहा है। अक्सर लोग उसको हल्की समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी दिक्कतें आगे चलकर गट हेल्थ, यानी कि आंतों के स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं। गट हेल्थ सिर्फ पेट तक सीमित नहीं होता, यह आपकी इम्यूनिटी, ऊर्जा, मानसिक स्वास्थ्य और संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं कि आप अपने गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और गट हेल्थ क्यों इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मूड के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगनी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के उस पार आते हैं, करते हैं आपसे आज गट हेल्थ के ऊपर काफी लंबी चौड़ी चर्चा। स्टे ट्यून्ड।
14: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
13: मतलब
14: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
15: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
16: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
17: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
18: मतलब?
17: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
15: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
13: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत से प्रोग्राम को मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपको अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि गैस बनना, कब्ज रहना, बार बार एसिडिटी होना, खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना, ब्लोटिंग रहना या फिर आपका पेट हमेशा खराब रहना। ये सारी चीज़ें जो आपको बहुत आम लगती हैं और आपको लगता है कि हो सकता है बदलते मौसम की वजह से हो रहा हो या फिर हमने कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, अगर ये बहुत लंबे समय तक रहती है तो क्या ये आपके स्वास्थ्य पर, आपकी आंतों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं डालती? बेशक डालती हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ का मतलब है कि आपका पाचन तंत्र कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। इसमें पेट, छोटी और बड़ी आंत और खासतौर पर आंतों में मौजूद बैक्टीरिया शामिल होते हैं। जब पाचन सही तरीके से काम करता है, खाना अच्छे से पचता है, तब आपके खाने के द्वारा मिले पोषक तत्व आपके शरीर में अच्छे से काम करते हैं। आपका पेट हल्का महसूस होता है, लेकिन जब आपका गट हेल्थ खराब होता है तो फिर आपको काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं, जैसे कि गैस बनना, बार बार ब्लोटिंग होना, अपच होना, खाना अच्छे से डाइजेस्ट ना होना या फिर जलन महसूस होना सीने में और पेट के अंदर। और आपको लगता है कि सिर्फ एंटासिड लेने से या फिर गैस की दवा ले लेने से ये ठीक हो जाएगा, बट जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा दवाई लेते जाते हैं आपकी आंतें और भी ज़्यादा कमज़ोर होती जाती हैं। तो इन्हें ठीक कैसे करना है और गट हेल्थ क्यों इतनी ज़रूरी है, इसके बारे में आइए आपको हम बताते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि गट हेल्थ सिर्फ खाने पीने से जुड़ी है, लेकिन इसका असर आपके पूरे शरीर पर पड़ता है। भोजन को पचने और पोषक तत्वों के अवशोषित यानी कि अब्जॉर्ब होने में मदद करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखना, कॉन्स्टिपेशन मल त्याग को नियमित रखती है, ऊर्जा स्तर आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर बनाती है, मानसिक स्वास्थ्य और आपके मूड से भी आपका पेट जुड़ा होता है। आपने भी कई बार सुना होगा कि अगर आप अच्छा खाना खाते हो, अच्छी चीजें, और अगर आप अपनी अच्छी चीजें कंज्यूम करते हो तो आपका मूड अच्छा रहता है। जब मूड अच्छा रहता है तो काम बेहतर होता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो लोग हमेशा कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं वो बहुत इरिटेटेड रहते हैं, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, और इसके पीछे की वजह यह है कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन है, उनका पेट खराब चल रहा है और उनका पेट अच्छे तरीके से साफ नहीं हुआ है। कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है, एक ऐसा सिम्टम जो आपको बताता है कि आपके गट हेल्थ में कुछ ना कुछ तो इशू चल रहा है। गट हेल्थ को इम्प्रूव कौन करता है? गट माइक्रोबायोम क्या होता है? हमारी आंतों में खराब बैक्टीरिया भी रहते हैं जिन्हें मिलकर गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। हम आपको बता दें, आपके गट हेल्थ के अंदर दो तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पहला, अच्छे बैक्टीरिया जो आपके पाचन में मदद करते हैं, विटामिन्स बनाते हैं और आपको होने वाले अन्य संक्रमण से बचाते हैं। दूसरे होते हैं खराब बैक्टीरिया, जो जब ज़्यादा बढ़ जाएं तो गैस, सूजन, सूजन से जुड़ी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग दिखने में तो बहुत पतले होते हैं लेकिन उनका पेट बहुत मोटा होता है। उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमने एक्सरसाइज भी बहुत की, हमने डाइट भी बहुत की लेकिन हमारा पेट कम नहीं हो रहा। कई बार इसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि उनका गट हेल्थ खराब है, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया यानी कि खराब बैक्टीरिया उनके पेट के अंदर, उनकी आंतों के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और इसी कारण उनको सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन बढ़ती जा रही है। इन्फ्लामेशन अगर बहुत ज़्यादा रहती है तो ये अधिकतर बीमारियों का कारण बन सकती है। अगर खराब गट हेल्थ होता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं? तो भाई, पाचन से जुड़े कुछ लक्षण जो आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं वो ये होते हैं: पेट में गैस बनना, पेट फूलना, कब्ज या दस्त, अपच, एसिडिटी, पेट में दर्द होना, मल त्याग में परेशानी, खाना ठीक से ना पचना, बार बार थकान महसूस होना, कुछ खाने से तुरंत परेशानी होना, बार बार बीमार पड़ना, चिड़चिड़ापन या बेचैनी। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं या फिर आप कुछ भी खा लें आपको हमेशा भारीपन लगा रहता है, आप हल्का सा हल्का भोजन भी करते हैं इसके बाद भी अगर आपका पेट बहुत भारी भारी महसूस होता है, सुबह उठने के बाद भी आपको हल्का महसूस नहीं होता है, तो ये सारे लक्षण होते हैं कि आपका गट बैक्टीरिया यानी कि आपका जो हेल्थ गट हेल्थ है वो खराब हो चुका है। बट कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं या फिर इसके लिए दवाई खाना ज़रूरी है? अगर हम अपनी गट हेल्थ को ध्यान में रखते हैं तो क्या रोज़ सुबह उठ के हमें गैस की दवाई खानी पड़ेगी या फिर इसको नेचुरली ही ठीक किया जा सकता है? और गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे स्वास्थ्य संगनी में। गट हेल्थ खराब होने के जो प्रमुख कारण होते हैं वो आपके खाने पीने से ही जुड़े होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड या फिर जंक फूड खाते हैं यानी कि आप पैकेट वाला खाना खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा सोडा या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, बाहर बर्गर, पिज़्ज़ा या फिर बहुत स्पाइसी, बहुत ऑयली ऐसा कुछ खाना खाते हैं जो पैकेट्स में आ रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपके पेट की आंतों को यानी कि आपके गट हेल्थ को खराब करता है। भारत में आजकल प्रोटीन और फाइबर की कमी को लेकर के काफी लोग जानकारी फैला रहे हैं। गट हेल्थ की अवेयरनेस को लेकर के आज इंटरनेट पे भी कई लोगों ने हंगामा मचा रखा है, बहुत ज़्यादा हाइप है और हमें लगता है कि प्रोटीन कहीं ना कहीं किडनी ख़राब कर देगा, फाइबर जो कि अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, बचपन से सुनते आए हैं कि बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बैलेंस डाइट में कार्ब्स का होना, फाइबर का होना, प्रोटीन का होना, न्यूट्रिशंस का होना, विटामिंस का होना, मिनरल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इन सबको मिक्स करके बनता है एक बैलेंस डाइट, जिसे आजकल मेनली लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि आजकल लोगों का पूरा ध्यान उनके असल खाने से हटकर बाहर के प्रोसेस्ड फूड पर होता है। आपको भी पता है कि आजकल अगर आप सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, फल ज़्यादा खाते हैं तो लोगों को लगता है कि आप डाइट कर रहे हैं। इवेंचुअली आप डाइट नहीं कर रहे होते हैं, आप मदर नेचर का दिया हुआ रियल फूड कंज्यूम करते हैं जो कि आपके लिए बनाया गया है, आपकी सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है। बट वहीं पर अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेट वाले खाना खाते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, छोले भटूरे, ऐसे तेल मसालेदार स्पाइसी खाना खाते हैं तो को लगता है कि आप डाइट नहीं कर रहे और आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह रहते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेहद सब्जियों को खाना, फलों का सेवन करना बेहद ज़रूरी है। हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपने लिए बर्गर, पिज़्ज़ा बिल्कुल ही छोड़ दें, चाउमीन हाथ भी ना लगाएं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनको लिमिटेड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड या फिर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं और उनमें फाइबर की कमी, प्रोटीन की कमी, मिनरल्स की कमी ज़्यादा हटकर सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज आपको मिल रही हैं तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अगर एम्प्टी कैलोरीज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि एम्प्टी कैलोरीज का मतलब होता है वो कैलोरीज जो मिलती तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन वो आपको ना एनर्जी देती हैं, ना आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती हैं, ना वो आपके मसल्स को रिपेयर करती हैं, ना वो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं, सिर्फ वो फीड करती हैं बैड बैक्टीरिया को, जिसके बाद आपके पेट में अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, यहाँ तक कि अल्सर होने का भी खतरा बढ़ जाता है, बार बार गैस बनती है, बार बार अपच होती है, इनडाइजेशन होता है और आपको लगता है कि सिर्फ एंटासिड ले लेने से या फिर गैस की दवाई ले लेने से, पेंटॉप डीएसआर खा लेने से हमें दिन भर गैस नहीं बनेगी और हम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही काट देंगे, तो ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। तो फाइबर युक्त भोजन की कमी आजकल हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। लोग सब्जियों को खाना पसंद नहीं करते हैं, लोग फलों को खाना पसंद नहीं करते हैं, लोग बाहर के पैकेट वाली चीजों को खाते हैं जिसमें उन्हें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज मिलती हैं, फाइबर नहीं मिलता। हम आपको बता दें भाई, एक अच्छे खासे इंसान के लिए अगर डेली फाइबर की बात करें तो 25 ग्राम फाइबर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिन में 25 ग्राम फाइबर नहीं ले रहे हैं तो आपको गट हेल्थ इशू रहते हैं। इसी के साथ आता है कि अत्यधिक मीठा खाना या तला भुना खाना, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीनी डालकर चाय पीते हैं, चाय की जगह पर चाशनी पीते हैं, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, हर वक्त आपको मीठे की क्रेविंग लगी रहती है, तो इससे आपकी गट हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि ये आपके गुड बैक्टीरिया की जगह पर बैड बैक्टीरिया को फीड करता है और बैड बैक्टीरिया के बढ़ने की वजह से आपकी गट हेल्थ इशू बढ़ती है। अगर जीवन शैली से जुड़ी बात करें तो लगातार तनाव में रहना, अब आपने कभी सुना हो या ना सुना हो तो मैं आपको बता दूं कि आपका दिमाग और आपका पेट आपस में भाई बहन कहे जाते हैं, यानी कि कजिन्स। अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, आपका माइंड बहुत ज्यादा टेंशन में रहता है तो आपका डाइजेशन पर इसका सीधा असर पड़ता है। और अगर आपका खाना पीना बहुत ज्यादा खराब है, आप तला भुना खाते हैं, आप अच्छा खाना नहीं खा रहे हैं, तो इसका सीधा असर आपके दिमाग पर पड़ता है। यानी कि अगर आप तनाव में रहते हैं तो आपको इनडाइजेशन लगा रहता है, यानी आपकी गट हेल्थ खराब होती है, और अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो आपको स्ट्रेस होना, चिड़चिड़ापन होना, ये भी लाजिम है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका दिमाग और आपका पेट आपस में भाई बहन है, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भाई, अगर आपको लगातार तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, किसी बात की आप लगातार ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, तो आप कोशिश करें कि ना करें, मेडिटेशन करें, अच्छा खाना खाएं जिससे आपका पेट भी शांत रहे और आपका दिमाग भी शांत रहे। दूसरी चीज आती है नींद पूरी ना होना। आजकल रात भर लोग स्क्रोलिंग में निकाल देते हैं, यानी कि सोचते हैं कि सोने से पहले एक घंटा फोन चला लेते हैं, और एक घंटा फोन कब रात के 3 बजा देता है किसी को पता भी नहीं चलता। और जब तक आप सोते नहीं हैं, आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करने का काम नहीं करती है। आपके सोने के बाद आपकी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, आपका डाइजेशन काम करता है। अगर आप नहीं सोते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, जो कि 6 से 8 घंटे एक इंसान के लिए ज़रूरी नींद होती है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो इसका सीधा असर आपके डाइजेशन पर पड़ता है, यानी कि आपके खाने की पाचन शक्ति पर पड़ता है, आपके पेट के पाचन शक्ति पर पड़ता है। और अगर जब वो ख़राब होता है तो फिर आपका जो खाना है वो हजम नहीं होता है, और सुबह उठकर आपको इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, भारीपन, गैस बनना, ये सारी चीज़ें महसूस होती हैं। इसी के साथ बात करें शारीरिक गतिविधि का कम होना। आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है कि वो एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही आप सिर्फ खाना खाने के बाद वॉक ही क्यों ना करें, लेकिन 10 मिनट की वॉक ज़रूर करें। यूं तो WHO कहता है कि हर एक इंसान को दिन में लगभग 10,000 कदम चलने की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप 10,000 कदम नहीं चल रहे हैं तो भी 6,000 से 7,000 कदम आपको दिन में चलना ही चाहिए। अगर आप नहीं चलते हैं, खाना खाकर बस एक जगह पर बैठे रहते हैं, या फिर खाना खाकर तुरंत लेट जाते हैं, तो ये कारण होता है कि आपके गट हेल्थ खराब होती है, क्योंकि आपका खाना ठीक तरह से फिर नहीं पचता है, और वो खाना जो अभी तक नहीं पचा है वो आपके पेट में, आपकी आंतों में अंदर ही अंदर रहता है, जो खराब होता है और आपको आगे जाकर ब्लोटिंग और आपकी जो आंतों की बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कमजोर करता है। दूसरी बात करें तो पानी का कम पीना। अगर आप पानी नहीं पीते हैं, हाइड्रेशन को लेकर के आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग टिप्पणियां कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि अभी एक नई बात सामने आई है कि 7 से 8 ग्लास ये कॉमन है, लेकिन आपको अपने वेट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका जो वज़न है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी पीना चाहिए। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं, आप हाई फाइबर चीज़ें खा रहे हैं, आप हाई प्रोटीन का खाना खा रहे हैं, लेकिन आप पानी नहीं पीते हैं, तो ये आपको कॉन्स्टिपेशन ज़रूर से देता है, क्योंकि भाई पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फाइबर को मूव करने के लिए, आपकी आंतों से जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए, आपके वॉबल मोमेंट्स को ठीक करने के लिए पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो इसका सीधा असर आपके पाचन तंत्र पर और आपकी किडनीज पर ज़रूर पड़ता है। तो भाई मैं यही कहूँगी कि आप पानी लगातार पीते रहें, खाना खाने से आधा घंटा पहले और खाना खाने के आधा घंटा बाद आप गर्म पानी पी सकते हैं, और चलते फिरते हर घंटे एक ग्लास पानी ज़रूर पिएं। 10 से 12 ग्लास अगर आपका वज़न है 62 या 60 के आसपास, तो इतना पानी की ज़रूरत आपको होती है। किसी और के पानी इनटेक को अपना पानी इनटेक ना समझें, अपने वेट के अकॉर्डिंग अपना वाटर लेवल जरूर चेक करें और पानी टाइम टू टाइम पीते रहें। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, बताते हैं आपको और भी जानकारी गट हेल्थ से जुड़ी हुई। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आपका अपना शो स्वास्थ्य संगति अपनी आरजी के साथ। स्टे ट्यून्ड,
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
12: गोंडा शहर की धड़कन।
18: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी है जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
19: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
18: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें।
19: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
18: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
19: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते पड़ना
18: जी।
19: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगे, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
18: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं। आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
19: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
18: जी
19: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है वहाँ जोखिम ज्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
18: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
19: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
18: जी।
19: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
18: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
19: आकांक्षा जी यह बहुत गंभीर खतरा है
18: जी।
19: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पैर सुन्न हो सकते हैं
18: जी,
19: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
18: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता
19: जी। जरूर
18: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गांव में। स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
19: आकांक्षा जी आपने बिल्कुल सही सवाल किया
18: जी।
19: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
18: जी,
19: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
18: जी।
19: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
18: जी
19: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
18: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
19: आकांक्षा जी उनकी भूमिका सबसे अहम है
18: जी।
19: यही बहनें त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
18: जी।
19: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
18: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
19: देखिए खानसा जी
18: जी,
19: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
18: जी,
19: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
18: जी,
19: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
18: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है। इससे आखिर में हमारी समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
19: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका
18: जी।
19: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
18: बिल्कुल,
19: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं, जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
18: बिल्कुल,
19: याद रखिए बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
18: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी।
19: जी आकांक्षा जी।
18: जी मैम, आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है?
19: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है
18: जी।
19: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
18: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
19: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं भेदभाव से है
18: जी। अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
19: देखिए आकांक्षा जी
18: जी,
19: मेरा संदेश बहुत साफ है
18: जी।
19: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए
18: जी।
19: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
18: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
19: जी धन्यवाद मैम।
18: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।

हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। आप सुन रहे हैं रेडियो कैनस 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर आवाज़ है आपकी अपनी आरजी उन्नति की। और सेहत सही लाभ के ये बैनर के तले लेकर आए हम इस खूबसूरत से प्रोग्राम में, जिसमें आज बात कर रहे हैं आपके गट हेल्थ से जुड़ी बीमारियाँ और गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करना है, क्यों ये ज़रूरी है इसके बारे में। हमने अभी तक जीवन शैली के बारे में जाना, खान पान से जुड़े कारणों के बारे में जाना, और एक और कारण आता है जिससे आपका गट हेल्थ खराब होता है, वो है मेडिकल रीज़न। मेडिकल रीज़न में आता है कि अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एंटासिड लेते हैं, तो इससे आपके पेट में अंदर मौजूद एसिड धीरे धीरे कम पड़ जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका खाना ठीक तरह से नहीं पचता है। लंबे समय तक कुछ दवाइयों का सेवन करने से आपकी गट हेल्थ इशू बढ़ सकती है, और अगर आपको पुरानी पाचन संबंधी बीमारियां हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपका गट हेल्थ कमज़ोर हो। अगर गट हेल्थ से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दें, IBS का होना, IBD, पेट में अल्सर, एसिड रिफ्लेक्स रोग, लैक्टोज इनटॉलरेंट, ग्लूटन सेंसिटिविटी, ये सारी वो बीमारियां हैं जो गट हेल्थ से जुड़ी होती है। लैक्टोज इनटॉलरेंट का मतलब है वो लोग जिन्हें दूध से बनी चीज़ें, यानी दूध में मौजूद जो लैक्टोज होता है, जो कि एक शुगर का फॉर्म है, जब उनकी बॉडी, उनकी आंतें इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होना, ब्लोटिंग होना, गैस का होना, कॉन्स्टिपेशन होना या डायरिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर आपने कभी भी दूध पीने के बाद बहुत ज़्यादा

होती हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, तो आपको उनसे दूर रहने की जरूरत है। इसी के बाद हम आपको लेकर चलते हैं हमारे गट हेल्थ और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध के बारे में। ज्यादा तनाव लेने से पेट की समस्या बढ़ती है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका इनडाइजेशन होना लाजिम हो जाता है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो आपका खाना ठीक तरीके से नहीं पचता, क्योंकि आपका दिमाग और आपका पेट आपस में जुड़ा होता है। ख़राब पाचन से चिंता और बेचैनी हो सकती है, और अगर आपको इंडाइजेशन की बीमारी ज़्यादा रहती है, आपको खाना ठीक तरीके से नहीं पचता, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये आपकी स्ट्रेस को बढ़ा सकता है, बेचैनी को बढ़ा सकता है, आपकी चिड़चिड़ाहट को बढ़ा सकता है। स्वस्थ गट मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जी हाँ, अगर आपका पेट सुबह उठ के साफ हो जाता है तो मैं आपको बताती हूँ आपका पूरा दिन काफ़ी बेहतर लगता है, क्योंकि आपका मूड लाइट लगता है, आपका पेट लाइट लगता है और आपका दिमाग बार बार आपके पेट की तरफ नहीं जाता, जिसकी वजह से आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर करते हैं और आपका हल्का फील करना, आपके हेल्थ, आपके गट हेल्थ का बैलेंस में रहना, आपके गट हेल्थ का लाइट फील करना आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। गट हेल्थ के लिए सही आहार की अगर बात करें तो सबसे ज़रूरी है फाइबर युक्त भोजन करना। फाइबर में आपको मिलते हैं फल और सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और फलियां। फल की अगर बात करें तो अमरूद, पपीता, नाशपाती, इनमें सबसे ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है, तो आप इसको ले सकते हैं। प्लस अगर आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर हैं, यानी कि अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आपको यही आपको स्ट्रॉबेरीज, अमरूद, नाशपाती और पपीता आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आप 250 ग्राम पपीता ले सकते हैं, 250 ग्राम अमरूद ले सकते हैं, जिसमें आपको 5 से 6 ग्राम फाइबर मिलता है। प्रतिदिन एक वयस्क इंसान को 25 ग्राम फाइबर की नीड होती है, और अगर आप 25 ग्राम फाइबर नहीं लेते हैं, यानी कि 20 ग्राम से 25 ग्राम फाइबर नहीं लेते हैं, तो ये आपके गट हेल्थ को खराब करता है। अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां आपके फाइबर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि आजकल बारिश का मौसम है तो वो पत्तियां कीड़ों से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि आप जब सब्जियां लेने जाते हैं तो उनको अच्छे से ज़रूर धो लें, उनको अच्छे से वॉश करें और उसके बाद ही उन्हें पका कर खाएं। आजकल कच्ची सब्जियां खाने का जो चलन चल रहा है, प्लीज़ उसको अवॉइड करें, स्पेशली बारिश के मौसम में, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस मौजूद होते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आपको IBS या फिर ऐसी कोई गट हेल्थ इशू है, आपका गट सेंसिटिव है, तो कोशिश कीजिए कि आप हमेशा सब्जियों को पका कर खाएं, उन्हें अधपका ना खाएं या फिर उन्हें बॉयल करके ज़रूर खाएं, ताकि आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर सके, डाइजेशन में कोई इश्यू ना आए, प्लस आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल सके। फाइबर आपको सब्जियों में, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियां, इन सब में फाइबर की मात्रा उपयुक्त होती है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि आप सिलियम हस्क यानी कि इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा गैस की समस्या रहती है, तो आप रात में गुनगुने पानी में एक चम्मच इसबगोल को डालकर पी सकते हैं। इसके बाद लगातार पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइबर अगर आपके पेट में ज़्यादा है और आप पानी नहीं पी रहे हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको लगातार पाचन संबंधित समस्या देखने को मिले, जिसमें गैस का बनना, एसिडिटी का बनना या फिर कॉन्स्टिपेशन का फील होना हो सकता है। अगर आप पानी नहीं पीते हैं तो फाइबर आपके बॉवल मोमेंट्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से फिर आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, यानी कि आपको इंडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेटेड महसूस होता है। बट वहीं पर अगर आप भरपूर मात्रा में फाइबर लेते हैं प्लस भरपूर मात्रा में पानी भी पीते हैं, तो यह आपके पेट को पूरी तरह से साफ कर आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करता है। इसी के बाद आती है साबुत अनाज, जिसमें आप दलिया ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, बाजरा के साथ साथ रागी ले सकते हैं। ये वो सारे अनाज हैं जो आपको मार्केट में आजकल आसानी से मौजूद हैं, आसानी से उपलब्ध हैं, तो आप उनको ले सकते हैं। प्लस आप लोबिया के बीन्स ले सकते हैं, लोबिया के जो बीज आते हैं आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें आप रात भर भिगो कर सुबह खा सकते हैं। स्प्राउट्स ले सकते हैं, यानी हरी मूंग की दाल ले सकते हैं, ये वो लोग भी खा सकते हैं जिनका पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो काले चने या फिर चिकपी जैसी यानी कि छोले जैसी चीज़ों को नहीं पचा पा रहे, ये उनके लिए काफ़ी सेफ है, और आप इसको खाकर अपनी गट हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। प्लस दाल और फलियां, दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल तब तक आप ना खाएं जब तक आपको लगता है कि आप इसे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको गैस बनती है तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये पचाने में थोड़ी ज्यादा

0: लगती है, और अगर आप अभी तक किसी पाचन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो उड़द की दाल को थोड़ा अवॉइड करें, बाकी की दाल आप खा सकते हैं। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स का लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोबायोटिक जो कि आपको दही और छाछ में आसानी से मौजूद होता है, आपको मिल जाता है, तो भाई आप दही और छाछ को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। प्लस प्रोबायोटिक को एक्टिवेट करने के लिए प्रीबायोटिक की ज़रूरत होती है, और प्रीबायोटिक आपको गार्लिक, बनाना, एनी ऐसी चीज़ों में मिलता है। फर्मेंटेड फूड्स के अंदर आपको प्री एंड प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, तो अगर आप कांजी पीना चाहते हैं तो आप पी सकते हैं। प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक अगर युक्त आहार आप लेते हैं तो आपके गट हेल्थ की जो गुड बैक्टीरिया है वो उनको फीड करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करता है, और जब गुड बैक्टीरिया आपके इम्प्रूव होते हैं, जब उनकी संख्या बढ़ती है, वो मजबूत होते हैं, तो जो आपने जो भी खाया होता है वो अच्छे से पचता है, और ऑफकोर्स आपको गैस या फिर एसिडिटी की दिक्कत नहीं होती है। अब किन चीज़ों से बचना है गट हेल्थ इशू होने पर, तो आपको ज़्यादा तला भुना खाना खाने से बचना है, प्रोसेस्ड एंड पैकेज वाले फूड से बचना है, बहुत ज़्यादा चीनी से बचना है, क्योंकि चीनी आपके बैड बैक्टीरिया को फीड करती है, इसी वजह से आपको चीनी कम करनी है। प्रोसेस्ड यानी कि पैकेट में आए हुए खाने को अवॉइड करना है, जिसमें पोटैटो चिप्स आ गए, कुरकुरे आ गए, टेढ़े मेढ़े आ गए, इन सारी चीज़ों को छोड़ना है। पैकेट वाले जूस को, कोल्ड ड्रिंक को, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। प्लस बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, और ये सब करके आप अपने गट हेल्थ को सुधार सकते हैं। गट हेल्थ के लिए जीवन शैली में बदलाव करने की अगर बात करें तो पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, रोज़ाना हल्का व्यायाम करें, समय पर सोएं और जागें, तनाव कम करने के लिए उपाय अपनाएं जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं या फिर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा तनाव है तो आप वर्कआउट कीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। भोजन अच्छे से चबा कर खाएं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग जब भी खाना खाने बैठते हैं तो जल्दी जल्दी खाते हैं, और आपको जल्दी जल्दी नहीं खाना है, आपको पूरा वक्त लेकर, पूरा टाइम लेकर अच्छे से एक एक दाने को चबा कर खाना है। गट हेल्थ कैसे सुधारें अगर इसकी बात करें तो खान पान में फाइबर बढ़ाएं, प्रोसेस फूड कम करें, दही और फर्मेंटेड फूड शामिल करें, नियमित अपनी दिनचर्या को अपनाएं, लगातार अपनी आदत बनाए रखें और बदलते रहें, यानी कि अगर आपकी कोई ख़राब आदत है तो उसको बदल कर अच्छी आदतों को अपनाएं, और ऑफकोर्स आप अपनी गट हेल्थ को इसके ज़रिए इम्प्रूव कर सकते हैं। गट हेल्थ की अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है तो इसकी जाँच कब करवानी चाहिए, तो हम आपको बता दें, पाचन की जाँच, मल की जांच और पाचन तंत्र का मूल्यांकन किया जाता है जब भी आपकी गट हेल्थ की जांच की जाती है। अगर आपको बार बार दिक्कत हो रही है, बार बार गैस, कॉन्स्टिपेशन, इन्फ्लामेशन, ब्लोटिंग, ऐसी चीज़ों की समस्या बार बार आप देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि जाकर एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। हमारे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो IBS जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि एक गट हेल्थ इश्यू ही है, बट उसको वो अवॉइड कर देते हैं ये कहकर कि पुदीन हरा ले लेंगे काम हो जाएगा। ऐसे काम नहीं होता है। आप प्लीज़ जाकर ज़रूर चेक करवाइए कि आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम है। आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं, आप ग्लूटेन से सेंसिटिव हैं, या फिर आपको IBS जैसी कोई प्रॉब्लम है। इन चीज़ों का ख्याल रखें और ऑफकोर्स अपने गट हेल्थ को बरकरार रखें। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पर आते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो, रेडियो गैनसले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्हों की, जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, हमारे नवजात बच्चे। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा और परिवार घबरा जाते हैं। अब क्या किया जाए? इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह जी को। सेहतिया भैया, आपका हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आरजी आकांक्षा जी कि एक बार फिर आपने मुझे अपने इस मंच पर बुलाया, और धन्यवाद मेरे गांव के सभी भाइयों बहनों को। आपने आज बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
2: भैया बिल्कुल सही कहा आपने, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। कई लोग इसका नाम भी पहली बार सुनते हैं, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। NBSU यानी ये क्या है भैया, और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों?
3: देखिए, NBSU का पूरा नाम है न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिनका शरीर ठंडा हो जा रहा है, जिनका वजन बहुत कम है, जो दूध भी नहीं पी पा रहे हैं, जिन्हें तेज पीलिया हो, या फिर जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखे, जिन्हें दौरा या झटका आए, या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज दे देती है ताकि उनकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है।
2: यानी कि ये जो SNCU होता है, जैसे उसी की जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, क्यों?
3: हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है, और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है।
2: अच्छा।
3: या FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है, ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले।
2: अच्छा भैया, तो आप ये भी बता दीजिए कि NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं?
3: बहुत सारी,
2: जैसे?
3: और ये सब सेवाएं बच्चों को स्थिर करने के लिए जरूरी हैं। मैं एक के करके बताता हूँ।
2: जी।
3: नवजात की त्वरित जांच, जैसे ही बच्चा आता है तुरंत ये जांचें होती हैं कि बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, उसका शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, कहीं उसे दौरा या झटका तो नहीं आ रहा है, संक्रमण के संकेत दिख रहे हैं या नहीं, क्या उसे पीलिया तो नहीं है, ऑक्सीजन का स्तर भी हम इसमें जांचते हैं। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है।
2: और बाकी?
3: अरे बताता हूँ, दूसरा इमरजेंसी केयर, आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में गर्म रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, अगर उसको दौरे आ रहे हो तो उसे दवा देना, अगर उसका शुगर लो हो तो ग्लूकोज की आपूर्ति करना, शॉक हो तो सलाइन की व्यवस्था करना, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक से उसका उपचार करना। यानी आरजे आकांक्षा जी, NBSU का काम है पहले एक घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना और तीसरा फीडिंग सपोर्ट, दूध पिलाने में मदद। यानी कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से भी दूध पिलाया जा सकता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है और सबसे जरूरी हर स्थिति में माँ का दूध ही प्राथमिकता। और चौथा कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन इससे बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं।
2: अरे वाह क्या बात है भाई, और इसके अलावा भी कुछ है?
3: अरे और तो सुनते तो जाइए। पांचवा इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा। NBSU में साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों का स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण माता पिता की काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है कि बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या क्या होना है, घर पर क्या सावधानी रखनी है और कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत लौटना है। और सबसे आखिरी अगर जरूरत हो तो रेफरल, यदि बच्चा गंभीर हो NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है फिर SNCU को रेफर करता है। 108 और 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है।
2: तो भैया आपने इतना कुछ तो बता दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए।
3: देखिए आकांक्षा जी, नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है
2: जी।
3: देखो अगर बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे, ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धस रही है या बच्चा हाफ रहा है, एक मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत है। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे, तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा NBSU। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझो संक्रमण है। देर मत करो RJ दीदी
2: जी।
3: खास कर कम वजन वाले बच्चे 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं।
2: भैया बहुत ही गहन चिंतन वाली आपने जानकारी हम सभी को दे दी। अब ये भी बता दीजिए कि अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं?
3: सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखना, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड ना लगने दे, सिर हाथ पैर ढककर रखे। KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा साफ सफाई, नाभि पर कुछ ना रखना, ना तेल ना घी ना हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल ना ले जाएं और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर से दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU।
2: ओके, तो ये सब तो भैया ठीक है, आपने बहुत कुछ बता दिया और बहुत सही जानकारी दे दी। लेकिन अब ये बता दीजिए कि इन सभी चीजों में परिवार और गांव की क्या भूमिका है?
3: बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे गर्भवती महिला की ENC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव मिलकर सुनिश्चित करें। खतरों के संकेत जाने और 102 और 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव जागरूक होगा, नवजात ज्यादा सुरक्षित रहते हैं।
2: और भैया हमारे आशा और ANM दीदी तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्यों?
3: बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर घर जाती हैं, खतरों के संकेत पहचानती है, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती है और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती है। उनका योगदान नवजात की जान बचाता है।
2: तो आखिरी में आप क्या संदेश देंगे भैया?
3: बस इतना ही, NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी हल्के में मत लीजिए, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाओ, NBSU पहुंचो। आपका सही समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है।
2: बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। तो श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे, तब तक जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM के साथ। नमस्कार।
0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी नदी और आज हम बात कर रहे थे गट हेल्थ की, यानी कि आपके आंतों की जुड़े स्वास्थ्य के बारे में, जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और इसी की वजह से भारत में कई लोगों का पेट बहुत ज्यादा निकला हुआ दिखाई पड़ता है। हम आपको बता दें कि अगर आपका गट हेल्थ खराब रहता है तो इसकी वजह से आपका वेट गेन भी होता है, यानी कि आपका वजन भी बढ़ता है और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि गट हेल्थ इश्यू आपको परेशान कर रहा है, बार बार गैस बन रहा है, तो सबसे पहले अपनी डाइट को देखें कि आप अपनी डाइट में क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या आप पानी पी रहे हैं या ढंग से नहीं पी रहे हैं। अगर नहीं तो अपनी आदतों को बदलें। प्लस अगर ये सब करने के बाद भी आपको ये इश्यू कंटिन्यू रहता है तो प्लीज एक बार डॉक्टर को जाके जरूर चेक कराएं। डॉक्टर को कब दिखाएं? जब पेट दर्द या गैस लगातार बनी रहे, वजन बिना वजह से कम हो रहा हो या बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, मल में अगर आपके वॉशरूम जा रहे हैं और आपको ब्लड नजर आ रहा है या बार बार एसिडिटी और उल्टी की समस्या हो रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर अपना गट हेल्थ चेकअप जरूर से कराएं। फिलहाल के लिए घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है अब आपसे विदा लेने का। आई होप आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली, आपके अपने गोरा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी, और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
7: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूं और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहां बुलाया।
2: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
7: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
2: जी,
7: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
7: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
2: जी,
7: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
2: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
7: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
2: जी,
7: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं। पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
4: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं
7: जी आज दीदी।
4: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
7: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
4: जी।
7: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
4: जी,
7: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
4: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
7: जी दीदी
4: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
7: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है। वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
4: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।

0: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
0: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
0: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: पहले घंटे से शुरू होती है बच्चे के दिमाग और जीवन की मजबूत नींव। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज जिस विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जुड़ी है एक नन्ही सी जान से और उसकी जिंदगी से, यानी कि उसके जिंदगी के पहले घंटे से। जी हाँ, ये नवजात शिशु के बारे में है, उसके इस संसार में सांस लेने के पहले घंटे के बारे में। इसमें बहुत सारे पहल शामिल हैं। बच्चे का पहली बार इस दुनिया में सांस लेना, पहला घंटा, माँ का पहला दूध, माँ और पिता का पहला स्पर्श, परिवार के सदस्यों का स्पर्श, और फिर शुरुआती महीनों में उसका शारीरिक और मानसिक विकास। दोस्तों, ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस पोषण पखवाड़े का विषय है नवजात शिशु के पहले 6 महीने में उसकी देखभाल। और इसके लिए आज हमने दोनों, यानी के सेहतिया भैया और टीकन भाभी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। नमस्कार भैया जी, और भाभी आपका भी स्वागत है।
2: नमस्ते आरजी
1: जी, स्वागत है आपका भाभी और भैया। तो इस मृत्यु दर का कारण क्या है?
3: आप दोनों लोग हमें ना बुलाते तो भी हम आ जाते हैं, क्योंकि हम अभी दिल्ली से आए हैं एक सेमिनार अटेंड करके। वहाँ पूरी चर्चा इसी मुद्दे पर थी कि नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी कैसे लाई जाए। नवजात बच्चों के लिए सबसे जोखिम भरा समय जन्म के बाद का पहला महीना, खासकर पहला दिन और पहला सप्ताह होता है। हमें बताया गया है कि WHO के अनुसार अधिकतर नवजात मौतें जीवन के पहले सप्ताह में होती हैं, और इनके प्रमुख कारण हैं समय से पहले जन्म, जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत, संक्रमण और जन्मजात समस्याएं।
2: अक्सर लोग सोचते हैं कि बच्चा पैदा हो गया है तो अब सबसे बड़ा काम हो गया है, बच्चा और माँ दोनों ठीक हैं। लेकिन सच तो ये है कि बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा उसकी पूरी जिंदगी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर कम हुई है, लेकिन आज भी कई नवजात बच्चे ऐसी वजहों से अपनी जान गंवा देते हैं जिन्हें सही जानकारी और समय पर देखभाल से रोका जा सकता है।
1: तो सेहतिया भैया, आप ये बताइए कि ये गोल्डन आवर और या ये सुनहरा घंटा क्या है? क्या पहला घंटा ही गोल्डन आवर कहलाता है?
3: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे, बच्चे के जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत अहम होता है। इसी समय ये तय होता है कि बच्चा सुरक्षित रहेगा या उसे संक्रमण, ठंड लगने से सांस की दिक्कत या दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ जाएगा।
1: यानी ये सिर्फ एक घंटा नहीं बल्कि बच्चे के पूरे भविष्य की नींव है।
2: जी हाँ, इस पहले घंटे में कुछ बहुत जरूरी काम किए जाते हैं, जैसे बच्चे को तुरंत माँ के सीने से लगाना, उसे गर्म रखना, सांस चल रही है सही से या नहीं ये भी देखना, और सबसे जरूरी, जन्म के पहले घंटे के अंदर माँ का दूध पिलाना। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, बच्चा का पहला टीका माना जाता है। ये बच्चे के रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है और कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है।
3: और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर चीज़ें बहुत सरल हैं। सही जानकारी, परिवार का सहयोग, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद और समय पर स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग, ये सब मिलकर नवजात बच्चों की जान बचा सकते हैं।
1: तो साथियों, आज के इस खास कार्यक्रम में हम विस्तार से समझेंगे नवजात बच्चे की देखभाल कैसे करें, बच्चे को गर्म क्यों रखना जरूरी है, स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, कौन कौन से खतरे के संकेत होते हैं और परिवार क्या सावधानियां रख सकता है इन सभी से बचाव के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ।

0: स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम यानी कि सेहत सही और लाभकारी में। आज हमारी अपनी टीकन देवी और सेहतिया भैया दोनों हमें बताएंगे कि जन्म के पहले घंटे में क्या करना जरूरी है, माँ का पहला दूध क्यों इतना महत्वपूर्ण है और परिवार नवजात बच्चों को सबसे मजबूत शुरुआत कैसे दे सकता है। लेकिन सेहतिया भैया, अक्सर लोग पूछते हैं कि जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से टीके लगते हैं, क्या ये भी उतने ही जरूरी हैं?
1: बिल्कुल जरूरी है। जिस तरह माँ का पहला दूध बच्चे की पहली सुरक्षा है, उसी तरह जन्म के समय दिए जाने वाले टीके भी बच्चे को कई गंभीर बीमारियों से बचाने की दिशा में पहला कदम होते हैं।
2: भारत के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में जन्म के समय कुछ महत्वपूर्ण टीके मुफ्त में दिए जाते हैं। इनमें BCG, हेपेटाइटिस बी की जन्म खुराक और ओरल पोलियो वैक्सीन यानी OPV की शून्य खुराक शामिल है।
1: इन टीकों से बच्चे को TB, हेपेटाइटिस बी और पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिलनी शुरू होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जन्म के बाद बच्चे का टीकाकरण समय पर करवाया जाए और उसका टीकाकरण कार्ड सुरक्षित रखा जाए।
0: यानी बच्चे की मजबूत शुरुआत के लिए दो बातें साथ साथ जरूरी हैं, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान और समय पर जन्म खुराक वाले टीके।
1: मैं भी यहाँ एक बात साफ करना चाहूँगा, बच्चे के दिमाग का विकास बाद में शुरू नहीं होता है, बच्चा जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। वह माँ की आवाज़ पहचानता है, स्पर्श महसूस करता है, दूध पीता है, सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नवजात देखभाल केवल बीमारी से बचने की बात नहीं है, यह बच्चे के दिमाग, शरीर और भावनात्मक विकास की नींव है।
0: टीकन भाभी, बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चा छोटा है, उसे अभी क्या समझ आता होगा, लेकिन आप कह रही हैं कि जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे के विकास की शुरुआत होने लगती है।
2: बिल्कुल, बच्चा भले ही बोल ना सकता लेकिन वो महसूस तो कर सकता है ना। माँ की छाती से लगना, माँ की आवाज सुनना, पहला दूध पीना, ये सब उसके लिए सुरक्षा और जीवन की शुरुआत है। शुरुआती वर्षों की मजबूत नींव जन्म के पहले घंटे से ही पड़नी शुरू हो जाती है, इसलिए जन्म के बाद का पहला घंटा बहुत कीमती है और इसलिए इसे गोल्डन आवर कहा जाता है।
0: तो अब बताइए कि ये गोल्डन आवर इतना जरूरी क्यों है?
1: जन्म के बाद पहले घंटे में कोशिश होनी चाहिए कि बच्चा माँ की छाती से लगे और स्तनपान शुरू हो। माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, या बच्चे को शुरुआती जरूरी आहार देता है, संक्रमण से बचाने में मदद करता है और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। माँ के दूध में ऐसे जरूरी तत्व होते हैं जो बच्चे के दिमाग और शरीर दोनों के विकास के लिए जरूरी हैं।
2: और यहाँ एक बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है।
0: वो क्या भाभी?
2: वो ये कि कई जगह पहला पीला गाढ़ा दूध देखकर लोग कहते हैं कि ये खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पहला पीला दूध बच्चे के लिए अमृत जैसा है, इसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि ये बच्चे की पहली सुरक्षा कवच है।
0: तो साफ संदेश ये है आपका कि पहला पीला दूध फेंकना नहीं है, बच्चे को देना है।
2: जी बिल्कुल, और जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा तुरंत दूध नहीं पकड़ पा रहा है तो घबराना नहीं है, माँ भी सीख रही होती है और बच्चा भी सीख रहा होता है, तो ऐसे में नर्स, आशा दीदी, ANM या डॉक्टर से मदद लेनी चाहिए।
1: सही पकड़, सही स्थिति और धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार परिवार जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है कि माँ का दूध नहीं आ रहा है। शुरुआती दिनों में दूध थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन नवजात बच्चे का पेट भी छोटा होता है, इसलिए माँ को दोष देने की जगह सहयोग देना चाहिए।
0: बहुत से घरों में जन्म के बाद बच्चे को शहद, घुट्टी, पानी या कोई और चीज देने की परंपरा होती है। टीकन भाभी, क्या इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी?
2: हाँ, नवजात बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए जब तक डॉक्टर कोई अलग से सलाह न दे। शहद, घुट्टी, पानी या कोई भी बाहर की चीज बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। न पानी, न शहद, न घुट्टी। माँ का दूध बच्चे के लिए पूरा भोजन है।
0: और जब गर्मी है और गर्मी में बच्चे का गला सूखे या उसके उसको प्यास लगे तो गर्मी में भी पानी नहीं देना चाहिए।
1: पहले 6 महीने तक माँ का दूध ही पर्याप्त होता है, जब तक डॉक्टर किसी विशेष स्थिति में अलग सलाह न दें। माँ के दूध में पानी भी होता है और जरूरी तत्व भी, इसलिए अलग से पानी देने की जरूरत नहीं होती है।
0: लेकिन अगर बच्चा बार बार रोता है तो परिवार सोचता है कि बच्चा भूखा है।
2: हर रोना भूखा नहीं होता। बच्चा गीलापन, गर्मी, ठंडक, नींद या पेट की असहजता या गोद की जरूरत से भी रो सकता है। शुरुआती दिनों में बार बार दूध पीना भी सामान्य है। माँ को शांत माहौल, पानी, खाना, आराम और परिवार का भावनात्मक साथ चाहिए, ताने नहीं चाहिए।
0: यानी माँ की सेहत और बच्चे की सेहत अलग अलग नहीं है।
2: बिल्कुल। अगर माँ थकी है, भूखी है, डरी हुई है या लगातार दबाव में है तो स्तनपान भी प्रभावित हो सकता है। परिवार को माँ को संभालना चाहिए। सिर्फ सलाह देना काफी नहीं बल्कि काम में हाथ बटाना भी जरूरी है।
1: पिता की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। पिता माँ को पानी दे सकता है, खाना खिला सकता है, रात में सहयोग कर सकता है, रिश्तेदारों की अनावश्यक सलाह से माँ को बचा सकता है और बच्चे की देखभाल में शामिल हो सकता है। नवजात देखभाल केवल माँ का काम नहीं है।
0: अब बात करते हैं त्वचा से त्वचा संपर्क की। सेहतिया जी, ये क्या होता है और आखिर में इसकी जरूरत क्यों है?
1: त्वचा से त्वचा संपर्क का मतलब है कि बच्चे को माँ या देखभाल कर्ता की छाती से सीधे लगाया जाए सुरक्षित तरीके से। इसी को कांगारू केयर कहते हैं। इससे बच्चे को गर्माहट मिलती है, वह सुरक्षित महसूस करता है और स्तनपान में भी मदद मिलती है। या खासकर कम वजन वाले या समय से पहले जन्म बच्चों के लिए बहुत लाभकारी हो सकता है।
2: बच्चा माँ की धड़कन सुनता है, माँ की गर्माहट महसूस करता है और शांत होता है। ये केवल शरीर की गर्माहट नहीं है बल्कि ये भरोसे की गर्माहट है। बच्चे के दिमाग और भावनात्मक विकास के लिए भी ये बहुत अच्छा है।
0: भैया, क्या पिता भी ऐसा कर सकता है?
1: हाँ, सही तरीका सीखकर पिता भी त्वचा से त्वचा संपर्क दे सकते हैं। खासकर जब माँ को आराम चाहिए या वह थकी हुई हो। लेकिन तरीका स्वास्थ्य कर्मी से सीखना चाहिए। बच्चे की नाक और मुंह खुले रहें, बच्चा दबे नहीं और वह आराम से सांस ले रहा हो, ये ध्यान रखना जरूरी है।
2: पिता की भूमिका जन्म के पहले दिन से शुरू हो जाती है। सिर्फ खर्च उठाना पिता की भूमिका नहीं है। बच्चे को गोद में लेना, माँ का साथ देना, बच्चे को गर्म रखना और माँ को भावनात्मक सहारा देना, ये भी पिता की जिम्मेदारी है।
0: साथियों, अब हम कुछ आम गलतफहमियां दूर करते हैं। पहली गलतफहमी, पहला पीला दूध खराब होता है।
2: और सच्चाई कि पहला पीला दूध बहुत लाभकारी होता है, इसे बच्चे को जरूर देना चाहिए।
0: और अब दूसरी गलतफहमी, नवजात को शहद या घुट्टी देना जरूरी है।
1: पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, जब तक डॉक्टर अलग सलाह न दे।
0: तीसरी गलतफहमी, माँ का दूध कम है तो तुरंत ऊपर का दूध शुरू कर दें।
2: और सच्चाई ये है कि पहले सही स्तनपान की सहायता लें। माँ को दोष ना दें, स्वास्थ्य कर्मी से मदद लें।
0: अब आते हैं चौथी गलतफहमी पर, नवजात देखभाल सिर्फ माँ का काम है।
2: बिल्कुल नहीं। पिता, दादी, नानी, परिवार और स्वास्थ्य कर्मी, ये सब की भूमिका होती है।
0: अब एक जरूरी सवाल, किन संकेतों पर परिवार को तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए?
1: अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बहुत सुस्त है, तेज या कठिन सांस ले रहा है, शरीर बहुत ठंडा है या बहुत गर्म लग रहा है, त्वचा नीली पड़ रही है, दौरा जैसा लग रहा है, लगातार रो रहा है या बिल्कुल नहीं रो रहा है, तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं। नवजात बच्चे पर घरेलू प्रयोग नहीं करने चाहिए।
2: और अगर बच्चा समय से पहले जन्मा है या उसका वजन कम है तो और सतर्क रहना चाहिए। ऐसे बच्चों को नियमित जांच, स्तनपान, गर्माहट और स्वास्थ्य कर्मी की सलाह की जरूरत होती है।
0: ये पूरी बातचीत हमें क्या याद दिलाती है?
1: ये याद दिलाती है कि बच्चे का दिमाग, शरीर और भविष्य शुरुआती देखभाल से बनता है। अच्छी देखभाल केवल खाना नहीं है, इसमें स्तनपान, सुरक्षा, स्पर्श, साफ सफाई, टीकाकरण, माँ का स्वास्थ्य और परिवार का सहयोग सब शामिल है।
2: हर घर 5 संकल्प ले सकता है। गर्भवती महिला को अच्छा भोजन और आराम देंगे, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने में मदद करेंगे, पहला पीला दूध नहीं फेंकेंगे, पहले 6 महीने केवल और केवल माँ का दूध ही देंगे और माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे।
1: 6वां संकल्प भी जोड़ लीजिए, बच्चे के जन्म के बाद दिए जाने वाले सभी जन्म खुराक टीके समय पर लगवाएं और आगे का पूरा टीकाकरण कैलेंडर भी पूरा करवाएंगे।
2: सही कहा, माँ का दूध और समय पर टीकाकरण दोनों मिलकर बच्चे को जीवन की सुरक्षित शुरुआत देते हैं।
0: बहुत स्पष्ट बात है कि बच्चे के जीवन का पहला घंटा पूरे जीवन पर असर डाल सकता है। माँ का दूध, माँ पिता का स्पर्श, परिवार का सहयोग और समय पर स्वास्थ्य सेवा, यही बच्चे की मजबूत शुरुआत है।
1: और मैं एक बात फिर कहूँगा, अगर स्तनपान में दिक्कत हो तो शर्म या डर की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य कर्मी से सहायता ले, ये सीखने की प्रक्रिया है।
2: माँ को ताना नहीं, सहारा चाहिए। बच्चे को घुट्टी नहीं, माँ का दूध चाहिए। परिवार को अफवाह नहीं, बल्कि सही जानकारी चाहिए।
0: साथियों, आज की 5 जरूरी बात याद रखिए। पहली, जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराने की कोशिश करें। दूसरी, पहला पीला दूध बच्चे को दें और उसे फेंके नहीं। तीसरा, पहले 6 महीने केवल माँ का दूध दें। चौथा, त्वचा से त्वचा संपर्क बच्चे को गर्माहट और सुरक्षा देती है, जिसे कंगारू केयर विधि भी कहते हैं। पांचवा, पिता और परिवार की भूमिका बहुत जरूरी है।
2: और 6ठी बात, खतरे के संकेत दिखे तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाएं, इंतजार न करें।
0: इसी संदेश के साथ आज का सेहत सही लाभ कई यहीं समाप्त करते हैं। याद रखिए, बच्चे की अच्छी शुरुआत महंगे साधनों से नहीं, सही जानकारी और सही देखभाल से होती है। पर जाने से पहले हम सब मिल कर लेंगे सेहत की शपथ।
3: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
4: प्राथमिकता देंगे,
3: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
4: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
4: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
3: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: पहला दूध पहला प्यार,
2: पहला घंटा जीवन का आधार,
0: माँ का साथ पिता का हाथ,
2: बच्चे को मिले सुरक्षित शुरुआत,
0: सेहत सही लाभ कई।

0: निभाए।
1: गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: तो आइए आज ही सब लेते हैं एक संकल्प, भारत को टीबी मुक्त बनाने का। तभी तो टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश
1: जीतेगा। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: समझे
1: अज समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: की नॉलेजेबल बातें
1: तो सुनना ना भूले। 89.6 FM ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क डेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
3: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
2: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
3: अधिक व्यायाम न करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
2: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
3: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
2: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है
1: सुन सहेली
0: विथ आरजे समता एंड आरजे अंशिका। भाई क्या हाल है आप सभी का? और गर्मी तो बहुत है, आई नो। इधर लाइट शाइट भी बहुत ज़्यादा कट रही है, नाइट में भी बहुत ज़्यादा लाइट कटी थी। और मुझे तो पता है कि हम लोगों की नींद जो है ना इस समय ऐसी वाली नींद है कि जरा सा अगर कोई खटक होती है तो नींद खुल जाती है। ऐसा अंशिका आपके साथ भी हो रहा है?
2: हाँ मैम ऐसा तो हो रहा है।
0: और जब और कुछ भी खाओ तो ब्लोटिंग वगैरह होने लग रही है, पेट भारी होने लग रहा है, जैसे लग रहा है केवल पानी से अगर जीवित रह सकते हैं 2 महीने तो हम लोग पानी से केवल जीवित रह लें और कुछ खाएं पिए ना। जैसे ही कुछ खा रहे हैं जैसे लग रहा है कि पेट ऑलरेडी भरा भरा सा लग रहा है। तो ये गर्मी का है क्योंकि गर्मी जब हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ऑलरेडी उसका जो तापमान है वो बढ़ जाता है और तापमान बढ़ जाने से भूख खत्म हो जाती है। ये एक फैक्ट है।
2: यानी कि कहने का सेंस जो मैम भी आपको बता रही है वो बस इतना ही है कि कम खाएं और फिट रहने की कोशिश करें।
0: हाँ कम खाएं मतलब जैसे लग रहा है कि आपको जो भी नीड है फ्रूट्स को ले लें, ड्रिंक्स को ले लें, मतलब ड्रिंक्स में जैसे आपने दही ले लिया, मट्ठा ले लिया, आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। रोटी और चावल की अकॉर्डिंग मतलब जैसे लगे कि हाँ रोटी जितनी नीड है, अगर 3 की नीड है तो आप 1.5 खाइए और 2 की है तो आप 1 खाइए। मतलब ये है कि रोटियां कम होंगी तो आपका पेट भी हल्का रहेगा और गर्मी भी कम लगेगी, ऐसा मतलब माना जाता है। तो चलिए और एक बार विश कर देते हैं क्योंकि दोपहर बहुत है और दोपहर के टाइम पर हम लोग विश करते हैं दोनों एक ही साथ एक ही फ्रेम में।
2: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स। और आज है बहुत ही प्यारी प्यारी, काश हम कह सकते कि बदरिया, क्योंकि बदरिया तो नहीं है,
0: बदरिया
2: बदरिया
0: बंदरिया
2: बदरिया।
0: अच्छा बदरिया
2: यानी बदरी, वो वाली
0: बदरी की दुल्हनिया।
2: हाँ वो भी हो सकता
0: है। हमें लगा कि बंदरिया, बंदरिया तो बंदर की बंदरिया को कहते हैं ना।
2: हाँ हाँ तो वो नहीं कर सकते हैं हम, मतलब ऐसा आपको नहीं कह सकते हैं। धूप है, बहुत ही अच्छी धूप है, तो इस धूप से भी थोड़ा सा बचिए। और चलिए शुरू करते हैं, आज हम दोनों ही आ गए हैं आपसे बातें करने के लिए, आपको बताने के लिए। और आज का जो दिन है वो वेनसडे। वेनसडे यानी कि हमारी घर की महिलाओं का दिन। चाची हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, नानी हैं, एवरीथिंग जो भी मतलब भाभी हैं आपके,
0: मतलब
2: घर पे।
0: वैसे हम लोग सुन सहेली ओवरऑल महिलाओं का इशू होता है, लेकिन आज के दिन हम जैसे कहते हैं ना कि फोकस करते हैं महिलाओं पे।
2: हाँ,
0: ज्यादा फोकसली हम लोग करते हैं और पूरा शो जो है वो उन्हीं को हम डेडिकेट भी करते हैं।
2: बिल्कुल।
0: तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं जैसा कि हमारी औपचारिकता है, सबसे पहले एक पोयम से और उसके बाद में आज टाइम से गीता जी आ गई हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि वो इंतजार कर रही थी कि कब 1-4-3 हो और हम आ जाए, तो 1-4-3 पे ही एंट्री दी है।
2: ओके तो इससे पहले मैम पोएट्री सुनाए, मुझे कुछ कहना है।
0: हाँ बोलो।
2: तो चलिए शुरू करते हैं 2 लाइन के साथ कि हमारी माताओं में भरी होती है बहुत सारी ममता। और आज आपको पोएम सुनाएंगी आपकी अपनी आरजे समता।
0: ममता जब तुमने ममता बोला तो मुझे वो स्लोगन का लास्ट वर्ड मुझे समझ में आ गया था कि कुछ ये समता ही बोलने वाली है।
2: वो मैंने उसको वो किया ना, क्या कहते हैं उसे,
0: बहुत ही बढ़िया राइमिंग
2: बिठाई,
0: तो राइमिंग बहुत ही अच्छी थी। चलिए अब शुरू करते हैं आज की पोयम को कि आज है नारी शक्ति और उनके सुदृढ़ स्वरूप को समर्पित ये पोयम है। तो पोयम ये है कि वह कोई अबला नहीं है शक्ति का अवतार, वह कोई अबला नहीं है शक्ति का अवतार, उसके कदमों में झुका सारा यह संसार, ज्वाला सी धधकती है भीतर उसके आग, ज्वाला सी धधकती है भीतर उसके आग, मिटा सकती है पल में जीवन के सब दाग, त्याग की वह मूरत है ममता का भंडार, परिस्थिति के सम्मुख न कभी मानती है हार, मुसीबत के तूफानों से लड़ना उसको आता, मुसीबत के तूफानों से लड़ना उसको आता, हर मुश्किल डगर पर वह नया इतिहास बनाती, धीरज की वह सीमा है साहस का है वह नाम, हर जिम्मेदारी को करती वह संपूर्ण काम, उसकी आंखों में छिपी असीम ऊर्जा की धार, नारी के इस स्वरूप को नमन करे यह संसार, नारी के इस रूप को नमन करे यह संसार।
2: तो बहुत ही प्यारी सी पोएट्री है मैम, और आज मैम बहुत ही प्यारी सी ढूंढ कर लाई हैं तो मैं यही कहूँगी कि इसमें जो भी लाइंस थी और जो भी आपने बताया वो सारे के सारे गुण कह लें या एक महिला के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वैसा एक एग्जाम्पल हमारे पास भी है।
0: कौन
2: है? कोई
0: कौन है भैया? आपकी मम्मा?
2: नहीं, है कोई जो मेरे पास बैठी हैं।
0: अच्छा, यानी कि मैं?
2: Yes.
0: Oh my God.
2: मुझे लगा था आप पहले ही गेस कर लोगे।
0: नहीं, मैं आजकल मेरा दिमाग जो है ना वो कहीं पर सफाई के दौरान लगा हुआ है तो इसीलिए थोड़ा सा अभी कम सोचती हूँ। तो अच्छा जी, मैं हूँ वो। तो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच।
2: इसलिए क्योंकि जैसे अभी आपने बोला ना पहली लाइन में कि वो सब कुछ कर सकती है और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में चीज़ों को, देखिए हम हमेशा कहते हैं कि मुश्किलों में जो उभर जाए तो बहुत ताकतवर हो जाता है इंसान।
0: हाँ, ये तो है।
2: और जो अपनी मुश्किलों में नहीं उभरते हैं या उनमें हार जाते हैं या कुछ भी नेगेटिविटी को जो हरा नहीं पाते हैं वो बहुत कमजोर तो हम नहीं कहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं वो वीक पड़ जाते हैं। और मैम ऐसी नहीं है, मतलब बहुत अच्छे दिल से कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो भी उनकी लाइफ में था उन्होंने उसको ओवरकम किया है और उभर करके बहुत ही अच्छा एक न्यू वर्जन जैसा है, क्योंकि ये न्यू वर्जन इसलिए क्योंकि आजकल मैम कूल रहती है तो ये कूल वाली
0: गुस्सा उस्सा नहीं करती हूँ।
2: हाँ, गुस्सा उस्सा नहीं करती,
0: मतलब मैं गुस्सा नहीं करती हूँ तो मेरा ये मेरा न्यू वर्जन है और मैंने इम्प्रूव किया है।
2: ऑफ कोर्स,
0: ठीक है, तुम अब कल मिलना हमसे।
2: नहीं, ओल्ड वाले भी नहीं मिलना चाहती हूँ मैं, वो मत करिएगा प्लीज। तो मैं फिर मेरे शब्द वापस लेती हूँ।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है। तो जब कॉम्प्लीमेंट कोई देता है तो ना, जैसे एक बच्चे को जब हम पीछे से पुश करते हैं तो वो और अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो यही एक इम्प्रूव के साथ में जब हम मोटिवेशन देते हैं किसी को तो वो और अच्छा आगे बनने के लिए प्रेरित हो जाता है।
2: बिल्कुल, तो ये न्यू वर्जन बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैम ने अभी कल ही कहा था कि वो कूल रहने की कोशिश कर रही है।
0: हाँ, बिल्कुल।
2: और वो कूल रहें ऐसा हम भी चाहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए भी अच्छा है
0: और हम सभी के लिए अच्छा
2: सभी के लिए अच्छा है, लेकिन मजाक से हट करके इसलिए अच्छा है क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि कल उन्होंने कहा कि मैं वेस्ट नहीं सोचूंगी कुछ भी और अब मैं ज्यादा नहीं सोचती।
0: हाँ।
2: तो आज ये बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि जब आप चीजों को डेप्थ में जाकर सोचते नहीं है ना तो जितनी भी उल्टी सीधी बातें दिमाग में आनी होती है वो आती ही नहीं है क्योंकि तब हम बस सिचुएशन को एंजॉय करते हैं और उसे वहीं छोड़ करके वहां से उठ जाते हैं, फिर हम किसी नई सिचुएशन में होते हैं और उसमें अपने आप को ढालते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और आई होप कि इससे बेटर बेटर बेटर ही होता जाए।
0: बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ सुनते हैं और उसके बाद सुनेंगे बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि अभी मैंने बंद कर दिया था थोड़ा सा चलाने के बाद में क्योंकि मुझे लगा था कि सभी लिसनर्स आ गए हैं तो सुन रहे हैं हमें रेडियो गार्डन से, फ्रिक्वेंसी से, और कुछ अभी चैट बॉक्स में भी आए हैं तो मैंने सोचा पहले हम लोग रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ एंड अभी जो वार्तालाप हो रही थी उसको पूरा करेंगे और उसके बाद आपको गाना सुनाएंगे।
2: बिल्कुल, तो आज का हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये है लिसनर्स की दिमाग की न सुने, दिल की सुने। जो दिमाग की न सुनकर दिल की सुनते हैं वो ज़्यादातर अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते हैं और साथ ही साथ में उनका जो व्यक्तित्व होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा निखर कर आता है, क्योंकि जितनी भी नेगेटिव बातें होती हैं या किसी के लिए हमारे मन में जो एक नेगेटिव धारणा बन जाती है या हम बातों को गलत तरीके से लेते हैं वो ज़्यादातर हमारे दिमाग की उपज होती है। इसलिए जब भी किसी इंसान के लिए सोच रहे हैं तो दिमाग से नहीं दिल से सोचें, क्योंकि अगर आप दिल से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके दिमाग की मिथ्या रही है
0: मिथ्या रही हो। लेकिन यही सेम पॉइंट हम सामने वाले को भी तो बता सकते हैं ना कि अगर दिल का इस्तेमाल कर लेते तो रिश्तों में दूरियां नहीं आती। दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा किया इसलिए दूरियां आ गई।
2: बिल्कुल सही मैम, तो दिल का इस्तेमाल करें हमेशा, स्पेशली अपने रिश्तों में। देखिए जब हम कोई व्यापार या बिजनेस करने जाते हैं मैम तो हम कहते हैं कि आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको अपने दिल को उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करना है,
0: वहाँ दिमाग का इस्तेमाल।
2: हाँ, वहाँ दिमाग का इस्तेमाल है क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारा कितना उसमें प्रॉफिट है। अब इमोशनल होकर हम ऐसी डील तो नहीं कर लेंगे ना जिसमें हमारा लॉस हो, तो वहाँ आपका दिमाग यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में, या कोई भी आपका करीबी है या कोई भी रिलेशनशिप है तो उसमें आप हमेशा अपने दिल को यूज़ करें, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पूरी दुनिया से हर चीज़ से बढ़कर आपका दिल होता है। अगर किसी चीज़ के लिए आपको आपका दिल बार बार कह रहा है ना, किसी के लिए कोई भी इंट्यूशन दे रहा है तो इसका मतलब है वो सही होगा, क्योंकि वो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। तो दिल की सुने और दिल की कहे भी, मतलब ऐसा नहीं है, दिल की सुनने के साथ दिल की कहनी भी चाहिए।

0: कई बार दिल की बातें कहने से भी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर आउट हो जाती है।
1: तो शायद हमारे कुछ अपने मेरी बात को सुन रहे होंगे, तो अगर उन तक कान तक बातें जा रही हैं तो प्लीज दिल की सुने, दिमाग को पीछे रखें, क्योंकि अगर दिल की सुनेंगे कुछ लोग तो आगे बहुत ही खूबसूरत सा जीवन है उसको आप बिता सकते हैं।
0: एक बात और कहूंगी, जो दिल की सुनते नहीं उसे दिल की सुनाई जाती है,
1: सुनाई जाती है,
0: या फिर हम वो एक एटीट्यूड होता है ना स्पेशली फीमेल्स में तो होता ही है,
1: हाँ।
0: हम तो सुना के रहेंगे तुम बचो,
1: Hmm.
0: तो वो वाला एक जरूर होना चाहिए स्पेशली आपके रिश्तों में,
1: Hmm.
0: क्योंकि कई बार होता है कि हम सामने की चीज हमें दिखाई नहीं देती है और किसी को दिखानी पड़ती है, और जब दिख जाती है तो वो एक अच्छी वाली फीलिंग भी उसके साथ जुड़ जाती है। तो आई होप कि हमारी फीमेल सुन रही होंगी और समझ भी रही।
1: बिल्कुल, तो समझिए सुनिए और आज के शो को भी हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज टॉपिक्स बहुत सारे अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि होने वाला है स्पेशली विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम। तो विमेन सेंट्रिक में हम लेकर के आएंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक्स, लेकिन उसके लिए हमें अभी लेना पड़ेगा एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक।
0: तो आइए लिसनर्स, चलते हैं इस प्यारे से गाने के साथ, और बस यूं गए यू आए। स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ताइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। वापस हाजिर हो गई आपकी सहेलियां और चलिए चलते हैं सीधे हमारे आज सबसे पहले वाले टॉपिक की तरफ और उस पर हम बात करेंगे। आपको बहुत कुछ हमें बताना है, वो हम दोनों ही आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मैम से।
6: जी हाँ, तो शुरुआत करते हैं और शुरुआत करने से पहले बता दूं कि कमल नयन जी भी आ गए हैं एंड लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया।
5: शुभ दोपहरिया आपको भी।
6: लेकिन उसको टॉपिक शुरू करने से पहले मेरे मन में एक बात आई है, वो मैं बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि हम लोगों की छुट्टी नहीं होगी क्या? मतलब हम लोग एक साथ घूमने नहीं जा सकते हैं क्या?
5: अब ये तो कंफर्मेशन चाहिए इसके लिए, तो मतलब
6: है ना। अभी आयुषी बोल रही थी, आरजी आयुषी भी बोल रही थी कि हम सभी आज एक साथ कहीं भी घूमने चलते हैं।
5: लेट्स होप। हाँ। मतलब ऐसा हम होप कर सकते
6: हो ही नहीं सकता है। होप तो ये बिल्कुल अधूरी वाली होप है, मतलब ये होप
5: कभी
6: नहीं
5: ऐसा
6: है।
5: हो
6: ऐसा नहीं हो सकता है। तो मेरे मन में अभी अभी एक विचार आया कि अगर लिसनर्स चाहें तो हो सकता है। पूछो कैसे?
5: कैसे
6: वो मैनेज कर लें कि आज हम लोग केवल गाना ही गाना सुनेंगे, आप सभी आज इसको छुट्टी दीजिए, वो लोग घूम के आते हैं
5: पब्लिक डिमांड
6: पे। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मुझे पता है, बट मेरे मन में एक बात आई थी, तो इस बात पे आपका क्या विचार है जरूर से बताइए लिसनर्स कि क्या हम सभी आरजेस को एक साथ जैसे पब्लिक डिमांड पर क्या हम लोग को वीकेंड मिल सकता है एक दिन का बस, मतलब एक दिन ऐसा हो जिसमें हम सभी आरजेस घूमने जाएं, भले हम लोग अयोध्या तक चले जाएं, राम जी के दर्शन करके आ जाएं, बट सभी आरजेस जाएं। तो इसमें पब्लिक डिमांड क्या होगी और आप सभी लोग बताएं। तो तब तक हम अपना टॉपिक बोलते हैं, तब तक मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की ग्रेटिंग क्या होगी हम सभी आरजेस के प्रति, ठीक है?
5: क्योंकि उसी पे तय होगा कि हमें मिल सकती है लीव या नहीं मिल सकती। तो पब्लिक क्या चाहती है ये पब्लिक जरूर बताए।
6: पब्लिक जो चाहती है वही होगा क्योंकि जनता जनार्दन।
5: बिल्कुल मैम।
6: तो कामकाजी महिलाओं में एक वर्किंग जो मॉम होती हैं उनको गिल्ट मुझे मंजूर है। सबसे पहला जो जवाब आएगा वो गीता जी का आता है और वो तो तुरंत रेडी हो जाएंगे क्योंकि गीता जी भी चलेंगी ना साथ में। ठीक है, गीता जी हम सब चलेंगे साथ में। तो टॉपिक इज दैट की कामकाजी महिलाओं में एक अपराध बोध हो जाता है, वो एक मानसिक स्थिति हो जाती है जहाँ एक महिला को लगातार ये महसूस होता है कि वो अपनी जो पर्सनल या प्रोफेशनल जो भी हैं जिम्मेदारियों के साथ कभी भी कुछ ऐसा न्याय नहीं कर पाती हैं। तो अंदर ही अंदर वो घुटती रहती हैं, अंदर ही अंदर उन्हें गिल्ट फील होने लगता है कि क्या ऐसा तो नहीं होगा, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैंने किसी के साथ कुछ ऐसा अपराध तो नहीं कर दिया है, मेरी वजह से कोई काम के जगह से कोई
5: हर्ट तो नहीं हुआ है,
6: कोई छोड़ के तो नहीं गया है, या मेरी वजह से किसी को डांट तो नहीं पड़ी है। कुछ बहुत सारी ऐसे प्रोफेशनल में आती रहती हैं प्रॉब्लम्स, तो उस प्रॉब्लम्स को वो अपना एक गिल्ट मान लेती हैं अंदर ही अंदर। तो वो क्या होता है, कैसे होता है, इसका निवारण हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है, सबसे पहले जो हेडलाइन है वो अंशिका बताएंगे
5: जी। तो जैसा कि मैम ने अभी आपको टॉपिक ब्रीफ किया, तो चलिए पहली हेडलाइन एक जो आपको हम बताते हैं वो ये है कि नॉर्मली कामकाजी यानी कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके में सबसे पहली प्रॉब्लम आती है और वो होती है शॉर्ट टाइम की। शॉर्ट टाइम का मतलब है कि अगर जैसे घर में
6: अगर वो मैरिड हैं तो
5: अगर वो मैरिड हैं तो उनको आती है कि भाई हम देखिए एक कहते हैं ना, एक साथ दो नाव में आप नहीं पैर रख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से एक महिला एक टाइम पर दो जगह नहीं हो सकती है। तो कहीं ना कहीं समय की कमी हो जाती है कि अगर हम प्रॉपर टाइम ऑफिस में दे रहे हैं तो हम प्रॉपर टाइम घर पे नहीं दे पा रहे हैं। मतलब दोनों जगह एक समान समय सीमा जो होती है वो हम नहीं दे पाते, और ये नेचुरल बात भी है क्योंकि हम कहते हैं ना कि अरे आज काम बहुत ज़्यादा था, आज देर हो गई। तो इट्स नॉर्मल कि अगर आपको ऑफिस में ज़्यादा काम है तो आपको घर पे आने में देर होगी, लेकिन उस चीज़ को उनका अपना मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। उनको ये लगता है कि हमें घर में भी सारी चीज़ों के लिए मौजूद होना चाहिए और ऑफिस में भी हमारे सारे काम होने चाहिए।
6: हाँ बिल्कुल,
5: ये एक चीज़ हो जाती है।
6: और सेकंड पॉइंट है जो कि बहुत मेजर पॉइंट है और ऐसा सभी के साथ होता है कि सोशल और फैमिली की जो आपके प्रति एक भावनाएँ होती हैं, जो अपेक्षाएँ होती हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कैसे पूछो?
5: कैसे?
6: सामाजिक तौर पे अगर हम इस बात को उठाते हैं तो जो महिलाएं जॉब में होती हैं उनको उनको अगर वो समाज में सोशल है, मानो किसी क्षेत्र में सोशल है, ज्यादा काम समाज का भी काम देख रही हैं, हर एक काम में एक्टिव वो लोग क्या कहते रह रही हैं, तो वहाँ के लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं।
5: हाँ।
6: कि यार ये फला जो है ना लेडी बहुत एक्टिव है, इसी को हम काम ये दे देते हैं और हम लोग का काम हो जाएगा।
5: जी
6: सेम थिंग कि फैमिली वाला भी ऐसा ही है कि फैमिली में भी कि भाई अरे वो जिम्मेदार औरत है, उसको दे दो, पूरा घर संभाल लेंगी, हम लोग चलते हैं और हम लोग तो अपना देर से आएंगे, वो संभाल लेगी। तो ये फिजिकली उसके बाद में क्या होता है कि वो फिजिकली रूप से तो वो अपने आप को बहुत समय रहते रहते वीक महसूस करने लगती है।
5: जी मैम,
6: क्योंकि सारी जिम्मेदारियों का बोझ जब एक साथ पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं आखिर एक लेडी थकेगी, मानसिक रूप से थकेगी, फिजिकली थकेगी, और कहीं ना कहीं फिर उसे ये लगेगा कि यार अब हमसे नहीं हो पाएगा।
5: बिल्कुल, कहीं ना कहीं जैसा मैम ने अभी आपको बताया तो ये सारी ही चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं इन सब के बाद भी उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर काम बेहतर करे।
6: हाँ।
5: तो ये कहीं ना कहीं,
6: और अगर नहीं करती हैं तो उन्हें फिर एक दो वर्ड से नवाजा जाता है, वो वर्ड्स होते हैं स्वार्थी, या फिर एक और प्यारा सा वर्ड दे दिया था वो लापरवाह।
5: जी,
6: गैस पे दूध क्या कहते रख दिया, अगर वो दो मिनट अपनी फ्रेंड से, अपनी मम्मी से या अपनी बहनों से बात करने बैठ गई, अगर दूध भूल गई तो इतने में हस्बैंड आ गए, बच्चे आ गए, अरे बहुत लापरवाह हो तुम, देखो दूध बह गया, अरे देखो ये हो गया वो हो गया। तो ऐसे ही वो या तो क्या कहते हैं कि स्वार्थी कहलाने के लिए लायक हो जाती है, और या तो लापरवाह।
5: बिल्कुल, एक लाइन थी, किस मूवी की थी ये तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसमें एक लाइन वो जो हीरोइन की माँ होती है वो कहती है कि जब तक वो रो रही थी, दुखी थी, तब तक सब खुश थे, और अगर उसने जरा सा हंस दिया तो सभी दुखी हो गए।
6: हाँ।
5: तो कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर घर की महिला है वो सबके काम कर रही है, मतलब ऑफिस भी जा रही है, वहाँ भी काम कर रही है, वहाँ भी सब खुश है, घर पे काम कर रही है, सब खुश, मतलब अगर अच्छे से सब मैनेज कर रही है सब खुश है, लेकिन एक दिन अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया या कुछ भी हो गया तो वो सारी गलतियां उसकी निकाल दी जाती है, अरे तुम तो कुछ वो करने लायक ही नहीं हो, और जिम्मेदारियां ली हैं तो निभानी चाहिए। और ये भी कहा जाता है मैम कि अरे तुम क्या अनोखे में हो क्या जो दोनों काम करते हो, बहुत लोग हैं जो दोनों मैनेज करती हैं
6: ऐसा भी,
5: बट तुमसे बेटर कर लेती है, मतलब इस तरह की चीजें कही जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉजिक बहुत आसानी से घर के मेल दे देते हैं या उनकी सासू माँ कहती है,
6: जैसे सासू माँ तो कहती है, मैं अंशिका की बात को काट रही हूँ, लेकिन हस्बैंड जब आते हैं ना शॉप से, और या जैसे मैं भी अपने घर में देखती हूँ, तो पहला प्रश्न ये होता है, इवन कभी कभी मेरे मुंह से निकल जाता है मम्मी के लिए, तो वो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, मुझे फिर रियलाइज होता भी है, और जब मैं छुट्टी के दिन होती हूँ तो मुझे इस बात को रियलाइज बिल्कुल मैं करती हूँ कि मैं पूरा दिन घर में जब होती हूँ तो मेरा एक मिनट भी हाथ खाली नहीं होता है। बट मैं भी कभी जैसे झल्ला के या कभी लगता है ना कि मुंह से निकल जाता है कि आप सारा दिन घर पे करती क्या हो, या हस्बैंड भी आते हैं, भाई लोग आते हैं, कहते हैं कि तुम लोग घर पे करती क्या हो, बाहर निकल के देखो कितनी गर्मी है, हम लोग कैसे बैठे हैं, हम लोग कैसे जॉब कर रहे हैं, कैसे कहीं जा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जब ये वर्ड सुनने को मिल जाता है ना कि घर पे बैठ के करती क्या हो, तो एक दिन की ड्यूटी चेंज मैं सोचती हूँ कि हम लोग कर ले,
5: बिल्कुल,
6: एक दिन आप शॉप संभालो और हम लोग अपना क्या कहते हैं काम जो है घर का वो आपको कर। पर कहीं ना कहीं दोनों ही पूरक है अंशिका। कल ऐसा कुछ मंजर था, मैं शॉप पे गई थी अपनी, तो मैंने देखा कि देखो कितनी गर्मी और कितना मतलब हल्ला और कितना सब कुछ रहता है और कितनी गर्मी रहती है, और सोचो कि सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक जो जेंट्स बाहर रह रहे हैं, और हम लोग को तो मतलब क्या मतलब शॉप की गर्मी तो उतनी गर्मी तो घर में नहीं होती है ना, हमारा मन हुआ एसी चला दिया, हमारा मन हुआ कूलर चला दिया, हमारा मन हुआ शांति रूम में चले गए बैठ गए थोड़ी देर, बट ऐसा जेंट्स लोग नहीं कर पाते, ऐसा जो मेल है वो नहीं कर पाते हैं। बट फिर भी आज जो कि हमारा एक नारी शक्ति पर टॉपिक चल रहा है, तो हमें उन्हीं की मतलब
5: उन्हीं को
6: प्राथमिकता ज्यादा लेनी है।
5: हाँ।
6: बट कहा जाता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सही है।
5: बिल्कुल।
6: तो अगर मेल ना बोले फीमेल को, तो फीमेल का भी मुंह नहीं खुलेगा, फीमेल भी मेल की बातों को समझे।
5: बिल्कुल। एक दूसरे को समझ करके अगर लाइफ स्पेंड करनी है तो घर बहुत अच्छे से चल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि दो पहिए होते हैं, मतलब मोस्टली चार पहिए होते हैं, और पहियों के बिना अगर एक का बैलेंस बिगड़ा तो एटमोस्ट की वो पूरी गाड़ी बिगड़ी। तो कहीं ना कहीं दोनों बना करके चले। और बस यही कहने का सेंस था, बताने का मतलब इतना था कि किसी को इस तरह के वर्ड्स कभी नहीं कहने चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई दिन भर काम करके आया इंसान थका हुआ है, आप उससे आके जैसे ही वो घर में आ रहा है वैसे ही आप उससे कभी कोई किसी भी बात पर बहस करने लगो, कोई भी थका आया है, मतलब मेल भी है घर में फीमेल भी है, कि अरे यार ये ऐसे नहीं था, तुम बच्चे को ऐसे छोड़ के चली गई थी और मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई आज दिन भर। वो इंसान जो ऑलरेडी थका है, पता नहीं कितनी टेंशन है उसके दिमाग में, ऑफिस से आ रहा है तो वहाँ क्या सिचुएशन थी जिससे वो डील करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो सबसे पहले यही है कि आराम से काम होकर बातें करिए। और फीमेल्स के लिए जो उनके गिल्ट होती है वो इसलिए भी होती है क्योंकि उन्हें हरदम ये रहता है कि मुझे सब कुछ करना है, एक खुद को परफेक्ट दिखाना। और मुझे लगता है कि मैम, खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश हमें हमेशा नहीं करनी चाहिए।
6: हाँ।
5: क्योंकि हम हमेशा हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में हर किसी को खुश नहीं रख सकते, तो वही वाला एक है कि हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते, तो वो कोशिश भी ना करें। और अपनी चीजें जहाँ पर सेक्रीफाइस होने लगे, आपको दुख पहुँचने लगे, आपके ऊपर इतना काम हो गया, दिन भर करते करते बिल्कुल परेशान हो जाओ, तो वहाँ जरूरी है कि आप कहिए कि मुझे हेल्प की नीड है, स्पेशली फीमेल्स के लिए।
6: बिल्कुल। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने ब्रीफ किया, वाकई में ये इंटरनल जो एक गिल्ट होता है, उस गिल्ट को बाहर से, आप उस गिल्ट से बाहर निकलें। निकलने के कुछ ऑप्शंस भी हैं, वो हम आपको बताएंगे एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
5: तो चलिए चलते हैं प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। और बिल्कुल पास वो आने लगे जरा जरा, तो जरा जरा तो इस समय मौसम है जो है, क्योंकि गर्मी
7: में इस समय कोई पास नहीं आए तो ही ठीक है,
6: तो ही ठीक है।
7: दूर वो जाने लगे जरा,
6: अरे वाह,
7: ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है भाई, गर्मी बहुत है।
6: और अभी अभी कुछ ऐसा हुआ भी, मतलब जब हम ब्रेक में थे, कि मुझे कुछ अंदाजा लग गया।
7: क्या?
6: कि कभी कभी वो क्या कहते हैं, वॉइस भी बहुत पावरफुल होती है। ऐसा मुझे अंदाजा अभी अभी लगा, और मतलब मुझे सोच सोच के हंसी आ रही थी, और मैं तब भी हंस रही थी मतलब जब ब्रेक था, और अभी भी मुझे फील हो रहा है कि मतलब अब क्या कहते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं।
7: दिस कॉल इज
6: यस। तो आगे बढ़ते हैं लिसनर्स, और हमारी मस्ती तो चलती रहेगी, मतलब हमें तो जो मस्ती करनी थी वो हमने माइक कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वाला पॉइंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने आपको बताया कि गिल्ट होता क्यों है, अब आते हैं कि सही कैसे करना है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हो तो जाती है, लेकिन जब ठीक करने की बात आती है तो ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए ठीक करने की शुरुआत मैम से करते हैं। वैसे मतलब भी मैम ठीक अच्छे से करती हैं। जी मैम,
7: ठीक तो मैं अच्छे से करती ही हूँ।
6: वो उसका भी वो क्या कहते हैं, लाइव एग्जांपल भी अभी मैंने देखा अपनी आँखों से।
7: जी जी, चलिए, तो इस अपराध को ठीक किया जा सकता है, 100% ठीक किया जा सकता है, और ये मानसिक दबाव है केवल, और कुछ भी नहीं है। और इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो अपने माइंड को कूल रखना है। कहते हैं ना कि मैं अभी अंशिका जब कहीं गई थी, जब कैंप में, तो वहाँ पर एक योग से रिलेटेड एक भैया आए थे, तो हम लोगों ने लास्ट डे समापन के दिन मैंने उनको बोला कि आप भी 2-4 शब्द बच्चों को बताएं। तो इस टॉपिक को हम अभी रखते हैं किनारे, क्योंकि मुझे भी बहुत इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बात याद आ
6: गई।
7: तो उन्होंने, भैया ने इतनी ब्यूटीफुल सी बात बोली, वो बात ये थी कि बच्चों को समझा रहे थे कि एक समय में एक चीज करनी चाहिए, और उसमें पूरी जिसे कहते हैं ना कि लीन होके करना चाहिए, मतलब तत्परता से करना चाहिए, संलग्न होकर के करना चाहिए,
6: बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाओ अच्छे से।
7: जैसे अगर आप खेल रहे हैं, तो आपका जो खेल होगा भरपूर आप उसमें अपना एफर्ट कर दो, कि आप उसको, आपको अगर चोट भी लग रही है तो वो दर किनारे करो, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको खेलना है तो बस खेलना ही खेलना है। पढ़ाई करनी है तो आपको पढ़ाई करनी है, फिर आपको दिन रात सुबह शाम भूख प्यास कुछ नहीं देखना है, केवल पढ़ाई करनी है। आपको कहीं किसी से मिलने जाना है, किसी से बात करनी है, किसी को समझाना है, किसी का रिलेशन ठीक करना है, फिर आप उसमें 100% उसमें बिल्कुल लग जाओ। लगने का मतलब है कि आप फिर उस रिश्ते को ठीक करके ही दम लो। इन द सेंस कि जिस समय हम कोई काम कर रहे हैं उसमें हमारा माइंड उसी में सेट होना चाहिए,
6: पूरी तन्मयता से करना,
7: पूरी तन्मयता से और बिल्कुल संलग्न होकर के करना, काम करना चाहिए। कि मतलब अब ये नहीं कि हम यहाँ ऑनर बैठे हैं, सामने बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और सामने हमारे स्क्रीन है, लैपटॉप खुला हुआ है, बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा माइंड कॉन्सेप्ट कहीं और लगा हुआ है। घर में लगा हुआ है कि अरे आज खाना क्या बना था, अरे मुझे आज शाम को कहीं जाना है, मैं क्या कपड़े पहन के जाऊंगी, आज यहाँ स्टूडियो में ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब ये नहीं, हम जो फोकस काम कर रहे हैं उस पे ही बिल्कुल फोकसली होना चाहिए।
6: बिल्कुल।
7: तो ठीक उसी टॉपिक पे हम आते हैं फिर से कि उन भैया ने बहुत ही बढ़िया बात बोली थी कि कभी भी अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो मानसिक तौर से हमें वो उस पे पूरा फोकस्ड होना चाहिए।
6: बिल्कुल मैम,
7: ये बच्चों को सिखाने के तौर पे उनका ये एक
6: पॉइंट था, मतलब उन्होंने अपनी ओर से बताया।
7: ठीक है, अब आते हैं कि मतलब महिलाओं में जो ये अपराध की स्थिति जो मानी गई है वो उसमें है कि अगर आप अवास्तविक उम्मीदें छोड़ दें, सबसे पहला ये तो मैं अपने लिए भी अपनाना चाहूंगी कि अवास्तविक उम्मीदें, आप समझ रहे हैं कौन सी,
6: कैसी?
7: एक होती है वास्तविक उम्मीदें जो सच्ची वाली उम्मीदें हैं, जो असच्चाई वाली उम्मीदें हैं कि हमने उम्मीद लगा के रखी हुई है, अगले तक पहुंची नहीं रही है वो उम्मीद की, वो उन्होंने उम्मीद लगा के क्या रखी हुई है, तो पूरी तो अगले जन्म होगी फिर।
6: हाँ।
7: समझ में आ रहा है?
6: समझ
7: तो वो वास्तविकता वाली जो उम्मीदें हैं उसको आप छोड़ दें, या तो आप सामने वाले को समझाएं कि मेरी उम्मीद भाई आपसे ये है उसको पूरा करो
6: जी,
7: और उनको बता भी नहीं रहे और इधर पीठ पीछे आप घुट भी रहे कि मैंने उनसे वो उम्मीद रखी थी वो पूरी नहीं हुई। तो ये होती है अवास्तविकता वाली उम्मीदें, उसको आपको छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ देना है।
6: ओके,
7: दूसरा पॉइंट।
6: ओके, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि देखिए, हम किसी के साथ जब टाइम स्पेंड करते हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि मैंने दिन में उनके साथ 2 घंटे बिताए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आपको किसी के साथ बैठना बहुत पसंद है, उसके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है और जब आप बातें करके उठते हैं तो माइंड बिल्कुल रिफ्रेश लगता है, तो उसके साथ आपको 20 मिनट भी बहुत लगेगा। 20 मिनट में आप दुनिया भर की जितनी भी आपके मन में जो भी भरा होगा वो सारी बातें आप कर लेंगे। कहने का सेंस ये है कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हमें हमारी माइंड को रिफ्रेश करना है तो हमें बिल्कुल शांत हो जाओ, फ़ोन नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए और बिल्कुल उसी में लग जाओ, उनसे बात करो। तो कभी ये पॉइंट नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हो सकता है सामने वाले के पास आपके लिए 2 घंटे ना हो, उसके पास 20 ही मिनट हो। तो आप हमेशा ये सोचिए कि आपको समय नहीं बल्कि ये देखना है कि उसके उस इंसान का साथ आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें। जैसे कि ऐसी जो गिल्टी, जिनके अंदर गिल्ट वाली भावनाएं होती हैं, जो ऐसी महिलाएं होती हैं वो अपने बच्चों के साथ दिन में 20 मिनट 15 मिनट भी बिताएं, वो बहुत बड़ी बात होगी। उतने में वो बच्चा आपको समझेगा, आपके करीब आएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पूरा दिन अपने बच्चे के साथ बिताएंगे तो ही एक अच्छी माँ होती है, नहीं, वो अगर 10-20 मिनट भी अपने बच्चे के साथ बिता रही है, कुछ अच्छा सिखा रही है, उसका ख्याल रख रही है, इट मीन्स कि वो एक अच्छी मदर है। ये नहीं सोचना है कि अरे मैं अपने बच्चे के लिए ये भी करूं वो भी करूं और मैं सारी चीजें नहीं कर पाती हूं तो मैं अच्छी नहीं हूं, ये कभी मत सोचिए। खुद को बुरा कभी सोचना ही नहीं चाहिए।
7: बिल्कुल,
6: क्योंकि ये नेगेटिविटी होती है, अगर हम खुद को बुरा सोचेंगे तो कोई और हमें अच्छा कैसे सोचेगा।
7: 100%
6: इसलिए अच्छा सोचना चाहिए,
7: अच्छा सोचना चाहिए,
6: अच्छा सोचना चाहिए खुद के।
7: चलिए, तो ये था हमारा उसका निवारण, और आई थिंक सो कि अगर आप उस निवारण पे ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा आप अपने आप को फ्री महसूस कर पाएंगे। ठीक,
6: बिल्कुल।
7: चलिए, तो अब हम आते हैं सीधे चैट बॉक्स में, और चैट बॉक्स में हमारे साथ आ गई है दीपांशी एंड नीना एंड दीपांशी।
6: हेलो दीपांशी जी, नीना जी, कैसे हैं आप दोनों?
7: बढ़िया हूँ। अच्छा, उनसे पूछा गया
6: उनसे पूछ रही
7: हमें थी। लगा आप हमसे पूछ रही हैं।
6: तो आप भाई, तो बढ़िया है, ये तो
7: भाई दीपांशी एंड नीना जी ने हम दोनों को विश नहीं किया है, और गीता जी लिख रही है मतलब एक बार में एक ही काम में मन लगा कर करें।
6: हाँ, बिल्कुल
7: 100% गीता जी को हमारी बात समझ में आती है, बस और किसी को नहीं,
6: वो अच्छे से समझ जाती
7: अच्छे से समझ जाती है ना। तो चलिए भाई, हो गया है 2:27 यानी 28 मिनट, तो वक्त हो चला है आपके गानों का और हमारे ब्रेक का। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं गाना, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के बस हम यूं गए, यू आए, स्टे ट्यून्ड।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: बिल्कुल, जो खाए पछताए और जो ना खाए वो ललचाए, तो खाकर ही पछताना भला भाई, ये तो बिल्कुल सही लाइन।
5: तो अब हम लोग ने भी सोच लिया कि खाके ही पछताएंगे, वो खाके ज्यादा सही है।
4: अगर दोनों साइड में, मतलब ऐसा होता कि एक साइड में नहीं पछताना है मैम, एक साइड में पछताना है, तो हम सोचते कि अच्छा चलो ना खाओ, चलो पछता। अब जब खाके भी पछताना है और फिर ना खाके भी पछताना है, तो अच्छा आप खाके पछताइए। तो अब आप तय करें कि आपको खाके पछताना है या नहीं
5: पछता के खाना है,
4: या फिर
5: खाना है।
4: हाँ, या फिर खा लिया है और पछता रहे हैं, आपकी मतलब नहीं,
5: जो आपकी इच्छा,
4: जो आपका, आपकी चॉइस। हाँ। वो ओपन है, बहुत सारे ऑप्शंस। तो अब आते हैं हमारे टिप ऑफ द डे से हम कहेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है, और टॉपिक की तरह नहीं, कुछ टिप्स हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और अगर आप इग्नोर करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन प्रॉब्लम्स से मैं भी
5: ग्रसित थी
4: और अभी भी हूँ। मतलब ऐसा कहना नहीं चाहिए कि तबीयत खराब है, लेकिन हाँ कहूँगी कि थोड़ा है अभी असर, तो वो हो जाता है अगर आप अपनी केयर नहीं करते हैं। और मेन रीज़न जो कहीं ना कहीं वो होता है, वो एक रीज़न होता है फीमेल्स में, मेल्स में, सभी में फूड पॉइजनिंग हो जाती है। तो आज उसके लिए कुछ टिप्स हम आपको बताना चाहते हैं। तो चलिए पहला मैं आपको बताती हूँ, फिर मैम आपको बताएंगी। तो पहला पॉइंट ये है कि खुला हुआ स्ट्रीट फूड, यानी कि बाहर का खाना, जैसे चाउमीन, बर्गर, ये सब बहुत पसंद होता है, तो वो नहीं खाना चाहिए इस मौसम में, इतनी भीषण गर्मी में, बिल्कुल पूरा अवॉइड करिए। पानी बताशे बहुत पसंद होते हैं, मतलब फीमेल्स में तो बहुत ही पसंद होते हैं, तो वो अवॉइड करना है आपको, नहीं खाना है। और अगर आप किचन में बना हुआ यानी घर में बना हुआ खाना भी खा रहे हैं, तो 2 घंटे के अंदर आप फ्रेश खाना ही खाएं, बासी रखा हुआ या फिर खुला हुआ। जैसे खुले हुए का सेंस है कि कई बार हम फ्रूट्स काट के ऐसे ही रख देते हैं और काफ़ी टाइम तक वो खुले हुए रहते हैं और हम उनको खा लेते हैं, तो उन पर बैक्टीरिया की परत जम जाती है, वो आपको नहीं पता था, आपको लगता है फ्रेश है,
5: हाँ,
4: लेकिन वो जम जाती है। इसलिए अगर आप फ्रूट्स काट के भी रख रहे हैं, तो ढक कर के अच्छे से रखिए, ताकि उन पर वो बैक्टीरियाज ना जमे। अपना ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जी मैम।
5: अच्छा, तो ये बात है
4: जी।
5: तो क्या करना है फिर?
4: फिर ये करना है कि आप आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट जो कहता है, वो ये कहता है कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से कि आपका पेट जो होता है वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को भी फेस नहीं कर पाता है। बिल्कुल सही है। इम्यूनिटी कमज़ोर कब होती है? हमारी बॉडी की इम्यूनिटी आपको पता है जितना हमारे खान पान पर डिपेंड करती है। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना मैम, अरे ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, उससे बॉडी की इम्यूनिटी बनती है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आजकल क्या देखा जाता है,
5: गर्मी में ड्राई फ्रूट्स खाओगे तो पेट ठीक होने के बजाय पेट और आपका गया।
4: हाँ, तो वही मैं आगे कहने वाली थी। हाँ। कि कि आजकल क्या देखा जाता है, मतलब आजकल यूथ स्पेशली मैं कहूंगी कि बिल्कुल पीक पे जाते हैं, अगर उनसे ये कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स खाना तो वो बादाम काजू किशमिश ही खाएंगे, वो रोटी सब्जी दाल चावल जो घर का खाना होता है वो त्याग देंगे, नहीं हम ड्राई फ्रूट्स खाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स ये सब दूध ये सब खाने के ऊपर आपको सपोर्ट करता है। आप सोचिए कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम सिर्फ दूध पे रह लेंगे, सिर्फ ड्राई फ्रूट पे रह लेंगे, सिर्फ फ्रूट पे रह लेंगे, तो वो दो दिन आप खाएंगे, तीसरे दिन आप बिस्तर से उठ नहीं पाएंगे। क्योंकि एनर्जी जो देता है वो आपको पूरा खाना ही देता है, दाल चावल रोटी सब्जी। और सलाद ज्यादा खाएं गर्मी में, जैसे अगर आप दो रोटी खाते हैं या तीन रोटी खाते हैं तो सलाद उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा खाइए, डेढ़ रोटी खाइए, रोटी कम खाइए, चावल कम खाइए, बाकी दाल सब्जी,
5: हाँ, सब्जी
4: सलाद,
5: हाँ,
4: ये सब आप ज्यादा।
5: पता है मेरी एक फ्रेंड थी अंशिका, हम लोगों ने फर्स्ट जॉब साथ में करी थी, अब वो पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता है, तो बहुत टाइम भी हो गया, मतलब 15-16 साल हो गया उससे कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो वो मैं बताऊं कि उसका जो रूटीन था ना, आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी सी बिल्कुल समझ लो कि वो पतली थी और मतलब वो स्वस्थ थी।
4: ओके।
5: और पता है उसका उसका खाने खाना जो उसका क्या होता था रूटीन,
4: क्या
5: वो ये कहती थी कि मैं बिल्कुल पतली सी चपाती, बिल्कुल पतली चपाती और छोटी चपाती केवल मैं रात में लेती हूँ, केवल एक टाइम, और सुबह केवल वो सैलेड, और दिन में खाली वो सब्जी, मतलब जैसे 250 ग्राम सब्जी, मतलब उसके यहाँ जैसे अगर आधा किलो सब्जी बन रही है तो आधी सब्जी को प्लेट पूरा भर करके वो केवल सब्जी खाती थी। तो वो जब हम लोग उससे कहते थे कि तुम चावल और रोटी नहीं खाती हो, तो वो ये कहती थी कि मेन जो मील है वो तो मैं ले रही हूँ ना,
4: हाँ,
5: तो मील मेन जो क्या कहते हैं प्रोटीन किस में होता है, सब्जियों में होता है दालों में होता है, चावल और रोटियों में थोड़ी होता है, और वही चीज हम लोग दबा के खाते हैं।
4: हाँ।
5: सब्जी थोड़ी सी कहते हैं अरे थोड़ी देर ना काम चल जाएगा, लेकिन ये उसका उल्टा करती थी, प्लेट भर करके सब्जी, प्लेट भर करके सलाद, और पूरा बड़ा वाला कटोरा कहती थी कि हम दाल क्या कहते हैं दिन में दाल और सब्जी ही खाते थे, उससे पेट भरते थे।
4: हाँ।
5: तो भाई उसको मेन प्रोटीन तो मिल रहा है,
4: प्रोटीन तो बॉडी को
5: मिल रहा है, और बाकी बची रोटी वो कहती थी रात में केवल एक चपाती और फिर उसके साथ में भरी हुई कटोरे में सब्जी एंड फ्रूट्स। और इतनी बढ़िया उसकी बॉडी कि मैं क्या बताऊं, कि मतलब लगता है कि हाँ, लेकिन हम महिलाओं में क्या होता है कि अगर बच गई तो खा लिया, नहीं बची तो कोई
4: अब कौन जाए अपने लिए बनाने,
5: कौन बनाने जाए।
4: तो ये एक लापरवाह वाला, मतलब ये मैं मुंह खोल मतलब ओपन कहना चाहूंगी, हाँ। कि ये एक लापरवाह वाला बहुत गंदा रूटीन होता है,
5: हाँ।
4: कि जब आप अपने मन में लेते हो अपने लिए कौन बनाए, तो आप ये सोचिए कि अगर आप एक दिन गिर गए दो दिन तो क्या होगा आपके घर का, क्योंकि वो तो पूरा आप ही को डील करना है।
5: Exactly.
4: और बहुत मतलब ये कहते हैं ना, जब खुद कोई चीज फील की होती है तो अच्छे से बता पाते हैं।
5: हाँ,
4: तो मैंने 2-3 दिन ये खुद पे भुगता है कि वाकई में जब डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज्यादा पेन तो आपको होता ही होता है, लेकिन सेहत भी गिर जाती है, और फिर वो वीकनेस आपको हफ्ता दो हफ्ता।
5: और इससे बेटर है कि खास करके हम उन महिलाओं को ये हिदायत देना चाहेंगे, इंक्लूडेड मी एंड अंशिका, कि बचा हुआ बासी खाना ना खुद खाएं और ना ही घर में किसी को दें। इस समय गर्मी, आपने देखा होगा कि अगर आटा गूंधा हुआ बच जाता है तो हम लोग फ्रिज में रख देते हैं।
4: हाँ।
5: मैंने आजमाया है कि आटा अगर वो रात में बच गया, हमने रख दिया, सुबह एक तो काली परत आ जाती है, दूसरा उसके अंदर खमीर उठ जा रहा है।
4: हाँ।
5: पर क्या होता है कि लोग क्या कहते हैं, अरे ऊपर का काला हटा दे, चलो कोई बात नहीं, चलो हम लोग खा लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा मतलब जानलेवा ये हरकत हो सकती है। सब्जी क्या कहते हैं बच गई, सुबह गर्म करके खा लिया, तो ये भी बिल्कुल नहीं, और अगर नहीं बचा तो कोई बात नहीं। तो ये काम आप ना करें, क्योंकि इसके करने से आपको, और या फिर बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, थकावट के कारण,
4: हाँ,
5: सोचती हैं आपसे चलो यार कौन ही बनाए
4: जो रखा है वही खा लो,
5: करती हूं कि शाम को जैसे थक जाऊंगी ना तो लगता है यार कौन अपने लिए खाना बनाए, चलो छोड़ो मम्मा कुछ भी है खा लेते हैं, बट ये कभी नहीं करना चाहिए। तो ये संक्रमण को जल्दी आपकी बॉडी में ले लेता है। अच्छा, इसके जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, लक्षण है, वो क्या होता है, सबसे पहले पेट में मरोड़ हुआ था तुम्हें,
4: हाँ,
5: ठीक है, एंड वोमिटिंग हुई थी,
4: हाँ,
5: लूज मोशंस हुए थे, एंड कमजोरी एंड हल्का बुखार,
4: हाँ,
5: तो ये टोटल डायरिया के लक्षण है, ठीक है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, कि इसका ठीक कैसे करें। तो अब उसके बाद जब आप धीरे धीरे आपको रिलीफ होने लगे, तो सबसे पहला काम करें कि आप अपने शरीर में पानी की कमी ना होने दें, जिसमें ORS ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसका घोल, नींबू पानी का घोल और नारियल पानी अगर अवेलेबल हो तो आप उसका पानी ले सकते हैं।
4: जरूर लीजिए। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो अगर आप ऐसे सिचुएशन से हैं, ऐसे सिचुएशन में, तो खाने में आपको क्या लेना चाहिए, खिचड़ी खानी चाहिए। खिचड़ी भी हल्की, बिल्कुल पतली मूंग के दाल की। बहुत लोग अरहर की दाल की खिचड़ी खाते हैं, अरहर की दाल की खिचड़ी कभी मत खाइए, क्योंकि अरहर की दाल कभी अब बहुत अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती
5: नहीं। और या तो उसमें मसूर मिला करके खाएं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी।
4: हाँ,
5: मसूर की दाल ज्यादा, अरहर की थोड़ी,
4: बिल्कुल। और दूसरा ये कि दही चावल खाइए, मतलब दही चावल तो बहुत ही बेस्ट होता है,
5: बेस्ट एंड बेस्ट है।
4: अगर पेट की आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डायरिया है, ऐसी सिचुएशन है, आप दही चावल खाइए। आप देखिए, दो बार लेंगे अपनी डाइट में, दो दिन यूं ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने यूज किया, मैंने दही खाई जब मुझे बहुत लूज मोशन हो रहा था, तो मैंने दही खाई और जैसे मैंने दो बार से एक दिन खाई, फिर दूसरे दिन, तो वो वाकई ठीक हो गया और बहुत रिलीफ भी, ठंडा, जैसे कहते हैं
5: पेट को ठंडक मिलती है ना उससे। हाँ।
4: तो दही जरूर खाइए आप, और कोशिश कीजिए कि अगर सब्जी आप ले रहे हैं तो उसमें लौकी खाइए, उबली हुई लौकी, खाली जीरा ऐसे, मतलब
5: मसाले कम,
4: हाँ, हल्के तेल में, जीरे में वो करके, आपको थोड़ी, जैसे कहते हैं ना कि अरे बीमार है कुछ मन नहीं कर रहा, तो वो आपको अच्छा भी लगेगा और आपकी हेल्थ को नुकसान भी नहीं होगा।
5: हाँ।
4: और पेट ठंडा भी रहेगा,
5: बिल्कुल। तो भाई ये आप जरूर से करें, ताकि इसको करने के बाद में आपको अपनी हेल्थ के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्पेशली महिलाएं। तो चलिए, वक्त तो चला एक गाने का, और गाने के बाद आएंगे, छोटे से ट्रिप एंड टेक्निक्स देंगे आज की स्पेशल, आज क्योंकि विमेन सेंट्रिक है, एंड आप सभी लोग बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, जिसमें नेहा लिख रही हैं कि मैं तो अधिकतर खाना ही नहीं बनाती हूँ अपने लिए आलस में, तो बिल्कुल ये गलत बात है, ऐसा बिल्कुल ना करें। प्रबल जी लिख रहे हैं कि मैं अभी अभी छाछ पी के आया हूँ दही का, वेरी नाइस, आज तो छाछ मैंने भी पी है, क्योंकि कहा जाता है कि गर्मियों में जब आप घर से निकलें, खास करके 12-1 बजे के बीच में, एक ग्लास छाछ जरूर पीना चाहिए, क्योंकि वो आपकी पूरी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। एंड पानी की जो प्यास जो होती है ना, बहुत लोग कहते हैं कि हमें कम प्यास लग रही है, प्यास लग रही है, तो वो आपको कम लगती है।
4: ओके,
5: ठीक है, तो चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले टॉपिक पे।

0: एग्जैक्टली छाया क्या नशा है, आइए इस गाने को भी सुनेंगे, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक पे आएंगे क्योंकि हमारा टाइम हो गया है और थोड़े से टॉपिक अभी बाकी हैं टिप एंड टेक्निक्स के।
1: तो आज आपकी जो लास्ट वाली टिप एंड टेक्निक्स है आपकी अपनी आर्य समता और आर्य अंशिका की तरफ से, वो यही है कि आप दिन भर में जो भी छोटा सा काम पूरा करें उसके लिए हमेशा खुद को शाबाशी देना बहुत जरूरी है।
0: ओके।
1: और वो आपका होता है विन ऑफ द डे।
0: विन ऑफ द डे यानी आपकी जीत का डे।
1: बिल्कुल। और वो कुछ भी हो सकता है, मतलब समय से उठना, एक चैप्टर पढ़ लेना अगर
0: या
1: आप
0: फिर कोई अच्छा सा अपने मनपसंद काम कर लेना।
1: हाँ बिल्कुल। या फिर अगर आप ऑफिस में हैं तो आपने कोई ऑफिस का वर्क कंप्लीट कर लिया हो और वो आपको खुद को हमेशा ये दिखाना है कि मैंने ये कंप्लीट किया है, और मतलब एक खुश को खुशी फील करवानी और खुश रहने की कोशिश करनी है।
0: खुश रहने की कोशिश करनी है ना।
1: बिल्कुल।
0: मेरी तरह।
1: हाँ बिल्कुल आपकी तरह।
0: खुश रहने की कोशिश करनी है भले खुश ना रहो।
1: नहीं अच्छा। खुश रहने की कोशिश करनी है मतलब खुश रहना है।
0: खुश रहना भी है।
1: कोशिश करने वालों की कभी हार
0: नहीं, हार नहीं होती है ना। तो बिल्कुल। और सबलू जी लिख रहे हैं नींबू शरबत हम अपनी अपने हाथों से बनाकर ज्यादा पीते हैं गर्मी में। जी हाथों से ही बनाया जाता है सबलू जी। एंड आपके कहने का मतलब है कि हम मार्केट का नहीं लेते हैं ना सबलू जी। गुड गुड आइडिया, क्योंकि ना मुंबई में तो मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। आई थिंक मुझे भी पता है बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, तो आप ज़रूर से उस शरबत को पिएं और आप अपने घर में भी सभी को पिलाएं। तो चलिए अब हम लोगों को दें इजाज़त, हम कल मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम पर। टेक केयर,
1: बाय दोस्तों,
0: बाय। और हम मिलेंगे अब आपसे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। बाय, टेक केयर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: हाँ जी श्रोताओं, तो वक्त हो चला है आपके फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलेज इन गोंडा का। मैं हूँ आपके होस्ट चंदू साजा कांक्षा, जो लेके आ गई है आपका पसंदीदा कार्यक्रम। आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गाना 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। वक्त की अगर बात करूँ तो 3:02। अब आज सोच रहे होंगे कि भाई ब्रेक के पहले हम हाजिर कैसे हो गए, भाई आज इतना रहमो करम कैसे कर दिया आपकी आज आकांक्षा ने आप सभी पर। तो बताते हैं भाई, आज कुछ बेहद खास आपके बीच लेके आए हैं, आपके काम का, आपके लिए और सिर्फ आपका। हाँ जी, तो आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे ही जिले के राम सिंह जी। जी हाँ, जो कि है प्रिंसिपल गवर्नमेंट आईटीआई गोंडा, यानी के डीसी, नहीं डीसी नहीं, इनका एक और उपनाम भी है भाई। तो डीसी स्किल डेवलपमेंट गोंडा के नाम से भी ये कहीं ना कहीं इनको एक पदवी मिली हुई है। तो ये हमारे बीच में है, तो चलिए सबसे पहले इनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। वेलकम सर।
3: नमस्कार मैडम
2: जी। और सर, आज आप हमारे बीच में उपस्थित हैं और कहीं ना कहीं इतने बड़े मतलब इंस्टीट्यूट को आप संभालते हैं, गवर्नमेंट, जिसको आईटीआई बोलते हैं। और आईटीआई का मतलब नाम ही अगर जहन में आता है तो कहीं ना कहीं रोजगार हमारे जहन में आ जाता है। तो आज आप हमारे बीच में मौजूद हैं, सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करूँगी, बहुत बहुत स्वागत है। और इसके बाद एक लौता सवाल कि आज क्या खास तोहफा हमारे गोंडा वासियों के लिए आप लेके आए हैं?
3: मैडम, मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग आईटीआई गोंडा में 12 जून 2026 को एक बृहद मंडली रोजगार मेले का आयोजन कर रहे हैं, जो सुबह 10 बजे से चालू होगा।
2: तो ये 12 जून 2026 को आईटीआई में प्यारे गोंडावासियों, आपके लिए, आपके बीच में एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसका पूरी तरह से दारमदार हमारे राम सर जी के हाथ में है। तो सर, आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि ये मेला खाली गोंडावासियों के लिए है या गोंडा से बाहर के लोगों के लिए भी?
3: नहीं, ये सभी के लिए है। ये करा सिर्फ हम गोंडा में रहे हैं, लेकिन इसमें प्रदेश का कहीं किसी भी जनपद का बच्चा शामिल हो सकता है। और मेन फोकस हमारा गोंडा के लिए है, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती के लिए है। लेकिन इसमें कोई ऐसा ही बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती के ही करेंगे प्रतिभाग, इसमें प्रदेश के या देश के किसी भी कोने से लोग प्रतिभाग कर सकते हैं।
2: मतलब अगर आप कहीं भी, मतलब हमारे देश के कहीं से भी आप ताल्लुकात रखते हैं और गोंडा में रहकर अपना रोजगार कर रहे हैं, काफी दिनों से कार्यरत हैं किसी न किसी क्षेत्र में, और आप चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल पूरी तरह से बन के और फिर अपने काम को करें, तो आप इस मेले में जरूर शिरकत करिएगा। और बात ही नहीं कि आपको करना ही करना है, कई दफा होता है कि हम बस तजुर्बे के लिए जाते हैं, तो एक दफा तजुर्बा ही लेने चले जाइएगा। दिन होगा 12 जून 2026 और 10 बजे से ये रोजगार मेला जो कि वृहद स्तर पे कराया जा रहा है, और वैसे भी सरकारी चीज है तो भाई लाभ उठा लीजिएगा। जनता नहीं उठाएगी, जनार्दन नहीं उठाएगी उसका लाभ, तो फिर कौन उठाएगा? सर, अब इतनी सारी जानकारी आपने दे ही दी है, इतना प्यारा सा तोहफा हमारे गोंडावासियों के लिए और साथ ही समय में देशवासी और जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं फिलहाल, चाहे वो कार में अपने ट्रेवल कर रहे हैं या अपने घर से रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, रेडियो गार्डन के माध्यम से सुन रहे हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से सुन रहे हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं और खुद सुन रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके किसी रिश्तेदार या किसी के काम का है तो उन तक जरूर पहुंचाइएगा। हो सकता है आपका कोई कुली हो, आपका कोई साथ में कर्मचारी हो जो आप मतलब जो इंटरेस्ट रखता हो किसी रोजगार से, तो उस तक भी ये बात जरूर पहुंचाइएगा। सर एक सवाल था आपसे कि इसमें आने के लिए योग्यता क्या लगे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं हम योग्य हैं या नहीं है।
3: देखिए मैडम, इसमें योग्यता के लिए कोई भी जो युवक है या युवती है जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और वो कक्षा 5 या उससे ज़्यादा पास है, 5 पास है, हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, आईटीआई किए हुए है, डिप्लोमा किए हुए है, ग्रेजुएशन किया हुआ है या कौशल विकास का कोई भी कोर्स किया हुआ है, वो प्रतिभाग कर सकता है।
2: उम्र
3: 18 साल से अधिक होनी चाहिए।
2: उम्र 18 से अधिक, और कोई सीमा भी है कि इतनी होनी चाहिए?
3: नहीं, इसमें 40 साल तक की हम लोग लेते हैं।
2: ओके, तो 18 से 40 के बीच वालों के लिए ये रोजगार मेला खास करके रखा गया है। वैसे अगर आप उससे बड़े भी हैं तो आप अपने नाती पोते हो या फिर किसी भी रिश्तेदार के लिए भी घूम सकते हैं। एक दफा घूमने में क्या ही जाता है कि नहीं है। और इसके अलावा शामिल होने का और भी कोई क्राइटेरिया है, मतलब कुछ और भी है जिसके इस योग्यता में जो शामिल किया जा सकता है?
3: नहीं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, इसी के आधार पे जो है आप शामिल हो सकते हैं, इसके लिए और कोई नहीं है।
2: ओके, और कौन कौन सी कंपनीज रहेंगी और कैसी और कितनी वैकेंसीज होंगी?
3: मैडम, इस मेले में 80 से अधिक कंपनीज प्रतिभाग कर रही हैं और तकरीबन 10,000 की वैकेंसी वो लेकर के आ रही हैं, तो वैकेंसीज बहुत हैं, वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है। और इसमें जो प्रमुख रूप से जो कंपनीज आ रही हैं, L&T, मदरसन सुम्मी इंटरनेशनल, MRF टायर्स, न्यू हॉलैंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, रिलायंस जियो, बजाज ऑटो, होंडा, बोल्टास, श्रीराम पिस्टन, किर्लोस्कर, टाटा मोटर्स, ये कंपनीज हमारे यहाँ प्रतिभाग कर रही हैं मुख्य रूप से, बाकी 80 से अधिक कंपनीज आ रही हैं इसमें।
2: ओह माय गॉड भाई, ये तो मैं यही कहूंगी भाई, स्वर्णिम अवसर है, लूट लो, और अगर नहीं लूट पा रहे हो तो हमसे बता दो, हम पहुंचा दें आपको धक्का देख करके। सॉरी थोड़ा ज्यादा हो गया मुझे मालूम है, लेकिन आपकी आकांक्षा होती है तो आकांक्षाएं भर भर के आती हैं और बस ऐसे ही बोलती है। तो फिलहाल मैं यही कहूंगी कि 80 से ज्यादा कंपनियां हैं और कितना बताया सर आपने वैकेंसी? 10,000
3: से अधिक।
2: माय गॉड, 10,000, मतलब अगर सोचिए एक एक अगर एक एक इंसान लेगा तो 10,000 लोग सिरज उठेंगे, तो सिरजिए ना, काहे को इतना देर लगा रहे हैं, आपके गोंडा में ही है, आपके अपने क्षेत्र में है। और बस यही इतना कहूंगी कि लाभ उठाइए इस वृहद रोजगार मेले का। एक दफा फिर से आपको बता देते हैं, 12 जून 2026 को ये मेला आयोजित किया जा रहा है आपके ITI के प्रांगण में, जो कि गोंडा का ITI है, जो पड़ता है, कहाँ पड़ता है सर?
3: सिविल लाइन चौराहे।
2: जी हाँ, सिविल लाइन चौराहे के पास में, और आपको बहुत अच्छे से पता है ITI कहाँ पड़ता है, तो वहाँ पहुँचे। और 10 बजे से मेले का आयोजन किया जा रहा है। 10 से सर कितने बजे तक चलेगा?
3: 10 से हम लोग 3 बजे तक करेंगे।
2: 10 से 3, तो मुझे लगता है सुबह उठिए, तैयार हुई, और ऐसा मान लीजिए कि रोजगार नहीं एक मेला घूमने जा रहे हैं, और घूमने के मंतव्य से ही जाइए, हो सकता है कि आपका काम बन जाए। कहीं आप धूल धक्के खा रहे हों और रोजगार के लिए और आपको ना प्राप्त हो पा रहा हो, लेकिन यहाँ पे आपको उम्मीद है कि पूरी तरह से आपका रोजगार प्राप्त होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ में अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, ऐसा नहीं कहूंगी, जी हाँ, शो अभी आपका स्टार्ट हुआ है, तो ले चलते हैं आपको एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, नहीं आपके सॉन्ग की ओर और आपकी पसंदीदा डिमांड्स की ओर। लेकिन उससे पहले आप मेरी पसंद का ही प्यारा सा सॉन्ग सुनिए, और हाँ, दोस्ती कर लीजिए, रोजगार मेले की बात है और अगर इस अवसर का लाभ नहीं उठाया तो फिर क्या उठाया। चलिए चलते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
3: धन्यवाद मैडम
2: जी। चलते हैं, इस गाने को सुनते हैं, फिर इस गाने के बाद आते हैं आज की पहली डिमांड लेकर के। फिलहाल ये हमारी ओर का, हमारी पसंद का ये गाना आप सभी के लिए, और कहूंगी रोजगार से दोस्ती कर ही लीजिएगा, आखिरी दफा फिर से बोल रही हूँ।

0: हाँ जी दोस्तों, तो हमसे दोस्ती करिए ना करिए, लेकिन ये जो रोजगार मेला आपके लिए आयोजित किया गया उससे एक दफा जरूर दोस्ती करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो सके और आपका जीविकोपार्जन का रास्ता खुल सके। तारीख एक बार फिर से बता देती हूँ, 12 जून को 10 बजे से सुबह ITI आपके ITI के प्रांगण में बिल्कुल से आपको पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि 90 से ज्यादा कंपनियां और 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं जो आप प्राप्त करने वाले हैं, उनका लाभ उठाने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं आज की पहली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई अमित कुमार जी की, और एक बात और कहना चाहेंगे आप सभी से कि आज हम उनकी डिमांड लेंगे जिनकी डिमांड हमने बहुत दिनों से नज़रअंदाज की है, और काफ़ी सारे लोगों की डिमांड हम लगातार लेते रहे हैं और काफ़ी लोगों की नज़रअंदाज करते रहे। कारण ये है क्योंकि आप लोग पहले कर देते हैं कॉल और उनकी बाद में आती, तो हर दफ़ा तो भाई ऐसे नाराज़ नहीं कर सकते ना सभी को। आज हम उनकी डिमांड्स लेंगे जिनकी डिमांड्स कई दिनों से आ रही है और हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल लेते हैं अमित जी की डिमांड, और उसके बाद होगी धर्मेंद्र मोहन भारती जी की डिमांड, फिर होंगे हमारे सबलू सावन जी, और उसके बाद एहसान जी। चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।
1: सुन मेरे राजा 1, 2, 9, 8।

बना दूं रस्सी कॉफी को लस्सी, टोपी से निकालू टॉफी एक नहीं अस्सी। लकड़ी को बना दूं रस्सी कॉफी को लस्सी, टोपी से निकालू टॉफी एक नहीं अस्सी। गिल गिल पाशा सुन मेरे राजा 1 2 9 11 1।

क्या बात है भाई, इतनी बढ़िया डिमांड आप ढूंढ के कहाँ से लाते हैं? आपके सारे गाने मुझे बेहद पसंद आते हैं धर्मेंद्र मोहन जी, बहुत खूबसूरत सी डिमांड थी, थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड है किसकी? ये डिमांड किसी और की नहीं भाई, हमारे सबलू जी की है, मुंबई बोरीवली से, जो हमें सुन रहे हैं और बड़े दिनों बाद इनकी डिमांड हम तक पहुंची है। और एक बात और आपसे कहना चाहूंगी, हाल ही में मैंने एक सपना देखा था सबलू जी, यकीन मानिएगा, उसमें मैंने देखा सबलू सावंत खाली मुंबई लिखा था, बोरीवली गायब था। तो हम सोच रहे थे कि आपने बोरीवली क्यों गायब किया है। फिलहाल ये मेरा सपना था या हकीकत, वो मैं चैट बॉक्स में आके कंफर्म कर लूंगी। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, 3 से 4 के सफर में आप सुन रहे हैं आपका अपना शो कॉलर ट्यून गुंडा।

बात है, मजा आ गया सुन के। अब बढ़ते नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि एहसान जी की। एहसान जी, कल लास्ट एकदम से आपकी डिमांड थी और रह गई थी, चलिए आज ट्यून करते हैं। आज आपने वक्त रहते कॉल कर लिया हमको, शुक्रिया इसके लिए। और इसके बाद देवी प्रसाद जी की डिमांड लेंगे, फिर आएंगे हम अपने प्यारे अजीत साहब और अयुब ऑप्टिकल की डिमांड पे। भाई दोनों की डिमांड सेम टू सेम है, हमें बड़ा अच्छा लगता है सेम सेम डिमांड निकल आती है ना, एक तीर से दो निशाने हो जाते हैं हमारे। थैंक यू।

जी हाँ, भारत व्यास और लता मंगेशकर जी की आवाज में फिल्म सारंगा से ये सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया। भैया वो ओल्ड गोल्ड वाला गाना नहीं, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट वाले जमाने का गाना था जो एहसान साहब की डिमांड पे हमने ट्यून किया। 1961 में ये मूवी आई थी। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर और ये डिमांड किसकी है, ये है हमारे देव प्रसाद जी की डिमांड और उसके बाद हम लेने वाले हैं अपने अजीत साहब जो हमें मुंबई से सुनते हैं उनकी डिमांड और साथ ही साथ में अयूब ऑप्टिकल साहब की डिमांड, क्योंकि दोनों की डिमांड सेम है। फिर आएंगे हम अपने मुस्तफ़ा जी और नेक्स्ट हमारे होंगे योगेश शुक्ला जी इनकी डिमांड की ओर। फिर देखते हैं नेक्स्ट डिमांड हम किसकी लेते हैं। एंजॉय करिए इस प्यारी से ट्रैक को। भाई हमारी चीची जी का सॉन्ग है। चीची जी की जब सॉन्ग की बात आती है हम कहीं उड़ चले होते हैं। उड़ चला रे, चलिए उड़ते हैं।

सब तो ठीक है, लेकिन मेघा मेघा रे मुझे मेघा से एक बात याद आ गई। बहुत गर्मी हो रही है भाई साहब, प्लीज पानी बरसवा दीजिए ना मेघा जी। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका अगर आपने ऐसा कर दिया। फिलहाल आप शो एंजॉय करें आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम यानी कि फोन फरमाइशी कार्यक्रम कॉल ट्यून गोंडा को। और आपने ट्यून करके रखा हुआ है 89.6 FM, 3 से 4 का सफर और 3:27 हो चुके हैं। डिमांड बहुत सारी है हर दिन की तरह और वक्त बहुत कम है।

90s के टाइम पे एक जो BGM में एक छोटा सा ट्यून होता था, जैसे पानी बरसते तो छम से आवाज हो, शीशा टूटे चन्न से आवाज हो, और इसमें तो टन टन से आवाज हो, ये पीछे से बड़ा मजा आता है भाई, मेरे को एक अलग ही किक देती है कहीं ना कहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट डिमांड की ओर अजीत साहब और आयुब ऑप्टिकल जी के डिमांड की ओर, पर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम मुस्तफा जी की, और देन होंगे हमारे प्यारे किसका नाम लिया था हमने, हाँ जी योगेश जी का, और उसके बाद होंगे हमारे कॉल लिसनर, वो हम आपको बताएंगे, पहले ये गाना एंजॉय करेंगे।

हाँ जी दोस्तों, और गाने बहुत सारे हैं, और नीना जी हमने आपके डेडिकेशन में एक गाना ढूंढ लिया। फाइनली मैं ढूंढ रही थी कोई ऐसा गाना मिले जो मैं नीना जी को डेडिकेट कर पाऊँ। फिलहाल बने रहिए शो के साथ में, गाने बहुत सारे, डिमांड बहुत सारी, इसलिए चैट बॉक्स में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी 5-6 मिनट बाद मैं आप लोगों के मैसेजेस जरूर लूंगी जो हमारे साथ में चैट बॉक्स में बने हुए हैं। बने रहिए, एंजॉय करते रहिए 3 से 4 के सफर को, जी हाँ, यानी कि अपने शो कॉलर ट्यून गुंडा को। और अभी वक्त की बात करें तो 3:34 हो चुके हैं।

क्या बात है, मजा आ गया सुन के। अभी चलते हैं योगेश जी की डिमांड की ओर, और इनका डिमांड बड़े दिनों बाद हम सुनने वाले हैं, ये ओल्ड वर्जन का सॉन्ग आर डी बर्मन जी की म्यूजिक कंपोजिशन के द्वारा, लिरिसिस्ट है आनंद बख्शी साहब, और आवाज से सजाया है हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के पहले लव यानी कि मोहम्मद रफी साहब ने। एंजॉय करिए, बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग है, बेहद सुंदर।

0: मैंने पूछा
1: जी हाँ, मैंने भी जान से पूछा था तो नीना जी का नाम बताया था उन्होंने। अब बाकी आप जान जाइए, नीना जी यही सॉन्ग है जो मैंने आपके डेडिकेशन में ढूंढा है भाई, बड़ा मेहनत लगा है ढूंढने में। नेहा जी आपके लिए भी एक सॉन्ग होगा जो मैं डेडिकेट करूंगी थोड़े वक्त के बाद में फिलहाल, और मेरा एक और चांद है उसके लिए भी। वैसे आप सभी मेरे लिए चांद ही हो, सभी के सभी बड़े प्यारे हो और अपनी अपनी लाइफ में सभी अच्छा ही कर रहे हो मुझे उम्मीद है और जानती भी हूँ कहीं ना कहीं। तो एंजॉय करते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, और हाँ थोड़ा सा फील करके एंजॉय करिए।

हाँ जी, और मुझे लगता है कि चैट बॉक्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक गाना और कंप्लीट कर देते हैं। ये गाना आपने सुना अभी हमारे प्यारे लिसनर यानी कि योगेश जी की डिमांड पे, और अब वक्त हो चला है हमारे पंडित जी की डिमांड का। तो देखते हैं भैया इनकी डिमांड कहीं गई कहाँ, पहले आ तो मिल गई है। चलिए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, पर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक लेके बबीता जी की डिमांड का।

क्या बात है भाई, व्हाट अ किलिंग सॉन्ग, मजा आ गया सुन के। ये रैप है, सॉन्ग है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत। और कहते हैं मोहब्बत आंखों से ही शुरू होती है, और आंखों पे इतनी सारी, मतलब क्या ही बोलूं मैं। थैंक यू सो मच इस लवली वाली डिमांड के लिए। और अभी बढ़ेंगे हम भाई नेक्स्ट डिमांड की ओर, उससे पहले आते हैं चैट बॉक्स की ओर, आप सभी के मैसेजेस की ओर। तो हमारे साथ में बने हुए हैं प्रबल मिश्रा जी, पंडित जी अपने नीले वाले लिंक के साथ में, उसके बाद मुस्तफा जी आ गए नीले वाले लिंक के साथ, दीपांशु तिवारी जी है, योगेश शुक्ला जी है पंजाब से जो हमें सुनते हैं, नेहा जी है जो हमें बहराई से सुनती है, यानी मंगू जी, रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी है जो हमें अलाहाबाद से सुनते हैं, इसके अलावा सब लोग सावन जी हमारे मुंबई बोरेवली से, हमारे सांवले वलम जी, के गुप्ता जी है तिरंगा कॉम्प्लेक्स से, के गुप्ता जी के अलावा है नीना जी, और बड़ा सा मैसेज इन्होंने लिखा है भाई, इतना बड़ा पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं फुर्सत से जरूर पढ़ूंगी। नीना जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने जो भी हम तक पहुंचाया। सुरेंद्र यादव जी है गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव जी के बाद में है कमल नयन जी जो हमें गोंडा से सुनते हैं। कैफ मोबाइल जी भी आगे भाई गुड मॉर्निंग बोलते हुए, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला गुड मॉर्निंग। और राजेश कुमार जी हैं जो हमें अंबेडकर चौराहे से सुनते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज में हमारे मनीष शर्मा जी हैं, जी हाँ खुरासा से। और इसके बाद नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो धर्मेंद्र मोहन भारती जी हैं जो हमें आवाज़ बिकॉज कॉलोनी गोंडा से सुनते हैं। उसके बाद आप लोगों के फीडबैक से लगातार आप लोगों ने गाने को काफ़ी पसंद किया। मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है भाई। और आगे बढ़ते हैं तो हमको मिल गए हमारे इट्स कुमार साहब फ्रॉम एमपी रीवा वाले। और नेक्स्ट वाले मैसेज की बात करें तो भैया प्लीज आपसे विनती है, नेक्स्ट मैसेज पे जाने से पहले प्लीज मेघा मेघा मेघा रे कह के मेघ बाबा से थोड़ा सा विनती करिए ना, बारिश हो जाए। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले मैसेज की ओर, तो हमको मिल रहा है जो नेक्स्ट मैसेज वो आप सभी की चिट चैट का है लगातार, और आप लोगों ने गाने को काफी पसंद किया, सराहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी बातें होती हैं आप लोग के मन में, इतनी चलती हैं, एक एक मैसेज ढूंढना पड़ता है हमें। कुमार टेलर साहब जी हैं गौरा चौकी से, जय माता दी आपको भी। और अगर किसी का मैसेज छूटा हो मुझसे तो माफ करिएगा, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस सच में मुझे ढूंढना पड़ रहा है आज। और अब चलते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड आई हुई हमारे पास में बबीता जी की तरफ से, तो चलिए सुन लेते हैं इस प्यारी से डिमांड को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके।

से किसी का मैसेज छूट रहा है, किसी और का नहीं है, हमारे चिंटू जी हैं भाई, बड़े दिनों बाद इनके दर्शन हुए हैं, जो हमें सुनते हैं आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से, यानी कि रवि जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, अपना हाल चाल जरूर बताइएगा, इतने दिन कहाँ गायब थे?

शर्मा जी और बबीता जी की डिमांड के बाद अब हम चलते हैं रॉबिन हुड जी यानी कि राजू सलमानी जी की डिमांड की तरफ, जो हमें सुनते हैं आवाज बिकॉज कॉलोनी गोंडा से। इसके बाद आएंगे हम नेक्स्ट डिमांड लेके रमेश कुमार जी की फ्रॉम महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र वाले रमेश जी की डिमांड को हम डेडिकेट करेंगे अपनी नेहा जी को।

इस प्यारी सी भेंट के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड है हमारे रमेश कुमार जी की महाराष्ट्र से। राजू जी, मुझे लगता है आपकी डिमांड ये नहीं रही होगी, लेकिन आपका गाना मुझे यही मिला है, इसलिए मुझे माफ करिएगा अगर कोई गलत गाना मैंने बजा दिया आपकी डिमांड से इतर। तो चलते हैं अभी हम रमेश कुमार जी की डिमांड की, जो कि महाराष्ट्र से हमें सुनते हैं, और इस सॉन्ग को हम डेडिकेट करते हैं अपनी नेहा जी को।

हाँ जी, और ये गाना हमने डेडिकेट किया था नेहा जी को। पूछो ये, हमने इतना आपको परेशान किया? नहीं, परेशान तो हमने बिल्कुल नहीं किया। कल आपने कहा ना, इतना हंसू, इससे ज्यादा हंसू, और हंसू, कितना हंसू, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। मैं आपसे कैसे बताऊं कि आपको कितना हंसना है? तो उम्मीद है इस गाने के माध्यम से आप समझ गए होंगी कि मैं सोच रही थी और थोड़ी सी सोच में पड़ गई थी, और कुछ भी नहीं था। फिलहाल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो राजेश जी ने हमें भेजा है। जी हाँ, अम्बेडकर चौराहे गोंडा से। चलिए सुनते हैं इनकी इस डिमांड को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेकर के हम सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, फिर होंगे निब्बर जी, और फिर होंगे हमारे मनी शर्मा जी खुरासा से, और उसके बाद भाई देखते हैं आज किसकी डिमांड रह जाती है, कौन की पूरी होती। भैया डिमांड अभी भी मेरे पास में कितनी सारी है भैया।

अभी आपने एंजॉय किया राजेश जी की इस डिमांड को जो मैं सुन रहे हैं अम्बेडकर चौराहे से। बड़ी ही खूबसूरत सी डिमांड थी भाई, बड़े प्यार से आप खोज के लाए थे, ऐसा लग रहा है मुझे किसी खास के लिए थी, काफी अच्छी लगी। और आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और नेक्स्ट डिमांड है हमारी सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र जी को क्या सुनना है, बड़ा ही प्यारा सा गाना है, आइए सुनते हैं, आप भी सुनिए हम भी सुने और मिलके सुनते हैं, 3 से 4 के सफर को एंजॉय करते हैं। और बस यही इतना कहेंगे कि कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में 90s हिट से, और म्यूजिक आपको बता रहा होगा कि क्या गाना है, एंजॉय करते हैं।

हाँ जी, और घड़ी पे अभी मेरी नजर गई, केवल और केवल 6 मिनट मेरे पास में बचे हैं। और इस गाने के बाद होंगे निब्बर जी, निब्बर जी के बाद में होंगे हमारे मनी जी, मनी जी के बाद में कमल नयन जी, उसके बाद में केके जी का सॉन्ग है, और उसके बाद में जिन जिन का सॉन्ग है आइए आपको बताते हैं, लेकिन वक्त नहीं हमारे पास में। उसके बाद में राकेश वर्मा जी हैं, मोहिनी तिवारी जी, मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी, और मुमताज अंसारी साहब हैं, और इसके अलावा रीत लाल जी हैं, और सुरेश कुमार जी हैं चौक गोंडा से, अंश जी हैं, और शशि जी हैं रायपुर से, जो मैं सुनती हैं। मात्र 1 घंटे में इतनी सारी डिमांड में कैसे कंप्लीट करूं? फिलहाल आज के गाने काफी अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक है, एंजॉय करें।

अच्छा, इस मूवी में दो गाने सुनने के लिए मूवी देखी जाती थी, एक तो ये अक्षय, दूसरे माँ शेरा वाली ये तेरा शेर आ गया। क्या गाना है वो, क्या भेंट गाई है माँ की और क्या एक्टिंग की है, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षय जी माता रानी को अपना इष्ट मानते हैं, बहुत ज्यादा मानते हैं माता रानी को। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ में, जो कि निब्बर जी की डिमांड है रेलवे क्रॉसिंग से, और गाना दुश्मन न करे दोस्त ने जो काम किया है।

हाँ जी, निबर जी की डिमांड पे अभी आपने ये गाना सुना, बहुत ही प्यारा, अपने जमाने से आज तक ये गाना, दुश्मन की क्या ही बात करें, दोस्त उससे ज्यादा अगर गहरा जख्म दे जाता है तो उसको डेडिकेशन में बजाया जाता है। फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे मनी शर्मा जी की फ्रॉम खोरासा। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

और आज के लास्ट डिमांड लेंगे हम कमल नयन जी की। भाई इन्होंने गर्मी पे एक बहुत ही ओल्ड वर्जन है ना, ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का सॉन्ग भेजा हुआ है। और बाकी जिनकी डिमांड रह गई उनसे माफी चाहूंगी, वक्त मेरे पास नहीं होता। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, कोशिश मैंने पूरी की थी अपनी तरफ से कि कुछ और गाने बजा पाऊं, लेकिन हो नहीं पाएगा। लेकिन आज शाम है आपका, यानी कि मैसेज मसाला में भाई अंताक्षरी का सेगमेंट होगा। अगर आप वहां टाइम से पहुंच जाएंगे, अपनी डिमांड्स को भेजेंगे, तो मे बी मैं जिन जिनकी डिमांड रह गई है पूरी करूं। और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो गीत आपके नाम से आप ही के लिए है। और आज नहीं तो कल डिमांड करिएगा, जरूर कंप्लीट करने की मैं कोशिश करूंगी। और जिनकी आज डिमांड रह गई है, उम्मीद करती हूँ काफी दिन से जिनकी रह जा रही है, जैसे रीत लाल जी हैं हमारे, इनकी काफी दिनों से रह जा रही है। और मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी हैं, मुमताज अंसारी जी हैं, सुरेश जी हैं, इन सबकी डिमांड कल मैं पहले लेने की कोशिश करूंगी। फिलहाल आज की लास्ट डिमांड हमारे कमल नयन जी की। केके जी आपसे भी माफी चाहूंगी, प्ले लिस्ट कर रखा लेकिन बजा नहीं सकते हैं। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं शाम के शो में, तब तक सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। बाय, टेक केयर।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: कला, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना,
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
1: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
2: और जेंट्स के लिए,
1: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
2: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
1: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
4: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
5: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
6: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
7: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
9: गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहाँ ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहाँ हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में। स्टे ट्यून्ड।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है। आप सुन रहे रेडियो 11.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपका स्पेशल प्रोग्राम शुरू हो गया है गोधूली, और आप सभी को पता है कि इस प्रोग्राम में गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज को हम इनवाइट करते हैं। वो किसी न किसी कार्यक्षेत्र को लेकर के रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग एरियाज से आते हैं, उनके काम के बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच में बेहद अहम बातों को लेकर के हाजिर है डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं एंड फिजिशियन होम्योपैथ हैं। सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं आपका अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
1: थैंक यू
0: सो मच। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई बहुत अहम मुद्दों पे बात होने वाली, दरअसल बात इतनी अहम है कि आपका और हमारा जो दिन ब दिन बदलता लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से जो हम डिप्रेशन में आ रहे हैं या टेंशन में होते हैं या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, उसको लेकर के बहुत सारी बातें आज जानने को मिलेगी। और महज जानेंगे नहीं बल्कि उसके उपचार पर भी हम बातें करने वाले। इसके अलावा योगा के बारे में विस्तार से बातें होने वाली हैं। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये प्रोग्राम कितना ज्यादा स्पेशल होने वाला है। इसीलिए हम पहले ही वॉर्न कर रहे हैं कि कहीं छोड़ के मत जाइएगा, सुनते रहिए। सो आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे जानते हैं उनके बारे में। सर, सबसे पहले तो चूंकि हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को, आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा और अपने परिवार के बारे में।
1: मैं डॉक्टर अमित सिंह, मेरा जन्म ग्राम बनकटी अर्जुन सिंह, जिला गोंडा में ही हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा केंद्रीय विद्यालय ITI मनकापुर से हुई। मैंने हाई स्कूल वहाँ से पास करने के बाद GIC गोंडा से इंटर किया। उसके बाद फिर तैयारी किया लखनऊ में, फिर पॉट के एग्ज़ाम के थ्रू मेरा सिलेक्शन होम्योपैथी के लिए हुआ। फिर मैंने वहाँ 5.5 साल का कोर्स किए जीवज यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ मैंने RML यूनिवर्सिटी से किया, और ये मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा रही। मेरे पिताजी असिस्टेंट इंजीनियर ITI मनकापुर में थे, माताजी शुद्ध रूप से गृहिणी थी। हम लोग का गांव से भी काफ़ी लगाव रहा, और इसलिए हम लोग इस कार्य को और अच्छे से जानते हैं, और जो कार्य हमको मिला है जिला प्रोग्राम का प्रबंधक का, वो और अच्छे से कर पाते हैं, जो कि हमको जमीनी स्तर से हम लोग जुड़े रहे हैं। क्या खान पहन रहा है लोगों का, क्या लाइफ स्टाइल में चेंज हो रहे हैं, सभी चीज़ों के बारे में।
0: बेशक। तो अभी तक आपने बताया कि आपकी क्या प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, और अभी तक की आपने पोस्ट के बारे में बताया, एक क्लिप्स दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। सो वापस एक बार पीछे चलते हैं आपके जीवन में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आपका एम्बिशन क्या था, क्योंकि अभी तो आप डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं, आपने क्या सोचा था? गवर्नमेंट जॉब में ही आने का था या कुछ और प्लानिंग थी कभी आपकी कि आप कुछ और परस्यू करेंगे?
1: एक्चुअली प्लानिंग तो सच पूछे तो सिविल सर्विसेज की ही थी, लेकिन प्लानिंग चेंज होती रहती है। आदमी बच्चा रहता है तो पायलट बनने की कोशिश करता है, फिर कोई और बनता है, फिर कोई और मिलता है कुछ और बनता है। लेकिन फिर मेडिकल में चले गए, तो मेडिकल में फिर जब जाने के बाद आपने अपना समय दे दिया है 5.5 साल, फिर लगता है कि नहीं, जिस चीज़ के लिए है फिर वो आपने किसी की सीट बेकार कर दी है ना, अगर छोड़ के आप किसी और चीज़ में जाते हैं। फिर इसी विधा में आगे बढ़ गए हम लोग, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कर लिया, तो अब इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्लिनिक कर रहे थे, अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं।
0: ऑलराइट, तो मतलब आप भी पायलट बन चुके हैं जैसे हम भी बने थे कभी।
1: वुमन सभी बच्चे पायलट, कर्नल, कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं है ना।
0: और मेरे जैसे बच्चे हैं तो हाँ, वो फिल्मों में भी जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आप तो स्मार्ट हैं, कहीं भी जा सकते
0: हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बच्चों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं कि वो बचपन में जो कुछ भी देखते हैं और उनको लगता है इसमें बहुत लाइमलाइट है, इसमें बड़ा नाम है या बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, उस चीज में जाने की वो जरूर ट्राई करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि पिताजी का आपको साथ मिला। पिताजी का कभी इस बात पे कोई प्रभाव था कि आपको यही करना है, यही परस्यू करना है, क्या था?
1: नहीं, उन्होंने कभी इस तरह का दबाव तो नहीं डाला, जो ठीक लगे वो करो। उनकी इच्छा कुछ ऐसी नहीं थी कि आप स्पेशली यही करें, जो करो वो ठीक से करो, उसी में नाम करो,
0: जो भी करे उस पे 100% दे।
1: 100%
0: ओके।
1: और उसी में आपको सब कुछ आना चाहिए, ये नहीं आधा अधूरा नहीं, आधे मन से नहीं करना है। उनका जोर इसी पे था।
0: ओके। पढ़ाई लिखाई में किस तरह के आप छात्र थे? बड़े एवरेज थे या टॉपर थे या वीक थे, क्या था आपके साथ में?
1: पढ़ाई लिखाई में तो मैं शुरू से ही ठीक था, अच्छे स्टूडेंट्स में हमेशा गिनती रही।
0: ओके।
1: ध्यान भी रहता था उधर पढ़ने पे, बाकी चीजों में भी रहता था, खेलने में भी रहते थे हम लोग।
0: ओके। यानी आपकी जो गिनती होती थी वो एक अच्छे स्टूडेंट्स में कहीं ना कहीं गिनी जाती थी, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही अगर आप अच्छे स्टूडेंट थे तो कुछ ना कुछ आपकी रुचि भी रही होगी, तो किन चीजों में आपकी रुचि बहुत रही है बचपन से?
1: अध्ययन में, लेखन शैली में, वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती थी, कुछ कंपटीशन होते थे इन सब पे। और जैसे हम लोग के यहाँ यूथ विंग पार्लियामेंट का एक प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें भी हमने कई बार अवार्ड्स जीते हैं, क्लस्टर पे, फिर जोनल लेवल पे गए, नेशनल लेवल तक गए उस पे काम करते हुए। स्काउट गाइड में भी रहा, उसमें प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान का नहीं लगा मौका, कुछ पढ़ाई की व्यस्तता के कारण, लेकिन द्वितीय सोपान तक उसमें पास किया हमने। ऐसे ही चलता रहा, पढ़ाई के साथ साथ जो भी और एक्टिविटीज थी उसमें कुछ ना कुछ करते रहे। खेलने में बैडमिंटन का शौक था।
0: खेलने में बैडमिंटन का शौक था। ओके। मतलब एक तो आपकी बातों से मुझे ये समझ में आया कि आप उस तरह के छात्र थे कि आपको नई चीजें करने में बड़ा मजा आता था, यानी कोई भी चीज अगर नहीं आपने देखा कि अध्ययन के अलावा भी कुछ है तो उसको जब तक कर ना लें, उसको जान ना लें, मतलब वो एक होता ना जिज्ञासा होती है
1: जी।
0: तो ये बड़ी अच्छी बात है, और एक छात्र जीवन में तो इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। आपने बताया कि आपको कई सारे अवार्ड्स मिले, आप क्लस्टर लेवल पे गए, आप उससे ऊपर भी गए, ये बहुत अच्छी बात है। डिबेट की आपने बात की, अगर हिंदी में बात करें तो उसका लोग बोलते हैं बहस
1: जी,
0: और यूं तो हम मार्केट में बहुत सारी बहस देखते हैं, तो आप कौन सी बहस करते थे?
1: बहस तो कई प्रकार की है, हम लोग सकारात्मक बहस की बात करेंगे ना, जिससे कुछ अर्थ निकले
0: जी।
1: एक आप गए सब्जी लेने, वहां से बहस कर रहे हैं, पैसा छुड़ा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। सब्जी लेने वाले से अगर इस पे बहस हो जाए आपकी, ये सब्जी अच्छी नहीं है, कहाँ से लाए हो, ऐसे अच्छी आ सकती थी तो अच्छा है, लेकिन आपकी बहस यहाँ से हटाओ, ऐसे करो, दो चार चीज फ्री दे दो, तो वो नकारात्मक हो जाती है। आपको लेना है कि आपको बहस में सकारात्मक चीज खोजनी है, नकारात्मक मिलेगा तो दोनों, च्वाइस आपकी है, आपको लेना क्या है, बहस करनी किस पे,
0: बहस करनी किस पे, मतलब ये डिपेंड करता है। वाह, वेरी नाइस। आपने कहा कि भाई किसी चीज को एक तो नेगेटिव बहस होती है, एक होता है कि वो कंस्ट्रक्टिव होती है, कुछ निकल के आता है, कुछ अच्छी चीजें निकल के आती है। आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनके हिसाब से बच्चों को उनको इस तरह के मौके देने चाहिए, और जो बच्चे डिबेट्स वगैरह जैसी चीजों में रहते हैं उनकी बुद्धि पे इसका क्या असर पड़ता है?
1: देखिए, मैं तो चाहूंगा कि पूरी तरह छूट देनी चाहिए, उनको वॉच करें, गाइडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन दबाव ना डालें। अगर वो कुछ खेलना चाहते हैं या किसी कंपटीशन भाग लेना चाहते हैं, करने दीजिए आप, नहीं करने देंगे तो बंध जाएंगे बच्चे, फिर बौद्धिक विकास नहीं हो सकता उससे। आप जबरदस्ती की किताबें रटवा लें, 10 किताबें रख दें, पढ़ लें, तो आप क्या करेंगे पढ़ के? इस तरह की पढ़ाई आपकी किसी काम नहीं आ सकती। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो आप कुछ बन सकते हैं, लेकिन आप फिजिकली फिट नहीं, आप कुछ भी बन जाए, आप दिन भर उसी में परेशान रहेंगे, दवाओं में परेशान। मेंटली फिट नहीं है तो आपका मन नहीं लगेगा अपने कार्य में, फिर आप चाहे जो बन जाएं, पूर्णतया आपने 100% नहीं दे सकते। आपने भी देखा होगा, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी आप नहीं बैठ सकते यहाँ पे।
0: बेशक। मतलब आपके सिंपल सा कहने का मतलब, अगर मैं ऐसा एग्जांपल दूं कि आप घूमने निकले हैं पहाड़ियों में और आपने 3-4 झोले टांग के रखे हैं, लगातार टांग के रखे हैं, तो आपका बार बार जहन जाएगा कंधा दर्द हो रहा है, हाथ में पकड़ा हुआ है इसको रखेगा, मतलब आपको खाली हाथ जाना, तब तो आप एंजॉय कर पाएंगे। और यही लाइफ है शायद, कि आप बैलेंस कर ले, अपना मेंटली तौर पे भी आप फिट रहे और फिजिकली तौर पे भी। वाह, क्या बात है, ये तो बहुत खूब आपने कहा। अब मैं आपसे जानना ही चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारी एक्टिविटीज में हमेशा भाग लिया है, आपके टाइम पे क्या आप भी आज के जैसे वो अकेले रहने पे विश्वास करते थे क्या, कि मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है, खेलकूद में मैं अकेले लूंगा, सारा काम मैं अकेले कर लूंगा, क्या था और अभी क्या मानना है आपका इस चीज को लेकर?
1: देखिए, उस वक्त मैं क्या, कोई भी अकेले नहीं रहता था, मोबाइल नहीं था,
0: मोबाइल नहीं था
1: तो सोशल मीडिया नहीं था, है ना, सोशल मीडिया नहीं था, तो लोग निकलते थे हालचाल पूछने के लिए, आपको 4 बार किसी दोस्त के घर जाना पड़ता था, है हो भैया कि नहीं हो।
0: ओके।
1: आप क्या था, आपने मैसेज कर दिया, व्हाट्सएप पे आ गया, कॉल कर लिया, ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, टेलीफोन लगे थे, लिमिटेड लोगों के यहाँ लगे थे, महंगी कॉल दरें हुआ करती थी। अगर आपको याद होगा कि थोड़ा सा हालचाल पूछने में 10 से 15 रुपए लग जाया करते थे, और जब उस 10-15 रुपए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी।
0: बेशक बेशक।
1: तो आपको किसी दोस्त से मिलना होता था तो उसके घर जाना ही पड़ता था, वो भी साइकिल चला के जाना पड़ता था, तो आपकी बॉडी फिट रहती थी। खेलने जाना प्लान करना है तो सब मिलके एक साथ बैठते थे, है ना? क्रिकेट मैच होता था, 2-2 रुपए के चंदे लगते थे। बच्चे फिट रहते, मेंटली फिट रहते,
0: मेंटली फिट रहते,
1: तुमने दिया कि नहीं दिया,
0: सामाजिक मूल्यों को जानते थे, मिलते जुलते थे, रहते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को लेकर के रेस्पेक्ट की जो भावना हम सम्मान की बात करते हैं, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, डायवर्सिटी की जो हम बात करते हैं कि विविधताओं को एक्सेप्ट करने का मादा था। बेशक सही कहा आपने, क्योंकि आपने भी अपना जो बचपन गुजारा है वो कुछ इस तरह ही गुजारा है, लोगों से मिलना जुलना, सोशल रहना, खेलना कूदना पढ़ना सब उन्हीं के साथ में, यानी एक शानदार बचपन आपने बिताया है। और इस वक्त जो हमारे शो को जेंजी यानी आज की जो जनरेशन सुन रही है वो सिर्फ इमेजिन कर रही होगी कि कितना खूबसूरत जिंदगी हुई करती थी इससे पहले, क्या बात है। सो फिलहाल हम बता दें कि अब हमारे एक छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है। हमारे साथ में आज मौजूद है डॉक्टर अमित सिंह सर, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। आने के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर वो किस चीज के लिए हैं, कौन सा मिशन चला रहे हैं और कौन से मिशन से हम लोगों का क्या फायदा होने वाला है। सो आइए मिलते हैं ब्रेक के उस पार, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा

0: सही उपाय अपनाएं, लू से खुद को बचाएं।
1: जी हाँ, बाहर निकलते वक्त गमछा, टोपी, चश्मा एवं छाती का प्रयोग करें। चेहरे, सिर और गर्दन पर गीला कपड़ा रखें।
0: छाछ, लस्सी, नमक, चीनी का घोल, नींबू पानी और आम के पना का सेवन करें तथा संतुलित हल्का व नियमित भोजन करें।
1: बार बार पानी पिएं, ठंडे पानी से नहाएं, हल्के सूती कपड़े पहनें, दिन में खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखें।
0: चाय, कॉफी जैसे गर्म पेय का सेवन ना करें। तेज धूप में बाहर न निकले। चक्कर या घबराहट आने पर डॉक्टर को दिखाएं।
1: पालतू जानवरों को छांव में रखें और उन्हें खूब पानी पीने दें।
0: ये सूचना उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: ब्रेक के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आपका अपने शो जिसका नाम है गौधरी। आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और आपके अपने होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान आपके साथ में मौजूद है। आज जो चर्चा हो रही है और होने वाली है वो बहुत ही अहम मुद्दों पर हो रही है। सो फिलहाल आइए चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनसे वापस से बात करते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ में गेस्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आप हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर आयुष मिशन के, इसके बारे में बताइए कि आखिर ये आयुष मिशन है क्या और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ड्यूटीज है।
3: देखिए, मेरा पद जो है वो हिंदी में आप समझिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक का, आयुष मिशन। इसमें आयुष का AYUSH करके लेते हैं इसमें हम लोग। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एस से सिद्धा, एच से होम्योपैथी, इन सभी को एक साथ मिला के एक मंत्रालय बनाया गया आयुष। उसके तहत कुछ मिशन में मतलब है कि कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम को जोड़े गए, कैसे हम लोग पुरानी पद्धति की जो दवाइयाँ थी उन पर ज़्यादा फोकस करें। मॉडर्न मेडिसिन पर इतना दबाव बढ़ रहा है, भीड़ लगी है, लाइन लगी है, आपको प्रॉपर टाइम में इलाज नहीं मिल पा रहा है, शहरों में भागना पड़ रहा है। तो इनका मेन उद्देश्य ये था कि आप अपने किचन से स्टार्ट कीजिए, आपकी किचन में ही तमाम मेडिसिन रखी हुई हैं, आप जानते नहीं हैं तो इसलिए आप भाग रहे हैं।
2: वो क्या आप उन्हीं की बात तो नहीं कर रहे, दादी नानी के नुस्खे जिन्हें
3: हाँ कह सकते हैं। अच्छा था, मतलब उसमें नीम हकीम खतराए जान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है वैसे ही, है ना। सबको पता था कि अदरक और शहद लेने से खांसी ठीक होती है, लेकिन अब विश्वास घट गया तो अब लेंगे ही नहीं, आप तो पहुंच गए किसी सिरप लेने के। ठीक है, सिरप भी लीजिए, जब जरूरत पड़े तब लीजिए, पहली शुरुआत यहीं से कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। योगा कर लीजिए, भूल गए हम लोग शुद्ध चीज़ों को खाना, भूल गए हैं अब सब लोग फास्ट फूड खा रहे हैं इसलिए बीमार रह रहे हैं। तो ये एक मिशन ये चलाया गया, भारत सरकार की इच्छा थी तो उसके तहत ये मिशन जो चल रहा है, इसमें यह है कि सभी लोग स्वस्थ हों और नेचुरल तरीके से स्वस्थ हों, आपको साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, इस पे जोर है बस।
2: ओके, तो अगर मोटे मोटे तौर पे हम समझे तो जो हमारी भारत सरकार है उसका ये विजन और मिशन है कि कहीं ना कहीं लोगों को हेल्दी रखा जाए पारंपरिक तरीकों से, घर से ही वो खुद का ट्रीटमेंट कर पाए। और जो आपने कहा कि मॉडर्न मेडिसिन पे आजकल जो बोझ बढ़ता जा रहा है, लोग उसके तरफ भागते जा रहे हैं, उसकी जरूरत ना हो। और शायद आपने ये भी जो बात कही आपकी बातों से निकल के आ रहा कि कई ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें होती जैसे खांसी, बुखार, जुकाम, इनका शायद ट्रीटमेंट खुद ही हम कर सकते हैं घर पे रह करके आराम से, जब तक के लिए हमको ये महसूस ना हो कि अब चीजें हमारे हाथ से निकल रही है और हमको डॉक्टर के यहाँ अब जाना ही पड़ेगा। और आपने बताया कि इसमें आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कुछ बहुत सारे इलाज होते हैं, योगा से कर सकते हैं, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथ है, इसमें से कुछ नाम से तो हम बहुत अच्छे से चिर परिचित हैं और हम चाहेंगे कि एक बार आप भी हमको ये आयुष में जो AYUSH है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चले कि आयुर्वेद क्या है, योगा क्या है, यूनानी क्या है, सिद्धा क्या है और होम्योपैथ के बारे में।
3: देखिए, अभी अपने भारत सरकार ने इसको चलाया इस मिशन को, उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार इसको आगे बढ़ा रही है
2: जी।
3: इसमें ए से जो आयुर्वेद का तो आप लोग सब परिचित हैं ही हैं कि हम लोग की जड़ी बूटियां थी आयुर्वेद से है, चाहे तुलसी का पौधा हो या लेमन ग्रास हो या और चीज़ें जो आप लोग जानते हैं, इलायची हुआ, ये सब चीज़ें इनका क्या प्रयोग है, इस तरीके जो जड़ी बूटियों का यूज है ये हो गया आयुर्वेद से। और कुछ ऐसे जिसका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो आप थोड़ा बहुत तो आयुर्वेद के बारे में सब लोग जानते हैं पर बहुत गहराई से नहीं जानते हैं, ये भी मानना पड़ेगा, हम सब आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद ही बन जाते हैं
2: बिल्कुल,
3: लेकिन ऐसा है नहीं। अब उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं योगा के लिए, सबको लगता है कि हमने देखा और टीवी में देखा योगा, अच्छा यूट्यूब में देख लेंगे किस बीमारी पे कौन सा योगा करना है, तो ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ों को खुद जान पाएं। कभी कभी होता है हम लोग उल्टा योगा कर लेते हैं, है ना, इसके लिए क्या एक बढ़िया प्रशिक्षक चाहिए होता है।
2: तो थोड़ा सा आपको रुकना चाहूंगा, ये उल्टा योगा आपके कहने का क्या मतलब है?
3: जैसे हम लोग टीवी में देख रहे हैं, अब हमको ये समझ में आ रहा है कि सांस लेना है कि छोड़ना, वो कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी आवाजें कैसी आती है, अब एक प्रशिक्षक के सामने बैठेंगे तो वो टोक देगा, आपने ये गलत कर दिया, या आप योगा करते करते इधर झुक गए, इधर मत झुकिए। टीवी में तो आपने देख लिया कि हाँ सीधा सीधा बैठना है सब कुछ, पर क्या एक्चुअल में आप सीधे बैठ के कर रहे हैं, उस मुद्रा में कर रहे हैं? ये सामने वही समझिए जैसे बच्चे को तो किताब दे दीजिए, ऊपर सकता है घर पे, लेकिन आप विद्यालय क्यों भेज रहे हैं? इसलिए कि सही मार्गदर्शन मिले।
2: मार्गदर्शन मिले
3: तो कौन देगा? वो प्रशिक्षक देगा, वो ज्यादा अच्छा देगा। हो सकता है कुछ लोग अपने मन से भी अच्छा कर लें, बहुत अच्छा कर लें, लेकिन पूर्णतया सभी लोग नहीं कर सकते, इसके लिए उनकी जरूरत है। ऐसे ही फिर एक यूनानी है, जो पद्धति है ये भी आयुर्वेद की से मिलती जुलती है, लेकिन यूनान से है, उसके जो खोज थी वो यूनान से थी।
2: ओके
3: हाँ, इसलिए यूनानी है। और होम्योपैथ जैसे आप जानते हैं जर्मनी से इसकी निकली हुई पद्धति, उसमें भी मदर टिंचर्स बनते हैं, वो भी आयुर्वेद से लिए आते हैं। मतलब हमारा बेसिक तो देखेंगे जो भारत की सबसे पुरानी पद्धति आयुर्वेद है, मूल जननी तो हम उसी को मानते हैं, निकले वहीं से सब कुछ। सिद्धा भी है, वो भी नेचुरोपैथ से जुड़ी होती है। तो अब इन सभी चीज को मिला के एक छत के नीचे, भारत सरकार का ये मंशा है कि एक छत के नीचे इन सब की व्यवस्था की जाए, और वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर जो रखे जाएं, जो प्रशिक्षक रखे गए हैं, उनसे आप पहुंचकर दवा ढंग से ले सकें। अपने मन से मत ले लीजिए, वो आपके तय करेंगे कि भाई इस बीमारी में आपको क्या लेना है, आप मत तय कीजिए कि हमको यही लेना है, कुछ चूक हो सकती है आप इसलिए।
2: और वो जो एडवाइस आती है कि हमारी चाची तो ये कहती है, हमारी नाना ये बताते थे, हमारे फलाने, क्योंकि आपने ये चीज अभी कोट किया कि खुद से आपको नहीं बनना है डॉक्टर, यानी इसके स्पेशली डॉक्टर्स होते हैं, प्रशिक्षक होते हैं जो कि ट्रेंड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं शायद यही वजह होती है नेगेटिविटी की कि हम खुद से चीजों को इस्तेमाल करते हैं और कुछ अगर बाई चांस चीजें नहीं सही हो पाती तो हमको लगता है ये वर्क ही नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने कहा कि ये जो पांच तरह की पद्धतियां हैं इनको एक छत के नीचे लाने की कोशिश सरकार के जरिए की जा रही है। अच्छा, चाहे आयुर्वेद की बात किया जाए, योगा की बात किया जाए या होम्योपैथ की, एक चीज सब में कॉमन कहा जाता है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्या ये सच है?
3: देखिए मोटी मोटे रूप से आप कह सकते हैं, पर ऐसा नहीं है पूर्णतया। हम लोग इसको हमेशा 100% नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ योगा आपने गलत कर दिया तो उसमें भी आपको नुकसान होता है, बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, पता चला कि आप गए थे दूसरी बीमारी के लिए, ठीक करने के लिए दूसरी बीमारी लेके चले आए। ऐसे आयुर्वेद में भी कब क्या खाना है, आपने भी सुना होगा दही के साथ ये चीज नहीं खाना चाहिए,
2: कॉम्बिनेशंस जो
3: होते हैं ना,
2: बिल्कुल,
3: तो दूध के साथ मछली नहीं खाना चाहिए, ये सब कॉम्बिनेशन कैसे जाना आपने? नुकसान तो है नहीं, तो फिर तो कभी भी कुछ भी खा लीजिए,
2: कुछ भी खा ले, सही बात है,
3: कटहल के साथ दूध नहीं पीना, तो ये ऐसी ऐसी चीजें जो है, तो ये भ्रांतियां तो है नहीं, ये फैक्ट है। तो इसको बताने के लिए कौन होगा? इसीलिए डॉक्टर साहब, इसीलिए आपको सभी चीज की इलाज खुद नहीं करना चाहिए, लोगों से मिलिए।
2: तो आपने ये चीज बताया कि साइड इफेक्ट उस तरह तो नहीं होता है जैसे मॉडर्न दवाओं में हमें अक्सर देखने को मिल जाता है, लेकिन ये है कि इससे फायदा ये है कि अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं तब तो आपको साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होने वाला, लेकिन अगर इसमें आपने थोड़ा सा अपने हिसाब से करने की कोशिश की और आपको वहां पे ज्ञान नहीं है तो शायद आपके लिए थोड़ा सा चीजें फिर उल्टी पड़ सकती है। चलिए, ये बात तो बहुत अच्छी है। अच्छा, अब हम जानना चाहेंगे, आपने कहा क्योंकि आयुष मिशन के तहत ये सेंटर्स यहाँ चलाया जा रहा है गोंडा में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में प्लीज बताइए कि किस तरह के सेंटर्स हैं, कितने सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त, कितने प्रशिक्षक हैं आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, और उन सेंटर्स पे किस तरह से लोगों को योगा कराया जाता है, ट्रेन किया जाता है, लगभग कितने लोग आते हैं और किस तरह से वो लाभ पा रहे हैं इन सारी चीजों से?
3: देखिए, ये सेंटर्स पूरे जिले भर में लगभग सभी ब्लॉक्स में हैं, और ये वेलनेस सेंटर में योगा प्रशिक्षक रखे जाते हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ हैं ऑलरेडी वो दवा लिखते हैं, उसके साथ में आपको बताते हैं कि इसमें ये योग जरूरी है, तो वो योग सिखाने के लिए प्रशिक्षित योगा प्रशिक्षक रखे गए हैं, एक महिला रखी जाती है और एक पुरुष, और उन दो वो दोनों लोग आपकी हेल्प करते हैं कि आपको इस बीमारी में ये करना है, आपको एक दिन सिखाएंगे, दो दिन सिखाएंगे, फिर आप उसके बाद अपने घर पे जाकर कर सकते हैं। अच्छा, अभी लोगों को मालूम भी नहीं है कि वेलनेस सेंटर चलते हैं, अब धीरे धीरे हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हम लोग बताएं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसमें आप कहीं भी जाइए और सीखें और लोगों को जोड़े। हमारा कहने का मतलब है आप पूरे मोहल्ले में भी अपने बताएं कि आप जाइए भैया, इस चीज़ का पैसा मत खर्चिए, सरकार आपके लिए पहले से व्यवस्था करके रखी हुई है, तो बस यही उद्देश्य है इसका।
2: ओके, तो आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, तो अगर हम चूंकि सिटी में बैठे हैं इस वक्त, अगर हम सिटी की बात करें तो यहाँ पे कहाँ पे कोई आपका सेंटर चल रहा है?
3: यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पीछे होम्योपैथिक डिपार्टमेंट, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ वेलनेस सेंटर चलता है, वहाँ पे महिला और पुरुष दोनों प्रशिक्षक हैं, आप जब जाएंगे वो लोग आपको इसकी सुविधा देंगे, आपको अच्छे सिखाएंगे, बताएंगे क्या क्या कैसे करना है, आप सीखिए फिर वहाँ भी जाके कीजिए, उसके बाद अपने घरों पे करते रहिए।
2: अच्छा, तो इसके लिए क्या कोई रिकमेंडेशन की जरूरत पड़ती है कि आपने किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है तो ही एंट्री होगी वेलनेस सेंटर पे, या कोई भी कभी भी जा सकता है?
3: नहीं, और कर सकता एक है। समय निर्धारित है, उस समय के बीच में आप जब जाएंगे तो कोई ऐसा एंट्री तो नहीं है। आप जाएंगे, अपनी बीमारी बताएंगे, उसमें उस हिसाब से जो योगा के प्रशिक्षक हैं वो आपको एक प्रशिक्षित करेंगे, वहाँ पे बताएंगे कि ऐसे ऐसे करते रहिएगा। तो कोई ऐसी एंट्री नहीं है, कुछ क्लिष्टता नहीं है उसमें कि आप जा रहे हैं तो किसी लिखवाना पड़ेगा आपको, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये भ्रांतियाँ हैं कि ऐसे जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं बैठे होंगे, नहीं, सब प्रॉपर वे में बैठ रहे हैं, आपको मिलेंगे, आप जाइए और अपना इलाज कराएं।
2: टाइमिंग आप बता सकते हैं क्या लगभग टाइमिंग होती है?
3: टाइमिंग जो ओपीडी की टाइमिंग होती है डॉक्टर्स के, वही टाइमिंग रखी गई है कि आपको अलग से परेशान ना होना पड़े।
2: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ओपीडी के टाइम पे ही आपके ये काम भी हो जाता है। तो एक फीमेल एक मेल आपको योगा इंस्ट्रक्टर वहाँ पे मौजूद मिलेंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि आपने बताया कि इस तरह से सेंटर्स चल रहे हैं। और अगर हम ऑल ओवर गोंडा की बात करें तो कहाँ कहाँ इस तरह के सेंटर्स हैं? क्या और भी यहाँ की जो तहसील हैं, ब्लॉक्स हैं, वहाँ भी क्या इस तरह के सेंटर्स हैं?
3: देखिए, एक सेंटर पंडरी कृपाल में है
2: जी,
3: एक गोंडा प्रॉपर में है जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पीछे, मैंने आपको बताया उसी कैंपस में है हॉस्पिटल के, और उमरी बेगमगंज में है, पकड़ी में है, दूरस्थ इलाकों में भी है, मतलब ऐसे कई सेंटर्स चल रहे हैं और हर जगह योग प्रशिक्षक रखे गए हैं। सरकार की ये नीति है कि गांव के दूरस्थ इलाके में भी आपको अच्छे से अच्छी आयुष की सुविधाएं मिले, जैसे आपको वहां से चल के शहर में ना आना पड़े, 50-50 किलोमीटर दूर तक सेंटर है, तो आपको यहां आने के लिए परेशान ना होना पड़े, तो आपके घर के नजदीक में जो सेंटर हो आप वहां जाएं और अपने लिए इलाज करें।
2: तो मोस्टली ये सेंटर्स आपको CHCs के पास में या जो हॉस्पिटल से वहीं मिलेंगे, जो सरकारी हॉस्पिटल से?
3: ऐसा ही है।
2: ओके, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आयुष मिशन के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त अगर आपके अकॉर्डिंग हम माने तो सारे ही ब्लॉक्स में और सारे ही तहसीलों में इस तरह के सेंटर्स चलाए जा रहे हैं जिसमें योगा इंस्ट्रक्टर्स होते हैं और लोगों को उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग या फिर बेसिक एक्सरसाइजेस जो होते हैं या योगा होते हैं उनको बताया जाता है, उनको हेल्थ के लिए अवेयर किया जाता है। आपको क्या लगता है इसमें किस तरह से, अब चूंकि आप बता रहे हैं इस वक्त और आप DPM भी हैं, लेकिन सुनने वाले इस वक्त आपको बहुत सारे सुन रहे हैं, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इसको सुनने और समझने के बाद किस तरह से लोगों तक पहुंचाएं? और लोगों तक क्या, मुझे लगता है कि मुझे खुद भी जरूरत है, हर इंसान को जरूरत है, मतलब ये नहीं कि आप जवान हैं, आप बैठे हैं और आपका फिगर ऊपर से लेकर नीचे तक मेंटेन दिख रहा है, तो इट मींस कि आप मेंटेन है। तो क्या लगता है कि योगा कितना ज्यादा जरूरी है, उस तरह के सेंटर्स का लाभ कितना उठाया जाना चाहिए?
3: देखिए, हम तो चाहेंगे 100% उठाया जाए। अब सबको ये तो नहीं कह सकते कि आप बीमार हैं, सामने वाले को तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कोई किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको कह दिया, उसको गुस्सा आता है ना कि हमारा बिगड़ा है। लेकिन योगा सबको करना चाहिए, योग करेंगे निरोग रहेंगे। अब सुबह उठना सबको मालूम है अच्छा है, लेकिन सब लोग तो उठ नहीं पाते हैं। खाना सबको मालूम है कि 12 बजे दिन में खा लीजिए, रात में 8 बजे खा लीजिए, 11 बजे तक भी खाते हैं, कुछ भी खाते रहते हैं। TV नहीं देखना चाहिए 9 बजे, पहले सबको मालूम था। TV कम से कम 10 फीट की दूरी से देखनी चाहिए, सबको मालूम था। अब 10x10 के कमरे ही हो गए हैं, है ना?
2: जी।
3: मोबाइल स्क्रीन आप गुलांक से सटा के देख रहे हैं, तो वो जो चीज़ें पहले हुआ करती थी जिसको हमको आपको जानकारी थी, अब वही भूलते जा रहे हैं। तो इसीलिए इन सब चीज़ को व्यवस्थित, क्योंकि हम लोग मोबाइल से दूर हो नहीं सकते, सोशल मीडिया से दूर हो नहीं सकते, क्योंकि इतना वर्कलोड है लोगों को, 8-8 बजे रात तक लोग कंप्यूटर पर काम करते, तो काम छोड़ा नहीं जा सकता। उसी बीच में कुछ ऐसे रास्ते निकालने पड़ेंगे आपको अपने लिए, शरीर के लिए। नहीं तो कहने को तो हर व्यक्ति स्वस्थ है, जब तक स्वस्थ है तब तक चल रहा है, जब अस्वस्थ होता है तभी उसको लगता है कि ये दिक्कत। इसीलिए आज आप देखिए अमूमन 50% से ज्यादा लोग हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं 40 की उम्र में। 40 की उम्र में तो पहले लोग सुनते ही हंसते थे कि 40 की उम्र में हो गए, लेकिन अब ये कॉमन सी बात हो गई। इसीलिए आप योग करें कि कम से कम जो बीमारी, जिस पहले सुनते थे कि बुढ़ापे के रोग हुआ करते थे, ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज होते थे, अब आप देखते हैं कि 35 साल के व्यक्ति को हो गया। आजकल तो अपने पेपर्स में पढ़े होंगे कि 18 साल के लड़के को हो गया, उसकी डेथ हो गई बेचारे। तो ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? खान पीन आपका बिगड़ गया और फिजिकल एक्टिविटी आपकी खत्म हो गई, आप मशीन से काम करने लगे, खुद भी मशीन बन गए। तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए या तो लोग पसीना बहाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, थोड़ा सा अपने लिए समय निकालेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। इसीलिए हम लोग चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूक करें और 100% लोग इसमें काम।
2: बेशक, और आए दिन चूंकि हम सुनते हैं कि भाई योगा डे पे, यानी वर्ल्ड योगा डे जब होता है तो उसकी टैगलाइन हमेशा चेंज की जाती रही है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है। क्यों की जाती रही है? क्या योगा इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या सिर्फ सरकार ही नहीं, सिर्फ भारत लेवल पे नहीं बल्कि पूरे वैश्विक लेवल पे योगा को महत्व दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? ये सारी बातें हम आने के बाद भी जानेंगे, और साथ ही साथ मेंटल वेलबींग यानी मानसिक स्वास्थ्य पे हमको चर्चा करना है। हम सभी में इन चीजों की बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरत है। करेंगे चर्चा लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: ब्रेक के बाद एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने शो गोधुली में। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। जाने से पहले बड़ा अहम सवाल हमने पूछा था। हमारे साथ में आज एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर एंड फिजिशियन होम्योपैथ। क्योंकि जाने से पहले हमने ये कहा था कि हर बार जब भी हम देखते हैं इंटरनेशनल योगा डे पड़ता है या योगा से स्पेसिफिक कोई भी इवेंट किया जाता है तो उसकी टैग लाइन दी जाती है, लेकिन हम स्पेशली अगर बात करें इंटरनेशनल योगा डे पे तो क्या वजह है कि कभी आध्यात्मिक रूप से उसको जोड़ के बताया जाता है, कभी सामाजिक रूप से, इतने अलग अलग पहलुओं से योगा को जोड़ा जाता है, क्या महत्व है योगा को, वो भी इंटरनेशनली सेलिब्रेट अब किया जाने लगा है?
1: देखिए, योगा को छोटे में आंकना तो गलत होगा, बहुत विस्तृत रूप से इसके, बहुत ब्रॉड रूप से इसको जानना है। और इसके लिए ये है कि अब आप मौलिक रूप से अपने आप को स्वस्थ याद करना चाहते हैं तो मानसिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सभी प्रकार के विकास की ज़रूरत होती है। इसीलिए इसको हर दूर दूर तक गांव में से लेके और शहर में सबका रहन सहन अलग अलग होता है, एक जैसा आप नहीं मान सकते पूरी तरीके से। तो सबको व्यवस्थाएं देना और सबके लिए अलग अलग, क्या सबके लिए ज़रूरत है, सबकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, तो सबको अलग अलग कैसे पैमाने पर खरा उतरा जाए और कैसे उतारा जाए, इसलिए हर बार कुछ ना कुछ नया भी करते रहते हैं और विस्तृत होने के नाते तो हम लोग थोड़ा सा इसमें कुछ नया चीज़ जोड़ते भी रहते हैं तो और अच्छे से आपको समझाया जा सके। मान लीजिए इस बार ये हुआ कि ऐसी चीज़ें, इस बीमारी कभी कभी होता नहीं, जैसे कोविड में आपने बहुत सी चीज़ों की नई चीज़ जानी होगी, कुछ नए आसन आपको सिखाए गए होंगे, कुछ आपने नई जड़ी बूटियों के बारे में जाना होगा जिसका आपने नाम भी नहीं सुना था।
0: बिल्कुल
1: ऐसा नहीं था, उसका नाम था नहीं, तो बहुत व्यस्त, हमको जानकारी नहीं था। ऐसे ही योगा का है, हमको जानते ही नहीं है लेकिन बहुत वृहद है।
0: बेशक, ये तो आपने सही कहा कि बहुत ही वृहद है और कहीं ना कहीं जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा है, इसीलिए शायद बार बार टैगलाइन भी हर तरह से इसको चेंज किया जाता रहा है। डॉक्टर साहब, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि कहीं ना कहीं हमने योगा की बात की है तो योगा से हम जाना चाहेंगे कि अक्सर लोग बोलते हैं कि भाई हम इतना काम कर रहे हैं, हम फिजिकल, हमारा बहुत सारा काम है, हमारा इवन काम ही एमआर कैम है, जा जाके जगह जगह दवाओं के बारे में रिप्रेजेंट करता हूँ, या मेरा काम फील्ड का है, या मेरा काम बहुत उठाने रखने का है, बहुत हम ऑलरेडी घर में बहुत सारी चीजें उठाते रखते हैं, चाहे महिलाओं की बात कर ले चाहे पुरुषों की, तो उनका मानना होता है फिर हम योगा क्यों करें, फिर योगा अलग से क्यों करना है, इसके बारे में प्लीज आप बताएं।
1: देखिए, जो काम आज हो रहे हैं ये काम पहले भी होते थे, लेकिन पहले क्या होता था, खाना बनाने के लिए मशीनरी नहीं थी, तब तो मानते थे हम लोग, आटा भी चक्की से पिस के आता था, दूसरे तरीके से महिलाएं खुद पीस डालती थी, मसाले पीसते थे, अब आपने मिक्सी खरीद ली, काम खत्म। काम तो आज भी आप मसाला पीसने कर रहे हैं, कह तो रहे हैं, लेकिन क्या आप सिलबट्टे पे कर रहे हैं, हाथ मूवमेंट में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब तो आटा गूंथने की भी आपने देखा होगा मशीनें आ गई, इंडक्शन खरीद लिया, पहले लकड़ियाँ काट के लाते थे, फिर उसको रखते थे, सेट करते थे, फिर जलाते थे, मतलब फिजिकल, हमारा कहने का मतलब फिजिकल वर्क ज़्यादा था। पानी निकालने के लिए 10 बाल्टी की जरूरत है परिवार में, तो 10 बार 20-20 हैंडल चला रहे तो 200 हैंडल पानी चला रहे हैं। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है, बटन दबाया पानी ऑन हो गया। कहने के लिए तो आप दिन भर बिजी हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, पूछे कपड़े धुले, कहेंगे हाँ धुला गया कपड़ा, लेकिन अब मशीन में धुल रहे ना, पहले बाल्टी से धुलते थे, मेहनत होती थी, थक जाते थे, पस्त हो जाते थे, पसीना निकलता, सोते थे, अब ये सब नहीं हो रहा है। तो फिजिकल वर्क अगर घटा है लेकिन खान पीन तो आपका घटा नहीं, वो तो और खराब हुआ। पिज्जा वर्कर का आपने नाम भी नहीं सुना था, पाश्चात्य संस्कृत में हम लोग जोड़ते चले गए, थोड़ी खान पीन की भी स्थिति खराब हो गई। इसीलिए अब योगा बहुत जरूरी है आपको फिजिकल बैलेंस करने के लिए, मेंटल बैलेंस करने के लिए, तो इस चीज के लिए योगा आपको करना ही पड़ेगा। सबको लगता है फिट है, कौन तय करेगा फिट है? आपके बॉडी के मानक ही तो तय करेंगे। अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया 40 की उम्र में तो आप फिट नहीं है, डायबिटिक हो गए तो आप फिट नहीं है, तो आपको, आप ऐसा तो नहीं कि आपके जीवन अब जीने की इच्छा नहीं है। तो फिट रखने के लिए आपको फिर पुरानी पद्धति में जाएंगे, कुछ नई चीज़ें करेंगे, तो इसलिए एक योगा एक ऐसी चीज़ है जो पहले से हमारे यहाँ थी, प्रचार प्रसार की कुछ कमी, अब अच्छे से हो रहा है, अच्छे अच्छे प्रशिक्षक हैं, बढ़िया प्रशिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, आप उनसे मिलेंगे सीखेंगे तो आपका शरीर दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं, बढ़िया से हो सकते हैं, दवाइयाँ छूट सकती हैं, जरूरी नहीं कि सारी दवाइयाँ चलती रहें, छूट भी सकती
0: हैं। सब हम स्वस्थ भारत की बात करते हैं, स्वस्थ समाज की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारा स्वस्थ खान पान, जैसा कि अभी आपने कहा कि जीवन शैली सही नहीं है, तो हम किस तरह स्वस्थ हो पाएंगे? जापान के बारे में जब बात आती है तो फिर कहा जाता है कि वो लोग बहुत फिट होते हैं, सबसे ज्यादा एज भी वहां के लोगों की रिकॉर्ड की जाती है, और जहां तक मुझे पता है कई जगह ऐसे वहां पे एक रेडियो स्टेशन है जिसपे सुबह 20 मिनट और शाम में 20 मिनट निकाल करके बूढ़े बच्चे से लेकर हर कोई उसको वहां पे योगा कराया जाता है, एक्सरसाइज, बेसिक्स एक्सरसाइज जो होती है वो कराया जाता है, और कहा जाता है कि ये सबके लिए मैंडेटरी, यानी आप कोई भी काम कर रहे हैं उस वक्त आप उसको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए पॉज करें और 20 मिनट का टाइम निकालें और उसको करें। तो कहीं ना कहीं वो एक पूरी समाज को स्वस्थ करने के साथ वो एक्शन भी दिखता है। क्या लगता है आपको कि हमको इन चीजों में किस तरह के कदम उठाने चाहिए? जिस तरह से आप देखते हैं कि अभी 20-25 साल का भी कोई बंदा है, उसका भी पेट बाहर ही चला आ रहा है। दुकानदार हम लोग जिनसे जाते हैं सामान खरीदते हैं, मतलब आपको उनके चेहरे से पहले उनकी तोंद नजर आ जाती है। तो मतलब ये प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं कि ये हेल्थ को लेकर के। तो हमें क्या अभी करने की जरूरत है? आपने योगा बताया, अब आप कह रहे हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, आपके शहर में भी है, यानी आप जहां पे हैं आपके नियर बाय में वो सेंटर्स हैं। तो अब हमें क्या उन सेंटर्स का किस तरह से लाभ उठाना चाहिए, किस तरह से एक स्वस्थ समाज का निर्माण हम कर सकते हैं?
1: देखिए, व्यवस्थाएं तो सरकार की तरफ से पूर्णतया है ही है, लेकिन यदि जागरूकता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, बगल में चल रहा है तो आप कैसे जान पाएंगे? उसको ऐसे लीजिए, लोगों पहले अपने अवसाद का नाम कभी नहीं सुना रहा होगा, लेकिन अब इधर डिप्रेशन के मरीज बहुत हो गए हैं, महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, हाय तौबा लगी रहती है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका ऑफिस का काम 8 बजे तक खत्म हुआ तो फिर आप क्या योगा करेंगे, आपको क्या जरूरत है, आप तो थक गए, आप चूर हैं, आपका हो गया योगा, हो गई फिटनेस, ऐसा नहीं है। मानसिक संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। तो आपको शुद्ध चीज़ें, क्यों कहते हैं कि हरी साग सब्जियाँ खूब खाने चाहिए, ताजे फल लेने चाहिए, इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी मेंटल लेवल को भी ठीक करता है। तो आप जब योगा करेंगे तो पड़ोसी को भी बता पाएंगे। अगर आप अनफिट हैं और फिट हो गए आ गए तो पड़ोसी भी पूछेगा, भैया कैसे हो गए हो फिट, क्या किया, तभी तो आप बता पाएंगे हम फिट हुए हैं, तो आप भी चले जाइए, अभी ऐसा ऐसा कीजिए, आप ले जाएंगे, एक से एक करते हुए 11 बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे संख्या बढ़ेगी, लोग फिट होंगे, तो एक भार जो कम होगा, जो आपका स्वास्थ्य के प्रति जो खर्चे हैं आपके, वो भी आज बहुत बड़ा खर्चा हो गया है। बल्कि मैं आपको बताऊं, आंकड़ों के हिसाब से सैलरी का 1/4 मिनिमम लोग स्वास्थ्य के पीछे खर्च कर देते हैं। उसमें मैं फल सब्जियों की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें दवाओं
0: की बात कर रहे हैं आप।
1: तो ऐसे खर्चों से बचना है, अगर हम नहीं कह रहे पूर्णतया बचा जा सकता है, मैक्सिमम रूप से तो बच सकते हैं आप। तो अगर हम लोग कोशिश करके 5% पे ले आए उस खर्चे को, तो पैसा आप किसी और चीज़ में हो सकते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन होगा, अच्छा लगेगा, समाज से सोशली आप जुड़े रहेंगे। अभी तो कट हो रहे हैं ना धीरे धीरे करके, बस इसीलिए होगा, जरूरी नहीं, नितांत जरूरी है।
0: आपने अभी एक टर्म इस्तेमाल किया कि मेंटल लेवल पे भी चीजें सही होती है, महत्वाकांक्षा बताया, किस तरह की लोगों को महत्वाकांक्षाएं रहती है, क्यों थोड़ा सा स्ट्रेस में आजकल लोग नजर आते हैं?
1: देखिए, सबके ऊपर कंपटीशन का दबाव, प्रमोशन का दबाव, और हो जाए अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, फेसबुक से जुड़े हैं, तो लाइक्स बढ़ जाएं,
0: लाइक्स
1: चेक कर रहे हैं, रात रात में चेक कर रहे हैं, गॉगल्स लगा के देख रहे हैं, पूरा अपने लाइफ को अपने बिल्कुल एक सीमित कर लिया है, कमरे के अंदर बंद कर लिया, खुली हवा में आप जाते नहीं, क्रिकेट मैच खेलते नहीं, कुछ करते नहीं। क्रिकेट भी आजकल मैं देख रहा हूँ लोग मोबाइल भी खेलते हैं, अब उससे कितनी एक्सरसाइज हो रही है तो आप जानिए, है ना। तो एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती है, पसीने तो आपके निकल नहीं सकते,
0: बेशक
1: मेंटली परेशान हो सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए आपको निकलना भी पड़ेगा, खुली हवा में लेना पड़ेगा, खुली हवा, लाख रुपए की दवा, ये सब बातें जो होती थी तो उसके पीछे एक तर्क था। अब ये दिक्कतें बढ़ रही हैं इसीलिए क्योंकि हम नेचर से दूर हो गए हैं, अब नेचर से पास जुड़ने के लिए ही ये मुहिम चलाई जा रही है। इसलिए जब आप जुड़ेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, और वही स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है।
0: आपने कहा मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। योगा में ऐसा क्या होता है कि फिजिकल एक्सरसाइज के साथ हम मेंटल लेवल पे भी खुद को स्वस्थ महसूस कर पाते हैं, क्या चीजें ऐसी होती हैं?
1: देखिए, उसमें कुछ ध्यान की मुद्राएं भी आपको बताई जाती हैं, फिर जब ध्यान की मुद्रा आप करते हैं तो बड़ा मेंटली सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, रिलैक्स होगी पूरी बॉडी। हमेशा जो दौड़ भाग की होती है ना एक स्थिति, तो अब जैसे आप जिम चले जाएं तो फिजिकल एक्टिविटी तो आपकी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन मेंटल आपको वहां पीस नहीं मिल सकता, उसके लिए आपको योग करना ही पड़ेगा, प्राणायाम उसका एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है। तो ये चीजें जब जुड़ती है तो मेंटल आदमी मेंटल रूप से बिल्कुल वो सेटिस्फेक्शन उसको मिलता है, अलग से लगता है। आप किसी दिन बैठ के अगर आधे घंटे ध्यान करें, एक बंद कमरे में या खुली हवा में चले जाएं, किसी पेड़ के नीचे हल्की सी धूप में बैठ के करें, तो आपको अलग सा लगेगा कि हाँ, कुछ नई ऊर्जा मिली है, अपनी ही ऊर्जा बढ़ेगी, जबकि आपने कुछ अलग से कुछ किया नहीं है, थोड़ा सा समय दिया है। अब लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने लिए नहीं दे पा रहे हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता एक बात कि डिग्रियां बढ़ती जा रही है, प्रोफेशनल कोर्सेज आते जा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम खुद को मॉडर्न बताने लग गए हैं और जानते भी हैं कि ये प्रॉब्लम है और ये सोल्यूशन है, उसके बावजूद क्यों लोग नहीं उठा पा रहे कदम, ये थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे। आखिर क्या माइंडसेट बन गया है कि हम पढ़े लिखे भी हैं, हम समझदार भी हैं, और आप बता रहे हैं कि देखिए इतनी सारी सुविधाएं संसाधन उपलब्ध भी कराया जा रहा है आपके अपने शहर में, लेकिन उसके बावजूद भी हम जान के भी चीजों को नहीं कर पा रहे, क्या वजह है इसके पीछे?
1: देखिए, इसकी एक चीज मैं आपको बताऊं, एक होता है साक्षर, एक होता है शिक्षित। जो आपने कहा डिग्रियां बढ़ रही हैं, लोग ज्यादा साक्षरता दर बढ़ रही है, शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। दोनों में अंतर यह है कि आप उसके बेसिक चीज को समझें, क्या चीज हमारे लिए जरूरत है। आप तो जानते हैं कि फल खाना बहुत अच्छा है, एक एप्पल खाओ डॉक्टर के पास कभी ना जाओ, ये नारा बड़ा पढ़ा होगा आपने
0: जी,
1: पर क्या ये फॉलो हो पा रहा है, कैसा कर पा रहे हैं? आज रात में 8 बजे सो जाएंगे तो नींद अच्छी आएगी, 7 घंटे सोएंगे तो मन फ्रेश रहेगा। सिविल सर्विस वालों का कहता है कि आप 14 घंटा पढ़ें, 4 घंटा घूमें, इतने देर सोएं, क्या हो पा रहा है? क्योंकि आप कंपटीशन की दौड़ में हैं, आप बार बार सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप न्यूज़ देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी घट गई है। तो आपको कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो जिस चीज़ को हम नया कह रहे हैं वो पुरानी ही चीज़ें हैं अपनी, उनको वापस लाना है। अब सिर्फ नया से आप पाश्चात वाला संस्कृत वाली बातें आ रही हैं कि आप गाड़ी ले रहे हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो साइकिलिंग से थी वो भी खत्म हो गई। तो हम तो ये नहीं कह रहे कि आपको दूर जाना है तो आप साइकिल चला के जाएंगे, लेकिन अपने स्वास्थ्य के लिए या तो साइकिल चला के स्वस्थ हो जाएं, और या तो फिर योगा करके, या तो कुछ और स्विमिंग करके, कुछ ना कुछ तो आपको अपने लिए एक मानक तय करना पड़ेगा कि हमारे पास जो आपको पसंद हो। बाकी तो जब कोई बीमारी होती है तो उसके लिए एक प्रशिक्षक है, वो आपको बताएंगे कि ये वाला योग, ये वाली मुद्रा आपके लिए ज्यादा अच्छी है। इसीलिए जरूरत है कि प्रशिक्षित लोगों से सीखा जाए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए।
0: तो आपने कहा कि एक जो चीज बढ़ाने की बात की, उससे मुझे गांधी जी का वो थॉट याद आ गया कि ये कहा गया कि अब तक जो करते आए हो अगर वही करोगे तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। तो ये बात मुझे बड़ी क्लिक की है कि हाँ, कुछ तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब आपको तय करना है कि आप शिक्षित हैं या सिर्फ डिग्री है, ये हमको खुद तय करना होगा। दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने कहा कि एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर यानी प्रशिक्षित जो हो, तो ये कैसे हम जाने कि कोई एक योगा इंस्ट्रक्टर हमको बेहतर मिले? क्योंकि जैसा कि आपने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अगर आप इसको सही ढंग से नहीं करेंगे तो ये चीज आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है, जैसे बाकी चीजें होती हैं। तो हम कैसे एक अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर तलाश करें, क्या उसके मानक होते हैं, कैसे हम पता करें?
1: देखिए, जो सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी प्रशिक्षित लोग हैं, तो निश्चित तौर पर उन्होंने एक डिग्री ली है, उस पर काम किया है, उनको पूरा ट्रेंड रूप से स्किल्ड है, पूरी तरीके से स्किल्ड है। जब आप किसी मोहल्ले में जाएंगे या ऐसे ही किसी सीख रहे हैं, हो सकता है वो भी अच्छा सिखाते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे जो सरकारी विभाग के तहत जो लिए जाते हैं उनका एक मानक तय है कि आपको ये डिग्रियां होनी चाहिए, इसके तहत तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा वो मानक पे खरे उतरने पे। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि जब मानक पे खरे उतरे हैं तभी लिए गए हैं, इसलिए आप बेफिक्र होकर वहां पे जाएं। जैसे आप स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं तो आप ये पता कर लेते हैं इनका एफिलिएशन है कि नहीं है, वहाँ पे सही टीचर हैं कि नहीं है। या आप अच्छा, जब आप सीखने भी जाते हैं तो आपको एक हफ्ते में पता चल जाता है कि ये कैसे हैं। तो आपने वो, तो इसके लिए तो आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा, और सबसे अच्छा है कि सरकारी सेंटर्स पे जाएं जहाँ प्रशिक्षित लोग ही हैं।
0: तो आपने ये बताया, चूंकि सरकार का अपने मानक है, उस मानक के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है जो भी योगा इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी पूरी तरह से ये इंश्योर किया जाता है कि वो प्रशिक्षित हो, स्किल्ड हो, सीखा हो, प्रैक्टिकल किया हो, उसके बाद लिया जाता है। तो ये एक सीधा और आसान तरीका है कि भाई आप आयुष मिशन के तहत जो हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां जाके सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे आप सीख सकते हैं एक बेसिक जो भी आप योगा जाना चाहते हैं, एंड इसके बाद ये चीजें तो आप घर पे भी खुद से कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? अच्छा, इसको अगर बढ़ावा देना है तो मान लीजिए अभी जो हमारे श्रोता इस वक्त आपको सुन रहे हैं, वो अपने लेवल पे कैसे इस चीज को बढ़ा सकते हैं, अपने साथ साथ अपनों का भी, जैसे कह सकते ना, भला करने के लिए?
1: देखिए, पहले तो आप खुद जाने स्टार्ट करें। जब आप सीख के आएंगे आपको अच्छा फील होगा, आपको लगेगा कि बॉडी सुधार आ रहा है, परिवार भी जागरूक होगा, कहेगा अच्छी चीज कुछ करके आए हैं। फिर जो परिवार के और लोग बीमार हैं उनको लेके जाइए, धीरे धीरे बात ये मोहल्ले तक जाएगी, मोहल्ले के बीमार लोग, जैसे होता है ना, सब लोग मिलते हैं, कहते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, कैसे ठीक हुए, अच्छा डॉक्टर बताइए, अच्छा ये बताइए, क्या खाया जाता है इसमें, कैसे लोग जान जाते हैं कि चीनी नहीं खाना है शुगर में, किसी ने बचपन में तो पढ़ा नहीं था, मोहल्ले में ही बताया, उनको हुआ तो उन्होंने खाया, रसगुल्ला नहीं खाना है, आपने छोड़ दिया, वैसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही जब आप सीख के आएंगे, अच्छे से करेंगे, फिट होने लगेंगे, तो पड़ोसी को भी लेके जाएंगे, भैया आप भी बीमार हैं, आप भी चलिए, मानवता यही तो है कि आप ठीक हुए दूसरे को ठीक करें, लेकिन आप ही अस्वस्थ हैं तो दूसरे को क्या सलाह दे पाएंगे। इसलिए एक लोग जाएंगे तो धीरे धीरे कतार बनेगी वो।
0: बेशक, यानी जो भी लोग हमको सुन रहे हैं तो वो अपने नियर बाई सेंटर्स को जो है वो विजिट करें, अब जाएं सीखें और खुद पहले उसका लाभ मिलें, खुद महसूस करें, फिर जब खुद वो सेटिस्फाइड हो जाए तो वो चीजें स्प्रेड करें लोगों को, लोगों तक उस बात को पहुंचाएं। बेशक, ये बिल्कुल सही है। और एक चीज जो हम और आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में कि क्या सावधानियों की जरूरत होती है जब हम योगा कर रहे होते हैं, क्योंकि योगा से फायदा तो होता है लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, कहाँ पे हम गलतियां कर जाते हैं योगा को करने या सीखने के दौरान।
1: देखिए मोटी मोटा तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि जैसे एक तो आप सुनते होंगे कि बिल्कुल खाली पेट करना चाहिए
0: जी,
1: सुबह और शाम का दो समय जो लिया जाता है इसलिए लिया जाता है कि सुबह वो ना आदमी का पेट खाली हो जाता है फ्रेश होने के बाद, और शाम को भी इसलिए 6 बजे के लगभग लोग उसका है योगा करने के लिए, क्योंकि दोपहर में आप 1:30 से 2 बजे तक खाना खा लेते हैं 5-4 घंटे बाद में खाली पेट होता है। तो ये बातें जब आप इस तरीके से करते हैं, फॉलो करते हुए, तो आपको कुछ लाभ मिलता है। मान लीजिए आपको जानकारी नहीं है, आपने योगा तो सीख लिया, यूट्यूब पे देख लिया, खाना खाया भूल गए आप, मुद्राएं शुरू कर दी, तो आपको दिक्कत आ जाती है। इसी काम को बेहतर तरीके से किस आसन में, अच्छा किसको क्या बीमारी है, उसको किस योगा की जरूरत है, इसको कौन बताएगा, इसीलिए इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है। वो उपलब्ध हैं, अच्छे हैं, स्किल्ड, इसलिए वहां जाइए। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों की सावधानियां रखनी पड़ती
0: है। जैसे कि सही कहा आपने कि कोई चीज जब बेहतर होता है तो लोग डिस्कस करते हैं कि हमने ये खाया था तुम भी खाओ, लेकिन यहाँ तो ये कि भाई इंस्ट्रक्टर आपको आपकी बीमारी और आपके हेल्थ के अकॉर्डिंग चीजें बताने वाले, इसीलिए तो वो ट्रेंड है ना, ट्रेनर है। ऑफकोर्स चूंकि हमने बहुत सारी बातें आपसे की, पहले तो हमने आपके जीवन के बारे में जाना, आपके छात्र जीवन के बारे में, आपकी अचीवमेंट के बारे में, एंड इसके बाद हमने चूंकि जाना कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के पद पे आपका कार्य क्या है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी बातें बताई आपने। आयुष के बारे में उसको पूरा एक्सप्लेन किया, मिशन के बारे में बताया किस तरह से चलाया जा रहा है। तो लास्ट में चूंकि ये सारी बातें हुई हैं और हमारे बहुत काम की है, जाने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप प्लीज अपना कोई लाइफ मंत्रा बताएं जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो उनको जरूर उनको इंस्पिरेशन मिले आपके लाइफ मंत्रा से। आपका कौन सा ऐसा मंत्रा है लाइफ का सबसे बड़ा?
1: देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं इस विषय पे बोलने के लिए आया हूं, सबसे पहले खाने का टाइमिंग सुधार लें, सब लोग कोशिश करें
0: जी
1: कि दोपहर का खाना 12-1 बजे तक हो जाए, रात का खाना 7:30 से 8:30 के बीच में हो जाए, और कम से कम आधे घंटे का फिजिकल वर्क नेचुरल रूप से जरूर होना चाहिए। नेचुरल रूप से मेरा कहने का मतलब है कि बाहर निकल के जाएं, घर के बाहर टहलें, कुछ नहीं कर सकते तो टहल सकते हैं टहलें, मान लीजिए किसी कारण से नहीं टहल सकते हैं तो हल्की धूप जो सुबह की हो तो उसमें बैठें, जो प्राणायाम जानते हैं वो करें। तो ये करना पड़ेगा, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपका मन किसी चीज़ में नहीं लगेगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हों आपके अगल बगल हो रही हों, आपका मन उदास रहेगा, मन आपका अपनी बीमारी में ही लगेगा, कोई आपसे बात करेगा आपका लगेगा नहीं। इसलिए आप अपने आप को समय दें, लोग आप दुनिया को तो समय दे रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने आप को समय नहीं दे रहे, अपने आप को पहचानिए और अपने आप के लिए क्या जरूरी है उसके लिए काम जरूर करें।
0: बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि भाई आपको लग भी रहा है क्योंकि आपके पास कोई मिलने आता नहीं, आपको लगता कोई समय नहीं दे रहा है, एंड ऑफकोर्स आप खुद भी समय दे रहे होते हैं लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू दे रहे होते हैं और अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों को दे रहे होते हैं। और ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी हमने अपने को ही वक्त देना बंद कर दिया। शायद सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कई कई दिन हो जाता है और लोग आसमान की तरफ निगाहें उठा के नहीं देखते हैं कि आज आसमान कैसा दिख रहा है, आज हवाएं कितनी ज्यादा ठंड है, आज पेड़ किस तरह लहलहा रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब हमको ये चीजें देखनी होगी जो कभी हम लोग देखा करते थे, जो कभी देख करके हमारे मन में चीजें जहन में बदल जाया करती थी। बहुत ही शानदार आपसे बातचीत के अंश रहे, और अब चूंकि जाने का बिल्कुल वक्त आ गया है, जाने से पहले एक ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन जो हम आपसे करना चाहेंगे। इस वक्त आप बैठे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला FM है। जिस तरह से अभी ये टॉक शो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये गोंडा वासियों को या इसके जो श्रोतागण है जो सुनते हैं इसको, उनके लिए कितनी वैल्यू एड कर रहा होगा उनकी लाइफ में?
1: देखिए पहले तो इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया और एक अच्छा सेटअप बनाया है। गोंडा जैसे इसको लोग पहले पिछड़े जिला मानते थे, लेकिन आप इसको अग्रणी ले जाने में आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान है। छोटी छोटी बातों को हम लोग कैसे गांव तक पहुंचाएं, आपकी बातों को लोग दूर दूर तक सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। तो किसी चीज़ को अच्छे से पहुँचाने का कला जो FM के थ्रू से हो जाएगा वो ऐसे नहीं पहुँच सकती। अपनी बातों को रखने का एक सही प्लेटफॉर्म जो आप लोग देते हैं और सभी लोग को देते हैं, जो और भी विभाग हैं या सरकारी योजनाएं चल रही हैं या क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें भी गांव के दूर दूर दराज तक पहुंचती हैं। जो आप एक पोस्टमैन का वाला भी काम आप लोग को कहा जाए तो आप लोग कर रहे हैं, अच्छा है। तो आप कहिए और अच्छा चले, और आपके श्रोताओं को मैं दोबारा शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो लोग भी आपके और आप व्यूअर्स को बढ़ाएं, श्रोताओं को बढ़ाएं, क्योंकि इसमें आप लोग कुछ ना कुछ सकारात्मक बातें करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है।
0: जी बेशक, बहुत अच्छे ढंग से आपने सारी बातों को कवर किया। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हमारे साथ में आज मौजूद हैं डॉक्टर अमित सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर हैं और फिजिशियन हैं होम्योपैथ के। आपसे हमने बात की और आपने हमारे सारे प्रश्नों का बहुत ही सहजता व सरलता के साथ उत्तर दिया। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि भाई आप भी सुनते रहिए, अभी ट्यून करे रहिए अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, और कल फिर मुलाकात होगी अगले बार इसी शो में किसी नए मेहमान के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ और जानेंगे और जिंदगी में कुछ ना कुछ अपने वैल्यूज हम हर रोज ऐड करते रहेंगे इसी FM के साथ में मिलकर के। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन्न पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840-3395-84। अब बारी है आपकी।

0: हाँ जी, तो फितूर तो चढ़ गया है और फितूर चढ़ता रहेगा भाई। शाम का वक्त हो गया और फितूर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है चढ़ा होगा आपको अपने दोस्तों की याद का और साथ ही साथ में उनके साथ में एक कप चाय का, क्यों जी हमारी मित्रानी।
1: जी हाँ बिल्कुल, चाय का चस्का इतनी टाइम तो बेहतर
0: बेहतर।
1: यस
0: ओके, तो मुझे लगता है आप जब अभी आ रही थी तो आप क्या चाय वाय पी के आई हैं, हमारे साथ चल के पीने वाली हैं?
1: मैं चाय पी के आई हूँ।
0: अच्छा पी के आई हैं
1: जी।
0: अच्छा हम लोग पी के तो नहीं हैं।
1: ना ना हम लोग पी के नहीं हैं, चाय पी के हैं।
0: ओके चाय पी के हैं, चाय पी के आने वाले हैं। चलिए चाय तो पी लिए हैं, हम सोच रहे हैं तब तक पानी पी के आते हैं हमारे लिसनर्स जब तक आते हैं। आज दिन है एंटरटेनमेंट का डोज वाला और हमारे साथ में भाई हमारी मित्रानी हैं। कौन कहाँ से आई हैं, क्या लाई हैं, कितनी सारी बातें हैं, कितने मसाले हैं इनके पास, वो आप जानेंगे आपके अपने शो गोंडा मैसेज मसाला में जो कि चल रहा है। वक्त हो चला है 6:13, आपने ट्यून के रखा रेडियो का 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और हमारे साथ में हमारी प्यारी सी मित्रानी। हाँ जी हमारे मित्रानी है, तो फिलहाल आप इस गाने को एंजॉय करिए, हम इनसे थोड़ी सी तब तक चिट चैट कर लेते हैं और देखते हैं भाई इन्होंने चाय के साथ में क्या क्या खाया, हमारे लिए क्या लेके आई हैं, क्या नहीं लेके आई हैं और आप क्या बना रहे हैं, आपसे भी पूछेंगे आज के कॉल इन शो में। फिलहाल ये गाना

0: subscribe now.
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: हाँ जी दोस्तों, तो एक बार पुनः से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। हाँ, और वक्त हो गया है, अगर भाई स्टूडियो क्लॉक कहूँ तो 6:17 यानी कि आपके मसालेदार चिट चैट का। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो आप कर ही रहे होंगे बैठ के ना, किसी ना किसी से चाय पी रहे होंगे। तो लेकिन हमारे बीच में भी आज हमारी मित्राणी है, जिनका नाम मैं बताऊँ या आप खुद से बताना पसंद करेंगी? हमसे कहा जा रहा है नहीं नहीं मत बताइए, तो मैं चाहूँगी आप खुद ही बताएं हमारे प्यारे लिसनर्स को।
1: जी नहीं, अभी अपना नाम नहीं बताएंगे, केवल आवाज सुनाएंगे।
0: ओहो, क्या बात है भाई, ये भी है, ऐसा भी हो सकता है
1: जी।
0: ओहो, फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी हमारी प्यारी मित्राणी जी, कि आज दो वैसे हमारा दिन है बुधवार, और बुधवार को हमारे लिसनर्स खेलते हैं गेम, और गेम में होता है अंताक्षरी। जैसे हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए अंताक्षरी खेलते हैं, तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं?
1: सच्ची बता दूं कि झूठ बोलूं?
0: सच्ची मुझसे बताइए ना।
1: मैं तो लोगों का दिमाग खाती हूँ।
0: अरे आज तक हमने सुना था भाई, कोई फ्राइड राइस खाता है, कोई बिरयानी खाता है, कोई खाता है पापड़, कोई इडली ढोकला सांभर, और कोई कुछ भी खा लेता है, लेकिन दिमाग भी खाने वाली चीज़ होती है।
1: वैसे मैं नॉनवेज नहीं खाती, लेकिन जो दिमाग खाने में मज़ा है वो कहीं और किसी चीज़ में नहीं है।
0: ऐसा क्या
1: जी?
0: मतलब उसे क्या क्या मतलब फ़ायदे होते हैं, आज मैं आपसे जानना चाहूँगी।
1: फायदे ये होते हैं कि सामने वाला जो बैठा है वो इरिटेट होता है, लेकिन आपको कुछ कह नहीं पाता।
0: अच्छा, मतलब सामने मैं बैठी हूँ, मैं इरिटेट हो रही हूँ, मैं आपको कुछ कह नहीं पा रही हूँ, आप ऐसा कहना चाह रही? मुझे तो ऐसा कहीं नहीं फील हो रहा है।
1: जी जी नहीं, सिर्फ ये आपके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए होता है।
0: ओहो, कुछ लोगों के लिए होता है, मतलब फ्री टाइम में आप कुछ लोगों का दिमाग खाना पसंद करती हैं, या ऑल टाइम आप दिमाग खाना पसंद करती हैं?
1: नहीं, फ्री टाइम में।
0: फ्री टाइम में, ओके। फिलहाल ये वक्त है आपके शो गोंडा मैसेज मसाला का, और जिसमें मसाले भर के लेके आई हमारी मित्राणी। ये अपना नाम तो नहीं बता रही है, मुझे लगता है जाते जाते मुझे उद्घोषणा करनी होगी इनके शुभ नाम की। भाई देवी जी हमारे साथ में है, और इनका नाम भी देवी से ही कहीं ना कहीं संबंधित है, तो मन तो नहीं कर रहा है कि मैं बताए बिना रहूँ। क्या चाहती हैं?
1: अभी नहीं बताइए।
0: ओहो, अभी नहीं बताते हैं, सीक्रेट रखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं चाहती कि आप क्या आज कुछ खास लगता है आपको, कि आज कुछ खास पड़ता है?
1: आज तो बहुत खास पड़ता है, खासकर क्रिकेट प्रेमियों के लिए।
0: ओहो, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ है
1: जी, बिल्कुल।
0: ओह, तो जरा आप हमें बताएंगी या फिर कुछ वक्त बाद बताएंगी?
1: ये भी कुछ वक्त बाद बताऊंगी।
0: हे भगवान, हमको लग रहा है हम अपनी मित्र के साथ नहीं, हम किसी सस्पेंस धारी के पास में बैठे हुए हैं।
1: इसीलिए हम कहते हैं मुझे दिमाग खाना पसंद है।
0: हे भगवान, अच्छा मैं इशारों में दिमाग खाने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से? इतनी देर से इशारा कर रही थी और इशारों में बता रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये जो इनका इशारा है वो मेरी ही तरफ है। कोई बात नहीं, चलिए आप हमारा दिमाग ऐसा करते हैं ना कि ऑफ एयर चल के खाइए, और फिर आते हैं अपने श्रोताओं से बताएंगे कि भाई आज 10 जून को है क्या खास क्रिकेट प्रेमियों के लिए। वैसे क्रिकेट हमारे देश का तो गेम है नहीं, फिर हम लोग इतना इससे लगाव क्यों रखते हैं, आपने कभी ये सोचा है?
1: हाँ सोचा है, सबकी अपनी पसंद होती है।
0: क्रिकेट का जो बोलेंगे ओरिजिनल फॉर्म है, वो हमारे यहाँ कब से खेला जाता है, बाबा दादा के ज़माने से खेला जाता है। आपको मालूम है वो क्या है?
1: नहीं, जो मेरे बाबा और दादा थे ना, वो गिल्ली डंडा खेलते थे।
0: ओहो, उसी को तो हम कह रहे थे, देखिए पकड़ लिया तुरंत से, क्या मजाक कर लेते हो आप।
1: हम पकड़ते बड़ा अच्छा है।
0: अच्छा जी, तो छोड़ दीजिए, अब जी चलते हैं और आते हैं, फिर दोबारा से आप पकड़ लीजिएगा, मतलब इसी पॉइंट को, इसी बात को, और इसी पर और चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक लेंगे एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक, और भाई हम इंतजार कर रहे हैं अपने प्यारे लिसनर्स का। लिसनर्स, आज गेम स्टार्ट करेंगे हम 6 कितने बजे से स्टार्ट करें, क्या लगता है? 6:30
1: उसको भी नहीं बताते हैं।
0: अरे बाप रे, आई एम गॉन रियली इरिटेट,
1: ये मेरा हुनर है।
0: ओह माय गॉड, भाई इनसे थोड़ा सा हुनर सीखते हैं, तब तक आप एंजॉय करिए ये गाना, हम आते हैं लेकर हुनर का थोड़ा बहुत डोज, तब तक आप लीजिए प्यारा सा गाने का डोज।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती है लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 9125707093 और 9696746406। कपड़ा

0: वैसे मुझे लगता है कि चना जोर गरम मिलना चाहिए चाय के साथ में। आपका क्या ख्याल है मिस सस्पेंसर?
1: चना जोर गरम मिलना तो चाहिए
0: हाँ,
1: लेकिन किसी मनपसंद शख्स का अगर साथ मिल जाए चाय के साथ तो हाँ? क्या बात है।
0: ओहो, मनपसंद शख्स का साथ भी होना चाहिए। वैसे भाई मेरे साथ में तो आज मिस सस्पेंसर, इन्होंने अपना नाम बताने से मना किया हुआ है, और आज का दिन है बुधवार। बुधवार यानी कि गुंडम ऐसा मसाला में होता है आपका गेमिंग सेक्शन और गेमिंग वाला दिन। लेकिन उससे पहले भाई हमारी प्यारी मित्राणी यानी कि मिस सस्पेंसर कुछ लेके आई हैं, मैं वो आप लोगों तक पहुँचवाती हूँ इनकी जुबानी। देखते हैं क्या है इनके पास, क्या लेके आई हैं आज आप खास।
1: सफ़र।
0: अच्छा सफ़र, किसका सफ़र?
1: ये तो लिसनर सुनकर बताएंगे।
0: ओह ऐसा भी है।
1: जी हाँ,
0: शुरू करिए फिर।
1: सफर इंतजार का हो या प्यार का हो, अच्छा नहीं लगता। सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि आज तक खत्म नहीं हुआ। आखिर ये सफर था किसका, किसी के आने का या फिर किसी के जाने का या खुद को पाने का। हम आगे इस कहानी को शुरू करते हैं, आप ही ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं अपना नाम बता ही देती हूँ।
0: सच में?
1: जी मैं अपना नाम बता ही देती हूँ।
0: चलिए जान लेते हैं।
1: मैं ललिता कहानियां सुनाती हूँ। आपका सफर भी किसी के साथ शुरू हुआ होगा? हाँ हाँ, आपसे बात कर रही हूँ।
0: जरा सुनने वालों से,
1: सुनने वालों से।
0: ओ,
1: आपका सफर किसी के साथ शुरू हुआ होगा, ठीक है, सोच लीजिए ये सफर उन्हीं के साथ है। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। वो सुनसान रास्ते, खामोशी, बेचैनी, क्या था इस सफर में? कौन था जिसका इंतजार था? क्या कोई आने वाला था या किसी के जाने का इंतजार था? कुछ तो बड़ा ही खतरनाक था, क्योंकि आप भी इसे शायद खुद से जोड़ पाएंगे। ये किसी और का नहीं, मेरा ही इंतजार था घर से लेके DMC तक का।
0: माई गॉड, ऐसा मतलब ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया गया पहले, फिर नाम नहीं बताया गया, फिर उसके बाद में मिस सस्पेंसर ने अपना ही नाम बताया अपने मुंह से, मुखार बिंदु से। वैसे भी कहा नहीं मैंने कि देवी जी के नाम से इनका कहीं ना कहीं टैली करता हुआ नाम है, यानी कि इनका नाम है मिस ललिता, और इनको बड़े ही प्यार से लोग मिस ललिता बुलाते हैं। क्यों
1: जी?
0: और बड़ी प्यारी सी आवाज़ है आपकी, और काफ़ी क्यूटनेस है आपकी आवाज़ में, मुझे अच्छी लगी। और ये आपने मतलब कब लिखा, कैसे लिखा, क्यों लिखा, इस कहानी का अगर मैं पूछूं तो मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको?
1: मोटिवेशन, मैं DMC की स्टूडेंट हूँ।
0: ओके।
1: यही मुझे असाइनमेंट मिला था कि आपको 7 मिनट में कोई ऐसी स्टोरी लिखनी है कि जिसमें सस्पेंस हो, लास्ट में कुछ फनी या कुछ ऐसा ऐड करो कि लिसनर लास्ट तक सुने उसको। फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, जब समझ में ना आए तो कुछ तो करना चाहिए।
0: हाँ।
1: फिर मैंने सोचा कि कुछ तो लिखते हैं।
0: हाँ।
1: तो कुछ लिखते लिखते मुझसे ये लिख गया।
0: ओके, बट काफ़ी मतलब इनोवेटिव लगा मुझे, और काफ़ी सारी जगहें ऐसी लगी कि इसमें अभी बहुत कुछ हम भर सकते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मुझे जो लगता है ना कि चीज़ें मतलब एट द एंड मतलब ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए, उसमें कुछ होने की संभावना बचनी चाहिए, वो चीज़ बेहतर होती है।
1: जी
0: हाँ, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और कितनी देर में आपने इसको लिखा?
1: 7 मिनट।
0: 7 मिनट
1: जी,
0: काफ़ी अच्छी शुरुआत है वैसे आपकी।
1: थैंक यू सो मच।
0: आई होप ये सफ़रनामा काफ़ी प्यारा हुआ आपका, आगे भी आप ऐसे लिखते रहो। तो दोस्तों, ये है हमारे बीच में हमारी DMC की एक प्यारी सी स्टूडेंट जिनका नाम है ललिता, और ललिता जी ने काफ़ी अच्छा लिखा और आप तक पहुंचाया। और अब वक्त हो गया है कि आप का गेम सेगमेंट स्टार्ट किया जाए। आज का गेम यानी कि अंताक्षरी, हम अंताक्षरी की ओर बढ़ेंगे, और हम चाहेंगे कि हम टीमों को 2 भागों में डिवाइड करें। एक होगी हमारी लड़कों की टीम और एक होगी लड़कियों की टीम। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ललिता जी, आप कितने वक्त तक हमारे साथ में बनी रहेंगी?
2: अभी समथिंग 40 मिनट तक तो हम हैं ही।
0: समथिंग 40 मिनट तक हमारे साथ में ललिता जी हैं, तो आप किसकी टीम को संभालना चाहेंगे, लड़कों की या लड़कियों की?
2: ऑब्वियसली लड़कों की टीम को।
0: ओह माय गॉड, ठीक है भाई, हमारी ललिता जी संभालेंगी आज लड़कों की टीम को, हम संभालेंगे लड़कियों की टीम को। मतलब दो भागों में हम टीम को डिवाइड करते हैं, और जब तक ललिता जी हमारे साथ बनी हुई हैं तब तक हम गेम इन्हीं के साथ में करेंगे। और अगर आपके पास में भी कोई नगमा या कोई गाना या कोई क्लू आता है तो आप उधर से कॉल करके बेशक हम तक पहुँचा सकते हैं। और लिसनर्स, हम चाहेंगे कि आप कॉल करने के लिए नंबर अपना मिला लें, अपना फ़ोन उठा लें और

0: से मैशअप को सुनाते हैं आपको, जो कि विशाल मिश्रा जी की आवाज में है। और विशाल जी कहाँ से आपको पता है? नहीं पता है? नो आइडिया। ये है हमारे कानपुर के उन्नाव से। जी हाँ, हमारे जो प्यारे सिंगर हैं विशाल मिश्रा जी, जिनकी आवाज़ बड़ी ही प्यारी है। और क्या बोलें, सानू गाना आता है इनका? को
1: थोड़ा सा सुनूंगी फिर याद आएगा।
0: ओके सानू अखियां चुरा ले पर दिल से ओ बीबा मैनू दूर ना करी, ऐसा करके समथिंग लाइक दैट कुछ है।
1: yes.
0: है ना, कितनी प्यारी आवाज़ है। तो चलिए इन्हीं की आवाज़ का लुत्फ उठाते हैं और फिर आते हैं गेम सेक्शन की ओर। चाहेंगे कि आगाज़ आपके कॉल से ही हो, तो प्लीज़ कॉल मिलाएं। शो चला आपका गुंडा मैसेज मसाला विथ आरजे बीना वाला। फिलहाल कुछ दिनों के लिए बीना मैम अभी भी नहीं आएंगी, हो सकता है मंडे से वो कंटिन्यू करें। तब तक एंजॉय करिए आप अपने शो को अपनी आरजे आकांक्षा के साथ में और आज के गेम को भी।

जी श्रोताओं, तो इस गाने में बरसे एक वर्ड आया है और मैं चाहती हूँ कि जिस भी कॉलर की कॉल लगे वो बरसात से रिलेटेड कोई भी गाना सुना सकता है। बारिश, बरसात, बरखा, बस बारिश की बात हो उस गाने में। तो कॉल मिलाए 6933-16429 पे, क्योंकि आपके गेमिंग का सेगमेंट अब हो गया है स्टार्ट। फिलहाल एंजॉय करते हैं इसी ट्रैक को और इंतजार करते हैं आप सभी की कॉल्स का।

0: हाँ जी, और हमारे पास में पहली कॉल आ गई है। देखते हैं हमारे साथ में कौन है, कौन से लिसनर है, कौन से कॉलर है, किसने हमें कॉल किया है। वैसे टीम हमारी बढ़ चुकी है। हेलो
1: जी।
0: हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार
0: जी, अपना शुभ नाम बताएं।
2: प्रकाश भारती
0: जी। प्रकाश भारती जी, आप हमें कहाँ से सुनते हैं?
2: गोंडा से ही सुनते हैं।
0: गोंडा में कहाँ, स्पेसिफिक प्लेस का नाम बताएं।
2: हमारे गांव का नाम है रोहतावा
0: जी। ये हुई ना बात, अपने गांव का नाम थोड़ा गर्व से लेना चाहिए, वो आपने ले लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको गाना जो गाना है जनाब, वो गाना है बरसात वर्ड से।
2: ओके। बरसात

0: रात के मौसम में तन्हाई के आलम में अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो।
1: आगे
0: आगे मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया और मैं मांगे कुछ नहीं आते थोड़ा।
1: क्या बात है, बहुत खूब, आपने बहुत ही मतलब सच्चाई के साथ में इसको निभाया है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच जी। तो ये थे हमारे साथ में हमारे प्यारे लिसनर और इन्होंने आगाज भी कर दिया। इस हिसाब से बॉयज़ टीम ने जीत लिया है 10 पॉइंट और अब हम चाहेंगे कि हमारी गर्ल्स टीम भी भाई फटाफट से रेडी हो जाए और आ जाए चैटबॉक्स की ओर। सॉरी चैटबॉक्स की ओर नहीं भैया, कॉल करना है आप लोगों को, फ़ोन उठाना पड़ेगा उसके लिए। हाँ जी, तो फ़ोन उठाए, कॉल मिलाएँ और कॉल कर लें ताकि हमको पता चल जाए कि लड़कियों की टीम जीतने लायक है या नहीं। वैसे तो लड़कियां हमारी टीम में हैं, यानी कि तब तक जब तक हमारे साथ में हमारी मित्रानी है। मित्रानी इतना आप शांत क्यों हैं?
2: नहीं, मैं बोतल उठा लाया फिर उधर जोर दे रही थी।
1: ओके, तो चलते हैं भाई, हमारे पास में लग रहा है कोई और नेक्स्ट वाली कॉल आ गई है। हेलो।
3: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते,
3: रेणु तिवारी
1: जी। रेणु जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसी है रेणु जी?
3: बार बोल दिया नमस्ते नमस्ते आप।
1: अब क्या बताएं, हमको इतना अच्छा लगा आपसे नमस्ते करने में कि हमने 3-4 दफा कह ही दिया इकट्ठा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, कैसी है रेणु जी?
3: थोड़ा ज्यादा नहीं, नजर लग जाएगी।
1: ओ माय गॉड, तो फिर मैं चाहूंगी कि आप नजर वाला ही कोई गाना सुना दीजिए।
3: नजर वाला?
1: नजर
3: हमें ज्यादा आता नहीं, आता है यही जो है, जो अवधि में आता है ना।
1: हाँ हाँ,
3: ये सब आता है।
1: कौन सा?
3: नजर वाला?
1: हाँ।
3: अरे यही जो नाच गाने में शादी विवाह में गाया जाता है।
1: चलिए आज हम चाहते हैं कि आप अवधि कोई क्षेत्रीय भाषा में कोई गाना गा दीजिए, नजर वाला ही।
3: आपके यहाँ लागू हो या नहीं?
1: हमारे यहाँ सब लागू है, आप गा दीजिए। आप अगर गाने पे आ गई तो सब लागू हो जाना है। जी
3: जी। नजरे लागी राजा तेरे बंगले में, नजरे लागी राजा तेरे बंगले में, जो मैं होती राजा काली कोइलिया, जो मैं होती राजा काली कोइलिया, तू तेरा तू राजा तेरे बंगले में।
1: क्या बात है भाई, बहुत खूब, मतलब
3: इतना,
1: अरे बहुत सुंदर गाया आपने पहली दफा, मतलब मैं क्या ही बोलूं। और दूसरी बात, आपने हमारी मित्रानी यानी हमारी ललिता जी को विवश कर दिया गुनगुनाने पे, बहुत मजा आया भाई। आजकल ये गाने गाता कौन है, किसी को आता कहाँ है?
3: हमारे साथ यहाँ होता है अभी भी।
1: वाह क्या बात है भाई, हमें लगता है
3: दो चार किताब
1: आप लिख डाली, हम तो कहते हैं
3: जी किताब लिखा है, मौका नहीं मिलता, नहीं तो आते आपके पास। आप तो हमारे हृदय के पास है, सिर्फ नंबर से पहचान देती हो।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। और कहते हैं ना, दिल से दिल की आवाज जुड़ी होती हो और इसी से कहीं ना कहीं असर होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉलर की ओर। जी रेणु जी, ओके शुक्रिया, चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में कौन है। हेलो।
4: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
1: वेरी वेरी गुड इवनिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कमल नयन जी।
4: मैं माँ से गाना है ना,
1: तेरे बंगले पे पासे गाना है, गाना पासे गाना है।
4: माँ से मैम?
1: पा भैया, तेरे बंगले पे
4: जी। उन्होंने तो माँ लाया ना लास्ट में।
1: अच्छा, नजर लागी राजा तेरे बंगले पे, अब इसमें माँ कहाँ है जरा बताइए।
4: उन्होंने जितना गाना गाया उसमें माँ ही वर्ड आया है, मैंने देखा है।
1: अच्छा, क्या गाया था जरा बताइए।
4: नजर लागी राजा तोरे बंगले में।
1: अच्छा, पे है या में है?
4: सारी लेसन सुन रहे थे, चलिए कोई बात नहीं, मैं माँ से गा रहा हूँ।
1: नहीं नहीं, वेट वेट वेट वेट, तो एक काम करिए कि आप माँ से ही सुना दीजिए।
4: मेरी तरह तुम भी कभी प्यारी करके देखो ना, मेरी तरह तुम भी कभी प्यारी करके देखो ना, चाहत का मुझे सनम इकरार करके देखो ना।
1: मैं तो चाहूंगी मेरी तरह आप भी कभी मार करके देखो ना किसी से एक दफा।
4: किसको मैम?
1: मुझे भी नहीं पता है, मैं मजाक कर रही हूँ भाई।
2: लेकिन मार करना है, हाँ। प्यार वाली मार करना है,
1: ये बात सही है। देखिए हमारी मित्रानी है, आज ही हमें संभाल लेंगी, हम थोड़ा सा सरफिरे इंसान है, ये हमें थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे।
2: और बॉयज वाली टीम हमारी है तो संभालने का मौका हमें मिलना चाहिए।
1: ओ, हम तो भूल ही गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी। तो ये थे हमारे कमल जी, और पीछे से कॉल आ रही थी, देखते हैं नेक्स्ट कॉल किसकी आती है, लड़का होता है लड़की होती है, निकलता कौन है फोन के अंदर से। हेलो,
5: गुड इवनिंग डियर मैम।
1: ओह माय गॉड, फाइनली एक लड़की आई और बोली बड़े प्यार से, डियर मैम गुड इवनिंग टू यू डियर। जरा बताएंगी लास्ट वर्ड कहाँ पे आया था?
5: ना,
1: देखो ना। ओके, तो हमारे लिसनर्स को याद होता है, हम भूल जाते हैं कि लास्ट वर्ड क्या है। तो जरा बताइए, आपको गाना तैयार है आपके उधर से, इधर भेज रही हैं आप?
5: बिल्कुल।
1: सुनाइए।
5: नैनो वाली ने मन मधुशाला, मेरा चैन वैन अपने साथ ले गया, नैनो वाली ने वाली ने छेड़ा मन का पहला, मक्सल का ही दुशाला, मेरा चैन वैन रैन अपने साथ ले गया। थैंक यू।
1: इसमें सबसे अच्छा मुझे यही लगा, जानती है क्या, नैनो वाली ने आह, ये जो आपने आह कहा है ना, आह हो गया है हमारा
2: अदाओं के साथ।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सृष्टि जी। तो भाई ये थी हमारी सृष्टि जी, और इस तरह से कहीं ना कहीं ये जो सफरनामा शुरू हुआ है आज के गेम सेगमेंट का, यानी कि अंताक्षरी का, 20 पॉइंट पे हैं बॉयज, 20 पॉइंट्स पे हैं गर्ल्स, मतलब बराबरी पे हैं। और लास्ट दफा भी यही हुआ था, आपको पता क्या हुआ था लास्ट दफा?
2: नहीं, लेकिन बॉयज ध्यान रखिए, हमें जीतना है। कहाँ हैं आप, आ जाइए।
1: ओहो, आवाज़ भी दी जा रही है, कोई बात नहीं, बता देती हूँ। लास्ट दफ़ा ये हुआ था कि बॉयज़ ने पूरी कोशिश की, पूरी जद्दोजहद की, ठीक है। लास्ट में ये हुआ कि दो हमारी फीमेल लिसनर्स की कॉल आ गई लगातार, और इस तरह से विजयी हो गई हमारी गर्ल्स टीम। देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे कौन है। हेलो
6: हेलो,
1: हाँ जी
6: कमल नयन।
1: हाँ जी कमल नयन जी, कहाँ पे इस दफा रुके थे?
6: ये रेशमी झूठे, ये सलमकिया थे, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी।
1: ओके, भा से, क्या बात है भाई, बड़ा ही चैलेंजिंग वर्ड आपने दे दिया है, मुझे लगता है आप किसी की भाभी जी ही आएंगी। बहुत शुक्रिया।
6: अगर भा से नाम कोई नहीं गाएगा तो मैं गाऊंगा।
1: अरे देखते हैं कौन आता है। थैंक यू। तो ये थे हमारे कमल नयन जी, और देखते हैं भा से भाई नेक्स्ट वर्ड है, और देखते हैं किसकी कॉल आती है, बॉयज होते हैं या गर्ल्स होते हैं। वैसे तो आप सुनाना चाहे तो सुना सकती हैं, वैसे ये बारी तो गर्ल्स की है, तो क्या मैं सुनाऊं?
2: जी नहीं,
1: कॉल का ही वेट किया जाए,
2: करते हैं।
1: ओके, फिर देखते हैं भाई,
2: आप हमें कुछ सुना सकती हैं,
1: आपको
2: जी,
1: आपके लिए
2: जी,
1: स्पेशली
2: जी।
1: नहीं, मेरे जहन में बहुत खराब सा गाना आ रहा है, मैं आपको सुना नहीं सकती।
2: कोई बात नहीं, हम सुन लेंगे।
1: मिले जो तेरे नैना हमारे नैना से, अब जादू नहीं चलाते हैं, फोन उठाते हैं। हेलो
7: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
7: मेरा नाम मुकुना अंसारी है, मैं मोदी गुजरात से बात कर रही हूँ।
1: ओहो, बड़े ही दिनों बाद भाई, अपनी वेरी इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट लिसनर से हमारी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात तो ये है खुशी की कि मोहसिना जी हैं सामने हमारे। मोहसिना जी कैसे हैं आप, पहले अपना हाल चाल बताएं।
7: आप बताएं, आप कैसी हैं?
1: बस आपके दुआओं जैसी, आपने जैसे दुआ मांगी होगी ना कभी खुदा से, बस वैसे ही हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ये बताइए लास्ट वर्ड क्या था? भा। ओहो, हमारे बीच में भा से गाने के लिए हमारी मोस्ट इंटेलिजेंट लिसनर, फीमेल लिसनर आई हैं, और आज दारमदार इन्होंने समझ, वैसे बहुत कम कॉल्स करती हैं आपको बता दूं ललिता जी, बट मोहसिना जी का मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम। हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो बहुत ही इंटेलिजेंसी का लेवल रखते हैं।
2: ओके,
1: हाँ, तो भा से प्लीज आप अपने गाने को प्रस्तुत करें।
7: भवले ने खुलाया फूल फूल तो ले गया राज कुमार, भवरे तू करना न भूल, फूल तेरा हो गया इधर उधर,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, इस तरह से आपने टीम को बचा लिया। अभी हम बराबरी पे चल रहे हैं। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। हमें तो लगा था भाई कि भास से हमें भाभी जी को बुलाना पड़ेगा और यहाँ से भवरा आ गया और हमारी प्यारी ललिता जी का कहना है कि भाई हमें आता था, आप अगर ना सुना पाती ना तो हम आज जिता देते लड़कों को। फिलहाल अब यही कहेंगे कि रा से आया है जो वर्ड, तो अब हम रा पे नहीं जाएंगे, हम चलते हैं ओके 7 बजे तक ऐसे ही चलने देते हैं। रा है नेक्स्ट वर्ड और उसके बाद हम आपको शब्द देना शुरू कर देंगे। फिलहाल रा से देखते हैं किसकी कॉल आती है और कौन सुनाता है नेक्स्ट सॉन्ग। आप सुना सकती हैं, आप तो लड़कों की टीम में हैं और लड़कों की बारी है।
2: मैं इंतजार करूंगी।
1: हाय रे दादा, सस्पेंस और इंतजार, ये आपकी लाइफ से कभी बाहर गया है या नहीं?
2: मैं बिल्कुल जाने ही नहीं दूंगी।
1: क्या लड़की है, मुझे लगता है मेरा ही ऊपर का माला खाली है, सटका हुआ है, लेकिन हमारे जितने फ्रेंड हैं सबके सब ऐसे ही हटेले हैं।
2: यस मैम, वो एक्चुअली हम दिमाग खाते खाते हो जाता है।
1: चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर। हेलो हेलो
8: हेलो,
1: पीछे ट्रैक्टर चलत है कि ट्राली चलत है, पहले हमें ई बतावा जाए।
8: मैम खेत में है मैम, पानी चला रखे थे।
1: क्या
2: इंजन चल रहा है?
1: इंजन चल रहा है।
2: यस
1: ओके। अच्छा पानी पानी में खड़े होके कितना सुकून मिलता है पहले ये बताइए, गर्मी के सीजन में?
8: मैम वाटर जो है खुला नहीं, मलारी वाटर उससे ज्यादा
1: सुकून मिल गया हमको। अब हम जान गए वाटर पार्क से ज्यादा आपको यहाँ पे मजा आ रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है। कुछ कहना चाहेंगी?
2: जी मैं ये कौन सा हम लोग को वर्ड
1: वर्ड कौन सा मिला है?
2: अक्षर अक्षर।
1: हाँ अक्षर, रा रा रा।
2: तो रा से आप क्या सुनाने वाले?
8: तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है।
1: जी आप गाना सुना रहे थे, आप सामने वाले से कह रहे थे रुक जाना, फिर उससे आप कह रहे थे तुमसे मिलने।
8: नहीं मैम, गाने में जो है वही वर्ड गाऊंगा, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रूफ है गाने का, जो कहोगे तुरंत
1: दिखाऊंगा। हमारे
8: जितने गाने गा रहा हूँ उतने गाने मैं आपको ये बताऊंगा किसने गाया है, मतलब किस सन में गाया गया।
1: तो ठीक है, किसने गाया, किस सन में गाया, क्यों गाया ये बताइए।
8: अरे मैम ये तो नहीं बताऊँ क्यों गाया है मैम, फूल और कांटे का मतलब ये गाना है और 19 ये गाना है और नदीम श्रवण का गाया हुआ गाना
1: जी
8: है।
1: जी नदीम श्रवण का गाया हुआ मान लिया हमने, लेकिन हमें ये जानना ही नहीं, हमें तो ये जानना है उन्होंने क्यों गाया है।
8: मैम आस्की में क्या कहते हैं, आस्की में जैसे जब दर्द होता तो लोग गाते हैं।
1: और अगर वो बिना दर्द के गा रहे हो, उनको सिचुएशन दिया गया हो, जबरदस्ती
8: हर एक मौसम का सॉन्ग होता है मैम, जैसे बिना दर्द का भी गाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है।
1: ओके बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी, आप जब भी आते बहुत मजा आते हैं, थैंक यू सो मच। भाई ये थे हमारे साथ में हमारे कमल जी, और इस तरह से इन्होंने बॉयज़ की टीम को पहुंचा दिया है 40 पॉइंट पर, गर्ल्स की टीम हमारी 30 पॉइंट पर, और इन्होंने क्या गाया है, तुमसे मिलने को दिल करता है।
2: हाँ।
1: तो हाँ से नेक्स्ट वर्ड है, तो भैया हम कुछ पल देते हैं हमारे गर्ल्स को कि वो कॉल करें और फटाफट से कॉल करें, जल्दी से कॉल करें ताकि हम आगे बढ़ पाएं गेम में। वैसे अगर आपको हाँ से गाना गाना होता तो आप क्या गाती?
2: मुझे सोचना पड़ेगा क्योंकि प्यार वाला गाना मुझसे गाया नहीं जाता।
1: तो कौन सा गाना गाती हैं, आचार विचार वाला? प्लीज़ हमारे पास कॉल आ गई है आपसे, हम आपका मंतव्य ज़रूर पूछेंगे। हेलो
9: हेलो
1: हेलो, कैसी हैं आप?
9: मैं ठीक ठाक हूँ, आज कौन आई है?
1: अल्ले आज हमारे बीच में कौन आई है, जरा आप खुद से अपना परिचय दें।
2: जी मैं हूँ ललिता।
9: अच्छा वही मैं सोच रही कि और एक आवाज कौन है, वही
1: मैं जानती। जी जी जी, तो आज हमारे बीच में हमारी डीएमसी की एक प्यारी सी स्टूडेंट है जिनका नाम है ललिता, और ये हमारे बीच में बनी हुई है, और हमने कहा आज भाई गेम सेगमेंट है, वैसे तो ये शोज से थोड़ा सा दूरी रखती हैं, ये इनको वीडियो ज्यादा पसंद है ना?
2: यस
1: वीडियो एडिटिंग ज्यादा पसंद है, लेकिन इन्होंने कहा कि चलिए आज गेम का सेगमेंट है तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगी, तो हमने कहा चलिए चलते हैं। तो आपको मालूम है सविता जी किससे गाना गाना है? हौस से शायद गाना नहीं है, हौस से ही गाना है। हाँ गाइए हौस
9: से ही गाना है।
1: सॉरी मैं थोड़ा मजाक कर लेती, मेरी आदत है, मैं बिना मजाक के रह ही नहीं पाती।
9: तो ठीक है, तो मैं हौस से ही गा रही हूँ।
1: हाँ आप हौस से हंस भी सकती हैं। क्या बात है, आपने तो खाना पूर्ति कर दी. मजा आया. गाइए.
10: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना. हेलो.
1: हाँ आगे. हम तो सोच रहे अभी आगे और आप सुनाएंगी.
10: नहीं आगे आप सुना दीजिए.
1: तुम्हें

0: सकते नीना जी तुम्हारे बिना। भाई उधर से एक गाना है। नहीं नहीं आप सविता जी हैं, वो तो मुझे मालूम है, आप क्यूटनेस की दुकान है, हमारी नीना जी हैं, उन्होंने उधर से गाना भेजा है। हम तो चले हम परदेसी हो गए, वो हेल्प कर रही थी तो हमने कहा बता दे। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया।
1: हम नहीं जी सकते।
0: बिल्कुल हमें मालूम है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: शुक्रिया मैम
0: जी। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, भाई लगातार कॉल आ रही है। हेलो
2: नमस्ते आकांक्षा मैम।
0: जी नमस्कार जी, गुड इवनिंग आपको, बहुत बहुत शामे सलाम, शामे सुकून आपको मिले। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपको मालूम है सुरेश जी?
2: हाँ, तो होंडा से सुनाता है
0: जी। हाँ बहुत सही, आप बिल्कुल सही आपने वर्ड सुना है, प्लीज गाएं।
2: अच्छा अच्छा
0: जी।
2: ना मानू ना मानू ना मानू रे दगाबाजी तोरी बत्तिया, ना मानू रे दगाबाजी तोरी बत्तिया, ना मानू रे।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जमुना का मूवी है।
0: जी जी जी जी बहुत
2: वाला गाती है लता की आवाज में।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया गाना हम तक पहुंचाने के लिए, ख्याल रखें सर।
2: थैंक यू
0: जी, थैंक यू। तो अभी हम चलेंगे और हम भूल गए हैं कि हमने कितने पॉइंट किसको देने हैं लगातार बीच में, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ डुअल हुआ है लड़का या लड़की का?
3: नहीं, नहीं नहीं नहीं,
0: सिंगल सिंगल चल रहा है, मतलब हम पॉइंट्स बराबर रखेंगे। और अभी अगर किसी लड़की की कॉल आई तो फिर हम समझेंगे कि लड़की अपना मतलब पॉइंट रख रही है, अगर लड़के की आई तो लड़के आगे हो जाएंगे।
3: लड़को नाक मत कटवाना।
0: अच्छा लड़को नाक मत कटवाना, कितनी लंबी नाक है आपकी?
3: छोटी सी है।
0: छोटी सी है ना, वो भी
3: कट, वो भी कट गई तो फिर शक्ल अच्छी नहीं बची।
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, आप हमारी मित्राणी हैं, आपकी नाक नहीं कट सकती है, कटेगी तो हम जोड़ देंगे, कोई बात नहीं।
3: फेविकोल से?
0: अरे फेविकोल से लग रहा है मुझे एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक ले लेना चाहिए इसी बात पे। आपने फेविकोल की नाक नहीं नहीं फेविकोल का नाम ले लिया तो मुझे लगता है अब एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर बढ़ ही जाना चाहिए। और उस पार आएंगे दोस्तों तो हम आएंगे वर्ड से, और दगाबाज तोरी बतिया ना मानू रे, तो देखते हैं हम आपको कौन सा वर्ड देते हैं। और इस बार बारी है वैसे गर्ल्स टीम की, और चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर।

0: हाँ जी, और चैट बॉक्स में काफी सारे मैसेजेस आए, मेरा ध्यान तो अब ही गया है इस ओर। तो चलते हैं पहले मैसेजेस ले लेते हैं आप सभी के, और उसके बाद आएंगे गेम सेक्शन की ओर। और गेम में अब होंगे वर्ड्स की बारी, वैसे तो बारी है लड़कियों की, तो लड़कियां फोन उठा लो, फोन मिला लो, वरना भैया हार जाएंगे। पिछली दफा आप लोग ने जिता दिया था, लेकिन इस दफा लग रहा है आप हरा देंगी। तो वर्ड मैं दूंगी आपको अभी थोड़ी देर में, लेकिन तब से उससे पहले ले क्या कहती है मैसेजर ले लेना
1: जी।
0: हाँ, तो सबलू सावंत जी हमारे साथ में मुंबई बोरीवली से लिखते हैं, शुभ संध्या आरजे कांक्षा जी और साथ में आई हुई नई आरजे जी को।
1: थैंक यू सो मच
0: जी। हाँ, ये आपकी बड़ी प्यारी सी क्यूट सी आरजे हैं। और इसके अलावा हमारे बीच में है शैलेंद्र रिझारिया जी खजुराहो एमपी से, गुड इवनिंग आकांक्षा जी बोला है, और गुड इवनिंग मिस ललिता।
1: गुड इवनिंग,
0: क्या बात है, आपका ओरिजिनल नाम इन्होंने पूरे ही शिद्दत और शफा के साथ में लिखा है, ऐसा लग रहा है मुझे, बड़ा अच्छा लगा, मिस ललिता।
1: थैंक यू सो मच।
0: दीपांशी तिवारी जी हैं, गुड इवनिंग मैम दोनी, अच्छा दोनों दोनों कैसी हैं आप दोनों। उसके बाद ही हाँ भाई, इतना हंसती है कि मुझे लगता है मेरी कॉम्पिटिशन में अगर कोई होंगी तो दीपांशी तिवारी जी ही होंगी हंसने के। बिल्कुल। नीना जी हैं, आकांक्षा जी और ललिता जी को नमस्कार, आपको भी आदाब। और दीपांशी जी ओके, वेरी नाइस सॉन्ग, ओके थैंक यू। और इसके अलावा बरसोरे मेघा मेघा इन लोग का अपना अलग ही चलता है। और धर्मेंद्र मोहन भारती जी हैं, आकांक्षा जी गुड इवनिंग, ललिता जी गुड इवनिंग, गोंडा मैसेज मसाला में आपको वेलकम है, और ललिता जी को मेरा फ्रेंडशिप पहुंचाना। ओके, तो ये आपकी बिल्कुल से आपकी फ्रेंडशिप इन तक पहुंच गई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे मैसेज के लिए धर्मेंद्र जी। और नेक्स्ट में है हमारे पास में वाह वाह वाह वाह, ये वाह वाह किस बात पे हुआ था, मुझे लगता है आपने जो कविता पढ़ी थी
1: ओ
0: उसके लिए
1: सफर,
0: जी जी सफर। और रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी हैं, गुड इवनिंग डियर स्वीट वाली आरजे आकांक्षा जी, ओके थैंक यू सो मच फॉर योर स्ट्रॉबेरी से क्या बोले लबरेज, ये प्यारे से शब्द जो हम तक पहुंचाए आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सबलू सावंत जी, एक बोतल ही है जो किसी को जिंदगी की दवाई है, चाहे हो दवाई या शराब दोनों काम आती है। ओके, आप इतना अच्छा गाती हैं, अगर संभव हो तो आप भी एक गाना सुना दीजिए आरजे आकांक्षा जी। ओके, फिलहाल मैंने गा लिया है सविता जी के साथ में, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद में अरे बाबा नहीं अरे बाबा नहीं, ये क्या था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट मैसेज की ओर। और सबलू जी भाई बता रहे हैं ललिता जी नहीं है, आरजे आयुषी जी हैं। नहीं जी, आरजे आयुषी जी नहीं है, ये ललिता जी ही हैं, और हमारी ललिता जी बड़ी ही प्यारी हैं। और फेविकोल नहीं, फेविक्विक, कोई भी नहीं है यहाँ पे, फेवी कुक,
1: हम लोग कुक करेंगे।
0: हाँ जी, तुरंत से फेवी कुक कर देंगे। जी अभी चलते हैं, हमें लग रहा है लगातार बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। और अनिल शास्त्री जी हैं जो हमें सुनते हैं गोरखपुर से, आपको भी शुभ संध्या अनिल जी। और चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन है, इनको वर्ड भी देना है हमें एक। हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, भाई आपकी आवाज हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं, हमारी रीना शर्मा जी हैं रुड़की उत्तराखंड से, क्यों?
2: हेलो
0: हेलो,
2: अरे मैं सीता से बात तो बोल रहा हूँ, ललिता मैम को भी गुड इवनिंग।
0: ओके, एक्चुअली पता है आपकी आवाज और रीना जी की आवाज सेम टू सेम है।
2: हाँ, मुझे लगा आप पहचान नहीं होंगे, अभी बोलेंगे जब आपने नाम बोला तो मुझे।
0: एक तो थोड़ी दूर से बोल रही थी आवाज, थोड़ा क्लियर भी नहीं आ रहा था। ओके, तो हमारी गीतू जी आ गई हैं भाई। और गीतू जी, आप इतने दिनों से गायब थी, आज आपने दर्शन दिए हैं फाइनली, कैसी हैं आप? पहले आपका अपना हाल चाल बताएं।
2: मैम ठीक है, अच्छे मैम, कुछ घर बनवा रहे हैं तो जब काम रहता है तो उधर बिजी हो जाते हैं।
0: हाँ,
2: अभी इस समय हस्बैंड की छुट्टी है तो वो इस समय चले गए हैं प्लॉट पे, तो हम नहीं गए तो घर पे हैं।
0: ओके, ये बात है, मतलब काफी बिजी हैं हमारी ललिता जी, सॉरी ललिता जी नहीं, हमारी गीता जी। हमें मारे पड़ जाएगी, हमको लग रहा है हमारा दिमाग फिर गया है।
1: नहीं मैम, वो मैंने स्टार्टिंग में जो बोला था कि हम दिमाग खाते हैं, वो असर हो रहा है।
0: हाँ, मुझे लग रहा है मेरा दिमाग खा चुकी है हमारी ललिता जी। ललिता जी खा लिया है आपने? पता है
1: थोड़ा थोड़ा
0: थोड़ा थोड़ा सा हमारा दिमाग खाया गया है, तो इसलिए आज हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, माफ करिएगा गीता जी। गीता जी आपको गाना गाना है जी। हाँ, तो गाना गाना है आपको वर्ड से, और वर्ड है रात, रात से कोई गाना।
2: रुक जा रात है,
0: यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है,
2: रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते ना मिलेंगी रहना आज चांद वो तो आ रहे हैं हम एक और सुना दे रहे हैं रात कली एक ख्वाब में आई और
3: ये भी भूल गई भाई ललिता जी ने आज सबका दिमाग खा लिया है ललिता जी आपने बहुत गलत किया है दो गाने दोनों खा गए देखिए ये होता है साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं ललिता जी ने हमारा दिमाग
2: हम आपकी बात में इतना उलझ गए कि हमें खुद ललिता
1: असर हो रहा है
3: चलिए हम आपके गाने को कंप्लीट किए दे रहे हैं क्योंकि लड़कियों की टीम में हम भी हैं तो कौन सा वाला गाना शुरू मतलब कंप्लीट करें पहला वाला या दूसरा वाला
2: अरे दूसरा वाला गई मैम रात कली एक ख्वाब में आई और
3: इससे पहले मुझे पहला वाला पसंद है
2: हाँ तो पहला वाला सुना दीजिए मैम
3: रुक जा रात ठहर जा रे चंदा बीते ना मिलन की बेला

0: कंप्लीट हो गया
1: जी। आदि वो आपने सत्ता मैम का गाना गाया था ना, कौन सा वो? अरे
0: मैं भूल जाती
1: हूं। हमें तुमसे प्यार कितना,
0: हा?
1: वो भी मैम बहुत अच्छा गाया था। आप कलर क्यों करती है तो उसमें हम आपकी कभी गाना गाती नहीं, लेकिन आप बहुत अच्छा मैम गा रही हैं। हम मतलब मेरे दिल से निकला कि कितना अच्छा गा रही हैं मैम।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बस आप लोग की दुआएं हैं और बस और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू मैम
0: जी। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर भाई दोस्तों, देखते हैं कौन है हमारे साथ में। हेलो हेलो हेलो हेलो
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते जी, कैसे हैं जी?
2: बढ़िया है जी, आप बताइए
0: जी। बिल्कुल चंगा सी दसिए के मैं आपको वर्ड दूं, आप गाना चाहेंगे, उससे पहले आप अपना नाम बताएं हमारे श्रोताओं को।
2: नाम आपको हमारा पता है
0: जी? हाँ, ये हमारे बीच में हमारे अरविंद मौर्या जी जो हमें सुनते हैं मनकापुर से।
2: आप मैम ये कहीं हम लोगों का MBBS मुंडा वाला वो ना हो जाए सब कुछ,
0: मतलब
2: अरे उसमें आरजे को वो लाइक करने लगता है, हम आपके फ्रेंड बन सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं।
0: नो, ये मैं नहीं होने दूंगी। ये भाई हमारे पास में हमारे पहले ही चाहने वाले बहुत सारे हैं। और सुन रहे हैं आप क्या कह रही हैं, हमारी ललिता जी क्या कह रही हैं, कहिए।
3: मैं ये नहीं होने दूंगी।
0: हाँ तो ये नहीं होने देंगी, इनका कहने का मतलब ये
2: होना भी नहीं चाहिए,
0: होना भी नहीं चाहिए। नहीं एक्चुअली हम जिस पदवी पे काम करते हैं आप बेशक हमारे फैन हो सकते हैं और हम दिल से आपके हर एक अरमानों का कद्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ये जताने के लिए,
2: धन्यवाद
0: जी। तो अभी हम आपको वर्ड दे सकते हैं।
2: मैम ड्राइव कर रहा हूँ और मालिक साथ में बैठे हत्या कर रहे हैं, कह रहे कहाँ रेडियो पे बात कर रहे हो।
0: कोई बात नहीं, कह दीजिए उनसे, अगर आपको नहीं आता तो कह दीजिए आपके मालिक साहब ही गा दे चांद से।
2: पता जी बताइए जी, बोलिए बोलिए।
0: चांद वर्ड से, चांद चांद शब्द है।
2: चांद मेरा दिल, आगे नहीं पता है।
0: चांदनी हो तुम,

0: भाई
1: सुनिए मेरी बात सुनिए, सब गाने सबको आते हैं बट आपके आवाज सुनने के लिए सब लोग जान के आपको गाने का मौका देते हैं।
2: अरे वाह,
0: ओह माय गॉड,
2: इतना भयानक वाला कॉम्प्लीमेंट मिला हमको, क्या बताए,
0: मतलब भयानक नहीं है, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच।
1: आपकी आवाज काफी स्वीट है ना इसलिए।
0: ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
3: वो सर स्वीटनेस के साथ मिर्ची और हनी साथ में खाती है ना मैम?
0: हाँ, हनी पोटैटो हम खाते हैं, नहीं नहीं चिली पोटैटो खाते हैं, हनी चिली पोटैटो।
3: यस
0: जी जी, शुक्रिया, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ में अरविंद जी भाई, और इस तरह से अगर हम बात करें पॉइंट्स की तो बॉयज़ हमारे पहुंच गए हैं 70 पर और गर्ल्स हैं हमारी 60 पॉइंट के साथ में। वैसे ललिता जी आप भी कुछ सुनाना चाहेंगे अपनी तरफ से?
3: अभी नहीं,
0: अभी नहीं, भगवान इनका अभी कब आएगा मुझे नहीं पता है, देखते हैं कौन है नेक्स्ट हमारे साथ में। हेलो,
4: हाँ मैम, मैं मोहसिना बात कर रही हूँ।
0: जी मोहसिना जी, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद है आओ आओ से आपको गाना है, गा लेंगी?
4: आओ,
0: हाँ आओ
4: शब्द
0: जी, आओ शब्द।
4: मैं चांद पे ले जाए,
0: मैंने यही सोच के बोला ही था।
4: मैं चांद पे ले जाए, खबो भरी दुनिया दिखाए। मम्मी क्या आगे मुझे नहीं आता, बस दो ही लाइन याद।
0: ये भगवान इसे भी हम कंप्लीट करें, चले कर देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, हम शर्मा लिया गाले पहले ही बताइए।
4: नहीं आप शर्माते हुए भी अच्छी लगती हैं, आप गाते हुए भी अच्छी लगती हैं, आपको जो दिल करे चले आप वो करे
0: तो पहले मुस्कुरा लेते।
3: फर्क इतना है कि आप गाते हुए सुनाई देती हैं, शर्माते हुए दिखाई नहीं देती।
0: ए भगवान, चलिए हम गा देते हैं फाइनली,
4: बता देती है हम लोगों को कि हाँ आप हंस रही हैं और आप शर्मा भी रही हैं।
0: चलिए फाइनली हम गा लेते हैं भाई।

0: जान तेरी जान। थैंक यू सो मच मोहसिना जी।
1: थैंक यू मैम
0: जी, थैंक्स अ लॉट। चलते भाई, नेक्स्ट कॉलर भी हमारे पास में काफी दफा कॉल कर चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो भाई, जो भी है प्लीज रेडियो की वॉल्यूम को आप कम करके तभी कॉल करिए। कितनी दफा मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की है, प्लीज प्लीज प्लीज रेडियो की वॉल्यूम को स्लो करके तभी कॉल किया करें। ओके हेलो, शुभ शुभ शुभ संध्या भाई, बड़े दिनों बाद आज हम किसी की आवाज सुन रहे हैं, अगर हम गलत नहीं है तो। अपना नाम बताएं जल्दी से।
1: हम बोल रहे हैं बनारस से।
0: बनारस से बहराइच छोड़ दिया आपने, आप बनारस वासी हो गई।
1: सर बनारस है।
0: हमको लग रहा है कि आप पे गाने का असर हो गया है अनुष्का जी के। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहती हूँ, आप बनारस में, अच्छी बात है सुनिए। ए राजा हम के बनारस घुमाए दा, तो मतलब वकील साहब आपको बनारस लेके पहुंच गए।
1: यस यस।
0: क्या बात है भाई, तो इस बात पे आप बनारस का ही कोई गाना सुना दीजिए। टिंग डंग डिंग डंग डिंग डंग। आगे
1: और आप सुना दीजिए।
0: फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, के छोरा
1: गंगा किनारे वाला।
0: इसका अंतरा भी बहुत प्यारा है लेकिन हम गाएंगे नहीं, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया। तो ये थी हमारे बीच में प्रीति शुक्ला जी और नेक्स्ट कॉल आ रही है हमारे पास में, देखते हैं कौन जनाब है। हेलो
2: हेलो
0: जी, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
2: मैडम नमस्ते, मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: जी मुमताज अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो गुंडा मैसेज मसाला में। और इस वक्त जो सेगमेंट चल रहा है वो चल रहा है अंताक्षरी, आपको मालूम है सर?
2: जी जी
0: जी। तो आप गाना गाएंगे जिसमें गंगा वर्ड हो।
2: क्या जी?
0: आपको गाना गाना है जिसमें गंगा वर्ड हो, गंगा गंगा शब्द।
2: गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों हिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। गंगा जमुना सरस्वती।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: और कोई वर्ड देना चाहती है तो दे सकती है।
0: वैसे तो अभी तो बस एक ही वर्ड देना था और वो कंप्लीट हो गया है, आप नेक्स्ट ट्राई कर लीजिए।
2: मैडम एक वर्ड और दे दीजिए।
0: अच्छा आप गाना चाहते हैं?
2: जी जी मैडम।
0: प्यार
2: जी?
0: प्यार प्यार प्यार।

0: जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और कमेंट बॉक्स में भी आ गया है गजब, तो आपने गजब कर दिया है, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू मैडम।
0: जी जी शुक्रिया। चलते हैं भाई नेक्स्ट कॉल की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे अपनी मित्रानी से। मित्रानी
2: जी सखी,
0: हाँ तो आपसे बता दें हम कि हमारे जो बॉयज़ का अंक है और जो गर्ल्स का है वो दोनों ही बराबरी पे है, 80-80 पॉइंट्स इन लोगों ने बटोर लिए हैं।
2: मतलब मेरी छोरियां छोरों से कम है कि
0: नहीं? छोरियां छोरों से कम नहीं है। और अभी हमारे पास में शेष 15 मिनट ही हम लेंगे इस गेम का, आगे बढ़ाएंगे। आपके पास में वक्त है, आप रुकना चाहेंगी या घर जाना चाहेंगे?
2: अभी 15 मिनट रुकेंगे।
0: 15 मिनट रुकेंगे, यानी मतलब आप अंत करा के ही जाएंगी?
2: जी
0: जी।
2: लड़कों नाक मत कटवाना।
0: देखते हैं नेक्स्ट कॉल किसकी है और कौन है कॉल पे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे सिचुएशन देना चाहिए।
2: यस,
0: बेस्ट होगा ना, थोड़ा सा टफ करते हैं,
2: थोड़ा सा टफ करते हैं,
0: मजा नहीं आएगा वरना सिंपल सिंपल।
2: यस
0: चलिए चलते हैं फिर सिचुएशन देते हैं और देखते हैं हमारे साथ में कौन है। भाई ये तो हमें लग रहा है हमको हिला देने वाले हैं जो भी कॉलर है। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं आप?
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं?
1: फाइन
0: फाइन। ओके, चाय वाला फाइन या फिर अच्छा वाला फाइन,
1: जो भी समझिए।
0: जी अपना नाम बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: धर्मेंद्र मोहन।
0: जी हमारे साथ में धर्मेंद्र मोहन भारती जी हैं और भारती इनका उपनाम हमने दिया है। तो आपको हम एक सिचुएशन देंगे, आपको उस सिचुएशन पे गाना गाना है।
1: सिचुएशन
0: हाँ देंगी हमारी आप देंगी? हमें लगता है कि बॉयज को हमें देना चाहिए, गर्ल्स को आप दीजिएगा।
2: या ओके,
0: हाँ तो आपको एक सिचुएशन देते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे?
1: गर्मी होगी तो कौन सा गाना गाना चाहेंगे? सुनाए
0: हाँ।
1: क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिलवर आने वाले हैं, कलियाँ न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं।
0: भाई सिचुएशन को मारिए गोली, पहले तुम आपसे ये कहेंगे गाना बहुत प्यारा था, आपने बहुत अच्छा निभाया, बहुत प्यारा गाया। अब ये बताइए आपने किसको जहन में रख के ये गाना गाया? हमने आपको गर्मी दिया था तो आपने वहाँ पे कलियाँ फूल पत्तियाँ क्यों बिछाई?
1: यही तो हवा देते हैं।
0: ओह माय गॉड, चलिए अच्छा लगा आपका सिचुएशन आपने कंप्लीट किया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।
1: थैंक यू।
0: लेते हैं नेक्स्ट कॉल और देखते हैं नेक्स्ट कॉल हमारे साथ में कौन है। हेलो हेलो, हेलो हेलो,
1: हाँ नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते।
1: तो गर्मी वाला सुना दे?
0: नहीं गर्मी वाला हो चुका है, अब हम आपको दूसरा सिचुएशन देंगे।
1: अच्छा वर्ड दीजिए।
0: वर्ड नहीं देंगे, सिचुएशन देंगे। सिचुएशन ये है
1: अच्छा
0: कि आपका कोई बहुत कीमती सामान है वो खो गया है, उस टाइम पे आप क्या गाना गाएंगे? आप उसकी खोज कर रहे हैं।
1: अच्छा, हमारा कोई कीमती सामान खो गया है।
0: हाँ, और आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं, इकट्ठा करके बुला रहे हैं, मतलब उनको मुंह से नहीं बताएंगे, शब्दों से नहीं बताना, आपको गाने के माध्यम से बताना है, तो कौन सा गाना आप गाएंगे?
1: खोया खोया क्या खुला आसमान, आँखों में शाली रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया क्या।
0: जी बहुत खूब भाई, दिमाग आपने पूरा यूज किया, थैंक यू सो मच। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे बीच में हमारे प्यारे सुरेश कुमार जी, जिन्होंने इस सिचुएशन को कंप्लीट किया। और इस तरह से भाई बॉयज़ की टीम हमारी पहुंच गई पूरे के पूरे 100 पॉइंट पे। भाई गर्ल्स कहाँ हो, और लड़कियों अगर जागोगी नहीं तो आज हमारी लुटिया डूब जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ में कौन है। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी रेनू जी, आपको सिचुएशन देंगे हमारी ललिता जी। ललिता जी प्लीज सिचुएशन दें।
2: हेलो रेनू जी।
3: हाँ नमस्ते।
2: सिचुएशन ये नमस्ते, सिचुएशन ये है आपकी कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से दूर जा रहा है, वो दोबारा नहीं मिलेगा।
3: अच्छा,
2: आपको वहाँ पे कौन सा गाना अच्छा लगेगा।
3: कौन सा गाना है?
0: हाँ, इस टाइम पे आप कैसा गाना गाना चाहेंगी, क्या फील करेंगी? कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़ के जा रहा है?
3: नहीं समझ नहीं आ रहा है।
0: अरे
2: मेरे कहने का मतलब है
0: मतलब आपका कोई खास आपको छोड़ के जा रहा है तो उसको रोकने के लिए आप क्या गाना
3: गाना गाना नहीं समझ में आ रहा है ना।
0: हे भगवान,
2: सिचुएशन है हमारी मैडम, हार जाएंगी।
3: नहीं हारेंगी तो नहीं,
0: तो हमें ही गाना पड़ेगा।
3: हमारी पार्टी ताकतवर है।
2: ठीक है फिर।
0: तो फिर आप
3: हम भी तो कमजोर हो गए।
0: नहीं नहीं नहीं, आप ये मैं आपको समझा रही, कोई आपसे नाराज होकर जा रहा है उसको मनाने के लिए आप क्या गाना गाएंगी? मनाने के लिए।
3: मनाने वाला गाना तो नहीं समझ में आ रहा है।
0: कोई नाराज हो, रूठे रूठे ऐसे करके
3: कुछ
0: कोई
3: और कुछ बताए।
2: मैं बता दूं, हल्का सा हिंट देती हूं।
3: नहीं कुछ और बताए।
2: ओके तो अगर
3: आप कुछ और
2: ओके मैं एक सिचुएशन और देती हूं आपको कि अगर सास और बहू में झगड़ा हो जाए तो आप कौन सा गाना लेकर आएंगी वहाँ पे?
0: सोहर भी चलेगा, आप गा सकती हैं।
3: सोहर भी है?
0: हाँ हाँ, सास बहू में झगड़ा हो गया है, अब आपको गाना है।
2: मैम को जीतना है।
3: चूड़ियाँ बंगलोरी बंगलोरी मेरे हाथ में, चूड़ियाँ बंगलोरी बंगलोरी मेरे हाथ में, सास बहू में हुई लड़ाई उस आंगन के बीच में, सास बहू में हुई लड़ाई उस आंगन के बीच में, आओ आओ सासू लड़ लो ये झाड़ू मेरे हाथ में, चूड़ियाँ बंगलोरी बंगलोरी मेरे हाथ में।
0: भाई हमारे हाथ में खतरनाक
2: नेक्स्ट लेवल ऑसम।
0: पूरा करना चाहती है, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें।
3: सास बहू में हुई लड़ाई रसोई घर के बीच में, सास बहू में हुई लड़ाई रसोई घर के बीच में, आओ आओ सासू लड़ लो ए बेलन मेरे हाथ में, चूड़ियाँ बंगलोरी बंगलोरी मेरे हाथ में।
0: क्या बात है, मजा आ गया रीनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर, भाई देखते हैं अब कौन है हमारे साथ में। हेलो, हाँ जी, हमारे बीच में फिर से हमारी प्रीति जी हैं। प्रीति जी, आप तक एक सिचुएशन पहुंचेगा और उस सिचुएशन पे आपको सॉन्ग गाना होगा,
3: बताइए।
2: हेलो प्रीति जी,
3: होगा
0: वो चूड़िया बंगलोरी बंगलोरी मेरे हाथ में हो चुका। मजा आया सुन के वैसे। चलते हैं सिचुएशन की ओर।
2: हेलो प्रीति जी, मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ कि आप बहुत दिनों बाद किसी अपने मन पसंद इंसान से मिल रही हैं,
0: तो आप क्या गाना गाएंगी उसके लिए?
3: मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया, मैंने जो कुछ भी मांगा मिल गया, हो गई हो गई हो गई तमन्ना जवा, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया।
0: क्या बात है भाई, बहुत खूब, और इनकी तमन्ना पूरी हो गई। वैसे भी तमन्ना होती है, अगर कोई आपको बहुत चाहे और अगर आपसे मिल जाए तो उसकी तमन्ना ही तो पूरी होती है। बहुत सूटेड सॉन्ग था, काफी हद तक आप इतने करीब तक आई कि सिचुएशन एकदम परफेक्ट बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया,
3: थैंक्स
0: अ लॉट। तो भाई ये थी हमारे साथ में हमारी प्रीति जी, और इसे पहले वाला गाना तो भाई मैं कभी भूल ही नहीं सकती, चूड़ियां बंगलोरी। आप भूल सकती हैं?
2: जी बिल्कुल नहीं, और अगर उनकी सास कहीं होंगी तो वो भी नहीं भूलेंगी।
0: ओह माय गॉड, चैट बॉक्स में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन बना हुआ है, सब काफी एंजॉय कर रहे हैं, लगातार मैसेजेस भी आ रहे हैं हमारे पास में। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट कॉलर की ओर और देखते हैं आज 7 मिनट और मेरे पास में शेष है, और देखते हैं आज कौन विजयी होता है, लड़के या लड़कियां। हेलो भाई, ये फोन मिला के अपनी आवाज रेडियो पे सुनने की मतलब क्या चाहत है इनकी, आवाज हम बोल रहे उधर से आवाज ही नहीं आ रही है। देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे हमारे साथ में कौन बने हुए हैं। हेलो
4: हेलो,
0: नमस्कार, कैसे हैं आप?
4: नमस्कार मैम, बढ़िया हूँ।
0: अपना शुभ नाम बताएं हमारे श्रोताओं को।
4: मेरा नाम
0: जी, फिर से बोले,
4: जुगल किशोर वर्मा
0: एमपी से। जी जुगल जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमें लग रहा है मोबाइल से बहुत दूर होके बात करें, आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है।
4: धीमी आ रही है
0: मैं? जी जी धीमी आ रही थी अभी मैं।
4: अभी?
0: हाँ अभी एकदम क्लियर है। अभी मैं आपको सिचुएशन देना चाहूंगी।
4: ठीक है मैम।
0: सिचुएशन है आपके लिए, आप बहुत दूर हैं किसी से और आपको उस सफर को कवर करना है किसी सवारी के माध्यम से। तो ऐसे सिचुएशन में आप, मतलब मान लीजिए आपकी कोई समन स्पेशल उसे मिलने जा रहे हैं या फिर आप उसके इंतजार में हैं, तो किसी ऐसे गाने को गाइए जिस गाने में ट्रेन भी हो और साथ में गाड़ी भी हो और उस पे हीरो जा रहा हो, ऐसा कोई गाना, और अपनी प्रेमिका को ही कुछ कह रहा हो।
4: गाड़ी भी होनी मैम उसमें?
0: हाँ हाँ गाड़ी भी हो। भैया बिना गाड़ी जाएंगे कैसे इतनी दूर? गोड़े गोड़े तो थक जावा जाए ना, आजकल धूप बहुत जोर होती।
4: गाड़ी नियारा मैम याद हो जी,
0: किशोर जी की आवाज है। चलिए मैंने आपको हिंट दे दिया। गाड़ी का कोई भी गाना हो, गाड़ी हो उसमें बस, किशोर जी की आवाज है, गाना बहुत प्यारा है, काफी दफा सुना भी होगा आपने। मूवी नाम बता देती हूँ, अपराजिता या अनामिका, ऐसे कोई मूवी है।
4: अच्छा अच्छा मैम, वो पुराना गाना नहीं आ रहा मैम दिमाग में अभी तो।
0: ओके चलिए आपको सिचुएशन हम चेंज करके देते हैं। बहुत तेज़ से आपको भूख लगी है, उस टाइम पे आप कैसे गाना गाना चाहेंगे?
4: भूख नहीं आ रहा मैम।
0: ओह माय गॉड, आप अपने नाना नानी के घर गए हैं, वहां क्या गाना गाएंगे? उधर से फिर से रिप्लाई आने वाला है जुगल जी का, नहीं आ रहा है मैम। फेल तो हम आपको होने नहीं देंगे। एक चौथा सिचुएशन अब हमारी प्यारी ललिता जी देंगी, थोड़ा आसान।
4: ठीक है मैम।
2: चलिए आपको बहुत आसान सा कुछ देते हैं। क्या बाहर से घर आए हैं और घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है,
0: ऐसे में आप क्या, मतलब खुशी का गाना गाएंगे या गुस्से वाला? तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है, आप गा दीजिए।
4: अच्छा वो मैं गुस्से वाला गा दो चाहे वो गा दो?
0: हाँ वो आपके ऊपर है।
2: आप बाजार से घर आए हैं और घर का माहौल
0: नहीं आ रहा है मैम। आज माने जुगल जी पता नहीं क्या खा के आए हैं, हमें लग रहा है हमारे जितने लिसनर्स हैं ना, आपने सबका दिमाग खा लिया। भाई पहले मेरा दिमाग खाया गया, फिर हमारी गीता जी का दिमाग खाया गया, अभी हमारे जुगल जी भी पूरी तरह से उसी श्रेणी में है जिस श्रेणी में
4: आज मैम, आज अंताक्षरी में अलग तरह रख दिया हो के सुई नहीं पड़ रही मैम।
0: कोई बात नहीं, पीछे से बहुत सारी कॉल आ रही है, देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे कौन है, उनसे पूछते हैं। जी जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे जुगल जी और इस समय हमारे साथ में कौन है देखते हैं। हेलो। हाँ जी अपना शुभ नाम बताएं। सृष्टि जी आपके लिए सिचुएशन देंगी हमारी ललिता जी।
2: हेलो सृष्टि जी।
5: जी
2: मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ कि आप अगर मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड से बहुत नाराज हैं, लेकिन प्यार भी करती हैं। नाराजगी में कौन सा ऐसा गाना गाना चाहेंगी आप?
5: मेरी शादी नहीं हुई, प्लीज मत दीजिए।
2: ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं दूसरा देती हूँ आपको। आज मम्मी ने बहुत गुस्सा किया है क्योंकि आप लेट सो के उठी हैं, तो उनको मनाने के लिए कौन सा गाना गाएंगी आप?
0: ये सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है।
5: एक मिनट,
0: सारी मम्मी से डांट खा के पूछ के आएंगी तो सुनाएंगी। सुनाइए। आज हमें लग रहा है किसी का दिमाग नहीं काम करेगा। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट कॉल लेते हैं।
2: मैंने दिमाग खाया है।
0: थैंक यू सो मच, नेक्स्ट कॉल लेते हैं हम। थैंक यू सृष्टि जी। हेलो।
6: हेलो
0: हाँ जी नमस्ते, अपना शुभ नाम बताएं।
6: मनी शर्मा बोल रहा हूँ।
0: और इस तरह से मैं बता दूं श्रोताओं, 7:29 और 15 सेकंड हो गया है और ये लास्ट कॉल होगी, और अगर इन्होंने ये टास्क कंप्लीट किया, सिचुएशन को कंप्लीट किया, तो आज बॉयज विनर होंगे, क्योंकि यहाँ पर लड़के और लड़कियों दोनों की जो गणना है 100-100 पॉइंट के साथ में है। मनी जी, आपको मैं एक सिचुएशन दूंगी, आपको सिचुएशन के साथ में गाना गाना है और पूरा खरा उतरना चाहिए।
6: जी बताइए।
0: सिचुएशन है कि
2: कोई आसान मत दीजिएगा,
0: आसान मत दीजिएगा ना।
2: मैं दे दूँ?
0: नहीं,
2: लास्ट दे मेरी मैम, लास्ट
0: हम देंगे। भाई देखते हैं, दो हमारे लिसनर्स, एक बॉयज और एक गर्ल, मतलब जुगल जी और सिस्टर जी, दोनों ने हाथ डाल दिए थे कि भैया हमसे ना हो पाएगा, और मनी जी हैं, और ये पूरा एकदम सस्पेंस बना हुआ है और काफी मजा आ रहा है मुझे। मैं कौन सा सिचुएशन दूं, माय गॉड क्या दूं? आपको मैं सिचुएशन देती हूँ मनी जी, देश के लिए जब जान देने की बारी आती है, अगर उस समय पे आपको आपके परिवार और देश की बारी मतलब दी जाए, तो उसमें आप देश चुनेंगे या अपने परिवार को चुनेंगे? अब ये आपको उसी के अनुसार गाना गाना है। अगर आप फैमिली रिलेटेड गाना गाएंगे तो वो आप फैमिली को चुन रहे होंगे, और अगर आप देश के लिए गाना गाएंगे तो आप देश को चुन रहे होंगे। और देश को चुनते वक्त एक ऐसा कोई गाना गाइए जो बस सभी के दिल को पूरी तरह से देशभक्ति में कर दे। यहाँ भी सोचना पड़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल गाइए।
6: दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन तेरे लिए, बस नाम इतना ही
0: रहता। आज हमारे सारे लिसनर्स आधा पूरा ही गाएंगे भाई, पूरा हम करेंगे।
6: गाना तो कंप्लीट, गाना तो हो गया ना
0: जी, गाना हो गया, चलो कंप्लीट हम कर देते हैं। आप गाएंगी?
2: नहीं, लेकिन असर देख रही हूँ मैं।
0: देशभक्ति की बात है तो भाई देश हमारा सबसे ऊपर,
2: सर्वोपरि,
0: सर्वोपरि। और गाना भी क्या चुना है, मतलब ये गाना हर किसी को पसंद
6: जी, है। मैम बिल्कुल कमिंग सून है, बस कभी भी हमारा जॉइन लेटर BSF का आ सकता है।
0: ओह माय गॉड, आपको पहले से बधाई हो,
2: और बधाई हो
0: जी, और दुआएं भी हमारी कि आप जरूर से BSF में ज्वाइनिंग पाए। जी हाँ, और इस तरह से बॉयज टीम हमारी जीत गई है, मनी जी ने भाई जिता दिया है, और लगातार कॉल आ रही है। अब कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने पहले अनाउंस किया था 7:30 के बाद हम कॉल नहीं लेने वाले हैं। तो इस गाने को करते हैं कंप्लीट, बहुत बहुत शुक्रिया मनी जी।
6: थैंक यू
0: जी, और इस गाने को हम करते हैं कंप्लीट अब।

0: भाई क्या गाना था, क्या मतलब माहौल क्रिएट करके गए हैं मनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाई विजय पताका आज चढ़ा है हमारे लड़कों के सिर, और इस जश्न को मनाइए, कंटिन्यू करिए आपके अपने, जी हाँ, रेडियो 89.6 एफएम को। और आज का जश्न, आज का मुबारका ही मुबारका भाई लड़कों को। पिछली दफा लड़कियां जीती थी, इस दफा लड़के जीते हैं। लगातार कॉल आई, आप लोगों का प्यार मिला, आप लोग का सहयोग रहा, और गेम सेक्शन बहुत ही प्यारा रहा। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगी अपनी ललिता जी को, जिन्होंने पूरे मतलब क्या बोलूं मैं, आपने सबका दिमाग बहुत अच्छे से खाया।
1: पूरे टाइम मैंने दिमाग खाया, बिकॉज माय फेवरेट फूड।
0: ओह माय गॉड, इनका ये फेवरेट फूड है, पसंदीदा कहीं ना कहीं इनका फूड है, वो है दिमाग खाना। वैसे दिमाग खाने के अलावा आप क्या क्या खाती हैं?
1: मैं खाना खाती हूँ।
0: खाना खाती, खाने में क्या खाती हैं? चलिए अब हमको खिलाइए भाई, हमारी मित्राणी है, इतना बनता है हमारा।

0: वो भी लोगों का दिमाग खाना है।
1: नहीं अभी मैं सीरियस होती हूँ।
0: हाँ
1: हाँ मैं एवरी मॉर्निंग
0: जी
1: वर्कआउट करती हूँ।
0: ओके
1: और प्रॉपर डाइट पे रहती हूँ। बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ जिसमें मॉर्निंग से शुरू होती है मेरी डाइट। सुबह उठ के मुझे पीना है ब्लैक कॉफी।
0: ओके ब्लैक कॉफी कैसे बनाती हैं? ब्लैक कॉफी मैंने काफी सुना है।
1: सॉरी माय मिस्टेक। सबसे पहले मैं लेती हूँ गर्म पानी, उसके बाद ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी बनती है बिना चीनी की।
0: ओहो मतलब खाली पानी में, गर्म पानी में कॉफी उबाल लिया।
1: बस उबालना भी नहीं, तुरंत डालो पी लो।
0: है पानी गर्म पानी में? गर्म पानी या नॉर्मल पानी?
1: गर्म पानी।
0: गर्म पानी में कॉफी पाउडर मिला लो पी लो, ये ब्लैक कॉफी।
1: यस
0: अरे बाप
1: रे, मैं पीती हूँ।
0: इजी टू मेक।
1: यस
0: क्या बात है, बिहाने से अपनाई थम।
1: ये तो दो मैगी से भी फास्ट है।
0: ओके मैगी से भी फास्ट है। ओ हाँ ये तो बात सही है। दो मिनट भी नहीं, एक मिनट भी नहीं, मेरे को लगता है कुछ सेकंड में तैयार हो जाता है।
1: यस और फुल ऑन एनर्जी।
0: ओके इसके अलावा फिर आप बाकी क्या करती हैं पूरे दिन?
1: फिर मेरा वर्कआउट शुरू होता है। वर्कआउट के बाद मैं लेती हूँ ओट्स जिसमें सारे सीड्स मिले होते हैं। ओके
0: वर्कआउट मतलब आप जिम भी जाते हो?
1: यस yes.
0: क्या बात है भाई, हमारी लाइफ में जिम मैन बहुत सारे हैं और साथ में
1: वुमन।
0: भाई मैं मुंह से नहीं निकल रहा
1: था क्योंकि मैंने आपका दिमाग खाया है। आज शो का नाम बदल के रखते हैं दिमाग खाना।
0: मतलब मसाले में तो मसाला था, ये तो मान लिया कि आज गुंडा मैसेज मसाले में मसाला था, लेकिन उस मसाले में
1: उस मसाले को जो दिमाग में मसाला लगा के खाया गया वो ना जाने कितने लिसनर और हमारी
0: खा लिया गया फाइनली। भाई बहुत यादगार सेगमेंट रहा, बहुत यादगार एपिसोड रहा, काफी मजा आया और थोड़ा सा हटके भी आज का अंताक्षरी हुआ कहीं ना कहीं। और ऐसा लग रहा है जैसे कि जो क्रिकेट मैच नहीं होता, दो टीमें खेल रही होती हैं और उसके बाद में जश्न का जो माहौल होता है और दो कमेंट्रेटर बैठे होते हैं, तो फुल ऑन वो वाली फीलिंग आज मैंने पर्सनली कहीं ना कहीं फील की। और उम्मीद है आप लोगों को भी काफी पसंद आया होगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब जाने का वक्त हो गया क्योंकि ललिता जी बहुत देर से हमारे साथ में हैं। अब हम चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, बट बने रहिए आपके नेक्स्ट शो यानी कि गीत आपके नाम से के लिए। भाई आपकी प्रिय और सुपर प्रिय आरजे सिंपल जी भी आ रही हैं जो कि नॉट सो सिंपल है, आपको अच्छे से पता है ना, तो अपने गीतों की झड़ियां लगा दीजिए ताकि उनकी प्लेलिस्ट बन सके हाई फाई। फिलहाल के लिए लेते हैं आपसे विदा, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, गुंडा शहर की धड़कन। शो चल रहा था आपका गुंडा मैसेज मसाला, मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा और हमारे साथ में को होस्ट की भूमिका में थी आपकी अपनी आरजे ललिता जी।
1: जी थैंक यू सो मच
0: जी, बाय बाय, टेक केयर डियर लिसनर्स।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: नमस्कार आदाब एंड सत्श्रीकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में बुधवार में खास बात मुझे जरूर बताना। लेकिन उसके पहले ऐसे ही पटाखे की तरीके वाला फरमाइशी से अपना गीत नहीं टटोला है फरमाइशी की गठरी से, सो फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी से बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितनी चांद आप लगाना चाहते हैं। ओ माय गॉड, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्यों? क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके और गीत आपके नाम से तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे ना दोस्तों। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। अनिल वर्मा जी सैदापुर से, प्रवल मिश्रा गोंडा से, सबलू सावंतपुरी वाली मुंबई से, अनुष्का श्रावस्ती से, जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, और सुरेंद्र यादव गौरा चौकी से, दीपांशी तिवारी इंडिया से, सुरेश कुमार जी चौक से, निब्बर जी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, राजेश कुमार बेदर्दी गोंडा से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल मनीष शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा। स्टे ट्यून्ड, सो वेलकम इन योर शो। एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी, इतना भी नहीं करना है दोस्तों कि स्लिप ऑफ टंग हो जाए, है ना। तो इस बार बिल्कुल भी स्लिप ऑफ टंग नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। सो क्या आप सभी तैयार हैं? बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना हाँ, मत बोलो मैं ही तैयार हूँ दोस्तों। एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। और पहली फरमाइश है अनिल वर्मा जी की सैदापुर से। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना फलक से तोड़ के देखो सितारे। अच्छा जी, फलक से सितारे तोड़ के लाएंगे कैसे पहले ये बता दीजिएगा, देखेंगे तो बाद में। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: फलक से तोड़ कर दे,
0: गानों में इश्क प्यार मोहब्बत कितने प्यारे होते हैं, रिश्ते भी कितने प्यारे होते हैं। रियलिटी चेक करके एक बार असलियत का पता जरूर लगाना चाहिए।

लिखा है एक अफसाना तेरे लिए, हमने एंजॉय किया है फलक से तोड़ के देखो सितारे, आन मिलो सजना का ये गाना अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर जो कि है सैदापुर से। सो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी और ये जोरों शोर से कहना चाहूँगी कि अभी तो इस गाने को सुनने के पहले मैंने आप लोग को तैयार होने के लिए कहा था कि हम लोग को चलना है फलक से सितारे तोड़ने के लिए, हम सितारे तोड़ने के लिए जाएंगे, जर्नी में हम आप लोग की फरमाइशी गीतों को भी इंजॉय करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमने गाना सुना ना आप लोग के साथ में, मेरा मूड तुरंत चेंज हो गया। कह के इतना बढ़िया गाना था, इतने प्यारे प्यारे शब्द थे कि मैंने फिर कैंसिल ही कर दिया सितारे तोड़ने के लिए। यहाँ से ही हमने ख्वाबों में सितारे तोड़ लिए, अब हमें फलक पे जाने की क्या ज़रूरत है, क्यों सही कहा ना मैंने। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुस्तफा जी सऊदी से, क्यों ही सऊदी से, अरे सच्ची सच्ची बोल दो ना कहाँ से। सो मुस्तफा जी और प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आप दोनों का स्वागत है, इट्स कुमार फ्रॉम MP रीवा, स्टे ट्यून्ड और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। हाँ सो अगली फरमाइश हमारे पास पे है प्रबल मिश्रा की और प्रबल मिश्रा को सुनना है गोंडा से गाना जाने मन तो खूब है। हाँ सो कल तक इनको लोनली फील हो रहा था, आज इनकी जाने मन खूब हो गई है। बताओ प्रबल जी आपका मूड स्विंग तो मेरे से भी ज्यादा होता है, हाँ थोड़ा सा इलाज कर लो। अरे बाहर जाके एलोपैथी में ना इलाज करो तो आयुर्वेदिक वाला घर का ही नुस्खा ट्राई कर लो, काम आता है। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना प्रबल मिश्रा जी की फरमाइश पर, स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

पास ही बिठा लो ना अपने जाने मन को, काहे को दूर करते हो। सो हमने एंजॉय किया है ये गाना प्रबल मिश्रा की फरमाइश पर, जो कि हैं गोंडा सेना। और लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबलू सावंत की बोरीवली मुंबई से। सबलू सावंत को बोरीवली मुंबई से सुनना है गाना, जब मैंने तेरा नाम लिया तो आपने किस का नाम लिया। सो तीसरा कौन मूवी का ये गाना एंजॉय करेंगे उदित नारायण जी की आवाज में, हमारे सबलू सावंत जी की फरमाइश पर, जो कि है बोरीवली मुंबई से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

उत्तराकोन मूवी का ये गाना हमने एंजॉय किया है सबलू सावंत जी की फरमाइश पर, जो कि हैं बोरीवली मुंबई से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है अनुष्का की श्रावस्ती से। अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। सो एंजॉय करेंगे हाउ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ हमारी ब्यूटीफुल सी अनुष्का की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। रूही आपका स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल। स्टे ट्यून्ड।

में बात बन गई। हमने एंजॉय किया है ये वाला गाना हमारी अनुष्का की फरमाइश पर, जो कि है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, जानते हैं किसकी? अरे आप लोग तो जानते ही होंगे, आप नहीं जानेंगे तब कौन जानेगा। फिलहाल जानते हैं, तब भी मैं बता देती हूँ आप सभी को कि अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की, और जुगल किशोर वर्मा जी को सुनना है लता जी की आवाज में गाना पत्थर के सनम मूवी का। सो एंजॉय करते हैं ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आवाज विकास गोंडा से रवि, और कैफ मोबाइल वाले गोंडा से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल, हु इज नॉट सो सिंपल। कितने प्यार से बोलती हूँ ना, और कितने ताव से बोलती हूँ हु इज नॉट सो सिंपल। लेकिन ये पहले की बातें थी दोस्तों, वक्त बदलता है, लोग बदलते।

याद रखोगे कि भूल जाओगे, हमने एंजॉय किया है। जग्गू दादा की फरमाइश पर ये वाला गाना। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है कृष्णा वर्मा की दुखरनाथ से, और कृष्णा वर्मा को दुखरनाथ से सुनना है इमरान हाशमी का गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा। ओहो आहा, पहचाना? इतने रोमांटिक से गाने को भला कौन नहीं पहचानेगा। पिक्चर का नाम बताऊं? बता दूं, तुम मिले अब गाना।

सजी है, हमने इंजॉय किया है तुम मिले का ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना ये दिल वालों की बस्ती है। सो एंजॉय करते हैं ये 90s का सुपर डुपर हिट गाना, वो भी रीमिक्स वर्जन वाला स्टेट।

हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी हमारे पास में सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है OMG गाने की। जी हाँ दोस्तों, सुकुड़ सी की पेटी को खोल लीजिए, क्योंकि इस बार फिर से हम इंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला नगमा। ओह माय गॉड। सो दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार से, और निब्बर जी को रानी बाजार से सुनना है गाना धिंक चिका धिंक चिका धिंक चिका धिंक चिका ए ए ए ए। सो एंजॉय करते हैं ये ब्लॉकबस्टर सॉन्ग सिर्फ और सिर्फ निब्बर की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

सो दोस्तों, ये तो फरमाइश थी निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। तो क्या ख्याल है पब्लिक, कहाँ अगली फरमाइश कैसी होगी? सो एंजॉय कर दें एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर गाना। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है किसकी? अगली फरमाइश हमारे पास में है संदीप की, पटेल नगर गोंडा से। और संदीप को पटेल नगर गोंडा से सुन

ये जलवा हमें एंजॉय किया है वांटेड का ये गाना, बढ़ते हमारे आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार बेदर्दी की। राजेश कुमार बेदर्दी को सुनना है गाना मुझे एक पल चैन ना आए सजना तेरे बिना शायद। सो एंजॉय करते हैं जुदाई का हाउ रोमांटिक नगमा हमारे राजेश कुमार बेदर्दी की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

कहां जुदाई जुदाई और कभी आए ना जुदाई, हमने एंजॉय किया है ये गाना हमारे राजेश कुमार बेदर्दी जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश दोस्तों हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना शराफत। ओहो शराफत छोड़ दी मैंने। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज में शराफत मूवी का ये गाना ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। इस फरमाइशी गीत के उस तरफ दोस्तों हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यही बने रहिएगा यहाँ रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन के फरमाइशी की महफिल में। मिलते हैं सीधे 9 बजे। अगर पेट पूजा अभी तक आप सभी ने नहीं की है तो फटाफट से पेट पूजा करके आइए, विश्राम करिए और फिर एंटरटेनमेंट की महफिल में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही बिखेरेंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी, वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ, उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और NDA शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपके अपने आरजे सिंपल नॉट से सिंपल आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। रो रो के अर्जा गुजारदा है दिल, हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। क्या दोस्तों, आप सभी तैयार हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ? सॉरी, वेलकम एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों दीपांशी तिवारी की। दीपांशी तिवारी को सुनना है हम है राही प्यार की मूवी का गाना, बम्बई से गई पूना। सो एंजॉय करते हैं अलका याग्निक की आवाज में ये सुपर डुपर हिट नगमा हम है राही प्यार की मूवी का, दीपांशी तिवारी की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आपने एंजॉय किया है ये गाना दीपांशी तिवारी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है बहुत ही अतरंगी से गाने की, और ये फरमाइश है मनीष शर्मा की, खो रहा सा गोंडा से। और खो रहा सा गोंडा से मनीष शर्मा को सुनना है अलका याग्निक की आवाज में करण अर्जुन का गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

करना, गलती इनसे हो गई। सो हमने एंजॉय किया है मनीष शर्मा की फरमाइश पर ये वाला गाना, और मनीष शर्मा है खुरहासा गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा को सुनना है गाना कर ले बेबी डांस फैंस गिव मी सोनिए चांस फैंस। सो एंजॉय करते हैं दलेर मेहंदी सुनिधि चौहान का ये पार्टी हिट ब्लॉकबस्टर सॉन्ग अजय मिश्रा की फरमाइश पर। हाँ।

ठाठ बनारसिया। हमने एंजॉय किया है रंजना का ये गाना, श्रेया जी की आवाज में हमारी प्रीति शुक्ला जी की फरमाइश पर, जो की है बहराइच से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, इट्स कुमार की एमपी रीवा से, और इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना 30 मार खान का टाइटल ट्रैक। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, लेकिन इस बार इट्स कुमार की फरमाइश पर, जो की एमपी रीवा से। स्टे ट्यून्ड।

तो हमने एंजॉय किया है 30 मार खां का टाइटल ट्रैक हमारे इट्स कुमार की फरमाइश पर, जो कि है एमपी रीवा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाली फरमाइश की तरफ। एंड दोस्तों, अगली फरमाइश होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश भी। सो अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है मुस्तफा जी की सऊदी से, और उनको सुनना है गाना याद सताए तेरी नींद चुराई तूने दिल ना लगे दिलवर। सो एंजॉय करते हैं राजा बाबू का ये गाना उदित नारायण और कविता जी की आवाज में। हाउ रोमांटिक सदाबहार नगमा, रोमांटिक रोमांटिक लवी डवी एंड मेलोडियस सॉन्ग हम एंजॉय करेंगे मुस्तफा जी की फरमाइश पर। और इसी के साथ में आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल आप सभी से लेना चाहेगी अलविदा। सो दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और तो और बस ना, और तो और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा प्यार, इतना सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेतहाशा बहुत सारा ढेर सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून, बाय बाय, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलते हैं कल। सच में खुश रहना, दुनिया को दिखाने के लिए कभी खुश मत रहना, अपने लिए खुश रहना, ठीक है? हाँ, और अपने मम्मा पापा के लिए या फिर जो सब आपको प्यार करते हैं उन सब के लिए खुश रहिएगा। अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए तो प्लीज रहिएगा। बाय बाय।

0: हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, हाले दिल उनसे मेरा मुझको ही कहने दीजिए, आप जाने क्या कहेंगे आप रहने दीजिए, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आँखों को पहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरण नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
2: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
12: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
13: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
14: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
13: विजिट करें

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणसली 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज के कार्यक्रम की तो भाई प्रतीक्षा रहती है हमको। जी हाँ, आज कालीन प्रोग्राम होता है, हम आज आप लोग बोलते हैं और हम सभी सुनते हैं। जी हमारे साथ उपस्थित हैं मनीष शर्मा जी, वेलकम करते हैं आपका। इम्तियाज अहमद जी हैं, गुड इवनिंग, आपको भी शुभ संध्या। एक्स कुमार जी हैं जी, और हमारे साथ प्रीति शुक्ला जी जुड़ चुकी हैं जी, बहुत जल्दी फिर मिले गए, क्या बात है भाई। और प्रोसेस जी जी बस बस ओके जी। तो आज तो हमारा कोई काम नहीं है, आज तो बुधवार है भाई, आज तो जो कुछ है वो आप ही हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जी तो चलिए बिना देरी किए हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। हमारे साथ प्रीति शुक्ला जी भी अभी है, बहुत दिन हो गया भाई, हमने आशु मिश्रा जी को नहीं सुना, प्रीति जी को नहीं सुना, इट्स कुमार जी की खाली हमने ये चैट बॉक्स में उनको देखा, कभी उनकी प्यारी सी आवाज़ से रूबरू नहीं हुए। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ पहले श्रोता के रूप में।
1: हेलो, हाँ मनु भाई को नमस्कार।
0: अरे दादा प्रणाम, दादा प्रणाम, चरण स्पर्श,
1: खुश रहिए और जीवन में खूब आगे बढ़े हैं।
0: जी बस बस, आपका आशीर्वाद चाहिए इसके लिए।
1: मेरा आशीर्वाद तो हमेशा ही।
0: जी क्या बात है, तो आज कार्यक्रम की आधारशिला, कार्यक्रम की नींव आप रखने जा रहे हैं।
1: अच्छा मैं पहला हूँ?
0: जी जी बिल्कुल, आप पहले ही हैं।
1: चलिए तो फिर मैं शुरू कर देता हूँ। मैं तो चाहूंगा कि आज बहुत लोगों से सुनना।
0: जी जी बहुत से लोग रहेंगे, लेकिन आधारशिला कार्यक्रम की नींव अब आपको रखनी है।
1: चलिए तो फिर मैं शुरू करता हूँ। रफी साहब का एक बहुत प्यारा शाम है
0: जी,
1: मोहब्बत के सुहाने।
0: आहा, क्या बात है भाई, वन ऑफ माई फेवरेट।
1: तो क्या मैं इसको पब्लिश करूँ?
0: जी जी निसंदेह आप प्रारंभ कीजिए।
1: तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है?
0: जी जी।
1: मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हसी रातें, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के

यही हंस के होती थी कभी अपनी मुलाकाते मोहब्बत के सुहाने दिन मेरे मायूस होठों पे तेरे गम की कहानी है।

मेरे ऑटो पे तेरे गम की कहानी है नहीं गम की ये उल्फत की निशानी है ये आंसू

0: आती है ये सब खाब के बात मोहब्बत
1: धन्यवाद सर।
2: हाँ क्या बात है भाई, हमको लगता है आपको अपनी कॉलेज लाइफ का जमाना याद आ गया।
1: एकदम एकदम सही है आपने पहचाना
2: जी। क्या मतलब कितने रोमांटिक अंदाज में आपने गाया है कि लगता है कोई
1: तस्वीर।
2: हाँ गाना तो शानदार है और आपने जिस तरह
1: से किया पता नहीं कहाँ तक पहुँचा।
2: अरे बहुत शानदार, मतलब शब्द कम है क्योंकि ये
1: अरे आप लोग भी तो हैं कि जो हमें इस स्तर पे लाके खड़ा कर दीजिए आपने।
2: अरे नहीं आप इस
1: मैं तो भूल चुका था।
2: नहीं ये हमारा सौभाग्य है कि भाई हमारे परिवार में आप जैसे सदस्य की बढ़ोतरी हुई।
1: मैं बोला कि ना कि छोटे भाई ने मुझे कहाँ से कहाँ से पुराना स्थान पे लाने की कोशिश कर रहा था, प्रयास कर रहा हूँ कहाँ तक
2: पहुँचूंगा एक दोनों। अरे नहीं बहुत बढ़िया, और आपको शुरुआत बहुत शानदार कर दी।
1: मैं तो सुनना चाहूंगा, बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं आपके यहाँ तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा।
2: जी हाँ लेकिन हम सोच रहे हैं उनको भी इसमें सुन लिया जाए अगर वो खाली हो तो।
1: अरे वो तो उसी पे है, पता नहीं कौन सा वो कविता बोल दिया था ना आपने।
2: जी
1: तो कविता है क्या बोलते हैं उसको, कौन से रूप में
2: जी,
1: तो वो उसका वर्जन ढूंढ रही थी। तो भाई वो गाना में कहाँ आ पाएगा, वो हमसे आज ही पूछ रही थी। तो उससे अगर पुराना गाना सुनना चाहे तो मैं सुनवा दूँ।
2: जी जी हाँ बिल्कुल पुराना ही सुनना चाहेंगे।
1: हाँ तो ठीक है, मैं पुराना के लिए मैं उनको बोलता हूँ
2: जी। हेलो जी,
3: पुराना कोई गाना सुना
4: कोई
2: भी, मतलब वो नहीं। हेलो हेलो,
4: प्रणाम सर।
2: अरे स्पर्श, कैसी हैं आप?
4: ठीक हो?
2: तो बस अगर कुछ नहीं आता है तो मेरे लिए नादा आप पर बहुत सूट करता है।
4: वही सुना रहे क्या?
2: अरे मतलब हमको बहुत पसंद है।
4: बोर हो जाएंगे आप सुनते
2: हैं। नहीं नहीं, हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार अच्छा लगता है, हमने अपने फोन में रिकॉर्ड कर रखा है उसको सुनते हैं।
4: अच्छा अच्छा
2: हाँ।
4: आज तो एकदम समझ में नहीं आ रहा क्या सुनाऊं आपको। आप कविता आपने कहा था
2: जी,
4: तो मैं उसको देखी तो वो वीर रस वाला है बढ़िया, तो वो तो कविता में ही ज्यादा अच्छा लगता है
2: जी
4: बोलने में
2: जी।
4: हाँ तो वो भी है, अगर आप कहें तो उसे कर दूं या कोई गीत सुनाएं।
2: जो आप चाहे।
4: अरे क्या सुनाऊं मैं, याद भी नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ उसमें।
2: आप वही सुनाइए, मेरे दिले नादा तू गम से ना गम।
4: अच्छा कहीं ये गाना सुन सब बोर ना हो जाए सर जी।
2: अरे नहीं नहीं एकदम निश्चिंत है, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं भाई।
4: अच्छा ठीक है, मैं सुना देती हूँ उसी को
2: जी।

0: क्या बात है भाई, जितनी बार भी सुनिए उतनी बार वही मादकता है, वही माधुर्य है और वही मिठास है। वास्तव में ये गीत आप पर बहुत सूट करता है।
1: आज मैं कुछ सुनाने वाली, लेकिन आज इतनी थकावट है ना कि मैं तैयारी नहीं कर पाई।
0: चलिए तो ये शनिवार को हो जाएगा, बुधवार के अलावा हम शनिवार को भी मिलते हैं।
1: जी जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से गीत।
1: थैंक यू।
0: अच्छा, सर स्पर्श और प्रणाम आपको।
1: खुश रहिए।
0: जी हाँ भाई, तो कार्यक्रम की आधारशिला यानी कार्यक्रम की नींव हमने रख दी है। हमारे साथ श्री अनिल बनर्जी जी एवं सविता शास्त्री जी। क्या बात है भाई, और मोहब्बत के पुराने दिन, क्या बात है भाई, बहुत ही प्यारा सा गीत। और अब देखते हैं हमारे साथ फिर कौन जुड़े हुए हैं। हेलो
2: हेलो
0: हेलो।
2: हाँ मनु सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार। अच्छा मुमताज अंसारी जी, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सर, और आप कैसे हैं?
0: खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं।
2: हम भी खैरियत से है, बस ऊपर वाले की दुआ है, आप लोगों की भी दुआ है सर।
0: जी जी,
2: और बताइए सर। जी
0: हेलो।
2: तो जी सर।
0: हाँ, तो हम आज आपके इस बेबाक अंदाज में क्या सुनने वाले हैं?
2: बस एक छोटा सा सुना दे रहे हैं सर।
0: जी जी,

हर खुशी है, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे तुझे।

0: मेरी हर खुशी है। जी सर।
1: क्या बात है भाई, आपकी बुलंद आवाज आपकी पहचान है, मतलब कितना खींच कर गाते हैं। बहुत प्यारा और बहुत बढ़िया खींच कर गाते हैं आप।
0: और सर एक चीज और है छोटा सा।
1: जी
0: हम कहाँ मोहब्बत के, हम कहाँ मोहब्बत के, दुश्मनों से डरते हैं। हम कहाँ मोहब्बत के, दुश्मनों से डरते हैं। कह दिया जमाने से, कह दिया जमाने से, उनसे प्यार करते हैं।
1: क्या बात है, अलल ऐलान आपने कह दिया है कि प्यार करते हैं। चलिए, मतलब आपका आपकी मोहब्बत आपको मुबारक हो।
0: जी सर, एक आपके ऊपर है।
1: जी
0: अगर कहिए तो थोड़ा सा सुना देता हूँ।
1: जी
0: मोहब्बत यही है, अकीदत यही है।
1: जी
0: अब मनु सर जी, तुझे देख लेना इबादत यही है।
1: क्या बात है।
0: जो गुम
1: है। क्या बात है भाई, बहुत शानदार ढंग से आपने प्रस्तुत किया ये।
0: जी सर, बस आपकी दुआ चाहिए सर।
1: नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और इंशाल्लाह हमेशा आगे रहेंगी।
0: और तमाम सुनने वाले अगर पसंद आए तो मुझे दुआओं से नवाज देना सर।
1: जी जी बिल्कुल निसंदेह।
0: जी सर, चलिए अच्छा सर, खुदा खुदा हाफिज सर।
1: जी तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। भाई मुमताज अंसारी जी की बहुत ही बुलंद आवाज में हमने ये गीत सुना और हम जब देख रहे थे तो फोन पर फोन आ रहे थे, भाई क्षमा कीजिएगा आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होती हैं और अब चलिए भाई देखते हैं हमारे अगले वक्ता कौन है। हेलो हेलो
2: हेलो। जी सर नमस्ते।
1: जी नमस्ते,
2: आप कैसे हैं?
1: ओहो अच्छा, मतलब पूर्व दिशा को प्रणाम। प्राची जी, आप कैसे हैं?
2: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया।
2: हेलो,
1: तो आज क्या सुनने वाले हैं हम आपसे?
2: आज एक गाना है, अगर तुम साथ हो, अलका याग्निक जी का और अरिजीत सिंह जी का।
1: क्या बात है, अगर तुम साथ हो।
2: जी।
1: क्या बात है, बहुत ही प्यारा गीत चुना आपने।
2: जी
1: जी, जी।

0: अगर तुम साथ हो। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, क्या एहसास करके इस गीत को गाया आपने, अगर तुम साथ हो, क्या बात है। मतलब जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है भाई। मतलब एक होता है गीत का गाना और एक होता है गीत को निभाना, आपने इस गीत को निभाया।
0: थैंक यू सर,
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्राची जी आपको। जी नमस्कार। जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश सिंह जी मालवीय नगर से भाई, और गीता श्रीवास्तव बहन जी जुड़ चुकी हैं। जी बहन जी प्रणाम करते हैं आपको। राजेश जी प्रणाम है आपको, और राजेश सिंह जी से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे। और हमारी गीता बहन ने तो हमको बहुत दिन हो गया, मतलब हमको लगता है साल भर हो गया कुछ नहीं सुनाया, तो आपके मधुर कंठ से पिछली बार आपका गला शायद साथ नहीं दे रहा था, लेकिन इस बार आपका गला आपके साथ होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो और बहुत प्यारा गाया। जी हाँ बिल्कुल, मतलब वास्तव में अगर तुम साथ हो, हम चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसा गाएं कि लोग कहें कि बहुत अच्छा गाया। फिलहाल देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
2: हाँ नमस्कार
1: भैया। दर्द कुमार जी कैसे हैं आप? कैसे
2: आप अपना सुनाइए।
1: जी जी प्रणाम आपको।
2: हाँ प्रणाम भैया, खुश हो।
1: जी
2: अभी अभी चला रहा हूँ।
1: जी अभी अभी
2: तो मौका मिल गया, एक छोटा सा सुनाई दे रहा हूँ।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
2: ये गीत होगा हेमंत कुमार की प्यासा प्रवीण, जाने वो कैसे लोग।
1: अरे जिनके प्यार को प्यार मिला है, हाय हाय हाय हाय, कलेजा निकालने वाला गीत है।
2: और जी आप ठीक हैं?
1: जी जी आपका आशीर्वाद।
2: बस बस सदा भगवान को रखे। तो शुरू करें। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलिया मांगे कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, बिछड़ गया हर साथी अपना पल दो पल का सा, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का, हमको अपना साया अक्सर बेजान मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जीएंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जीएंगे, न करेंगे लब सीनेंगे आंसू पीएंगे, गम से अब घबराना कैसा गम सौ बार मिला, हमने तो जब कलियां मांगे कांटों का हार मिला,
3: जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार
2: लिया।
1: क्या बात है भाई। और गीता बहन जी ने आपके लिए लिखा है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, दर्द भरा गीत और उतनी ही दर्द भरी आवाज। क्या बात है, वेरी नाइस। यानी हम आपको दर्द कुमार गलत नहीं कहते। बहुत प्यारा जी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। सही बात है, सबके नसीब में कहाँ होता है। अच्छा प्रणाम जी। हाँ भाई, तो ये हमारे दर्द कुमार जी, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। बहुत ही प्यारा और बहुत ही उम्दा ये गीत। अगर जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अब देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
4: हेलो
1: हेलो
4: हेलो।
1: अरे प्रभु चरण स्पर्श
4: आशीर्वाद।
1: अरे मतलब आज आपकी आवाज़ तो इसी दूर से आती हुई प्रतीत मालूम हुई हमको।
4: हाँ हाँ, मैंने भी जो है सोचा कि आपने कहा है तो लाइए देखते हैं।
1: अरे वाह, मतलब भाग्य
4: हम भी ट्राई करते हैं।
1: आज की रात बड़ी देर के बाद आई है।
4: बस सभी श्रोताओं को सुनते हुए मैं भी उसमें शामिल होने का मन बना लेता हूँ। और जैसा कि राग यमन कल्याण हमारा फेवरेट राग है
1: जी,
4: तो मैं उस स्केल पर आधारित कुछ गाने सोचता हूँ कि लाए जाए आपके सामने
1: जी। और ये मुहूर्त भी उसी का है।
4: जी हाँ, मुहूर्त भी समय उसका है और जो स्केल है उसकी
1: जी।
4: तो जब मैं जैसे चार पांच गाने राग यमन कल्याण वाले उठाऊंगा उस स्केल पर
1: जी,
4: तो आपको लगेगा कि जैसे एक गाने वालों के आवाज के वजह से और कुछ थोड़ा बहुत लोग मुखड़े में इधर उधर कर देते हैं सजावट के लिए
1: जी,
4: तो वो राग लगता है कि अलग अलग टाइप के राग होंगे। बट एक राग कैसे है उसको मैं आपको दो तीन एग्जांपल देने के बाद फिर जब मैं दूंगा तो आपको लगेगा कि ये सेम ही राग है। तो मैं अगर कहिए तो मैं शुरू करूँ।
1: जी जी, अरे निसंदेह प्रभु हम इच्छा में।
4: अच्छा, जैसे एक उसका भी नया ही गीत है राग यमन का, बिल्कुल लेटेस्ट। नया क्या मतलब इसी एज का है, इसी जनरेशन का
1: जी।
4: कि तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो, मेरी सांसों से कहते हो कहते हो, सोचिए तुम्हें प्यार करेगी नहीं, ये दिल बेकरार करेगी नहीं। इस एक के अंतरे से दूसरे का मुखड़ा मिलाएंगे, लगेगा कि वो सेम ही राग है।
1: क्या क्या गजब, क्या गजब मैशअप है। हाँ, जी जी,
4: अब ऐसे ही दो पुराने रागों को, मैं दो पुराने गीतों को एक में मिक्स कर रहा हूँ, उसको भी देखिएगा आप
1: जी।
4: तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे ये रीत अमर कर दो। जब एक से दूसरे का अगर मिलाते हैं आप अंतरा और मुखड़ा मिल जाएगा, तब फिर लगेगा कि आपको ये सेम राग के गीत
1: हैं। क्या ऑब्जर्वेशन है, मतलब सर गाते तो लोग हैं लेकिन ऑब्जर्वेशन, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जो है वो सेकंड लेवल पर हैं।
4: मैं प्रयास करता हूँ कि इसकी जो साइंटिफिक चीज है, लोग इस समय वैज्ञानिक सोच ज्यादा रखते हैं, तो मैं अध्यात्म को भी थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से उसमें घुसना चाहता हूँ, और गीत संगीत का है उसको भी थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखना चाहता हूँ। और हमको लगता है जब मैं उसमें घुसता हूँ तो बिल्कुल खरा उतरता है सारे पैरामीटर्स पर।
1: मतलब ये शोध परख है, मतलब वास्तव में कितना बड़ा शोध किया है आपने। ये मामूली
4: तो क्या है, बल्कि एक इंटरेस्ट है आदमी का, जब इंटरेस्ट रहता है तो उधर वो जाता है। हमने राग वाला एक मन में ही रह गया कि मैं चाह रहा था कि संगीत शास्त्र को भी पढ़ूंगा आगे चल करके किसी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेकिन मौका नहीं मिला। तो मन की जो दबी हुई इच्छा थी उसको बाद में वैसे ही पढ़ा, तैयारी किया।
1: अरे वाह, लेकिन मतलब जो आपने वास्तव में गाना गाया तो लगा ही नहीं कि यहाँ एक गाने से दूसरा गाना भिन्न है।
4: तो ये है उसी के, वही वो थोड़ा सा अपना जैसे सजाने के लिए किसी चीज को, कि किसी उसको लाल रंग के कपड़े पहना दिया, किसी को सफेद पहना दिया, तो उतना ही डिफरेंस ये लोग कर पाते हैं, उतना थोड़ा बढ़ा देते हैं। और उसी में वो टोन, कई बार जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है वो उसे गाने के लिए कहता है, जैसे हाथ खड़ा कर दिया कि तब तक उठाया रहेगा, तब तक वो आलाप अपने आप आलाप को रोके रखेगा। इसी में कई कई बार गाने वाले बेहोश तक हो जाते हैं। एक गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान लता मंगेशकर जी कम से कम 100 बार उनको रीटेक करना पड़ा एक लाइन पर, और जब तक बेहोश नहीं हो गए तब तक वो डायरेक्टर को रीटेक कराता रहा।
1: अच्छा, क्या हम जान सकते हैं कि वो कौन सी?
4: हाँ, वो गाना मैं आपको सुना गुनगुना देता हूँ। वो है ये कि सांसों की सरगम पे धड़कन ये दोहराए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वही ओम नमः शिवाय को हाथ खड़ा रखे रहता है कि तब तक रोके नहीं, ओम नमः शिवाय। अब जब वो डाउन लगा रहे तब तक वो रोके उसको।
1: मतलब लता जी के जीवन के इतिहास का एक ऐसा गीत जिसको 100 बार रिटेक हुआ और वो बेहोश हो गई।
4: हाँ, बेहोश हो गई। इसके बाद फिर लता जी उसके बाद तो लीजेंड बन गई, लेकिन ये उनका शुरुआती दौर था। इस गाने में ही उनको लगा कि ये गाना भी बिल्कुल एक तपस्या है।
1: अरे क्या बात है।
4: उसी आलाप को भरने के लिए तो लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं कि कहीं कोई आवाज ना हो, जितनी देर तक हम रिहर्सल कर पाव, जितनी देर तक सांस रोक पाव, उतनी देर तक रोके तो चलाते हैं लोग।
1: क्या क्या शोध है भाई, गीत तो सबने गाया लेकिन शोध आपका।
4: बस प्रेरणा आप लोगों की है, और उसी के वजह से कि मैं कुछ आपके सामने रख सकूं, इसी के लिए मैं कुछ न कुछ ढूंढता रहता हूं।
1: नहीं, और आया कि मतलब आपके लिए कमेंट है कि धड़कन दीवाना, सृष्टि चंद और प्रेम गीत, कितने सांग सुना दिए आपने सर, अद्भुत।
4: बल्कि मैंने सोचा था कि आज 10 गानों को एक में मिक्स करके आपको सुना दूंगा, लेकिन मैं उसको राइट डाउन करना चाह रहा था डायरी से, तो नोट नहीं कर पाया। नहीं तो मैं यमन कल्याण के 10 गानों की एक एक लाइन को एक में मिक्स करके एक नया गीत आपको सुनाऊंगा कभी।
1: अरे वाह, तो ये मौका हम चाहते हैं कि शनिवार को ही दिया जाए।
4: शनिवार को तो नहीं दे पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा कि अगले बुधवार को जरूर ही आपको
1: हम मतलब इस चीज के लिए तो भाई प्रतीक्षा रहेगी कि 10 गीत को एक ही
4: 10 गीत की, और इसमें तो हमने एक एक लाइन पूरी उठाया है, आधी आधी लाइन उठाऊंगा एक एक गाने की, आपको लगेगा नहीं कि हट करके।
1: और ये देखिए आ गया है कि बहुत बढ़िया जानकारी, मतलब वास्तव में इसे किसी
4: चलिए आप सभी का इसी बहाने हमको आप सभी से भी एक जुड़ाव जो बना हुआ है वो मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है आप सभी के साथ रह करके।
1: नहीं, गोंडा के पोस्ट ऑफिस में कोई डाक अधीक्षक साहब आए, और प्रयागराज में भी हमारे साथ है, ये गोंडा का सौभाग्य है, गोंडा की पवन मिट्टी का सौभाग्य है।
4: बस अभी आप लोगों का लगाव है कि जो हमको उसमें जोड़े हुए है,
1: बस हम चाहते हैं कि आपका रिटायरमेंट भी गोंडा से ही हो।
4: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। अगर ऐसा ही हो, एक बार मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा हमें आप सभी के साथ।
1: जी जी जी
4: बिल्कुल, ओके, थैंक यू।
1: अच्छा, चरण स्पर्श,
4: ओके, आशीर्वाद।
1: जी हाँ भाई, तो ये व्यक्ति नहीं, ये व्यक्तित्व तो है श्री अशोक त्रिपाठी जी, गोंडा में डाक अधीक्षक रहे, मतलब सबसे बड़ा सबसे बड़ी पोस्ट, और इस समय फिलहाल प्रयागराज में आप हैं। और शोध मतलब कहा जाता है लर्निंग इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जीतन सीखना एक सतत प्रक्रिया है। अमिताभ बच्चन कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद, और हमको लगता है कि वो एकदम सही कहते हैं कि अगर आपने सीखा नहीं तो फिर जिस दिन आप सीखना छोड़ देंगे उस दिन आप जीतना भूल जाएंगे। चलिए भाई, बहुत प्यारी जानकारी हमको मिली, धड़कन दीवाना, सरस्वती चंद और प्रेम गीत, कितने गीत एक साथ आपने सुने, और दर्द कुमार ने गाया। भाई राजेश श्रीवास्तव जी से, हम राजेश सिंह जी से अनुरोध कर रहे हैं कि गर्मी के इस मौसम में जो प्यारा सा जैकेट है ब्राउन कलर का, और उसी कलर से मिलती हुई जो कैप है, ओहो, और उस चेहरे पर जो प्यारी सी मुस्कान है, आहा, मतलब दिल जीत लेती है। पीछे खूबसूरत वादियां हैं, हाथ में एक प्यारा सा सेलफोन है और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। तो भाई गीता जी आपसे जरूर चाहेंगे, दीपांशी त्रेई आ चुके हैं, गुड इवनिंग सर। दीपांशी जी शुभ संध्या आपको भी, और भाई सुनना तो आपसे भी चाहेंगे, अगर आप सुनाए तो। भाई राजेश सिंह जी से भी सुनना चाहेंगे, गीता जी से भी अनुरोध करेंगे कि पिछली बार गला ख़राब था लेकिन इस बार गला ठीक हो चुका होगा, और देखते हैं भाई हम इन तीनों में हमको सबसे पहले कौन सुनाता है, श्री राजेश सिंह जी, गीता बहन जी या दीपांशी जी, तीन में से किसी एक की प्रतीक्षा। जी हाँ, हमें तत्काल है।

जी हाँ, उदास तो हेमंत कुमार को भी मैं सुना। सामान्यतः हमारे दर्द कुमार जी रफ़ी जी को चुनते हैं, लेकिन आज उन्होंने हेमंत कुमार को चुना। और वास्तव में बहुत ही प्यारा गीत, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। और भाई प्राची ने भी बहुत खूबसूरत गीत गाया। और अब इस क्रम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, हमारे पास 15 मिनट शेष हैं, और जो शेष है वो बहुत विशेष

0: आपको आशीर्वाद
1: जी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अंजनी श्रीवास्तव सर बोल रहे हैं।
0: जी जी बिल्कुल
1: जी। कैसे हैं आप?
0: फर्स्ट क्लास।
1: तो आज बहुत दिन के बाद हमारी याद आई आपको।
0: हाँ, कुछ कामों में व्यस्त रहे, इधर आपसे बात नहीं हो पाई बुधवार या शनिवार को।
1: जी मतलब अरे जिंदगी के कुछ लम्हात हमारे नाम कर दिया कि जैसा आप लोगों से कुछ सीखने को मिलता है।
0: एक से एक कलाकार हैं आपके पास।
1: जी
0: बड़ा अच्छा रिस्पांस सुन रहे थे अभी हम।
1: जी
0: अच्छा लग रहा था
1: जी।
0: और आपका जो स्वागत करने का तरीका है वो भी बहुत अच्छा है।
1: नहीं नहीं ये तो
0: हम लोगों को चाहे हम लोग बहुत ज्यादा भाई हम लोग सही बात है कि हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन उसके बाद हम लोग की जो हिम्मत अफजाई की जाती है वो आपकी भी कम तारीफ नहीं है।
1: नहीं मतलब वो लोग हीरे को हीरा ही कहा जाएगा, हम तो सिर्फ हीरे को हीरा कहते हैं।
0: बड़े सीनियर लोग हैं जो मतलब आपके उसके प्रेम में वो आते हैं माइक पे।
1: जी मतलब हाँ आशीर्वाद देता है उनका।
0: जी
1: इस मामले में तो सौभाग्यशाली हैं हम मानते हैं।
0: जी नहीं आपका आदर देने का जो एक देखिए एक अच्छे मतलब वक्ता का अनाउंसर का ये यही तो उसकी मेन वो है कि वो इतना विनम्र हो जाए कि सारी मीठी नदियों का पानी उसमें मिल जाए।
1: अरे नहीं नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस आप लोगों से ही सीखा है जो कुछ सीखा है थोड़ा बहुत, और अभी सीखते हुए चले आ रहे हैं।
0: जी
1: जी तो आज क्या सुनने वाले हैं आपसे?
0: जी आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया है, अगर आप स्टूडियो से बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा।
1: जी
0: और एक बहुत पुराना गीत है,
1: मौसम है आशिकाना तो नहीं है दिल कहीं ऐसे में तुम उनको ढूंढ लाना।
0: जी ये एक दूसरा गीत है।
1: जी
0: बहुत पुराना है, इसको बहुत कम लोग मतलब सुनते हैं।
1: जी
0: लेकिन आज बाई तब सामने आ गया तो हम आपके उसमें पेश करते हैं।
1: जी
0: तो मैं शुरू करूं?
1: जी जी।
0: जाने चले
1: आए हाय हाय हाय
0: जाते हैं कहां दुनिया से जाने वाले जाने चले

निशान दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।

आए जब जब उनकी यादें, होठों पे आए फरियादें, जाके फिर ना आने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, मेरे बिछड़े।

0: मुझसे बिछड़ गए तुम कैसे, सावन के जाते ही जैसे उड़ के बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कोई ढूंढे कैसे उनको, नहीं कदमों के भी निशान।
1: क्या बात है, मतलब मुकेश कुमार की आवाज में ये गीत है जैसा मेरा अंदाज है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और सोचिए, सिर्फ आपने एक पंक्ति देखा कि बादल काले काले हैं और उस पर आपने गीत ये सोचा, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, जबकि बादल का जिक्र केवल एक पंक्ति में है,
0: जी, जी।
1: बाकी पंक्ति में नहीं। देखिए, इसे कहते हैं सोच, मतलब इसे लगता है कि मतलब बहुत पढ़े लिखे बहुत जीनियस इंसान की सोच। नहीं नहीं, मतलब वास्तव में आप देखिए तो मौसम की जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही कुछ गीत की बात करेंगे, लेकिन आपने वहाँ पहुँचाया कि उड़ के बादल काले काले जाने चले जाते हैं कहाँ, मतलब बाहर कहीं बादल काला होगा, एक पंक्ति ने आपको एक गीत की प्रेरणा दी, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात
0: है, उसकी महानता है। और मुकेश जी ने तो गाया है और हम लोग तो खाली बस बीच है।
1: नहीं नहीं, बहुत प्यारा, क्या बात है। आया कीजिए बुधवार को, जरा हमको 10 मिनट का समय दिया, हम जानते हैं आपका समय बहुमूल्य है, लेकिन अगर हमको कुछ समय मिलेंगे, और जितिन सिंह ने लिखा है कि बहुत दिनों के बाद ये गीत सुन रहा हूँ, बहुत ही शानदार। दीपांशु जी ने लिखा है, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, क्या बात है। प्रवल मिश्रा जी ने बहुत तारीफ कर दी है भाई आपकी, हाँ बहुत लोग आपकी तारीफ में आ चुके हैं, क्या बात है भाई, बहुत दिनों के बाद सुना,
0: हमें भी खुशी हुई, मेरी भी हिम्मत बढ़ी।
1: चलिए, और अगले बुधवार को फिर प्रतीक्षा आपकी रहेगी।
0: जी अच्छा, ठीक है।
1: अच्छा, चरण स्पर्श
0: खुश रहिए।
1: जी हाँ, तो

0: ये श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी शाखा मतलब बैंक से मैनेजर पोस्ट से रिटायर हुए और बहुत ही कर्तव्य मतलब उनकी आप हैंडराइटिंग कभी देखें कभी लिखता हुआ तो लगता है जैसे किसी ने एकदम छाप दिया हो प्रिंटर से, ऐसा लगता है। बहुत ही प्यारी हैंडराइटिंग, मुझे बहुत अच्छी लगती है। विनम्रता दिल जीत लेती है और स्वभाव, इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं कि और विनम्र होते हैं। अच्छा, हमने एक चीज़ अपने जीवन में और गौर की कि कुछ लोग जी आप देखते हैं, मेरे साथ बात पूरी नहीं हो पाएगी, देखते हैं कोई और है जो जुड़ चुका है मेरे साथ। हेलो
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: हाँ नमस्कार जी, आज तो पूर्णिमा है या नहीं, लेकिन शायद आप पूर्णिमा जी हैं।
1: सर पूर्णिमा तो हमेशा होती है। हाँ, वही बोल रहे हैं
0: जी। जी कैसी हैं आप?
1: बहुत बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं?
0: बस बस आशीर्वाद आपका
1: जी सर। तो मौसम तो बहुत खूबसूरत है, और चूंकि मौसम को ही देख के मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है।
0: जी हाँ, इत्तेफाक है आप लोग मौसम देख पा रहे हैं और हम स्टूडियो के अंदर हैं। हमें
1: सर मच्छरदानी, सर अभी हम मच्छरदानी लगा रहे थे तो मच्छरदानी के अंदर है हम।
0: अच्छा, तो हम आपसे एक चीज पूछना चाहते थे
1: जी।
0: साबुनदानी में साबुन होता है? जनरली कोई हंसी वाली
1: मत पूछिएगा, क्योंकि ये हमने भी बचपन में बहुत किया और बहुत साल बाद हम जो है मच्छरदानी में लेते हैं, पता नहीं कितने सालों बाद।
0: इसका जवाब आपको मिला कि नहीं, मतलब जो साबुनदानी में साबुन होता है, मंजनदानी में मंजन होता है, तो फिर मच्छरदानी में मच्छर क्यों नहीं होता?
1: मच्छरदानी में मेरे तो मच्छर आ जाता है, क्योंकि कल हम इतनी गहरी नींद में सो रहे थे
0: जी,
1: क्योंकि पूरा दिन बाहर थे तो थक गए थे, तो जो है कल रात में इतनी अच्छी नींद आई, और चूंकि हवाएं भी बहुत खूबसूरत चल रही थी,
0: बहुत खूबसूरत।
1: हाँ, तो रात को 1 बजे पता चला कि मच्छरदानी के बाहर है, मच्छर जो है मच्छरदानी के अंदर है।
0: क्या बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसी मतलब जागरूक महिला प्रत्येक व्यक्ति को।
1: सुबह जब मम्मी से बताने लगे तो मम्मी के तुम्हारी हरकत ही ऐसी, ऐसे कौन सोता है मच्छरदानी लगा के मच्छरदानी के बाहर।
0: वाह क्या बात है, मतलब लक्ष्मी बाई के बाद अगर किसी वीरांगना का नाम भारत के इतिहास में लिखा जाएगा तो निसंदेह उनमें से एक आप होंगे।
1: धन्यवाद,
0: आपने साबित किया कि मच्छरदानी में मच्छर होते हैं, हम बाहर
1: बिल्कुल होते हैं, अगर उसको छेद कर दिया जाए तो मच्छर आ ही जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो आप मच्छरदानी में मच्छरों को सुनाइए, लेकिन फिलहाल हमको सुनाइए
1: जी। तो ये मौसम और खूबसूरत नजारों को देख के मुझे मुझे ये गीत याद भी था और मन भी था, तो हमने कहा सुना देते हैं आपको आज
0: जी।
1: जी तो शुरू करें सर
0: निसंदेह
1: जी। एक दिन आप

मैंने समझाना था एक दिन जिंदगी इतनी होगी हसी झूमेगा आसमां गाएगी ये कमी मैंने सोचाना था दिल की डाली पे कलियां से खिलने लगी जब निगाहें निगाहों से मिलने लगी एक दिन इस तरह हो।

से झूमेगा आसमां, गाएगी ये जमीन। मैंने सोचा न था जागती जगमगाती हुई जागती रात है या सितारों।

की वारदात है, एक दिन देखी राहों में अपने लिए, जल उठेंगे मोहब्बत के इतने दिए। मैंने सोचा न था, मैंने सोचा न था, एक दिन आप यूं

0: थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, जो नहीं सोचा आपने वो आपके साथ बहुत अच्छा हो गया, इसके लिए आप ऊपर वाले को धन्यवाद दीजिए।
0: सर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं।
1: गीत के माध्यम से जो आपने गाया।
0: जी जी बिल्कुल, तो मुझे बहुत पसंद था तो मैंने सुना दिया आपको।
1: जी बहुत प्यारा गीत लगा और बहुत मधुर आवाज में आपने सुनाया।
0: अरे सर इतना प्यारा लगा, उसके लिए थैंक यू।
1: जी जी, जी, जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके सर नमस्कार।
1: ओके सर नमस्कार। यार धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ हैं। मनोज सर जी नमस्कार, आज गाना सुनाने का मन है लेकिन आज कॉलिंग प्रोग्राम है। भाई हम चाहते हैं धर्मेंद्र मोहन जी आप स्वयं किसी दिन को सुनाएं। भाई प्रबल मिश्रा जी से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे भाई, कि प्रबल मिश्रा जी को सुनाएं। दीपांशी जी ने बहुत सारी तारीफ़ कर दी है भाई पूर्णिमा जी की, क्या बात है कि घर के सब काम से आज़ाद हो तभी ये सो सुनना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर के सारे काम से आज़ाद हैं। और प्रबल मिश्रा जी भाई बहुत अच्छा आप गाते हैं, ये मेरे सुनने में आया है कि आप गुनगुनाते बहुत अच्छा है। अब देखते हैं हमारे साथ और कौन है। हेलो।
2: हाँ जी गुड इवनिंग।
1: अरे जीवन धन्य हो गया प्रभु चरण स्पर्श।
2: सर सभी लोगों को मेरा नमस्कार।
1: जी
2: जितना
1: मतलब
2: हमें नहीं पता कौन है कौन नहीं है, लेकिन ये है कि जितने लोग भी प्रोग्राम सुन रहे हैं सबको मेरी तरफ से नमस्ते। और अभी
1: और सब लोग आपकी प्रतीक्षा भी कर रहे थे और पूछा जा रहा था इतने दिनों से कि श्री
2: ऐसा ये सब आ रहे हैं कि दुनिया है सर, दो दिन आप ना आइए तीसरे दिन लोग भूल जाते हैं।
1: अरे क्या बात करते हैं
2: आप, आपके आज आप मिल गए रास्ते में।
1: जी
2: हमने कह दिया, अभी मैं खाना वाना खा के उठा, तुमने कहा देखा टाइम तो ज्यादा हो गया, तुमने कहा चलो एक ही लाइन की बात है, एक लाइन दो लाइन गा लेते हैं।
1: जी हम बस
2: समय न गवाइए क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है।
1: जी
2: कौन सा बताया था
1: ये?
2: चलिए
1: जी
2: हाँ चलिए चलिए याद आ गया। हम क्यों

0: शिकवा कर झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, कुछ न कुछ तो होना था, हुआ ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अब हुआ, तब हुआ, अरे छोड़ो ये न सोचो ये क्या हुआ।
1: क्या बात है भाई, दिल जीत लेते हैं। बस चार लाइन कोई और गा दीजिए भाई, कई दिनों से नहीं गाया है आपने, तो बस कोई चार लाइन हो।
0: चलिए थोड़ा एक देखिए। चलिए। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, ओ एक यही बात न भूली जो

0: इतना भी दूर मत जाओ के पास आना मुश्किल हो, ओ इतना भी पास मत आओ के दूर जाना मुश्किल हो। अच्छा तो
1: क्या लेकिन क्या शानदार गाते हैं आप। और कहा जाता है अंत भला तो सब भला, हमारे कार्यक्रम का समापन करने के लिए
0: उनको मैं गुड नाइट कहता हूँ और बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन कुछ कारणों से मैं आ नहीं पाता हूँ, कुछ ऐसी बातें आई तो इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। हमारे गोंडा का एफएम जो चलता है बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारी आईडी वाईडी सब ब्लॉक हुआ इसलिए मैं सुन नहीं पाता हूँ, कभी कभी मन करता है।
1: आप निश्चिंत रहे, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा और हम हमेशा आपके साथ हैं।
0: अरे नहीं नहीं देखिए, ऐसा कोई विशेष शिकायत नहीं रहती है, मैं बड़ा खुले विचार का आदमी हूँ।
1: जी जी,
0: ये सब ऐसे छोटे मोटे चीजें हमारे साथ होती रहती है, मैं निकलता रहता हूँ। बस जो बताया था आपसे कि न गंदगी में ईट मारो न छीट खाओ,
1: जी बिल्कुल सही
0: है, समाज में तो ऐसे होता रहता। चलिए बॉस, गुड नाइट।
1: जी चरण स्पर्श आपको,
0: खुश रहिए खुश रहिए।
1: जी हाँ, तो गली की सुइयां बता रही हैं कि आपसे मिलने का मतलब अगले दिन मिलने का वक्त आ चुका है। जी हाँ, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे आपसे आप ही के कार्यक्रम बहारे गज़ल में। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: वो एक कोने में खड़ी होकर अपने कैमरे से गंगा की लहरों पर तैरते दियों को कैद करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तभी भीड़ के एक धक्के से उसका पैर फिसला और उसका कैमरा सीधे पानी में जाने ही वाला था कि अंकुर ने फुर्ती से उसका हाथ और कैमरा दोनों थाम लिया। उसने घबरा कर अंकुर की तरफ देखा, उसकी सांसें तेज थीं। अंकुर ने मुस्कुरा कर अपनी बनारसी टोन में कहा, अरे संभल के जी, बनारस की सीढ़ियां और यहाँ का इश्क दोनों में पैर बहुत जल्दी फिसलता है, तनिक धीरज धरिए, हड़बड़ी में तो यहाँ कचौड़ी भी नहीं छनती। वो पहले तो झेपी फिर खिलखिला कर हंस पड़ी। उसकी वो हंसी कसम बाबा विश्वनाथ की लगा जैसे संकट मोचन मंदिर में सुबह की आरती के वक्त सारी घंटियां एक साथ बज उठी हों।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना उससे अंकुर की पहली मुलाकात दशाश्वमेध घाट पर हुई। वो दिल्ली से यहाँ अपने पेंटिंग एग्जीबिशन के काम से आई थी। उसका कैमरा पानी में गिरने वाला था कि अंकुर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। अब आगे उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, थैंक यू। इस पर अंकुर ने सीना तान कर कह दिया, तभी तो गुरु, यहाँ बनारस में नजर और नियत दोनों बाज जैसी तेज रखनी पड़ती है। अगली सुबह वो उसे फिर मिल गई, इस बार गदौलिया की एक तंग गली में। हाथ में गूगल मैप लिए परेशान खड़ी थी। अंकुर ने बाइक रोकी और कहा, अरे गुरु, काहे सुबह सुबह इस भूल भुलैया में खुद का तेल निकाल रही हैं? इस शहर में रास्ता गूगल मैप नहीं, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद दिखाता है। बैठिए, आपको असली बनारस का दीदार कराते हैं। वो हिचकिचाई पर बैठ गई। अंकुर उसे सीधे रामचंद्र चौरसिया की दुकान पर ले गया। वहां खोलते तेल की कढ़ाई से छन कर निकल रही हींग वाली कचौड़ियां और ऊपर से टलने वाली वो तीखी आलू चने की सब्जी देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उसने पहली बाइट ली तो उसकी जुबान तीखेपन से जलने लगी, उफ करने लगी। अंकुर ने तपाक से पत्तल उसकी तरफ सरकाया और कहा, अरे गुरु, ये बनारस की हींग वाली कचौड़ी है, जब तक आंख से पानी और कान से धुआं ना निकले तब तक स्वाद का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तनिक ठहरिए, इसका इलाज भी है हमारे पास। वो दौड़कर बगल के ब्लू लस्सी वाले के यहाँ से कुल्हड़ भर के गाढ़ी मलाई मार के लस्सी ले आया। ऊपर से पड़ी रबड़ी और केसर के लच्छे देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। जैसे ही उसने लस्सी की एक घूंट ली उसने आंखें बंद कर ली। अंकुर ने हंसते हुए कहा, कैसा लगा? ये लस्सी जो है ना, ये बनारसी इश्क जैसी ही है। पहले कचौड़ी जैसा तीखा झटका देगी और फिर लस्सी की तरह ऐसा मीठा ठंडी पहुंचाएगी कि

0: आप अपनी दिल्ली भूल जाएंगी। ये शहर तसल्ली का है, यहाँ हड़बड़ी करने वाले का भौकाल टाइट हो जाता है। उसने अपने होठों पर लगी मलाई पोंछते हुए कहा, तुम बनारसी लोग सच में बहुत अतरंगी होते हो, हर बात में एक अलग ही स्वैग है तुम्हारा।
1: के पान बनारस वाला, खाई के पान।

अच्छा रहा गंगा किनारे।

लिए एक सपन लोक अधरों मिलिए यौवन हाला इठलाती है बल खाती है तन का चंदन वो छलक छलक झलकाती है वो नैन द्वार से तन में आके मन में ज्वाला जगाती है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो चंद्रमुखी है वो मृगनैनी है वो रूपवती है वो

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना वो अंकुर को पहली बार घाट की सीढ़ियों पर मिली, थोड़ी बातचीत हुई, दोबारा फिर बनारस की गलियों में मिली। अंकुर ने उसे बनारस दिखाने का प्रपोजल दिया और वो मान गई। अब आगे उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ जैसे सावन में गंगा का पानी बढ़ता है। उसे बनारस को अपनी कैनवस पर उतारना था और अंकुर को उसे अपना बनारस दिखाना था। वो सुबह 4 बजे उठकर सुबह बनारस देखने 80 घाट जाते। जब आसमान में लालिमा बिखरती तो वो चुपचाप अपनी डायरी में कुछ लिखने लगती और अंकुर उसे देखता रहता। फिर वो पप्पू की चाय की दुकान पर जाते। वहां की कड़क इलायची वाली चाय और ब्रेड मक्खन खाते हुए वो अंकुर से यहाँ के इतिहास के बारे में पूछती। एक दोपहर वो BHU के न्यू वीटी के पीछे वाले लॉन में बैठे थे। पेड़ों से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अचानक अंकुर से पूछा, तुम हमेशा इतने शांत कैसे रह लेते हो? इस भागती हुई दुनिया में तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम पीछे छूट जाओगे? अंकुर ने सामने उड़ते कबूतरों को देखा, अपने गमछे को कंधे पर सही किया और कहा, देखो ज्यादा लोड नहीं लेने का, ये बनारस है, यहाँ वक्त भागता नहीं है, यहाँ वक्त घाट की सीढ़ियों पर बैठकर सुस्ताता है। जो किस्मत में है वो बाबा विश्वनाथ खुद ढूंढ कर दे देंगे और जो नहीं है उसके पीछे भाग के अपनी किडनी सुखाने का क्या फायदा, लाइफ में चिल रहने का, समझी? उसने अंकुर की तरफ देखा, उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने हौले से अंकुर का हाथ पकड़ा और बोली, काश मैं भी तुम्हारी तरह सोच पाती। उस पल उस ठंडी हवा के बीच अंकुर को महसूस हुआ कि उनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं रह गया था, वो अंकुर का बनारसी इश्क बन चुकी थी। बनारस का इश्क सिर्फ हंसने गाने का नाम नहीं है, इसमें एक वैराग्य भी है। एक शाम वो दोनों नाव में बैठकर मणिकर्णिका घाट के सामने से गुजर रहे थे। दूर चिताओं की लपटें आसमान को छू रही थीं। पानी में उन लपटों का अक्स तैर रहा था। उसने डरकर अंकुर के कंधे पर अपना सिर रख दिया और धीरे से बोली, यहां आकर जिंदगी और मौत का अंतर कितना कम लगने लगता है ना? अंकुर ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, यही तो इस शहर का जादू है गुरु, यहां मौत भी एक उत्सव है। दुनिया जहां जाकर खत्म होती है, बनारस वहां से शुरू होता है। इसीलिए जब तक जिंदगी है उसे खुल कर जी लो। इस पल में मैं हूं, तुम हो और ये गंगा जी हैं, बाकी सब तो माया है। आज है

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना गंगा घाट के किनारे अंकुर और वो मिले। वो दिल्ली से आई थी, अंकुर ने उसे पूरा बनारस घुमाया और उन दोनों के बीच दोस्ती से कुछ बढ़कर हो गया। अब आगे एक शाम उन्होंने एक बूढ़े मल्लाह की नाव किराए पर ली। नाव दशाश्वमेघ घाट से खुली और 80 की तरफ बढ़ने लगी। सूरज डूब रहा था और गंगा का पानी तांबे के रंग जैसा चमक रहा था। उसने बिना अंकुर की तरफ देखे कहा, बनारस एक जादुई आईना है, यहां इंसान अपनी असलियत देख लेता है। तुमने मुझे उस सच से मिलवाया जिससे शायद मैं भाग रही थी। तुमने मुझसे बिना कुछ मांगे जो इश्क किया है उसने मेरे भीतर के सारे जख्म भर दिए हैं। अंकुर ने घबरा कर कहा, तुम ये बातें ऐसे क्यों कर रही हो जैसे तुम जाने वाली हो? वो सिर्फ मुस्कुराई। उसने अपने दुपट्टे से एक छोटा सा बेलपत्र निकाला, उसे चूमा और गंगा में प्रवाहित कर दिया। विसर्जन सिर्फ मूर्तियों का नहीं होता अंकुर, कभी कभी अपने दुखों का भी विसर्जन करना पड़ता है। उस रात जब वो घाट पर लौटे तो उसने अंकुर को बहुत देर तक देखा, जैसे वो उसके चेहरे का एक एक नक्श अपनी यादों में दर्ज कर रही हो। उसने अंकुर के कंधे पर सिर रखा और वो दोनों सुबह की पहली किरण तक वहीं बैठे रहे। सच तो ये था कि उसका बनारस का सफर खत्म हो रहा था, उसे वापस अपनी दुनिया में दिल्ली लौटना था। उनकी वो आखिरी शाम रामनगर किले के सामने नाव पर बीती। सूरज डूब रहा था और पूरा आसमान सिंदूरी हो गया था। उसने रोते हुए अंकुर से कहा, मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी, पर मेरी दुनिया अलग है, मेरे परिवार के सपने अलग हैं, मैं शायद कभी वापस ना आऊं। अंकुर का दिल अंदर से टूट रहा था, जैसे घाट का कोई पुराना पत्थर भरभरा कर गिर गया हो। पर उसने अपने आंसू छुपाए, एक लंबी सी सांस खींची और मुस्कुरा कर कहा, अरे पगली, रोती काहे हो? बनारस से कोई कभी दूर जाता है क्या? तुम जहां भी रहोगी तुम्हारे भीतर ये बनारस हमेशा जिंदा रहेगा। वो हींग वाली कचौड़ी की तीखी याद, वो लस्सी की मिठास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और हमारा क्या है, हम तो यहीं घाट पर मिलेंगे, चाय का कुल्हड़ थामे और तुम्हारी यादों के साथ। क्योंकि बनारसी जिसका हाथ एक बार पकड़ लेता है ना, उसका साथ सात जन्म तक नहीं छोड़ता, चाहे वो कितनी भी दूर काहे ना चली जाए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बनारसी इश्क। अब तक आपने सुना गंगा घाट के किनारे अंकुर और वो मिले और उनके बीच एक ऐसा एहसास पनपा जो दोस्ती से आगे था। फिर एक दिन उसने उससे कहा कि उसकी दुनिया अलग है और उसे जाना होगा। अब आगे उसने जाते जाते राघव के हाथों में एक चिट्ठी पकड़ाई। उसके चले जाने के बाद राघव ने कांपते हाथों से वो कागज खोला। उस पर उसकी खूबसूरत लिखावट में सिर्फ ये चंद लाइनें लिखी थीं। अंकुर, तुमने मुझे जीना सिखा दिया। मैं जब बनारस आई थी तो शायद अंदर से एकदम खाली थी, पर तुमने अपने निश्चल इश्क से मुझे महादेव का प्रसाद बना दिया। मैं अंदर से भर चुकी हूं। मैं वापस नई ऊर्जा के साथ अपने अधूरे छूटे संसार में वापस जा रही हूं। तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम मुझे ढूंढोगे कहां। मैं तो अब गंगा की हर लहर में और बनारस के इन घाटों के हर पत्थर में हूं। हमने एक दूसरे से यहां पर जो भी बातें की वो इस जन्म के लिए काफी हैं। अंकुर रोया नहीं। बनारस के घाट पर बैठकर कोई रोता नहीं है, क्योंकि यहाँ का हर पत्थर जानता है कि जो आया है उसे जाना ही है। अंकुर ने उस कागज के टुकड़े को अपनी जेब में रख लिया, उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरा और चुपचाप वहां से चल दिया। आज उस बात को कई साल बीत गए हैं। वो आज भी उसी रात के सन्नाटे में घाटों पर जाता है, पर अब अकेला नहीं होता, उसके साथ वो होती है, मौन। उसकी वो बातें होती हैं अंकुर के अंदर। लोग उससे पूछते हैं, अंकुर तुमने कभी शादी क्यों नहीं की, तुम्हारी कोई अधूरी प्रेम कहानी है क्या। अंकुर मुस्कुरा कर रह जाता है। उन्हें कैसे समझाए कि कहानियां इंसानों की होती हैं जो शुरू और खत्म होती हैं। हमारा तो इश्क था जो बनारस की हवा और मिट्टी में मिलकर इबादत बन गया। वो जहां भी होगी एक मुकम्मल इंसान बनकर जी रही होगी, और मैं यहां खुश हूं क्योंकि महादेव साक्षी हैं। मेरा इश्क जिस्म की सीमाओं से परे रूह का था, और बनारस में जो रूहानी इश्क हो जाता है वो कभी अधूरा नहीं रहता, वो महादेव की तरह अनंत हो जाता है।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी बनारसी इश्क। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं, तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानश्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आवाज के नाम पर हम अगर किसी को याद करते हैं आज भी ज्यादा, तो ऐसे हीरो को जो कि हमारे जहन में, हमारे दिल में आज भी राज करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, कोई एक नायाब हीरा, हम उसे हमेशा से संभाल के रखते हैं। ठीक वैसे ही संगीत जगत में भी कई ऐसे हीरे हैं जिसे आज भी सुनना, उनके बारे में जानना हम बहुत ही करीब से जानने की कोशिश करते हैं। आइए आज ऐसे ही एक नायाब हीरे के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश और आज भूले बिसरे गीत में लेकर के आई हूँ किशोर कुमार की कुछ बहुत ही प्यारी सी यादों को। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। उनके पिता कुंजी लाल और गांगुली एक वकील थे और माता गौरी देवी एक गृहिणी थी। गृहिणी होने के नाते उन्हें बहुत सारे कामों के साथ संगीत से भी बहुत ज्यादा रुझान था। लेकिन उनके पिता, जैसा कि अभी मैंने बताया, किशोर कुमार के पिता कुंजीलाल जी को भी संगीत जगत में एक ऐसी उपाधि मिली हुई थी कि जिस पर वो हाथ रख देते थे वो उनके लिए काबिलियत की एक प्यारी सी कुंजी बन जाता था। इसीलिए कुंजीलाल गांगुली पेशे से तो एक वकील थे, लेकिन संगीत में उनका बहुत ज्यादा रुझान था और माता गौरी देवी एक गृहिणी होने के नाते अपने पति के साथ संगीत जगत में बहुत ही बखूबी से पैर को जमाया। अब कहते हैं ना कि जब माता पिता ही इस क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो बच्चे उसी पग पर चलने के लिए उतारू हो जाते हैं। जब किशोर कुमार माता गौरी के पास में आए तो उन्हें मानो एक स्वर्णिम सात दिन लगा, बिल्कुल ना भूलने वाला दिन। किशोर कुमार का जन्म जब वो आए तो उनके लिए ऐसे था जैसे कि अंधेरे में दीपक जलने जैसा। बचपन से ही उनकी रुचि संगीत के साथ थी। माता उनकी एक बात को बहुत अच्छे से बताती हैं, जो कि आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक प्यारे से उनके ही आवाज में एक गीत को। तो आइए दोस्तों सुना देती हूँ एक प्यारा सा गाना जो कि है किशोर कुमार की आवाज में।

जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि माता गौरी देवी एक गृहिणी होती, यानी कि किशोर कुमार की माता जी। तो किशोर कुमार जी की माता जी को पहले से ही शायद ये ज्ञात था कि हमारी कोख में जो एक बेटा है वो संगीत जगत का हीरा होने वाला है। ठीक उन्होंने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए कई गानों को अपने आप से लिख डाला, गानों को गाने के लिए नहीं, सिर्फ उन्हें गुनगुनाने के लिए। माता गौरी देवी जब गर्भवती हो गई, उसके बाद में किशोर कुमार का जब जन्म हुआ, उनके तीन बड़े भाई बहन थे। सबसे पहले अशोक कुमार, एक प्रसिद्ध अभिनेता, अनूप कुमार अभिनेता, और एक बहन सती देवी। लेकिन किशोर कुमार अपने आप में एक ऐसी हस्ती थे, जब माता जब कोई भी गाना घर पे बैठे या फिर किसी काम में लीन होकर के कोई भी गाना अगर वो बजा देती थी, तो बचपन से ही वो हाथ हिलाना, पैर हिलाना और उस गाने को बहुत ज्यादा गंभीरता से सुनना किशोर कुमार की आदत में था। उन्हें पता था कि बड़े होकर के वो ऐसे दिग्गज, ऐसे महान संगीतकार बनेंगे जिसे दुनिया आज भी याद करेगी और हमेशा से याद करती रहेगी। किशोर कुमार के बहुत सारे गाने ऐसे हैं जिसे हम शायद कभी भी भूलना पसंद नहीं करेंगे, जिसमें रूप तेरा मस्ताना और पल पल दिल के पास, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कुछ तो लोग कहेंगे। ऐसे गीतों को जब उन्होंने गाया तो वाकई में मानो संगीत जगत में एक ऐसा तूफान आया जिसे सभी लोगों ने सोचा कि इसके बाद तो कोई और संगीतकार हो ही नहीं सकता है। कई बार उनसे कहा कि तुम्हारे पिताजी एक वकील हैं, एक पेशे से एक वकील हैं, तो तुम्हें भी उन्हीं के साथ वकालत करनी होगी। लेकिन उनकी तो दिशा ही कुछ और थी, उनका सपना ही कुछ और था, और उसमें माता जी ने उसका साथ दिया और साथ में पिता कुंजीलाल ने। कुंजीलाल गांगुली ने भी एक बार सोचा कि मैं जिस पेशे में हूँ, मेरा बेटा अगर उस पेशे में ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर कोई भी काम दिल से करते हैं, शायद उपलब्धि तभी मिलती है, सफलता तभी मिलती है। बस तब क्या था, कुंजीलाल यानी कि किशोर कुमार के पिताजी और माताजी दोनों ने उनका साथ दिया। और जब माता पिता का साथ हो तो किसी भी उपलब्धि को पाने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है। कहते हैं कि पूरी कायनात साथ होती है जब माता पिता का साथ होता है, और उनके साथ में उनके बड़े भाई किशोर कुमार, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेता। किशोर कुमार जी ने अपने फिल्म जगत में किस तरीके से पैर रखा, क्या कुछ उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को सफर किया। शायद ये कह सकते हैं कि किशोर कुमार ने अपने ही भाई को देख करके फिल्मी जगत में कदम को जमाया। कैसे किया सब बताएंगे, लेकिन आइए पहले सुना देते हैं एक प्यारा सा गाना जो कि है किशोर कुमार जी का।

किशोर कुमार जब मुंबई यानी कि बॉम्बे आए और अपने भाई अशोक कुमार के साथ में, जब उन्होंने फिल्मी में यानी फिल्म जगत में अपने भाई को देखा तो उन्हें एक बहुत बड़ी ताकत मिली कि मेरा भाई यानी कि अशोक कुमार। आज भी अशोक कुमार की मूवीज को हम बहुत ही शौक से देखते हैं क्योंकि हर एक फिल्म में, हर एक मूवी में उनकी एक अदा ऐसी होती थी जिससे अर्थ निकलता था। उनकी पहली बतौर अभिनेता उन्हें मौका मिला शिकारी, जो कि 1946 में आई थी। शुरुआत में केवल अभिनेता बनना चाहते थे, गायक नहीं, क्योंकि ये इंस्पायर्ड हुए थे अपने भाई अशोक कुमार से। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गायन में रुचि दिखाई। गायन में एक गाना जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जाकर के शौकिया ही अपने गाने को गाना शुरू किया, तब उन्होंने आदर्श KL सहगल को नकल करते हुए गाना शुरू किया था। उन्हें क्या पता था कि ये नकल आगे चल कर के काफी लोगों की दिलों की धड़कन बन जाएगी और बाद में एक अपनी अनूठी शैली विकसित की जिन्हें हम आज भी बड़े ही शौक से सुनते हैं। किशोर कुमार कभी संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं मिला। किशोर कुमार जी को कभी संगीत का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया गया था। वे बेहद अनूठे और विचित्र स्वभाव के थे, साथ ही साथ इसीलिए वो सभी के दिलों पर राज भी करते थे और मशहूर भी हो गए। अपनी मस्ती और हास्य के लिए ये बड़े ही दिलचस्प जाने जाते थे। वे राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार की त्रिमूर्ति में दौर में भी अपनी अलग पहचान को बनाने के लिए भी सफल हुए। उनका आदर्श केवल एक ही थे, जो कि KL सहगल। तो आइए इस प्यारे से गाने को सुनते हैं जो कि किशोर कुमार जी ने बड़े ही चाव से और साथ ही साथ KL सहगल की, जिसे कहते हैं ना कि हम जब हम किसी, कोई हमारे लिए आदर्श बन जाता है तो हम उनकी तरह बखूबी उनकी तरह बोलना शुरू कर देते हैं, उनकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो जैसा कि अशोक कुमार उनके आदर्श थे तो सेम टू सेम उनकी नकल करते हुए बहुत सारे गाने उन्होंने गाए थे। तो आइए किशोर कुमार जी का एक प्यारा सा गाना सुनते हैं जो कि KL सहगल की थोड़ी मिलती जुलती आवाज में है।

किशोर कुमार की आवाज में एक स्वाभाविक जोश, भावनाएं और नटखटपन था। वे हर भावना के गीत को जी लेते थे, ऐसे गाते थे जैसे वो उस गाने को जी रहे हैं। चाहे वो रोमांस हो तो पल पल दिल के पास, ओ मेरे दिल के चैन, मस्ती वाले मूड में हो तो खई के पान बनारस वाला, ये शाम मस्तानी, और अगर उदासी वाला गाना कोई होता था तो छू कर मेरे मन को, या फिर दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। दार्शनिक भाव से भी कई उन्होंने गीत गाए, जैसे जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। उनकी आवाज की रेंज इतनी प्यारी थी, इतनी थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी, जैसे उसमें ऊंचे स्वर निचले स्वर दोनों में समान निपुणता से वो गायन की शैली को जानते थे, और इसीलिए उन्होंने कई ऐसी उपलब्धियों को शामिल किया अपने में जिसमें वह निपुण थे। निपुणता की अगर बात की जाए तो हर एक संगीतकार की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक सिग्नेचर होता है। तो किशोर कुमार जी का सिग्नेचर सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो हर एक मूड में हर एक भावना को गाते नहीं थे, उसमें वो जीते थे, चाहे रोमांस, मस्ती, उदासी, दार्शनिक भाव हो। हर एक गाने को इतनी ही मस्ती से वो गाते थे जैसे मानो उस गाने में वो पूरी जिंदगी जी रहे हों। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही अगर हम भी अपने किसी काम में जी लगा के, उसे जी करके, महसूस करके करें, तो शायद हमारे लिए भी उपलब्धि कदम चूमने के बराबर नहीं रह जाएंगी। जी हाँ, आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को।

किशोर कुमार अपने अनोखे और मस्त मौला स्वभाव के लिए तो मशहूर थे ही। उनका स्वभाव ऐसा था कि जब वो रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो आसपास के सभी लोग उनका इंतजार करते थे, क्योंकि साथ ही साथ में जब उनकी रिकॉर्डिंग होती थी तो साथ ही साथ उनके आसपास के लोगों को साथ में बैठ करके बड़ा ही मजा आता था। जैसे कई बातें होती थी जहाँ पर वो मूड मजाक और मस्ती में भी रहते थे, इसीलिए उनका इंडस्ट्री में उनकी रिकॉर्डिंग पे बहुत ज्यादा इंतजार होता था। वे पैसे को लेकर भी बहुत सचेत रहते थे। कहा जाता है कि अगर कोई उनका भुगतान ना करे, पेमेंट ना दे, तो सबसे पहले वो यही कहते थे, पेमेंट पहले गाना बाद में कहकर मजाक में उस गाने से इनकार कर देते थे। इसीलिए यही है एक सच्चे वाले प्रोफेशनल की, क्योंकि मजाक में ही अगर हम किसी बात को ये कह दें तो सामने वाले को भी बुरा ना लगे। ऐसे नहीं कि हमेशा से रौद्र में, क्रोध में अगर हम कोई चीज बोल देते हैं तो हमें लगता है कि हम उस इंसान पर, हम उस पर एक अपना रोब जमा रहे हैं। पर किशोर कुमार ऐसे नहीं थे, मजाक में ही सही पर अपनी दिल की बात को कह देते थे। साथ ही साथ उनका सादा और सीधे शब्दों वाला ही जीवन था। इससे एक बात याद आ रही है मुझे कि सीधे और साफ शब्दों वाले इंसान जो होते हैं ना, वो दिल के बड़े सच्चे होते हैं, क्योंकि वो सामने तो आपको कुछ भी कह सकते हैं लेकिन पीठ पीछे बिल्कुल वो निश्चल भावना से होते हैं। और ठीक वैसे ही किशोर कुमार भी थे। वे बहुत सीधे साधे जीवन जीने की कला को जानते थे। सामने कह देना उनकी एक कला में था, वो भी मुस्कुरा करके। शायद इसीलिए वो लोकप्रिय बनते गए। उनके कितने सारे फैंस थे जो कि आज भी उन्हें याद करते हैं और उनके कई गानों को, उनके कैसेट्स को अपने पास में रखते हैं। तो आइए प्यार सा गाना सुना देती हूँ, जो कि उनकी फिल्म चलती का नाम गाड़ी, उसमें से।

किशोर कुमार और मधुबाला की मुलाकात फिल्म चलती का नाम गाड़ी के सेट पर हुई थी। दोनों में प्यार हुआ और शादी भी की, लेकिन मधुबाला की तबीयत बहुत खराब रहती थी। कहा जाता है कि किशोर कुमार ने उनकी बीमारी के दौरान उनका बहुत ख्याल रखा और मधुबाला का निधन 1969 में हुआ। ठीक उनके जाने के बाद में शायद किशोर कुमार जी अकेले रह गए और बहुत ही उनकी याद को महसूस करने लगे। कहते हैं ना कि प्रेम तो प्रेम होता है, और अगर प्रेम के बाद में उसी को अपना करके शादी की जाए तो शायद प्रेम अटूट सा बन जाता है। और यही कारण था कि मधुबाला से उनकी प्रेम कहानी काफी समय से पहले से चल रही थी, लेकिन उनकी मुलाकात भी एक सेट पर ही हुई थी और उन्होंने अपने प्यार को शादी में बदला। लेकिन मधुबाला का इस तरीके से चले जाना किशोर कुमार की जिंदगी को झकझोर के गया, क्योंकि किशोर कुमार ने बड़े ही दिल से, बड़े ही चाहत से मधुबाला को चाहा था और उसके बाद में शायद ही उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सोचा। ठीक उसके बाद यानी कि 15 साल वो अकेले रहे और उन्होंने अपने संगीत जगत में कई ऐसी उपलब्धियां पाई। लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल के करीब दिल को चाहने वाला एक इंसान जब हमें छोड़ के चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो खालीपन रहता है, पर संगीत जगत को उन्होंने काफी कुछ दे करके गए। किशोर कुमार की बहुत सारी यादें, बहुत सारे गीत ऐसे हैं जिसे आज हम शायद मधुबाला के साथ भी अगर सोच करके गाएं तो आपको यकीन होगा कि ये प्यार में, ये इश्क में, ये मोहब्बत में ही गाया जाने वाला गीत है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को जो कि किशोर कुमार ने मधुबाला के प्यार में गाया था।

1948 से 1947 तक लगभग चार दशकों में उन्होंने 2600 से भी अधिक गाने गाए और कहते हैं आज भी उनके गाने हर पीढ़ी के दिल में बसे हैं। उनके बेटे अमित कुमार और सुमित कुमार ने उनकी इस विरासत को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी और संगीत जगत में उन्होंने अपना नाम इस तरीके से रोशन किया जैसे कहते हैं ना कि एक दिया जला करके भी अगर हम किसे ढूंढे तो शायद वो नहीं मिलेगा। और आखिरकार हमने ऐसे हीरे को खो दिया 13 अक्टूबर 1987 को अपने जन्म स्थान खंडवा लौटने की योजना बना रहे थे लेकिन उसी दिन उन्हें दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा भी यही थी कि मुझे खंडवा में ही दफनाया जाए जो कि पूरी की गई। तो ये थी किशोर कुमार जी की पूरी प्रारंभिक से लेकर के उनकी मृत्यु तक की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और साथ ही साथ में जो गानों का एक बहुत बढ़िया सा तालमेल हम लेकर के आते हैं भूले बिसरे गीत में। मैं आप सभी से एक बात और कहना चाहती हूँ, भूले बिसरे गीत को जब आप सुनते हैं कई सारे कमेंट्स भी करते हैं लेकिन आप लोगों की आरजेस जो कि लेकर के आती हैं, तो कुछ भी अगर आपको इसमें नया सुनना है या फिर किसी और एक कलाकार के लिए तो प्लीज चैट बॉक्स में आकर के सुन करके जरूर से हम आरजेस को बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए सफर में, आपकी अपनी आरजे ख्वाहिश को दें इजाजत। शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है,